0: पास है, और जो लोग अल्लाह की आयात से कुफ्र करते हैं वही घाटे में रहने वाले हैं। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनसे कहो फिर क्या ऐ जाहिलो, तुम अल्लाह के सिवा किसी और की बंदगी करने के लिए मुझसे कहते हो? ये बात तुम्हें उनसे साफ कह देनी चाहिए, क्योंकि तुम्हारी तरफ और तुमसे पहले गुजरे हुए तमाम अंबिया की तरफ ये वही भेजी जा चुकी है कि अगर तुमने शिर्क किया तो तुम्हारा अमल जाया हो जाएगा और तुम खसारे में रहोगे। लिहाजा ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम बस अल्लाह ही की बंदगी करो और शुक्रगुजार बंदों में से हो जाओ। इन लोगों ने अल्लाह की कदर ही ना की जैसा कि उसकी कदर करने का हक है। उसकी कुदरत कामिला का हाल तो ये है कि कयामत के रोज पूरी जमीन उसकी मुट्ठी में होगी और आसमान उसके दस्ते रास्त में लिपटे हुए होंगे। पाक और बाला तर है वो उस शिर्क से जो ये लोग करते हैं। उस रोज सूर फूंका जाएगा और वो सब मर कर गिर जाएंगे जो आसमानों और जमीन में हैं, सिवाय उनके जिन्हें अल्लाह जिंदा रखना चाहे। फिर एक दूसरा सूर फूंका जाएगा और यकायक सब के सब उठकर देखने लगेंगे। जमीन अपने रब के नूर से चमक उठेगी, किताब आमाल लाकर रख दी जाएगी, अंबिया और तमाम गवाह हाजिर कर दिए जाएंगे, लोगों के दरमियान ठीक ठीक हक के साथ फैसला कर दिया जाएगा। लोग जो कुछ भी करते हैं अल्लाह उसको खूब जानता है। सदकल्लाहु अज़ीम।
1: उर्दू रेडियो FM 107 के अपने तमाम सामीन को मुत्तला करता है कि दोहा और उसके निवाही इलाकों में फजर की अजान का वक्त हो गया है। अल्लाह

0: والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعث مقاما محمودا الذي وعدته.
1: FM 107 पर पैगाम।
2: एक लुकमा पेट तक पहुंचाने के लिए अल्लाह सुभान व तआला ने कितना इंतजाम किया है कि अगर वो गर्म है तो हाथ बता देते हैं, सख्त है तो दांत बता देते हैं, कड़वा या तुर्श है तो जुबान बता देती है, और अगर बासी है तो नाक बता देती है। बस एक चीज का इख्तियार हमें दिया गया है कि हराम है या हलाल, ये फैसला हमें करना है।
1: पैगाम FM
3: 107 पर रेडियो कतर की उर्दू सर्विस आपसे मुखातिब है। समीन, अल्लाह ताला ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातब करते हुए फरमाया कि ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे बंदे अगर तुमसे मेरे मुतालिक पूछें तो मैं तो उनसे करीब ही हूँ, पुकारने वाला जब मुझे पुकारता है तो मैं उसकी पुकार सुनता हूँ और जवाब देता हूँ, इसलिए उन्हें चाहिए कि मेरी दावत पर लब्बैक कहें और मुझ पर ईमान लाएं। ये बात तुम उन्हें सुना दो, शायद कि वो राह रास्त पालें। सामीन, मौलाना इदरीस अबकर साहब दुआगो है अल्लाह ताला के हुजूर, आइए हम भी इन दुआओं में शरीक हो जाएं। ऐ अल्लाह, तू हमारी सब दुआएं कबूल फरमा ले।

فلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد.

इंसान सिर्फ अल्लाह की रजा चाहता है तो उसे किसी इंसान की तारीफ की जरूरत नहीं रहती। उसका दिल मुतमईन हो जाता है, उसका अमल मुस्तकिल होता है, क्योंकि इंसान की तारीफ बदल सकती है लेकिन अल्लाह की रजा हमेशा कायम रहती है। इखलास इंसान को अंदर से आजाद करता है। वो लोगों के अल्फाज का मोहताज नहीं रहता, वो नाकामी या तारीफ से मुतासर नहीं होता। उसका मयार सिर्फ एक होता है, अल्लाह की रजा। यही वो कैफियत है जिसे रूहानी सुकून कहा जाता है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अमाल का तारुमदार नियतों पे है। यह हदीस इखलास की बुनियाद है, यानी अगर नियत साफ हो तो मामूली अमल भी अजीम बन जाता है। अगर माशरे में इखलास आ जाए तो लोग बेलोस मदद करने लगते हैं, हसद और मुकाबला कम हो जाता है, ताल्लुकात साफ हो जाते हैं, एतमाद बढ़ जाता है। यही वजह है कि कुरान सिर्फ फर्द नहीं बल्कि पूरे माशरे की इस्लाह करता है। निकी की असल रूह इखलास है। अल्लाह की रजा सबसे बड़ा मकसद है। बदला और तारीफ की ख्वाहिश निकी को कमजोर करती है। सच्चा मोमिन वो है जो सिर्फ अल्लाह के लिए अमल करे। सूरह अल-इंसान की ये आयात हमें सिर्फ देने का हुक्म नहीं देती बल्कि कैसे देना है ये भी सिखाती हैं। इस खास सिफ्त को सही से समझते हैं जिसे इसार कहा जाता है, यानी दूसरों को खुद पर तरजीह देना। इसार का मतलब है अपनी जरूरत के बावजूद दूसरों को देना, अपनी पसंदीदा चीज कुर्बान करना, दूसरों की खुशी को अपनी खुशी पर तरजीह देना। ये आम सखावत से एक कदम आगे की चीज है। सखावत में इंसान इजाफी चीज देता है जबकि इसहार में इंसान अपनी जरूरत की चीज भी दे देता है। इन आयत में एक निहायत अहम जुमला है, वो खाना खिलाते हैं उसकी मोहब्बत के बावजूद। यही जुमला इसहार की असल बुनियाद है, यानी वो चीज उन्हें पसंद भी है, वो खुद भी उसके मोहताज हैं, मगर फिर भी वो दूसरों को तरजीह देते हैं। ये वो मकाम है जहां इंसान अपने नफ्स पे काबू पाता है। इंसान का नफ्स इनर सेल्फ हमेशा ये चाहता है कि अच्छी चीज खुद रखे, दूसरों को कम दे, अपनी जरूरत को पहले रखे। लेकिन इसार इस सोच को बदल देता है। ये इंसान को सिखाता है कि दूसरों की जरूरत भी अहम है। असल कामयाबी कुर्बानी में है। दिल की वसत ईमान की अलामत है। इसार आसान नहीं होता क्योंकि इंसान फितरी तौर पर अपनी चीज से मोहब्बत करता है, कमी का खौफ होता है, मुस्तकबिल की फिक्र होती है। लेकिन ईमान इंसान को यकीन देता है कि अल्लाह बेहतर बदला देगा। कुर्बानी जाया नहीं होती, देने से कमी नहीं बल्कि बरकत आती है। जैसे कि मैंने आपको बैकग्राउंड बताया था कि हजरत अली बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु अन्हु और हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु अन्हा ने 3 दिन तक अपना खाना दूसरों को दे दिया। ये इसार की बेहतरीन मिसाल है क्योंकि वो खुद भूखे थे, खाना उनकी जरूरत थी, लेकिन उन्होंने दूसरों को खुद पर तरजीह दी। यही वो अमल है जिस पे अल्लाह ने उनकी तारीफ फरमाई। इसार इंसान के दिल को वसी करता है, वो खुद खर्जी से निकल आता है, दूसरे के दर्द को महसूस करता है, उसमें हमदर्दी पैदा होती है। यही सिफात एक मोमिन को आम इंसान से मुमताज करती हैं। अगर माशरे में इसार पैदा हो जाए तो गुर्बत कम हो जाती है, लोग एक दूसरे का सहारा बनते हैं, हसद

0: मुकाबला कम हो जाता है, मोहब्बत और भाईचारा बढ़ता है। यही एक मजबूत और पुरअमन माशरे की बुनियाद है। जब इंसान इसहार करता है तो वो दरअसल अल्लाह पर भरोसा जाहिर करता है। वो ये मानता है कि अल्लाह उसे जाया नहीं करेगा, वो अल्लाह की रजा को अपनी जरूरत पर तरजीह देता है। यही ईमान की बुलंदी है। इसहार सिर्फ बड़े मौके पर नहीं बल्कि रोजमर्रा जिंदगी में भी हो सकता है। अपनी पसंदीदा चीज किसी जरूरतमंद को देना, किसी को अपनी जगह देना, अपने वक्त और आराम को दूसरों के लिए कुर्बान करना, छोटे छोटे अमल भी इसार की तरबियत करते हैं। इसार नेकी की आला तरीन शक्ल है। अपनी पसंदीदा चीज देना असल कुर्बानी है। ये नफ्स की तरबियत और ईमान की अलामत है। इसार से माशरा मजबूत और पुर अमन बनता है।
1: आइए आरजे महविश खान के साथ सुनिए पर्ल्स ऑफ द कुरान सिर्फ एफएम 107 पर।
0: सूरह अल-इंसान की ये आयत इंसान के बातिन यानी इनर सेल्फ की ऐसी तरबियत करती है जो ना सिर्फ अमल को पाक करती है बल्कि दिल को भी सुकून अदा करती है। अब हम इस जुमले की गहराई को समझते हैं। हम तुमसे ना कोई बदला चाहते हैं और ना शुक्रिया। इंसान की फितरत में ये बात शामिल है कि वो चाहता है कि उसकी तारीफ हो, उसके अच्छे काम को सराहा जाए, अप्रिशिएट किया जाए, उसे बदले में कुछ मिले। ये ख्वाहिश फितरी है लेकिन अगर ये हद से बढ़ जाए तो नेकी की रूह को मुतासिर करती है। इन आयात में कुरान हमें एक बुलंद मयार देता है। नेकी सिर्फ अल्लाह के लिए हो, इंसानों से कुछ भी ना चाहा जाए, हत्ता कि शुक्रिया भी नहीं। ये मयार इंसान को रूहानी बुलंदी की तरफ ले जाता है। बदला ना जाने का मतलब ये नहीं कि इंसान को बदला मिल नहीं सकता बल्कि ये है कि नियत में बदला शामिल ना हो, अमल किसी फायदे के लिए ना हो, मकसद सिर्फ अल्लाह की रजा हो। इंसान को तिजारत की सोच से निकाल कर इबादत की तरफ ले आता है। शुक्रिया ना चाहने का मतलब यह है कि इंसान तारीफ का मोहताज ना रहे, उसका दिल लोगों के रवैये से मुतासर ना हो, वो अपनी नेकी को अल्लाह के साथ जोड़ दे। इंसान को अंदर से मजबूत बनाता है। आम तौर पर जब इंसान को शुक्रिया नहीं मिलता तो मायूस हो जाता है, नाराज हो जाता है, आइंदा नेकी करने से रुक जाता है। लेकिन जो शख्स इन आयात के उसूल को समझ ले वो कभी मायूस नहीं होता, उसका ताल्लुक अल्लाह से होता है, वो मुस्तकिल नेकी करता रहना चाहता है। जब इंसान बदला और शुक्रिया नहीं चाहता तो उसे एक खास सुकून मिलता है, वो लोगों की राय से आजाद हो जाता है, उसका दिल मुतमीन रहता है, उसे अंदरूनी खुशी मिलती है। यही वो कैफियत है जिसे रूहानी इत्मीनान कहा जाता है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी इस उसूल की बेहतरीन मिसाल है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों के लिए बेशुमार कुर्बानियां दी लेकिन कभी बदले या तारीफ की ख्वाहिश नहीं रखी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकसद सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रजा थी। अगर हम इस उसूल को अपनी जिंदगी में अपनाएं तो हम दूसरों से शिकायत कम करेंगे, हम एहसान जताना छोड़ देंगे, हमारे ताल्लुकात बेहतर हो जाएंगे। क्योंकि अक्सर झगड़े तवक्कात की वजह से होते हैं। जब लोग बदला और शुक्रिया ना चाहें तो माशरा ज्यादा मुखलिस हो जाता है, लोग एक दूसरे की मदद खालिस नीयत से करते हैं।

0: कदर की जमीन पर दुनिया के हर कोने से आए हुए लोग, उनकी कहानियाँ, उनके जज्बात और ईद की वो यादें जो घर से दूर भी दिल के करीब हैं। एक खास शो जहाँ आपकी मुलाकात होगी उन लोगों से जो अपने मुल्क से दूर रहकर भी ईद को अपने अंदाज में महसूस करते हैं। उनकी कहानी, उनकी मुस्कुराहट और कभी कभी आंखों में आंसू। आरजे नाजिया के साथ हम लेकर आए हैं आपके लिए प्रोग्राम कतर से सलाम। ईद के पहले और तीसरे दिन रात 10 बजे से ओनली ऑन FM 107। कतर से सलाम, क्योंकि दूरियां फासलों की होती हैं, दिलों की नहीं।
1: आप सुन रहे हैं FM 107।
2: दिल से देसी।

0: FM 107 की पूरी फैमिली की तरफ से हमारे तमाम सुनने वालों को ईद उल अदा की दिल की गहराइयों से मुबारकबाद।
1: कदर की जमीन पर दुनिया के हर कोने से आए हुए लोग, उनकी कहानियाँ, उनके जज्बात और ईद की वो यादें जो घर से दूर भी दिल के करीब है। एक खास शो जहां आपकी मुलाकात होगी उन लोगों से जो अपने मुल्क से दूर रहकर भी ईद को अपने अंदाज में महसूस करते हैं। उनकी कहानी, उनकी मुस्कुराहट और कभी कभी आंखों में आंसू। आरजे नाजिया के साथ हम लेकर आए हैं आपके लिए प्रोग्राम कतर से सलाम, ओनली ऑन FM 107। कतर से सलाम, क्योंकि दूरियां फासलों की होती हैं, दिलों की नहीं।
2: अस्सलाम वालेकुम और ईद मुबारक एवरीवन। और कतर से आपको एक प्यार भरा सलाम ऑन द शो कॉल कतर से सलाम। वेल दोस्तों, आज के इस एपिसोड में मैं बात करने वाली हूँ हमारी गेस्ट से जिनका ताल्लुक है इजिप्ट से। आज हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से इजिप्ट में ईद का माहौल रहता है, किस तरह की सेलिब्रेशंस होती हैं और क्या वो यहाँ कतर में रहते हुए ईद की जो वो वाइब है जो इजिप्ट में हुआ करती थी उसे मिस कर रही हैं, या किस तरह की सिमिलैरिटीज जो है वो यहाँ पर कतर में रहकर महसूस कर रही हैं, कौन सी डिशेज हैं जो उनकी फेवरेट हैं और किस तरह से उन्होंने इजिप्शियन ईद वाइब को यहाँ पर भी कायम दायम रखा है। तो चलिए हम अपनी गेस्ट को वेलकम कहना चाहेंगे। हमारे साथ इस खास एपिसोड पे मौजूद है हमारी गेस्ट माहा महमूद।
1: आप सुन रहे हैं प्रोग्राम कतर से सलाम विद आरजे नाजिया, ओनली ऑन FM 107, दिल से देश।
2: ऑलराइट दोस्तों, हम वेलकम कहना चाहेंगे हमारी बहुत ही कमाल की गेस्ट माहा महमूद को ऑन FM 107। ईद मुबारक एंड वेलकम ऑन FM 107 एंड ऑन दिस एपिसोड ऑफ कतर से सलाम। हाउ यू डूइंग?
3: I'm good, alhamdulillah. How are you?
2: Alhamdulillah, I'm also good.
3: Alhamdulillah.
2: Okay, let's talk about Eid, and this is a special day we are talking about. Tell me, when you think of Eid al-Adha in Egypt, okay? So, what is that one memory that instantly takes you back home?
3: First, Eid Mubarak.
2: To you too.
3: When I'm thinking about Eid in Egypt, actually, I think most of the time about the night before the Eid. We are waiting for the prayer. We are waiting for the sounds of takbir. It's filling the street from every mosque. You can hear the voice. So it's the night. Actually, it's the night before and going to salah. Going to this is the the most memorable thing for us. It's so emotional and comforting about the atmosphere in Egypt there.
2: Wow, you can really feel that from your voice. It's amazing how one memory
3: yes, and
2: can
3: and actually
2: so much
3: everyone must be dressed up for Salah. You can't just go Lala, it must be in your clothes and you must be in a very good looking.
2: Wow, nice. Okay, Maha, can you paint a picture for us? What does a typical Eid morning look like in Egypt?
3: Okay, actually it starts very early.
2: Okay.
3: Everyone gets ready in their new clothes and people head to Eid prayer together. And after prayer, you see everyone greetings and they are giving us smiles and hugs, and even people who don't know each other, they are giving candies and balloons for the kids. And when you go home, actually it's the family gathering. Most of the time it's at the grandparents' house. Usually it happened there. Breakfast is ready and waiting, and the house it's full of laughter, tea, coffee, kahk, sweets, endless conversations. It's so loud, joyful. Actually, it's full of love.
2: Full of.

विद आरजे फजील ईद के दूसरे और चौथे दिन दोपहर 3 बजे, जहां होगी ईद की मस्ती, कल्चरल स्टोरीज और दिल को छू लेने वाले मोमेंट्स, मजेदार ईद डिशेस का सफर।

आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM107 Qatar. दिल से देसी.

आपके दोस्तों यारों को और हमारे भाइयों को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। खुदा करे ये खास दिन आपकी जिंदगी में ढेर सारी खुशियां, सुकून और तरक्की लेकर आए। मे अल्लाह एक्सेप्ट योर प्रेयर्स, ब्लेस योर होम विद लव एंड पीस। ये दिन दोस्तों और परिवार के साथ, फैमिली मेंबर के साथ हंसने मुस्कुराने और मीठी सेवैया खाने का है। सभी पुरानी बातों को, गमों को भूलकर एक दूसरे को गले लगाएं और इस खूबसूरत मौके को दिल से सेलिब्रेट करें। स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी एंड कीप स्माइलिंग ऑलवेज। विश यू अ वेरी जॉयफुल एंड सेफ ईद उल अधा। और सुनते रहें FM 107 दिल से।

Assalamualaikum. मैं हूं आरजे महावश, FM 107 और मेरी तरफ से आप सब लोगों को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद. अल्लाह ताला आपकी कुर्बानियों को कबूल फरमाए, आपकी जिंदगी को खुशियों, बरकतों और सलामती से भर दे और आपके घर को अपनी रहमतों से मुनव्वर करे. आमीन.

0: FM 107 की पूरी फैमिली की तरफ से हमारे तमाम सुनने वालों को ईद उल अदा की दिल की गहराइयों से मुबारकबाद। FM 107 पेश करते हैं ईद का स्पेशल प्रोग्राम किड्स कार्निवल सफा के साथ, एक फन फिल्ड शो जहां बच्चों के लिए स्टोरीज, गेम्स, हंसी मजाक, म्यूजिक और एक्साइटिंग सरप्राइजेस होंगे और अपनी ईद को और भी खुशगवार बनाएं सिर्फ FM 107 पर किड्स कार्निवल पर RJ सफा के साथ, दिल से देसी।
1: अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे लिटिल सुपरस्टार्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप बहुत खुश होंगे, हेल्दी होंगे और ईद की छुट्टियों को फुल ऑन एंजॉय कर रहे होंगे। पार्टी वेलकम टू योर फेवरेट फन शो जिसका नाम है ईद स्पेशल, हमारा जो चल रहा है किड्स कार्निवल सिर्फ FM 107 पर। मैं हूँ आपकी होस्ट सफा और भाई आज फिर से हम लेकर आए हैं एक जबरदस्त सा मस्ती भरा, हंसी से भरपूर और प्यार से पैक्ड एपिसोड जो आपके दिल को खुशी से भर देगा। तो भाई सब बच्चे अपनी स्माइल्स रेडी कर लो, अपने टेडी बियर्स को पास बिठा लो और फुल वॉल्यूम में, नहीं फुल नहीं, अम्मा बस डांट पड़ेगी, थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ा लो, थोड़ा सा जितना अच्छा लगे। और भाई क्योंकि किड्स कार्निवल का मैजिक शुरू होने वाला है तो सेट होके बैठ जाओ। देखिए आज का हमारा स्पेशल एपिसोड है काइंडनेस एंड हेल्पिंग पेरेंट्स पर। जी हाँ बच्चा पार्टी, देखिए आज हम बात करेंगे उन छोटी छोटी अच्छी सी बातों के बारे में जो किसी का दिन ब्यूटीफुल बना सकती है। कभी कभी क्या होता है, कभी मम्मा को पानी ला देना, कभी बाबा की स्लिपर्स सीधी कर उनको दे देना, कभी अपने रूम को क्लीन कर लेना और कभी कभी अपने छोटे भाई बहन के साथ प्यार से भी बात कर लेना। भाई इससे भी अम्मा अब्बा की बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाती है। ये सब छोटी छोटी आदतें आपको छोटी छोटी लगती हैं, सब बातें आप कहेंगे कि भाई ये बहुत छोटी सी बातें, लेकिन इनकी वैल्यू बहुत बड़ी होती है साथियों। और पता है जो बच्चे दूसरों की हेल्प करते हैं वो सबके फेवरेट बन जाते हैं भाई। तो अगर आपने अच्छा बच्चा बनना है ना तो दूसरों की हेल्प करना सीखें। बच्चा पार्टी काइंडनेस एक ऐसा मैजिक है जो बिल्कुल फ्री होता है, मुफ्त, लेकिन उसकी फीलिंग दुनिया की सबसे एक्सपेंसिव चीज से भी एक्सपेंसिव होती है। इमेजिन करें मम्मा जो है वो किचन में बिजी है और आप क्वाइटली जाकर डाइनिंग टेबल सेट कर देती हैं बगैर शोर मचाए। और या तो फिर ये होता है या बाबा ऑफिस से थक कर आते हैं और आप उनके लिए एक ग्लास ठंडा पानी ले आते हैं। आए सोचो उनके चेहरे पर कितनी प्यारी सी स्माइल आएगी। भाई मुझे तो एक कॉम्प्लीमेंट मिलता था, मेरे अब्बा जो है ना मुझे प्यार से मेरे सर पे हाथ रख के मुझे गले लगा के प्यार करते थे। तो भाई साथियों वो स्माइल जो होती है ना वो असली ईद और असली हैप्पीनेस होती है। देखिए आज के शो में हम जो है वो बात करेंगे, बहुत सारी मस्ती करेंगे और हमारे पास होंगे कुछ फन रिडल्स भी, इंटरेस्टिंग स्टोरीज भी और एक स्पेशल से गेस्ट भी हैं हमारे साथ हमारे शो में लास्ट टाइम की तरह, जो हमें ये बताएंगी कि वो अपने घर में अपने पेरेंट्स की किस तरह से हेल्प करती हैं। हो सकता है आपकी वॉइस जो है वो हमारे नेक्स्ट एपिसोड में ऑन एयर सुनाई दे। तो इसके लिए आपने करना ये है कि आपने जल्दी से हमें मैसेज भेज देना है। भाई मैसेज भेजें हमें 666-22-107 पर और चाहें तो हमें सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारा सोशल मीडिया हैंडल है @FM107Qatar। भाई वहाँ भी बहुत सारी फन एक्टिविटीज़ और सरप्राइजेज आपका वेट कर रहे हैं, तो अगर आप हमें सोशल मीडिया पर फॉलो करेंगे तो आपको अपडेट्स मिलती रहेंगी। अच्छा बच्चों आपको एक मज़े की बात बताऊँ, साइंटिस्ट ये कहते हैं कि जब हम किसी की हेल्प करते हैं ना या काइंडनेस दिखाते हैं तो हमारा ब्रेन हैप्पी केमिकल्स रिलीज करता है। इसका मतलब है काइंडनेस सिर्फ दूसरों को ही हैप्पी नहीं करती बल्कि हमें भी सुपर हैप्पी बनाती है। अच्छा भाई बच्चा पार्टी क्या आप घर में हेल्प करते हैं, क्या आप अपना स्कूल बैग खुद बनाते हैं? अगर करते हैं तो भाई एक्सीलेंट सी बात है, अच्छी बात है, और अगर अभी भी नहीं करते तो कोई बात नहीं, आज से स्टार्ट कर लो भाई, क्योंकि स्मार्ट किड्स वही होते हैं भाई जो सिर्फ गेम्स नहीं खेलते बल्कि मामा बाबा की हेल्प भी करते हैं। अच्छा सुपर हीरो बनना है ना तो एक बात याद रखो, असली सुपर हीरो केप नहीं पहनते, वो अपनी पेरेंट्स की हेल्प करते हैं। कभी अगर छोटे छोटे हाथों से बगैर तोड़े हुए बर्तन धो लिए अगर धो सकते हैं तो, या XYZ कुछ भी अपना काम कर लिया, अपनी कबर्ड सेट कर ली। कभी कभी पेरेंट्स बहुत टायर्ड हो जाते हैं साथ में,

मामा सारा का सारा दिन काम करती हैं, कुकिंग करती हैं, क्लीनिंग करती हैं और फिर भी हमें प्यार से खाना खिलाती हैं, है कि नहीं? बाबा ऑफिस से काम करके आते हैं, मेहनत करते हैं, थके हुए होते हैं, लेकिन फिर भी हमारी नीड्स पूरी करते हैं, हम जो फरमाइश करते हैं पूरी करते हैं। भाई हमारा भी तो फर्ज बनता है ना कि हम उनकी हेल्प करें, उनको प्राउड फील कराएं और उनको ये बिलीव करवाएं कि भाई हम भी इंडिपेंडेंट बच्चे हैं, हम अपना काम कर सकते हैं। बिलीव मी बच्चा पार्टी, जब पेरेंट्स आपके आपसे खुश होते हैं तो घर का एनवायरमेंट भी एक्स्ट्रा हैप्पी हो जाता है। चलिए एक काम करते हैं, छोटा सा गेम इमेजिन करते हैं, एक छोटा सा सिनेरियो, ठीक है? सोचिए एक घर है जहाँ बच्चे हर जगह ना अपने टॉयज इधर उधर फेंक रहे होते हैं, मतलब रैंडम बिल्कुल यूं कचरा मचा हुआ है, होमवर्क नहीं करते और मम्मा की बात भी नहीं सुनते, ऐसे वाले बच्चे। आप सोचो दूसरा घर है जहाँ बच्चे प्यार से एक दूसरे से बात करते हैं, अपना सामान अरेंज करके रखते हैं, पेरेंट्स की हेल्प करते हैं, अपना होमवर्क भी टाइम पर कर लेते हैं। सुनने में आपको कौन सी बात अच्छी लग रही है और कैसा लग रहा है कि कौन सा वाला सिनेरियो पीसफुल और हैप्पी लगेगा, बताएं, पहला वाला कि दूसरा वाला? बिल्कुल सही, दूसरा वाला। इसीलिए काइंडनेस और हेल्पिंग नेचर घर को हैप्पी बना देते हैं साथ में। और आपको पता है एक बात, हेल्पिंग पेरेंट्स से आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी भी सीखने को मिलती है। अगर आज आप अपने स्कूल बैग खुद सेट कर लेते हैं ना, सीख लेते हैं, तो कल आप बहुत ऑर्गेनाइज्ड पर्सन बन जाते हैं। भाई जो बच्चे घर के काम में हेल्प करते हैं ना, वो फ्यूचर में कॉन्फिडेंट और केयरिंग एडल्ट्स बन जाते हैं। इसीलिए हेल्पिंग पेरेंट्स कोई बोरिंग काम नहीं होता बच्चा पार्टी। तो भाई आज के शो में हम एक प्यारी सी स्टोरी भी सुनेंगे एक ऐसे बच्चे की जो रोज सीक्रेटली अपनी मम्मा की हेल्प करता था और फिर एक दिन उसकी काइंडनेस ने सबको सरप्राइज कर दिया। इंटरेस्टिंग लग रही है स्टोरी? और हाँ, लिटिल सुपरस्टार्स, एक चैलेंज भी है आज का। आज का शो खत्म होने के बाद आपने घर में कोई एक हेल्पफुल काम करना है। हो सकता है आप अपनी बेडशीट सेट कर लें, डाइनिंग टेबल क्लीन करना या मम्मा को ग्रोसरी बैग्स कैरी करने में हेल्प करना। फिर आपने करना ये कि हमें अपने वॉइस नोट भेजने और बताना है कि आपने क्या हेल्पफुल काम किया है। तो प्यारे बच्चों, स्माइल्स रेडी रखो क्योंकि आज का किड्स कार्निवल सिर्फ फन नहीं बल्कि प्यार, काइंडनेस और फैमिली हैप्पीनेस से भरा हुआ है। मैं हूं आपकी होस्ट सफा और आप सुन रहे हैं FM 107 कतर। तो भाई हमारी टीम की तरफ से किड्स कार्निवल कंटिन्यू है और आप सभी को ढेर सारी ईद मुबारक। उम्मीद करती हूं कि आप सबकी ईद बहुत अमेजिंग जा रही होगी। अच्छा, किसी ने बहुत ज्यादा मिठाई तो नहीं खाई? बताओ बताओ किसने खाई सबसे ज्यादा मिठाई? किसी ने ईदी कलेक्ट करके अपनी पॉकेट को हैवी कर लिया है? कौन कौन है जिसकी पॉकेट हैवी हो गई है और कौन कौन है जिसने नए कपड़े पहनकर पूरे घर को फैशन शो बना दिया है? ईद का मजा ही कुछ ऐसा होता है साथियों, घर में लाइट्स, यम्मी फूड, फैमिली गैदरिंग्स, हंसी मजाक और हर तरफ खुशियों का माहौल। लेकिन प्यारे बच्चों, आज हम ईद की एक बहुत स्पेशल बात करने वाले हैं और वो है काइंडनेस और हेल्पिंग योर पेरेंट्स। साथियों, मेरे प्यारे बच्चों, ईद सिर्फ नए कपड़ों, चॉकलेट्स और बिरयानी और गिफ्ट्स और ईदी का नाम नहीं होता, ईद प्यार बांटने का नाम होता है। जरा सोचिए ना, ईद का दिन मम्मा सुबह सुबह कितने बिजी होते हैं मम्मा पापा, कभी किचन में शीर खुरमा बन रहा होता है, कभी बिरयानी की खुशबू आ रही होती है, कभी गेस्ट के लिए क्या बन रहा होता है, चाय बन रही होती है और कभी कभी घर की सफाई भी चल रही होती है और बाबा भी कभी कभी शॉपिंग, कभी गेस्ट, कभी फैमिली विजिट्स, इनमें बिजी होते हैं। तो आपको क्या लगता है, ऐसे में अगर हम उनको थोड़ी सी हेल्प कर दें तो उनका दिल कितना खुश हो जाएगा, है कि नहीं? तो सब प्यार बढ़ जाता है ना उससे। ये सब छोटी छोटी बातें होती हैं लेकिन इनकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा बड़ी होती है साथियों। अच्छा बच्चों, एक बात बताऊँ, जब हम किसी की हेल्प करते हैं ना तो हमारा ब्रेन ऑलरेडी हैप्पी फील करना शुरू कर देता है। और पता है क्या, गेस व्हाट, जो बच्चे घर में हेल्प करते हैं ना वो बहुत रिस्पॉन्सिबल और केयरिंग होते हैं। जब आप अपने टॉयज खुद क्लीन करते हैं, जब आप डिसिप्लिन सीखते हैं और जब आप मम्मा को किचन में हेल्प करते हैं तो आप टीम वर्क सीखते हैं और जब आप थैंक यू और प्लीज बोलते हैं ना तो आप रिस्पेक्ट सीखते हैं। मतलब हेल्पिंग योर पेरेंट्स इज नॉट जस्ट हेल्पिंग, इट्स एक्चुअली सुपर पावर ट्रेनिंग। भाई देखिए, ईद अल अदा हमें ये सिखाती है कि हम सेल्फिश ना बने, हम केयरिंग और हेल्पिंग नेचर रखें। अगर किसी के पास कम चीजें हैं ना तो हम उसके साथ शेयर करें क्योंकि शेयरिंग इज केयरिंग। इसीलिए ईद पर लोग कुर्बानी करते हैं और फिर उस गोश्त को दूसरों में बांटते भी हैं ताकि हर घर में ईद की खुशी पहुंच सके। कितनी ब्यूटीफुल सी बात है ना। और पता है प्यारे बच्चों, ईद पर शेयरिंग का कॉन्सेप्ट बहुत स्पेशल होता है। कुर्बानी के गोश्त को जो है ना

0: वो जो टोटल गोश्त होता है ना उसके जनरली तीन पार्ट्स किए जाते हैं, उसे तीन पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है. एक हिस्सा फैमिली के लिए होता है, एक हिस्सा रिलेटिव्स के लिए होता है और एक हिस्सा फ्रेंड्स के लिए होता है. जैसे पोर्शंस होते हैं ना अलग अलग, वैसे उसे तीन पोर्शंस में डिवाइड किया जाता है. और एक उन लोगों के लिए होता है जो जरूरत में होते हैं. मतलब ईद की खुशी सिर्फ घर तक नहीं रहती साथियों, बल्कि पूरी कम्युनिटी तक पहुंचती है. सोचिए, सिर्फ सोचिए, अगर हर इंसान शेयरिंग और काइंडनेस का ये हैबिट एवरीडे फॉलो करे, सिर्फ ईद पर नहीं, तो दुनिया कितनी हैप्पी प्लेस बन जाएगी ना, है कि नहीं. ईद अल अधा हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन देती है, अपनी खुशी के साथ दूसरों की खुशी का भी सोचें. अगर आपका फ्रेंड कोई लोनली फील कर रहा हो, उसके साथ आप गेम खेल लीजिए. अगर कोई सिबलिंग अपसेट हो, उसको हग कर लीजिए. अगर मम्मा टायर्ड हैं, तो उनकी हेल्प कर लीजिए. बिलीव मी, काइंडनेस नेवर गोज आउट ऑफ स्टाइल, नेवर गोज आउट ऑफ ट्रेंड. और हमें चाहें तो आप फॉलो कर सकते हैं, हमारे सोशल मीडिया हैंडल हैं @FM107, जहां और भी बहुत सारी मस्ती और सरप्राइजेस आपका वेट कर रहे हैं. तो भाई, स्टे ट्यून्ड, स्टे काइंड, स्टे हेल्पफुल और अपने मम्मा बाबा को प्यार और रिस्पेक्ट देना कभी मत भूलना, क्योंकि असली ईद वही होती है भाई जहां दिल खुश हो और घर प्यार से भरा हुआ हो. मैं हूं आपकी होस्ट सफा और आप सुन रहे हैं किड्स कार्निवल, ओनली ऑन FM 107. अच्छा बच्चों, अब एक काम करते हैं, अपने स्टोरी कॉर्नर की तरफ चलते हैं. सबसे ज्यादा अच्छी बात जब हमें समझ में आती है ना, वो स्टोरी से ही समझ में आती है. क्या कहते हैं, मुझे तो स्टोरी अच्छी लगती है भाई. सुनते रहिए हमारे साथ, स्टे ट्यून्ड ऑन FM 107, दिल से देसी.
1: FM 107 पेश करते हैं ईद का स्पेशल प्रोग्राम किड्स कार्निवल, सफा के साथ एक फन फिल्ड शो जहां बच्चों के लिए स्टोरीज, गेम्स, हंसी मजाक, म्यूजिक और एक्साइटिंग सरप्राइजेस होंगे.
0: सब बच्चे आराम से बैठ जाएं, अपनी अपनी इमेजिनेशन की कैप्स पहन लें और भाई सुनो एक प्यारी सी ईद की स्टोरी, ज़ारा'स ईद सरप्राइज. तो भाई साथियों, ज़ारा एक बहुत ही क्यूट और चीयरफुल लिटिल अच्छी सी प्यारी सी बच्ची थी. अच्छा, ईद उसका फेवरेट फेस्टिवल था, जैसा कि सारे बच्चों का होता है. वो चांद रात से बहुत एक्साइटेड हो जाती थी. उसकी एक्साइटमेंट की हालत ये थी कि वो सोने से पहले, ईद के दिन से पहले ही दो दो तीन तीन चार चार दफा अपने नए वाले शूज पहन पहन कर देख रही होती थी, चेक कर रही होती थी. कभी मिरर के सामने खड़ी होकर हेयर स्टाइल देख रही होती थी, कभी अपनी बैंगल्स की जो छन छन है वो सुन रही होती थी, कभी अपनी चॉकलेट्स भी काउंट कर रही होती थी. उसको लग रहा होता था कि भाई इस ईद पर बस फन ही फन होने वाला है. अच्छा, फिर क्या होता है, ईद से एक दिन पहले ही घर में बहुत हसल बसल शुरू हो जाती है. मामा किचन में बिजी हो जाती हैं, कभी समोसे फ्राई हो रहे होते हैं, कभी डेजर्ट्स बन रहे होते हैं, कभी गेस्ट की लिस्ट बन रही होती है. अच्छा, ज़ारा ने देखा कि भाई उनकी मम्मा ना थोड़ी सी टायर्ड लग रही हैं. ऑब्वियसली इतना कुछ कर रही हैं, वो मैनेज हसल कर रही हैं, लेकिन फिर भी ना वो स्माइल कर रही थी और सबका ख्याल रख रही थी. ज़ारा ने ना सॉफ्टली पूछा अपनी मम्मा से, मम्मा क्या आप थक गई हैं, ऐसे आप टायर्ड टायर्ड क्यों लग रही हैं, आपकी आंखें ऐसी बुझी बुझी सी क्यों लग रही हैं. मम्मा मुस्कुराकर बोली, थोड़ी सी बेटा, थोड़ी सी टायर्ड हो गई हूँ, लेकिन ईद की तैयारी भी तो करनी है, वो भी तो जरूरी है, वो कौन करेगा. अच्छा, ज़ारा कुछ देर तक ना, क्योंकि ज़ारा छोटी थी तो वो कुछ देर तक मम्मा को देखती रही ऐसे और फिर चुप हो गई. फिर उसने दिल में ये सोचा, मम्मा मेरे लिए इतना सब कुछ करती हैं, मेरे लिए नहीं सबके लिए करती हैं, शायद मुझे भी उनकी हेल्प करनी चाहिए. अच्छा, उस रात ज़ारा ने एक सीक्रेट प्लान बनाया. अच्छा, नेक्स्ट मॉर्निंग ज़ारा बहुत जल्दी उठ गई. यूजुअली तो वो यूं समझ लें कि उठने में बहुत टाइम लेती थी, दोपहर के टाइम उठती थी, लेकिन आज वो एक मिशन पर थी भाई. वो क्वाइटली अपने रूम में गई और सफाई स्टार्ट कर दी. उसने अपने फ्लोर से टॉयज उठाए सारे जो कि बिखरे हुए थे, टेडी बेयर्स को अरेंज किया अपने बेड पर प्यार से, उसका जो बुक शेल्फ था जहाँ अपनी बुक्स रखा करती थी उसने एक एक करके सारी बुक्स को अलाइन किया प्रॉपरली, और अपने कपड़े भी भाई, वो जो कपड़े धुलकर आए थे ना लॉन्ड्री, वो उसने अपने कपड़े नीटली प्रॉपरली फोल्ड भी किए. अच्छा, फिर उसने सोचा, इतना कुछ तो कर लिया मैंने, अब मैं और क्या कर सकती हूँ. वो किचन में गई और मम्मा से बोलने लगी, क्योंकि मम्मा तो उसकी पहले ही उठ गई थी लेकिन वो थोड़ा काम में मसरूफ थी. तो उसने मम्मा से बोला, मम्मा क्या मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ. तो मम्मा थोड़ा सा सरप्राइज हुई. मम्मा ने कहा, वैसे

ये तो ये कुछ करती नहीं है, ये आज इसको क्या हुआ है? तो मम्मा को भी थोड़ा अच्छा लगा, मैंने कहा अच्छा हेल्प करोगी तो ऑफ कोर्स इट्स ओके बेटा, हेल्प कर लो। जारा ने क्या किया, जारा ने डाइनिंग टेबल पर प्लेट्स और स्पून्स अरेंज करना स्टार्ट कर दिए। कभी स्पून गिर जाता था क्योंकि वो काम पहले करती नहीं थी ना, तो कभी उसके हाथ से स्पून गिर जाता था तो कभी वो खुद ही हंसने लगती थी किसी ना किसी बात पर। कभी प्लेट्स उल्टी रख देती थी, कभी कहां प्लेट रखी हुई है कभी सीधी रख देती थी। लेकिन एक बात थी, जारा का एफर्ट फुल ऑन नजर आ रहा था कि वो अपनी मम्मा की हेल्प करने की कोशिश कर रही है। अच्छा जारा थी भी छोटी, जारा इतनी बड़ी नहीं थी, आपकी तरह ही वो 6 से 7 साल की थी। थोड़ी देर बाद डोरबेल बजती है और भाई गेस्ट आने लगते हैं सुबह सुबह, ईद पर तो होता है ना ऐसा माहौल। मम्मा ने जब क्लीन रूम देखा जारा का और टेबल प्रॉपरली सेट देखा और जारा को एक अच्छी सी स्माइल के साथ हेल्प करते हुए देखा, तो भाई मम्मा की तो आंखों में खुशी से चमक दौड़ उठी। मम्मा ने जारा को ढेर सारा प्यार से जोर से हक किया और कहा, जारा तुमने तो मेरा दिन बहुत इजी बना दिया बेटा, थैंक यू। तो जारा ने दिल में एक वार्म सी फीलिंग फील की और वो पता है क्या थी, वो थी हैप्पीनेस। उस दिन जारा को समझ में आया कि गिफ्ट्स और चॉकलेट से भी कहीं ज्यादा ब्यूटीफुल फीलिंग किसी को हैप्पी करने में होती है भाई, और वो किसी कोई और नहीं आपके अपने पेरेंट्स। तो प्यारे बच्चों हम इस स्टोरी से क्या सीखते हैं, हम ये सीखते हैं कि हेल्पिंग पेरेंट्स इज वन ऑफ द स्वीटेस्ट वे यू कैन शो लव। जब हम अपने पेरेंट्स को रिस्पेक्ट करते हैं ना और उनकी हेल्प करते हैं तो घर में प्यार और हैप्पीनेस और भी ज्यादा बढ़ जाता है। याद रखिए काइंडनेस एक मैजिक पावर की तरह होती है, जितना ज्यादा इसे यूज करेंगे ना उतना ज्यादा स्ट्रांग होती चली जाती है। अगर आप एक स्माइल देते हैं किसी को तो सामने वाला भी स्माइल करता है, अगर आप हेल्प करते हैं तो दूसरे लोग भी इंस्पायर होते हैं और हेल्प के लिए तैयार हो जाते हैं। इसी तरह काइंडनेस स्प्रेड होती है साथियों। चलिए अब एक मिनी काइंडनेस चैलेंज करते हैं, ठीक है? आज के दिन आपने घर में एक हेल्पफुल काम जरूर करना है। हो सकता है आप अपनी प्लेट उठा लें, हो सकता है मम्मा को पानी देना या अपने टॉयज या अपना रूम क्लीन करना, और फिर सोचना कि आपको अंदर से कितनी अच्छी वाली फीलिंग आती है। बिलीव मी वो फीलिंग बहुत सेटिस्फाइंग होती है। और हाँ लिटिल सुपरस्टार्स, अगर आपने कोई क्यूट हेल्पफुल काम किया है ना तो भाई मुझे वॉइस मैसेज भेजकर बताएं ना 666-22-107 पर। तो चलिए साथियों अब मूव ऑन करते हैं हम अपने आज के मेहमान के सेगमेंट की तरफ, जहाँ पे हम अपने साथ लेकर आते हैं एक जूनियर आरजे। और भाई आज की हमारी जूनियर आरजे हैं

0: और ये हमारे साथ फर्स्ट एपिसोड में भी थी, और मैंने सोचा जब इतनी सारी माशाल्लाह से बातें कर ही रही थी तो इनकी कुछ बातें आधी अधूरी रह गई थी। इन्होंने कहा नहीं भाई, मुझे अपनी बातें पूरी करनी है। मैंने कहा चलें आपसे बातें पूरी कर लेते हैं। और आज हम आपको अपने जो है वो किड्स कार्निवल के इस एपिसोड में भी शामिल करते हैं, ताकि आप हमसे रिलेटिव बातें कर सकें, ईद से रिलेटेड और काइंडनेस से रिलेटेड। ठीक है, तो अमायरा ये तो बताएं, मैंने तो आपसे पूछ लिया था कि आपके लिए ईद का कॉन्सेप्ट क्या है। अगर मैं आपसे पूछूं अमायरा, इस ईद को लेकर अमायरा काइंडनेस के बारे में क्या सोचती है, तो फिर क्या जवाब होगा इसका अमायरा?
1: कुर्बानी मीट इज डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स, वन फॉर फैमिली, वन फॉर रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स, एंड वन फॉर नीडी पीपल।
0: वन फॉर नीडी पीपल, ठीक है। तो नीडी पीपल को देना काइंडनेस होती है
1: जी।
0: वेरी गुड। अच्छा अमायरा, कभी आपने ऐसा किया है कि घर में अम्मी की किसी काम में हेल्प कराई हो ईद के दिनों में?
1: जी, कभी मम्मा कोई और काम में रहती है ना, तो कभी मैं मम्मा के किचन से झाड़ू या कहीं भी मिल जाता है तो मैं लेके झाड़ू पोछा सब खुद से कर लेती।
0: अरे भाई, ये मेरा भी फेवरेट काम था एक टाइम पर। मेरा दिल करता था कि मैं अपनी अम्मी के सारे काम कर दूं और अपनी अम्मी को कोई भी काम नहीं करने दूं। आपका सा दिल करता है?
1: हाँ।
0: आप करता है ऐसा दिल?
1: हाँ।
0: अरे भाई, तो फिर आप क्या क्या कर लेती है? भाई अम्मी की हेल्प के लिए झाड़ू भी हम खुद लगा लेते हैं, देखिए हम पोछा भी खुद लगा लेते हैं। अच्छा, आपने मुझे एक दफा बताया था, मुझे याद पड़ता है कि आपको कुकिंग का या बेकिंग का किस चीज का शौक था? समथिंग।
1: हाँ, मुझे कुकिंग में अच्छा लगता है। हाँ। और मैंने जब हम पहले अलसद में रहते थे तो उस टाइम पापा का बर्थडे था, तो पापा के बर्थडे में हमने मम्मा और मैंने मिल के केक बनाया।
0: अरे, दिस इज सो काइंड ऑफ यू, यू बेक्ड अ केक फॉर योर फादर्स बर्थडे।
1: हाँ।
0: अच्छा, कौन सा वाला केक था?
1: कौन सा फ्लेवर था?
0: चॉकलेट था कि वनीला था?
1: वो कुछ तो फ्लेवर था यार,
0: कुछ तो था। बहुत टाइम हो गया, देखिए। हाँ। अब हमसे पुरानी बातें ना पूछा करें। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं आपका फेवरेट वाला केक कौन से फ्लेवर का है?
1: मेरे दो फ्लेवर, मुझे कुछ फ्लेवर बहुत अच्छे लगते हैं। एक तो मैंने पहले आपको कॉल पे बताया था कि
0: क्या क्या क्या
1: एक मम्मा का फेवरेट,
0: नहीं मम्मा का नहीं भाई, मुझे अमायरा का पूछना है।
1: जो मम्मा का फेवरेट पाइनएप्पल वाला होता है वो भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। अंदर की जो फीलिंग होती है पाइनएप्पल केक की वो मुझे अच्छी लगती है।
0: अमायरा, आई एम नॉट लाइंग, लेकिन आई विल बी वेरी ट्रूथफुल, ओके? आई एम नॉट लाइंग, ओके? मुझे बहुत अच्छा लगता है पाइनएप्पल केक। ये क्या हो गया, ये तो हम ट्रिपलेट्स हो गए पाइनएप्पल केक लाइकिंग में। अच्छा, एक बात बताएं, अगर मैं अमायरा को कहूं कि अमायरा यू हैव टू ड्रेस अप योर योर मम्मा, ठीक है, तो मम्मा को कौन से कलर के कपड़े आप ईद पे पहनाएंगी?
1: मैं मम्मा को दो ऑप्शन दूंगी उनके फेवरेट कलर्स का, तो मम्मा वो एक चूज करेंगे, तो मैं दूसरा वाला वो रख के मम्मा को वो दे के कहूंगी कि मम्मा पहन के आओ, जब तक मैं मेकअप का सामान निकाल।
0: ओड़ी भाई, मेकअप भी करना आता है?
1: हाँ।
0: तो पहले मुझे ये बताओ कलर,
1: मेरे पास ना एक खुद का मेकअप किट है।
0: अरे भाई,
1: क्योंकि ना कभी मम्मा का लेना पड़ता था कि कभी वो
0: डांट पिटेगी मम्मा से, मम्मा का मेकअप पकड़ोगी तो?
1: नहीं, मम्मा जब भी मम्मा मेकअप करती तो मैं भी मम्मा के साथ कर लेती थोड़ा सा।
0: अरे वाह, माशाल्लाह।
1: अभी वे हार्ट शेप का वो मेकअप किट है, और मैं क्या करती हूँ, पहले खोलती हूँ उसको, फिर ब्लेंडर लेकर पाउडर लगाकर पाउडर को ब्लेंड करके, फिर बाद में आई शेडो का वो ब्रश लेकर, मेरे ही किट में सब था वो आई शेडो, अपने कलर का जो फेवरेट कलर था वो लेकर आई शेडो थोड़ा लाइट लगाती हूँ, डार्क नहीं लगाती हूँ। अगर डार्क लग जाता है तो मैं अपना ब्लेंडर ले लेती हूँ वापस, फिर मैं उसी से ही ब्लेंड कर लेती हूँ।
0: अरे भाई, 8 साल की हैं और इनको ब्लेंडिंग भी आती है, और एक मैं हूँ। अच्छा, एक बात तो बताएं, आपने तो मेरी बात का जवाब ही नहीं दिया, कलर कौन सा होगा मम्मा के कपड़ों का?
1: मम्मा का कपड़ा का पिंक हो सकता है या कोई भी सूट हो सकता।
0: अच्छा, मैंने पता है कपड़ों का क्यों पूछा आपसे, क्योंकि आपकी अपनी माशाल्लाह से ड्रेसिंग बहुत प्यारी है, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो बताइए किसकी चॉइस है कपड़े? ये वाले जो अभी पहने हुए इतने पिंक से वाइट से इतने इतने प्यारे प्यारे कलर, ये स्पेशली किसकी चॉइस है? मम्मा की, बाबा की, आपकी अपनी?

0: मेरी मोस्ट फेवरेट पर्सन मम्मा.
1: ओ माय गॉड, ये मम्मा का बच्चा है तो भाई ये मोस्ट फेवरेट पर्सन मम्मा की चॉइस है. माशाल्लाह माशाल्लाह, ये मम्मा हैज अ वेरी गुड चॉइस. तो भाई ये बताएं कि आपसे और थोड़े से सवाल पूछे जाएं.
0: जी
1: जल्दी जल्दी से पूछ लें.
0: जी
1: अच्छा ये तो बताएं, वो जो लास्ट एपिसोड में आपने रिडल पूछी थी वो क्या थी? रिडल कि यू बाय मी फॉर ईटिंग बट यू नेवर ईट मी, है ना? कुछ ऐसी रिडल थी ना.
0: पीपल बाय मी टू ईट,
1: ओके,
0: ईट मी बट Never eat me.
1: अच्छा याद आ गई हमें रिडल हमने. अच्छा ठीक है, मैंने सोचा हम भूल गई थी मेरी तरह. तो फिर क्या थी? People buy me to eat me, but they never eat me. और आपने मुझे उसका हिंट दिया था कि A पहला अल्फाबेट है और सेकंड अल्फाबेट P है. क्या था वो?
0: बताऊं?
1: हाँ इस वाले एपिसोड में तो बता ही दें भाई.
0: उसका आंसर था a plate.
1: और मैं पता क्या सोच रही थी?
0: क्या?
1: एप्पल. एप्पल, क्योंकि मैं अक्सर ये काम करती हूँ कि एप्पल खरीदती हूँ लेकिन खा नहीं पाती उसे. वो बेचारा इंतजार में रह जाता है कि सफा मुझे खाएगी. तो मैंने कहा वही वाला एप्पल होगा जिसको मैंने फ्रिज में छोड़ दिया था.
0: और कभी कभी मैं थोड़ा सा कभी कभी मम्मा अभी तक कभी कभी करती है कि खाना कह रहे मत खाओ.
1: चलिए कोई बात नहीं. अच्छा वो खाने में ऐसी क्या चीज है जो आपको ईद पे जो बनती है नॉर्मली चीज लेकिन आपको अच्छी नहीं लगती खाने में? आप कहते हो अच्छा खा लूंगी जबरदस्ती डांट पिटेगी तो, वरना अगर मुझे ऑप्शन हो तो मैं कुछ और खा लूंगी लेकिन ये नहीं खाऊंगी. क्या चीज आपको नॉट सो मच इंटरेस्टिंग लगती है? क्या चीज है?
0: मैंने कभी शेर कोरमा नहीं खाया ना तो मैं कहती हूँ मम्मा नहीं.
1: अरे शेर कोरमा बना लेती है लेकिन खाती
0: होती हूँ.
1: अरे भाई ये यूनिक बच्चा है भाई.
0: पर जब भी मम्मा थोड़े ही आलमंड्स बचे होते हैं तो मैं छील कर कभी मम्मा दो तीन मुझे दे देते तो तुम खा लो तो मुझे बहुत यम्मी लगता है.
1: भाई आलमंड्स मजे, यू नो ड्राई फ्रूट्स आर वेरी हेल्दी. माशाल्लाह ड्राई फ्रूट खाया करें भाई, अच्छा होता है. आलमंड्स, व्हाट अबाउट पिस्ताशियो?
0: अरे मुझे वॉलनट्स भी बहुत अच्छे लगते.
1: वॉलनट्स भी अच्छे लगते हैं. वेरी हेल्दी, नाइस, गुड, खाया.
0: और हम कुछ दिन पहले ही हमने दो पैकेट मखाने के लिए खाए हैं.
1: ओह नाइस, मखाने इज माय फेवरेट.

0: सॉल्ट एंड बटर।
1: मम्मा सॉल्ट लगाती हैं, थोड़ा सा डाल देती हैं।
0: हाँ।
1: फिर मम्मा मुझे सेक कर पहले सॉल्ट लगा कर मुझे दे देती हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता
0: है मखाना। ये मुझे अच्छा।
1: और बहुत टाइम से मुझे मखाना चाहिए था, तो मैंने कहा मम्मा ले लो।
0: तो दुकान में देखिए आपको, तो आपने ले ली। चलें भाई, वेरी गुड हो गया। अच्छा देखिए, आज जो है ना, हम अपने शो में बात कर रहे हैं काइंडनेस की, और आज हम बात कर रहे हैं अपनी पेरेंट्स की हेल्पिंग के बारे में। तो आप कैसे पेरेंट्स की हेल्प करती हैं घर में?
1: मैं मम्मा की हेल्प ऐसे करती हूँ कि
0: कब लास्ट टाइम मम्मा की हेल्प कब की थी? किचन में की थी?
1: हाँ, किचन में।
0: या अपने कपड़े फोल्ड करने में की थी?
1: हाँ, हाँ, हाँ,
0: या कहाँ की थी मम्मा की हेल्प?
1: जब भी मम्मा कपड़े मेरे छोटे छोटे ब्रश करती हैं क्योंकि जो मम्मा पापा के बड़े बड़े कपड़े ना, वो तो फोल्ड नहीं होते। तो मम्मा जब मेरे कपड़े फोल्ड करती है पैंट्स, या फिर फोल्ड करने के लिए निकालती है, तो मैं अपनी टी शर्ट पैंट शॉर्ट सब वो खुद से फोल्ड कर लेती हूं।
0: नाइस, वेरी गुड, दिस इज अ वेरी रिस्पांसिबल थिंग। आपको पता है छोटी छोटी चीजें,
1: और मुझे पहले फोल्ड करना नहीं आता था, मैं जैसे कुछ अलग अलग मैं फोल्ड करती थी। बाद में मम्मा से जब मेरा टी शर्ट फोल्ड करना सीखा, तो बाद में अब मुझे आ गया था कि अभी कैसे टी शर्ट फोल्ड करना है।
0: दिस इज वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। अपने काम खुद करना चाहिए, एंड देयर इज ऑलवेज अ फेज ऑफ लर्निंग। हम बड़े भी हैं, मुझे भी नहीं आता, मुझे पता है मुझे अभी तक नहीं आते कपड़े फोल्ड करना। यू नो व्हाट डू आई डू? आई टेक द इजी वे आउट। यू नो हाउ आई यूज टू हेल्प माय मदर? मैं ना अपनी कबर्ड खुद बनाती थी। हाँ, मुझे कपड़े आयरन नहीं करना आते थे, और मुझे ना कपड़े लपेटने नहीं आते, मतलब आई डिड नॉट न्यू हाउ टू फोल्ड देम प्रॉपरली। मुझे प्रॉपरली फोल्ड करते ना, तो माई फादर टॉट मी अ ट्रिक। माई फादर यूज टू से, अच्छा फोल्ड नहीं हो रहे ना, इट्स ओके, हैंग देम। So I used to hang them rather than folding them, क्योंकि मुझे फोल्डिंग सही वाली नहीं आती थी। मैं गुचपुट कर देती थी उन्हें।
1: सेम है वही।
0: मैं ये मेरे साथ भी यही होता था। तो फिर माई फादर टॉट मी अ ट्रिक। ही सेड, यू डोंट फोल्ड, इट्स ओके, यू जस्ट हैंग देम, योर कबर्ड विल बी अलाइन्ड। एंड सिंस दैट डे टिल नाउ आई डू द सेम थिंग। अच्छा, हमारा जाने से पहले आप मुझे बताएं कि why do you think we should help our parents and we should be kind towards our parents?
1: They are kind to us and they help us when we love them.
0: Yes.
1: And when we are stuck in a one thing, when they are here, then everything is fine.
0: Oh, that's so sweet. When we are stuck at something, when they are there, everything is fine. अच्छा, ये होता है कि जब हम किसी चीज में फंसे हुए होते हैं ना, एंड वी लुक एट आवर पेरेंट्स, तो हमें लगता है जिंदगी इजी हो गई है, एंड हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन जो है ना, वो अम्मा अब्बा होते हैं। अच्छा, एक अच्छा सा मैसेज आप अपने अम्मी अब्बू के लिए कोई देना चाहेंगी?
1: मैं मम्मा पापा मेरे लिए इतना हार्ड वर्किंग होते, और मम्मा क्योंकि मुझे एक बार मुझे निमोनिया हो गया था, फिर मम्मा ने मेरे चक्कर में अपनी जॉब छोड़ दी।
0: Oh, because you are more important.
1: Nah, than a job.
0: Yes. So, this is why we should be kind to our parents, and this is why we should be loving and caring towards our parents. This is why we should also help them. Kyunki they do all the sacrifices for us. चले भाई, अपना ढेर सारा ख्याल रखें। अमायरा और मुझे दीजिए इजाजत, और इस नोट पर आपको छोड़कर जा रहे हैं कि बड़ों की इज्जत करें, छोटों का ख्याल रखें, और सबसे ज्यादा ख्याल अपना रखें, क्योंकि जो अपना ख्याल नहीं रखता
1: वो दूसरे का नहीं रखता,
0: वो दूसरे का भी नहीं रख सकता भाई। और ये याद रखें, लव योर पेरेंट्स, हेल्प देम। चले भाई, सबको अमायरा और मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज। अपना ढेर सारा ख्याल रखें, और अमायरा और सफा की तरफ से सबको ईद मुबारक।
1: ईद मुबारक।
0: तो साथियों, हमें दीजिए इजाजत, अपना ख्याल रखें, और सुनते रहें FM 107, दिल से देसी।
2: Anytime, anywhere.
3: Yes, anytime, anywhere.
2: कभी भी और कहीं भी आप सुन सकते हैं FM 107. Log into our website urduradio.qa और download the app QMC now.
4: हर आदत बदलती है एक अच्छी नीयत से, और हर अच्छी नीयत की बुनियाद है एक खूबसूरत हदीब। सुनिए हदीब टू हैबिट RJ महावश के साथ हर थर्सडे सुबह 10 से 10:30 बजे, ओनली ऑन FM 107. एक ऐसा प्रोग्राम जहां हदीस सिर्फ सुनी नहीं जाएगी बल्कि जिंदगी में अपनाई भी जाएगी। स्ट्रेस हो, बिजी रूटीन हो, फैमिली प्रेशर या डिजिटल डिस्ट्रैक्शंस, हर हफ्ते

0: नई हदीब, एक नई आदत और एक बेहतर जिंदगी की तरफ एक कदम। हदीब टू हैबिट, हदीब टू हैबिट, दिल से सुनिए, जिंदगी में अपनाइए।
1: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें,
2: आज ही राब्ता करें
1: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
3: हर हफ्ते की सबसे जरूरी अपडेट लेकर आ रहे हैं आरजे सर्वर एमओआई वीकली अपडेट प्रोग्राम में।
4: एमओआई वीकली अपडेट प्रोग्राम में
3: वजारती दाखिला की हर एक एक्टिविटी, जरूरी खबरें और आपकी फैमिली के लिए इम्पोर्टेंट अवेयरनेस, सब कुछ मिलेगा यहाँ,
4: कुछ मिलेगा यहाँ।
3: ट्यून करें हर वेंसडे शाम 7:15 FM 107 और जानिए वो सब जो आपके लिए मैटर करता है। MOI वीकली अपडेट, आपका वीकली डोज ऑफ न्यूज एंड मच मोर विद RJ सर्वर। डोंट मिस इट।
5: ईद का जश्न ना ऐसा होना चाहिए कि दावत और लोग दोनों की कमी ना हो, तभी तो होता है हाउस फुल। अब दस्तरखान पे महफिल और किस्से और साथ में पकवान, ओए होए, यही तो बात है, यही तो है हाउस फुल। तो किस्से वाला जो पार्ट है ना, वो आप हमसे शेयर करें, बिकॉज यू आर वेलकम इन आर हाउस फुल। ईद का खास प्रोग्राम ईद के चारों दिन शाम 5 बजे से मेरे यानी दोहा वाले कबीर के साथ जरूर सुनिए हाउस फुल ईद, सिर्फ FM 107 पर, दिल से देसी।
6: कतर का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से।

और आपकी जिंदगी को कामयाबी और रहमत से भर दे। मैं हूँ नासिया, मेरी और FM 107 की पूरी टीम की तरफ से आप सभी को दिल से ईद उल अधा मुबारक।

अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं दोहा वाला कबीर एफएम 107 पे, और आप सभी सुनने वालों को ईद उल अज़हा की दिली मुबारकबाद। अल्लाह ताला हमारी कुर्बानी को कबूल फरमाए और हमारे दिलों में मोहब्बत हमेशा बनाए रखे।

0: एफएम 107 की पूरी फैमिली की तरफ से हमारे तमाम सुनने वालों को ईद उल अदा की दिल की गहराइयों से मुबारकबाद।
1: एफएम 107 टाइम

0: Assalamu alaikum and good morning Qatar. आप सुन रहे हैं ईद का खुसूसी शो मॉर्निंग मस्ती ईद विद आरजे माविश खान ऑन एफएम 107 और वक्त हो गया है 7:02 का है आज तीसरा दिन आप सब लोगों को मेरी तरफ से तीसरा दिन भी बहुत बहुत मुबारक हो और उम्मीद है कि आपकी ईद बहुत अच्छे से गुजर रही होगी आप बहुत इंजॉय कर रहे होंगे अच्छी तरह से सारा मतलब जो मामला है ये गुजर रहा होगा कुर्बानी जो लोग यहाँ करते हैं उन लोगों की कुर्बानी भी बखैर आफियत हो गई होगी अच्छा ये एक अजीब क्योंकि हमारा ही वाला सीन नहीं होता कि यहाँ पे होती है तो मैंने इस हवाले से बात ही नहीं की मतलब दो दिन बिल्कुल ही इस हवाले से बात नहीं हुई तो चलें आज हम थोड़ी सी इस हवाले से बात करते हैं कि जो जो जो लोग यहाँ पे कुर्बानी करते हैं उनका एक्सपीरियंस कैसा रहता है और कैसे मतलब मामलात वगैरह निपटते हैं क्योंकि हमारा हमेशा का ये सिलसिला है कि हमारी जो कुर्बानी है वो अपने मतलब पाकिस्तान में ही होती है तो आप लोग ज़रूर शेयर कीजिएगा मुझे अंदाज़ा तो है खैर यहाँ पे मतलब जितनी अच्छी फैसिलिटीज़ हर तरह से हैं तो यकीनी तौर पे मतलब जो मामलात हैं वो बहुत अच्छे तरीके से ही हो जाते होंगे ज़्यादा कोई दुश्वारी नहीं होती होगी मुश्किल नहीं होती होगी लेकिन ये कि आप लोग अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कीजिएगा बताइएगा कि कैसा रहा सिलसिला और यहाँ भी आई थिंक होता ही होगा कि पहला दिन दूसरा दिन तीसरा दिन तीनों दिन जो है ना लोग कुर्बानी कर रहे होते हैं क्योंकि इसी तरह से मतलब हमारे यहाँ भी रहता है कि कोई मतलब जो है वो ज़्यादा लोग जो है अगर देखा जाए मेजॉरिटी तो फर्स्ट डे कर लेती है लेकिन फिर कुछ ऐसी तादाद होती है जो कि सेकंड डे और थर्ड डे तक भी जाती है तो मुमकिन है कि यहाँ पे भी मेरा ख्याल है ऐसा होता है मैंने सुना हुआ तो है हाँ कुछ कुछ लग रहा है तो खैर जी ज़रूर शेयर कीजिएगा और बताइएगा मुझे और इस वक्त बिल्कुल ही मतलब अनएक्सपेक्टेड कॉल आ गई वरना मैं तो आज महसूस ये कर रही थी आज तो सभी सो रहे होंगे खैर जी देखते हैं कोई आ ही गया तो बात करते हैं हेलो अस्सलाम वालेकुम जी मुबारक आपको भी कौन बात कर रहे हैं भाई
1: नाम मैं बात होता हूँ क्या
0: अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक नाम नहीं बताएंगे क्यों
1: बताएंगे
0: अच्छा बताएंगे ओके
1: आपको नाम अपने आप मालूम हो जाए
0: आई हाय अच्छा चले ठीक है ऐसा वाला सीन है जी तो क्या कहना चाहेंगे भाई ईद कैसी गुजरी है क्या हुआ है अब तक
1: हमारी तो आपकी जैसे ही है 6 बजे ड्यूटी शुरू है
0: आई हाय
1: शाम क्या 6 बजे तक 8 बजे तक
0: अच्छा ऐसा चल रहा है आज तो मुझे कोई इतनी शदीद वाली नींद आ रही है ना इस वक्त मैं आधी आंखें बंद करके शो कर रही हूँ सीरियसली
1: नींद तो खैर हम लोग भी आ रही है कल ज्यादा थोड़े से काम था
0: अच्छा
1: आज सोया तो हम लोग कुछ रूम में जो है वो चले गए थे बीच घूमने के लिए आए तो 10-12 बजे सोते सोते
0: ओहो
1: 6 बजे जगह बाद में पता चला आज सारा जुमा भी है
0: हाँ बिल्कुल आज तो जुमा
1: है आज अभी कैसे गुजरी आपकी
0: अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी गुजर रही है बस थोड़ा सा मतलब ये है कि अब थकावट वाला जो है ना वो गलबा आता जा रहा है और कल मुझे लग रहा है और ज्यादा हो गई है तो वो खैर मतलब ये मामला आते हैं लेकिन खैर अच्छी गुजर रही है अल्हम्दुलिल्लाह
1: दादी अम्मा से नुस्खा ले लेते
0: हैं अच्छा अच्छा नसीम बात करें सही है दादी अम्मा से क्या नुस्खा ले ली थी दादी अम्मा तो छुट्टियों पर चली गई उन्होंने कहा कि अच्छा भाई हम मतलब ऐसे तो मिलेगी नहीं ऐसे ले लेते हैं
1: चलिए
0: आपको भी ईद मुबारक बहुत बहुत अच्छे से ईद गुजारे अपनी ठीक है और आज जुमे का दिन है तो दुआओं में याद रखिएगा
1: इंशाल्लाह
0: चले जी थैंक यू नसीम थैंक यू आपकी कॉल के लिए थैंक यू जी अल्लाह हाफिज़ रही जी तो हमारे साथ हमारे कॉलर पहले ही मतलब जो ना जल्दी जल्दी आ गए सुबह में ही नसीम और बहुत अच्छा किया भाई मतलब जो जो लोग सुन रहे हैं जाग रहे हैं होशो आवाज़ में प्लीज़ हमें कॉल कीजिएगा आज क्योंकि लिटरली आज मतलब वो ना एक जो नींद का गलबा होता है ना मुझे वो मतलब तारी हुआ हुआ है एक तो वो कैफियत होती है ना मतलब कि जुमा है हफ्ता है तो आपको वैसे ही मतलब एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट शुरू हो जाता है कि भाई सो जाना चाहिए तो वाला सीन चल रहा है खैर जी तो आज तीसरा दिन ईद का और हम जो है आपके साथ रहने वाले हैं 9 बजे तक और आप लोग हमें कॉल कर सकते हैं बिल्कुल जैसे अभी हमारे भाई ने कॉल की उसके लिए नंबर है 4434377 और इसके साथ ही व्हाट्सएप पे आप हमें कर सकते हैं मैसेज और उसका नंबर है 6622107 तो ज़रूर कीजिएगा हमें कॉल भी मैसेजेस भी और बताएं जैसे कि मैंने कहा कि ईद का क्या सिलसिला है भाई मतलब कुर्बानी वगैरह हो गई और उसके बाद फिर क्या मामलात होते हैं और किस तरह का सिलसिला रहता है, ये सारा मतलब एक ना काफ़ी ठीक ठाक किस्म का बखेरा होता है कि जब कुर्बानी आपके घर पे हुई भी हो, उसको गोश्त को टिकाने लगाना, जगहों तक पहुँचाना और ये सारी जो चीज़ें ना एक मतलब एक अलग ही जिम्मेदारी भी मांगती हैं। और ये भी होता है कि डिमांड होती है इस बात की कि प्रॉपरली उसको जो जो हकदार हैं, जो हिस्सेदार हैं, उन तक पहुंचा दिया जाए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रॉपरली इसके ऊपर काम किया जाए। अच्छा, कल ही मेरी बात हो रही थी अपनी बहन से और वो मतलब पाकिस्तान के हवाले से कुछ इस तरह कि आजकल देखने में ये आ रहा है कि लोग ना मतलब इस्तेदात होती है माशाल्लाह से तो बहुत बहुत मतलब जो है वो कुर्बानी कर लेते हैं, मतलब जानवर जो हैं वो बहुत सारे लेकर आते हैं, उनकी कुर्बानी करते हैं। लेकिन फिर मामला आ जाता है वही जो मैंने आपसे कहा कि हकदारों तक डिस्ट्रीब्यूट करना। और इस मामले में जो है वो देखा ये जाता है कि लोग ना मतलब जो गोश्त वोश्त है, गर्मी बहुत ज़्यादा है तो उसको प्रॉपर्ली मतलब फटाफट पहुंचाना, ये एक असल काम होना चाहिए कि आप अगर ज़्यादा जानवर ज़िबा कर रहे हैं तो आपको पता हो कि किस तरह से किस तरह ये गोश्त जो है ना बांटा जाएगा, उन तक पहुँचाया जाएगा। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप मतलब ये वाला मामला रखें अपना कि प्रॉपर्ली जो मतलब जो लोग हैं जो डिज़र्व करते हैं उन तक फौरन के फौरन वो गोश्त पहुंचा दिया जाए, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा है और इस तरह मतलब जो है ना एक बन जाता है सिनेरियो कि अगर आपने थोड़ी देर भी बाहर वाहर रखा इतना ज़्यादा है क्वांटिटी में तो आपके पास इतनी जगह भी नहीं होती कि उसको फ्रीज़र वगैरह में रख दें फिर बाद में बांट सकें, तो वो ख़राब होने का बहुत ज़्यादा अंदेशा होता है। और जाहिर सी बात है कि ये जो इसकी बेसिक है वो ये है कि जो गोश्त है वो ऐसे लोगों को मिल सके, उनको फरहाम किया जाए, उनको मुहैया किया जाए जो कि पूरे साल में बहुत मतलब कम इस नेमत से फ़ायदा उठा पाते हैं। तो इसलिए कोशिश ये होनी चाहिए कि जितना मुमकिन हो सके, एक तो ये कि आप खाते पीते हैं माशाल्लाह, जब भी आप इतना इतना अफोर्ड कर रहे हैं तो अपने घर में रखने के बजाय उसको प्रॉपर्ली उन लोगों तक पहुंचाना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो नहीं अफोर्ड कर सकते। तो इसलिए मतलब कोशिश किया करें कि उसके इंतज़ाम ना पहले देख लें और पहले ये देख लें कि किस तरह आप प्रॉपर्ली जो है ना लोगों तक डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, उसके क्या इंतज़ाम हैं। वरना फिर ये होगा कि अगर वो गोश्त आया होता है तो जाहिर सी बात है कि उसका भी मतलब एक जाहिर सी बात है यार मतलब एक नाकदरी भी है और गलत चीज़ भी है कि एक अल्लाह ताला की नेमत है जिसको आपने प्रॉपर्ली जो है ना ख्याल नहीं रखा। तो चलें इस हवाले से ही आज हम बात करते हैं, मज़ीद हम बात करेंगे लेकिन अभी हमें जाना है असकार की तरफ। तो असकार सुनते हैं, वापस आते हैं और आप लोग दुआ कीजिएगा कि मेरी नींद थोड़ी कम हो जाए क्योंकि मुझसे लिटरली इस वक्त बोला नहीं जा रहा, मुझे नींद इतनी आ रही है। खैर जी, तो हम बढ़ते हैं असकार की तरफ, असकार सुनकर आते हैं और आप लोग साथ रहिए, कॉल भी कीजिएगा, मैसेजेस भी कीजिएगा, मैं आपकी मुंतज़िर हूँ।
2: एक पुरसुकून और खामोश सुबह फजर की रोशनी से शुरू होती है। इन्हीं पाकीज़ा लम्हों में दुआएं कबूल होती हैं, बरकतों का नुज़ूल होता है और अल्लाह की रहमतें उनकी तरफ मुतवज्जे होती हैं जो उसे याद रखते हैं। इरशादे खुदावंदी है, वज़कुर इस्मा रब्बिका बुकरतन व असीला, और सुबह शाम अपने परवरदिगार के नाम का जिक्र किया करो। और अब समाज फरमाइए सुबह के अजगार FM 107 पर।

Righty right, welcome back. आप सुन रहे हैं मॉर्निंग मस्ती ईद विद आरजे महावश और अब वक्त हो गया है 7:21, 9 बजे तक हमारा आप साथ रहेंगे और आप हमें कॉल कर सकते हैं 4443337 पे और साथ साथ आप 6662107 पे हमें कर सकते हैं मैसेज. तो जहाँ पे आपको आसानी हो आप ज़रूर शामिल हों शो में, अगर तो जाग रहे हैं, शर्त यह है. और मुझे लगता है ऐसा कि अभी तो नहीं कोई भाई जाग

0: लगा होगा, मतलब अब लोग जोहर के वक्त ही नमाज जुमा के लिए ही उठेंगे कुछ, मतलब 10 बजे तक फिर तैयारी व्यारी अपनी करेंगे। खैर जी, अगर कोई किस्मत से जाग रहा है तो वो ज़रूर हमें कॉल कर सकता है, शो में शामिल हो सकता है। खैर जी, हम बात कर रहे थे कुर्बानी के हवाले से, और ये कि आपको जब आप कुर्बानी करते हैं या वैसे भी अगर देखा जाए तो मतलब ये जो मामला है ना अल्लाह ताला की नेमतों का, और ख़ास तौर पर ख़ुराक के हवाले से, तो दुनिया में इस वक्त बेशुमार लोग ऐसे हैं जिनको मुयस्सर नहीं है मतलब खाना पीना, बुनियादी जो जो चीज़ें होती हैं, खुराक, 3 वक्त का खाना क्या, मतलब बहुत सारी जगहें ऐसी हैं जहाँ पे 2 वक्त 1 वक्त का भी मुश्किल हो जाता है लोगों के लिए। और हम आए दिन इस तरह की वीडियोस और सब कुछ देख रहे होते हैं जहाँ पे बच्चे और ख़ास तौर पे बच्चों को दिखाया जा रहा होता है कि उनकी ग़िज़ाई जो ज़रूरियात हैं वो पूरी नहीं हो रही। तो ऐसे में जब आप कुर्बानी करते हैं तो ये बड़ा ही ज़रूरी है कि उसको प्रॉपरली फ़ौरन मतलब प्रिपेयर रहें कि अभी गोश्त आएगा और अभी आपने डिस्ट्रीब्यूट करना है या अपने घर में भी जो रखना है हिस्सा, तो वो प्रॉपरली जल्द अज जल्द रख लिया जाए ताकि वो ख़राब होने के अमल से बच जाए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
1: जी वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह
0: वबरकातुहू। जी कौन बात कर रहे?
1: जी मैं उमर शहजाद बात कर रहा हूँ।
0: जी उमर शहजाद, क्या हाल चाल है भाई आपके, और क्या हो रहा था इस वक्त, ईद कैसी गुजरी?
1: ईद तो हमारी काम पे गुजर रही है।
0: अच्छा।
1: मेरी बहन कह रही थी कि अभी जागता हो तो फोन कर सकता है, मैंने कहा चलो हम कर लेते हैं फोन।
0: बहुत अच्छा किया आपने, क्योंकि आज मुझे बड़ी ज़रूरत है सीरियसली, मतलब एक होता है ना नींद जो इतनी ज़्यादा आ रही होती है तो बातें भी नहीं आ रही होती दिमाग में, वो वाली कैफियत चल रही है।
1: थोड़ा सा टाइम ले लें हम भी।
0: जी जी बिल्कुल। उमर की बताएं कहाँ से हैं, पाकिस्तान से तो हैं, कौन से शहर से हैं ये बताएं?
1: लाहौर शहर से।
0: अच्छा वाह, लाहौर से, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। कब से यहाँ पे?
1: मुझे 3 ईयर्स हो गए।
0: अच्छा अच्छा, सही। तो कैसा लग रहा है यहाँ पे आपको?
1: अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, जब फ्री थे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, अभी अल्हम्दुलिल्लाह 2 साल से काम कर रही
0: है। हाँ,
1: तो अभी अच्छा लगता है, आपको पता है फ्री आदमी हो तो कैसे अच्छा लगता है कोई भी देश हो।
0: हाँ, फिक्रें भी होती हैं ना, मतलब ये भी एक फिक्र होती है कि हो जाए अल्लाह करे जल्द अज जल्द मामला बन जाए, और वो भी एक मतलब एक ज़हनी कोफ्त होती है साथ में। जबरदस्त, चले माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह ताला आपका रिस्क हमेशा मतलब इसी तरह से लगाए भी रखे और उसमें मजीद बरकत दे इंशाल्लाह ताला। तो भाई क्या सीन है, क्या चल रहा है, किस तरह का मामला गुजर रहा है, और लाहौर को देखिए तो काफ़ी माशाल्लाह आजकल खुशी हो रही होती है, मैं वीडियोज वगैरह देख रही होती हूँ, सफाई वगैरह का काफ़ी अच्छा इंतजाम चल रहा है अभी बकरीद पे भी।
1: जी जी जी, वो हमारी है ना सीएम मरियम नवाज, काफी अच्छा वो लोगों को जो सा रिस्पॉन्स दे रही है इस मामले में। पीछे भी चौथा था कचरा वगैरह होता था, लेकिन इस बार नहीं है कुछ भी ऐसा।
0: हाँ, मैंने यही देखा तो देख के अच्छा लगा। हाँ माशाल्लाह माशाल्लाह, मतलब बाकी सारे शहरों में भी इसी तरह से होना चाहिए सफाई का इंतज़ाम, क्योंकि वही जैसे मैं कह रही थी ना कि अभी कल मैं बात कर रही थी अपनी बहन से, तो कुर्बानी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, लेकिन उसका ना पर्पस समझना चाहिए हमें कि हमें जब कुर्बानी हम कर रहे हैं तो एक तो गोश्त मुस्तहिक लोगों तक पहुँचे, ये ना हो कि एक तो तरीका ये होता है अपने फ्रीज़र्स भर दिए जाते हैं, दूसरा ये कि आपने कर तो लिए आपको समझ में नहीं आ रहा है कि गोश्त को डिस्ट्रीब्यूट किस तरह से करना है प्रॉपरली, किस तरह से मतलब कि ऐसे ज़ाया होने से बचाया जा सके। माशाल्लाह आपको पता है कि हमारे मुल्क में सब चीज़ों में लोग बहुत आगे बढ़ बढ़ के हिस्सा लेते हैं, मतलब चाहे वो चैरिटी हो है ना, चाहे कुर्बानी हो, लेकिन मसला कहाँ पे आ जाता है कि चीज़ें हमें ज़ाया होती हुई बहुत नज़र आ रही होती हैं, या फिर ये है ना, और कुर्बानी के बाद हम लोग प्रॉपरली जैसे ये जो मैं कह रही हूँ सफाई का मामला, तो ये एक बहुत बड़ा मसला खड़ा हो जाता है जिसकी वजह से बीमारियाँ शुरू हो जाती हैं कि आलाइशें और ये सब कुछ जो है ना पड़ा रह जाता है रोडों पर।
1: जी जी, ये इससे ये भी होता ना कि बैक्टीरिया बहुत पैदा होते हैं, लोग बीमार होते हैं, जगह जगह गंदगी, ये तो कोई भी पसंद नहीं करेगा आम शहरी। तो बहुत अच्छा इंतजाम है माशाल्लाह, मैं घर बात करता रहता हूँ, माशाल्लाह हमने भी कुर्बानी करवाई है, तो उन्होंने यही कहा था कि इस बार जो होता है ऐसे फौरन गाड़ी आ जाती थी, जिधर भी कोई गंद पड़ा होता था फौरन उठा के सफाई करके चले जाते थे, मैं कहा बहुत अच्छी बात है,
0: वेरी नाइस।
1: इससे तो हम भी खुश हैं, दूसरे लोग भी खुश हैं, आने वाले भी खुश हैं, दूसरे शहरों से सारी बातें लोग आते हैं वो तारीफ करते हैं कि लाहौर शहर ऐसा है, और दूसरे शहर भी दिगर जैसे कराची, कराची में ये सिस्टम बहुत
0: खराब हुआ है, बहुत खराब हुआ
1: है। उधर का तो पता नहीं है, अभी तो उधर का पता नहीं है हमें।
0: नहीं नहीं बहुत खराब हुआ है, मतलब काफी परेशान हुए हैं लोग, तो वही है देखिए

0: यहाँ कतर पे रहते हुए यहाँ कुर्बानी माशाल्लाह से हर कोई कर रहा होता है, लेकिन आपको कहीं पे जरा सा मतलब महसूस नहीं होगा इस तरह का मामला कि कहीं पे आपको ब्लड नजर आ रहा हो या कोई भी ऐसी चीज नजर आ रही हो? इतना प्रॉपरली मतलब जो है ना क्लीननेस का ख्याल किया जाता है यहाँ पे, हाइजीन का और सब चीजों का, लोगों को गोश्त मिलता है, दिया जाता है तो प्रॉपरली पैकेट्स में और सब कुछ, तो अच्छी बात है। ये देख के अच्छा लग रहा होता है कि माशाल्लाह, मतलब जाहिर सी बात है दुनिया बहुत आगे जा रही है तो हमारे मुल्क पे भी इस तरह का काम होना चाहिए जो कि नजर आ रहा है काफी हद तक, माशाल्लाह माशाल्लाह गुड।
1: जी मैं काफी एफएम सुनता रहता हूं, 107 कबीर को सबसे ज्यादा सुनता हूं मैं।
0: अच्छा,
1: पहले मॉर्निंग में मेरी ड्यूटी स्टार्ट हो जाती है ना 5 AM से।
0: जी जी जी जी।
1: तो फिर मैं 6 बजे उनका शो होता था वो सुनना, फिर शाम को वो अपना जो क्या नाम है उनका
0: फजील
1: का शो सुनना, फिर तो 2 साल तकरीबन हो गए मुझे एफएम सुनते हुए। माशाल्लाह बहुत अच्छा ये जो सा मोटिवेट करते हैं लोगों को, काफी इस चीज को मैं सराहता हूँ, तारीफ करता हूँ आपकी टीम की भी।
0: बहुत शुक्रिया भाई, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों को अच्छा लगता है।
1: नाम तो नहीं पता है लेकिन
0: अच्छा, आपको मेरा नाम नहीं पता? मेरा नाम महावश है, मेरा नाम महावश है। चलें ठीक है। और अब हमारा जो है ना मतलब सिलसिला ये है कि मंडे वाले दिन से 1 जून से आपको सुबह के वक्त में हम ही मिलेंगे, मतलब आप 6 से 9 हम ही सुनेंगे, सुबह का आगाज इस तरह से होगा आपका। चले जी उमर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक्स अ लॉट आपकी कॉल के लिए कि मैंने कहा और आपने हमें कॉल की, तो अल्लाह ताला आपकी बाकी के जो दिन हैं ईद के और वैसे भी ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजारे इंशाल्लाह, फिर बात होती रहेगी आपसे, ठीक है, कॉल ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू
1: जी,
0: इंशाल्लाह आमीन, थैंक यू जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। रे जी, तो हमारे साथ हमारे कॉलर्स और बहुत अच्छी बात है भाई, अनएक्सपेक्टेड लेकिन लोगों ने कॉल कर ली, वरना मुझे आज तो बिल्कुल ही उम्मीद नहीं थी कि कोई कॉल करेगा, मुझे लग रहा था सब सो रहे होंगे, मतलब कौन होगा भाई जो इतना सुबह सुबह उठ के ईद के तीसरे दिन कॉल करेगा, लेकिन चले गुड गुड, ज़बरदस्त अच्छी बात है, कॉल कीजिए, थोड़ी थोड़ी सी मेरी एनर्जी जो है वो बहाल हो रही है। हाँ, तो हम बात कर रहे थे कुर्बानी के हवाले से और उसके हवाले से कि आपको जो है ना प्रॉपर्ली डिस्ट्रीब्यूट ज़रूर करना चाहिए। अच्छा, इसी के साथ जो एक और जो चीज़ होती है ना, एक रवैया कि मतलब जहाँ हमें बहुत कोई वाफर मिकदार में चीज़ नज़र आती है तो वहाँ पे हम ये चीज़ भूल जाते हैं कि हमें उसको किस तरह से, मतलब नेमतों का शुक्र अदा करना ये है कि आप उसको वैल्यू दें, आप उसको ये समझें कि भाई मतलब अगर आपको चीज़ ज़्यादा मिल रही है तो आपने उसको, ऐसे नहीं है कि मतलब आप बस मतलब जैसे दिल चाह रहा है फेंक रहे हैं, आधा खा रहे हैं आधा फेंक रहे हैं, चाहे वो खाने पीने की चीज़ हो, क्योंकि अक्सर आपने देखा होगा कि जहाँ पे बुफे वगैरह हो रहा होता है ना, तो वहाँ पे या फिर शादियों में भी हमारा ये रवैया होता है, दावतों में भी होता है कि अपनी गुंजाइश से ज़्यादा जितना आपको भूख लग रही है जितना आप खा सकते हैं उसे कई कई ज़्यादा ना प्लेटों में भर लिया जाता है, और फिर होता है उसका क्या है नतीजा कि थोड़ा बहुत खाया जाता है, जाहिर सी बात है एक मतलब एक हद तक गुंजाइश है पेट में, उसके बाद नहीं खाया जा रहा तो वो फिर फेंक गया। तो कोशिश कीजिए कि आप उतना ही निकालिए अपनी प्लेट में जितनी आपको भूख है, और अगर आपको दोबारा चाहिए होगा तो आप दोबारा ले सकते हैं, लेकिन एक वक्त में बहुत ज़्यादा कुछ निकालना अपनी प्लेट में, अपने चाहे घर हो आपका या कहीं पे, बच्चों को शुरू से इस बात की आदत डालें कि जितना खा सकते हो उतना लो, अगर नहीं खाया जा रहा तो ना लो, अगली दफ़ा के लिए यूज़ कर लिया जाएगा। या फिर आप ये कर सकते हैं, जिन घरों में ये मामला है कि वो लोग देखे मैंने कुछ लोग इस तरह से होते हैं, जबकि अब तो बड़ा इजी है घर पे आप आराम से फ्रिज में और फ्रीजर्स में रख सकते हैं चीज़ें, लेकिन फिर भी ऐसा अगर लगता है कि आप लोग नहीं दोबारा मतलब कोई चीज़ खा सकेंगे तो चलें कोई मसला नहीं, लेकिन वो प्रॉपर्ली फिर किसी को दे दिया करें, जो वाकई मतलब जो है ना बहुत सारे लोग आपको ऐसे मिल जाते हैं जिनको नहीं मिलता है इतने आराम से खाने पीने की चीज़ें, तो उन तक वो चीज़ पहुंचा दें ताकि ये हो कि कम से कम चीज़ फेंके नहीं। इसका मतलब काफ़ी एक देखा जाए ना तो ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है हमारी मज़हबी तौर पे भी और एक सोशली भी कि हम इस चीज़ का ख्याल रखें। इसके साथ ही दीगर जो और नेम थे, मैंने देखा है बहुत सारे घर ऐसे भी होते हैं माशाल्लाह अल्लाह ताला ने बहुत दिया हुआ है, कपड़े खरीद के ले लिए, बहुत बहुत सारे ले लिए, पहनने में नहीं आ रहे, पड़े हुए हैं, मतलब सालों घर पे पड़े हुए हैं। तो एक तो ये कि भाई मतलब वो भी ये सारी जो चीज़ें हैं ना, इन सब चीज़ों के हमसे अल्लाह ताला ने हिसाब लेने के दिया था तो उसको किस पर्पस में किस तरह से खर्च किया गया। तो अगर आप अच्छे कपड़े पहनने के शौकीन हैं बहुत अच्छी बात है, ज़्यादा कपड़े पहनने के शौकीन हैं वो भी बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक तो उतनी गुंजाइश जितना मतलब एक पहना जा सकता है जिसकी वाकई आपको ज़रूरत है, कोशिश करें कि उतना ही लिया करें। और अगर आपने ले लिया है और नहीं

0: ही यूज में आ रहा, साइज छोटा हो गया, कुछ भी, तो उसको न्यू कंडीशन में ना शुरू शुरू में ही उसको चैरिटी बॉक्सेस इतने यहाँ पे भी रखे होते हैं, और अगर हम अपने मुल्कों की बात करें तो वहाँ पे भी आपको डिजर्विंग लोग बहुत मिल जाते हैं, तो उनको दे दिया करें ताकि ये हो कि किसी के तो इस्तेमाल में आए ना, मतलब ऐसा ना हो कि वो चीज़ जो आपने ली है वो पड़े पड़े पुरानी हो जाए और फिर मतलब 10 साल गुजर जाए उसके बाद फिर आप किसी को दें तो ज़ाहिर सी बात है मतलब उसकी कोई वैल्यू नहीं रहती, फ़ायदा भी नहीं रहता। तो इसलिए शुरू शुरू में कोई भी चीज़ अगर आपके पास इजाफी है, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके काम नहीं आएगी, वो कोई भी चीज़ हो सकती है, तो उसको लोगों तक, जो मुस्तहिक लोग हैं, जो डिज़र्व करते हैं, जो वो इस्तेमाल कर सकते हैं, उन तक जल्द अज जल्द कोशिश किया करें कि उस चीज़ को दे दिया जाए। ठीक है, तो चलिए जी हम मज़ीद आपसे बात करेंगे, लेकिन अभी एक ब्रेक पर भी जाना है हमने, और आपको याद कराते चलें कि आप हमें कॉल कर सकते हैं 4434377 पे, और साथ ही साथ व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं 6622107।
1: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM107 कतर। दिल से देसी
2: FM107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें,
3: आज ही राब्ता करें
2: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
4: सलाम हो इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर, जब अल्लाह ताला ने उनके इखलास, इताद और कुर्बानी के जज्बे के बदले एक अजीम कुर्बानी अता फरमाई, जो सिर्फ एक इबादत ही नहीं बल्कि हमदर्दी, खुशियां बांटने और एक दूसरे का ख्याल रखने का खूबसूरत पैगाम बन जाती है। तलहा अशरफुज़्ज़मान से समाद कीजिए ईद उल अधा का खुसूसी प्रोग्राम कुर्बानी और रहमत, ईद के दूसरे और चौथे दिन रात के ठीक 10 बजे सिर्फ और सिर्फ उर्दू रेडियो FM 107 पर। दिल से देसी।
5: दोस्तों, लिफ्ट में फंस जाने की सूरत हाल में इन हिदायत पर अमल करें। सबसे पहले तो पुरसुकून रहिए और अपने स्ट्रेस को कंट्रोल कीजिए। गहरी सांस लें और अपने आप को याद दिलाएं कि मदद रास्ते में है, क्योंकि परेशान होने से आपको कोई भी फायदा नहीं होगा। इमरजेंसी बटन या इंटरकॉम का यूज करें। हर लिफ्ट में एक सिस्टम होता है जो डायरेक्टली सिक्योरिटी या बिल्डिंग मैनेजमेंट से कनेक्ट करता है। बटन को प्रेस करें और जवाब का इंतजार करें। इसमें थोड़ा वक्त लग सकता है। दरवाजों को फोर्स ना करें। ऑटोमेटिक डोर्स को हाथों से खोलना खतरनाक हो सकता है। ओपन या क्लोज बटन को 5 सेकंड प्रेस करके चेक करें, लेकिन दरवाजों को फोर्स ना करें। हरकत कम करें और मोबाइल का सिग्नल चेक करते रहें। ज्यादा मूवमेंट से हवा और एनर्जी पर असर पड़ता है। पुरसुकून होकर बैठें या खड़े रहें। अगर मोबाइल सिग्नल है तो 999 पर कॉल करें और अपनी लोकेशन बताएं। रेस्क्यू टीम का सब्र से इंतजार करें। सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस को ध्यान से पढ़ें और रेस्क्यू टीम के आने का इंतजार करें। घबराहट या परेशानी से बचने की कोशिश करें और जरूरत पड़ने पर इमरजेंसी नंबर 999 पर कॉल करें। FM 107 आपके सेफ और खुशहाल दिन की दुआ करता है।
6: सेहत की बात हो तो एतमाद चाहिए माहिरीन की राय पर,
7: माहिरीन की राय पर।
6: लीजिए, हाजिर है आपके लिए प्रोग्राम हेल्थ गाइड,
7: हेल्थ गाइड,
6: जहां आपके सवालात के मिलेंगे मुस्तनद जवाबात। स्पेशलिस्ट और कंसल्टेंट डॉक्टर्स करेंगे रहनुमाई, बीमारियों की पहचान से लेकर इलाज और एहतियात तक,
7: इलाज और एहतियात तक।
6: सुनिए हर वेंसडे बुध की रात 8 बजे हेल्थ गाइड डॉक्टर फौजिया शफीक के साथ, ओनली ऑन FM 107। दिल से देसी,
7: दिल से देसी।
6: याद रखिए, सेहत ही है सबसे बड़ी दौलत।
8: आप सुन रहे हैं।

राइट, वेलकम बैक. आप सुन रहे हैं 107 FM, और हमारे साथ कुछ कॉलर्स हमें कॉल कर रहे थे. अब वो कॉल कर सकते हैं, उस वक्त मैंने उठाया नहीं क्योंकि फिर वो होल्ड करवाती, फिर आप मतलब बिलावर इतनी देर तक होल्ड पे रहते, तो इसलिए जो कॉल कर रहे थे वो आप कॉल कर सकते हैं. अच्छा जी, आ जाते हैं मैसेजेस की तरफ. वो मैसेजेस जो हैं वो मेरे पास किसके हैं, तौफीक. तौफीक कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहु, वकरा से FM 107 की टीम को मेरी तरफ से ईद उल अज़हा की मुबारकबाद. आपको भी मुबारक हो बहुत बहुत तौफीक. कैसे हैं आप, ठीक ठाक हैं, कैसी गुजर रही है आपकी ईद. इसके अलावा जी मुमताज़ अहमद का मैसेज है और कहते हैं अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहु, माविश खान मैम कैसी हैं आप, गुड मॉर्निंग, मेरी तरफ से 107 की तमाम टीम को ईद मुबारक, आपको भी ईद मुबारक. राइट, और मोहम्मद का मैसेज है, मोहम्मद का पूरा नाम क्या है, आई थिंक मोहम्मद खलील है, हाँ मोहम्मद खलील, और कहते हैं गुड मॉर्निंग एंड ईद मुबारक मैम, बहुत बहुत शुक्रिया, आपको भी ईद मुबारक, कैसे हैं आप भाई. और नसीम कहते हैं कि आप कॉफ़ी लें. अब मैं कॉफ़ी कैसे लूँ, मैं स्टूडियो छोड़ के जा नहीं सकती, मसला ये है. अच्छा जी, इसके साथ ही गुड मॉर्निंग मावज जी, ईद मुबारक. और ये ख्याल, ख्याल नाम है आपका, लिटरली मतलब नाम ही ख्याल है, अच्छा अच्छा ख्याल है. और इसके साथ ही जी अमजद इकबाल साहब का मैसेज आ गया और ये कहते हैं हाँ जी हाँ, अस्सलाम वालेकुम और अस्सलाम वालेकुम कतर, जुमा मुबारक, वीकेंड मुबारक. लेकिन आपके लिए तो नहीं है वीकेंड, चले अल्लाह खैर करेगा. सीरियसली मतलब ये वाला जो मतलब मौका होता है ना, जो वीकेंड नहीं मिल रहा होता, और मुझे मतलब जुमे वाले दिन एक वो होता है, मतलब जुमेरात वाले दिन से ना थर्सडे वाले दिन जैसे ही शो करो उसके बाद एक मूड ऑन हो जाता है कि भाई अब वीकेशन मूड है, अब हॉलीडे मूड है, अब तो मतलब दो दिन की छुट्टी होगी. तो वो एक इतना ज़्यादा इम्पैक्ट आपके मतलब होता है दिलो दिमाग के ऊपर कि फिर आपको अब उसी कैफियत में होते हैं, जबकि मैंने बिल्कुल भी कल बनाया नहीं. लेकिन देखिए मतलब हमारा ना वो कहते हैं ना कि एक आपका ये एक तरह का क्या बायोलॉजिकल क्लॉक होता है, तो उसको सब पता होता है, उसको पता होता है जुम्मे हफ्ते की छुट्टी होती है. तो वो खुद ब खुद ही मतलब स्लीपिंग मूड में चला जाता है. खैर जी, मतलब आगे क्या है, और कहते हैं कि कभी कभी ऐसी ड्यूटियाँ भी लगती हैं. माशाल्लाह जी, हम भी आपको सुन रहे हैं. लेकिन इधर पिंडी गेम में नेट, पिंडी गेम में पाकिस्तान में नेट का प्रॉब्लम है, कुछ टाइम आता है और कुछ टाइम नहीं होता. तो ईद का तीसरा दिन सबको मुबारक हो. आज तो कुछ ना कुछ लोग काम पर गए होंगे, कुछ जो हैं वो आखिरी छुट्टी मना रहे होंगे. आज और कल भी आपका प्रोग्राम होगा, तो सबको सलाम जी और ईद का तीसरा मुबारक. अच्छा, पिंडी में होते हैं अमजद इकबाल साहब, चलें गुड, ज़बरदस्त. और वहाँ पर इंटरनेट का थोड़ा सा इशू चल रहा है, चलें. अच्छा जी, तो एक ख़बर आपसे शेयर कर लेते हैं, वो ये कि हमद इंटरनेशनल एयरपोर्ट यहाँ पे अब जो रेजिडेंट्स और जो विज़िटर्स वगैरह यहाँ मतलब ईद उल अज़हा के लिए छुट्टियों पे एक तो गए हुए थे वो वापस आ रहे हैं, और साथ ही साथ जो हज सीज़न चल रहा है तो अब वो भी सिलसिला शुरू हो जाएगा. तो उसके लिए सारे जो ऑपरेशनल मेजर्स हैं वो ये इस बात को मतलब इंश्योर कर रहा है हमद इंटरनेशनल एयरपोर्ट के सारी जो चीज़ें हैं उनको स्मूथली मतलब अराइवल एक्सपीरियंस लोगों का बनाया जाए. और ये कहा गया है, कुछ टिप्स भी दी गई हैं कि किस तरह से पैसेंजर्स जो हैं इंश्योर कर सकते हैं स्मूथ और क्विक प्रोसेसिंग को, जिसमें ई गेट्स का इस्तेमाल है. मतलब वो लोग जो कि बच्चों के बगैर आ रहे होते हैं ख़ास तौर पर, वो ई गेट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं. आपके पास यहाँ का RP है, आप ईज़िली मतलब जो ना ई गेट का इस्तेमाल कीजिए. और इमिग्रेशन जो हॉल है वहाँ से मतलब जल्दी से आप निकल जाएंगे, ये फास्टर एक प्रोसेस हो जाएगा. इसके साथ ही साथ काफ़ी मतलब जो है ना कन्वीनियंट ट्रांसपोर्ट के ऑप्शंस भी हैं, जो कि एयरपोर्ट से आपकी जहां पे भी डेस्टिनेशन है वहां पे इंश्योर करेगा कि आप जल्द से जल्द अपने घर तक पहुंच जाएं. और लिटरली मतलब इतना अच्छा एक्सपीरियंस होता है कि आप जैसे ही बाहर निकलते हैं तो आपको मतलब किसी मजीद मतलब तकद्दो की या किसी को बुलवाने की और इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसमें अक्सर ये होता है कि आपको इंतज़ार काफ़ी करना पड़ता है. कोई बंदा मतलब जिसने टाइम दिया था नहीं आ सका, अगर आप किसी के साथ जाना चाह रहे हैं या कुछ भी, तो बेहतर ये होता है कि आप फ़ौरन फ़ौरन निकलें और आपको अच्छे ऑप्शंस मिल जाते हैं टैक्सी के, फटाफट आप निकलेंगे, फटाफट घर पहुंच जाएंगे. तो उसमें एक वैसे ही बंदा सफ़र कर कर आता है, चाहे वो मतलब दो घंटे का भी सफ़र क्यों ना हो, लेकिन थकावट हो जाती है, एक सफ़र की एक अपनी थकावट है. तो मुझे ऐसा लगता है कि बजाय इसके कि किसी को बुलवाया जाए या कुछ भी, तो टैक्सी और जो ट्रांसपोर्टेशन के जो ज़राए हैं जो कि फराहम किए जाते हैं, तो उसको इस्तेमाल करें और ईज़िली अपने घरों तक पहुँच जाएँ. तो बहुत ही माशाल्लाह माशाल्लाह ज़बरदस्त इंतज़ाम हुआ हुआ होता है. और अभी हद सीज़न है,
और बकरीद का मौका है, अक्सर लोग जो हैं अपने घरों पे जाते हैं फिर वापस आ रहे होते हैं, तो इसके लिए और खसूसी इंतज़ाम किए गए हैं कि ये आप ईज़िली मतलब अपने जो मामलात हैं इस तरह के जब यहाँ पे आते हैं तो फटाफट इमिग्रेशन और सारे के सारे प्रोसेस आपके हों और आप ईज़िली अपने घर जाके आराम कर सकें।

0: अच्छा जी, इसी साथ ही ट्रैफिक अपडेट भी मैं आपको दे देती हूँ कि आज कुछ इलाकों में आर्जी तौर पे रोड क्लोजर किए जा रहे हैं, और मैंने ये नोट किया, ऑब्जर्व किया यहाँ पे रहते हुए कि अमूमन जो छुट्टी वाले दिन होते हैं ना, मतलब उसमें कोशिश की जाती है कि अर्ली मॉर्निंग और रात के वक्त खास तौर पे, जब इतना ज़्यादा लोगों का आना जाना नहीं होता रोड पर और मतलब थोड़ा सा मतलब जो है ना मतलब ट्रैफिक कम होता है, तो उस वक्त थोड़ी आर्जी तौर पर रोड क्लोज किए जाएँ और वहाँ पर जो रोड्स हैं उनकी मुरम्मत वगैरह का काम जो है वो किया जाए। तो ये इस तरह का आज भी सिलसिला है, कुछ इलाकों में आर्जी तौर पे रोड क्लोज हैं ताकि सड़कों की मुरम्मत और बेहतरी का काम हो सके। खास तौर पे दुखान रोड से जो टनल है ना, वो मतलब 2 बजे से 10 बजे तक बंद रखा जाएगा, मतलब 2 बजे रात से सुबह 10 बजे तक, तो एक आध घंटा और है। तो आपको अगर आप वहाँ से गुजरते हैं तो आपको थोड़ा ऑल्टरनेटिव रूट लेना होगा, और ये हिदायत की गई है शहरियों को कि आप ट्रैफिक साइंस का ख्याल रखें और साथ ही साथ ट्रैफिक साइंस के साथ अपनी स्पीड को जो है ना वो मॉडरेट रखें। बहुत ज़्यादा तेज़ अगर आपकी स्पीड होती है और समझें कि कोई रोड क्लोज है, आप आदी हैं इस बात के कि वहाँ से आप जन्नाटे से निकल जाते हैं और आप अगर उसी स्पीड के साथ आ रहे हैं तो ये एक मसला आ जाता है कि अल्लाह ना करे मतलब आप जो है वो हिट कर सकते हैं किसी जगह को, डैमेज हो सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है। तो इसलिए हमेशा मतलब एक तो जब मैंने गाड़ी चलाना सीखी थी तो मुझे मेरे इंस्ट्रक्टर ने एक बड़ी अच्छी बात बोली थी जो कि बड़ी काम आती है, मैं अभी भी सोचती हूँ, कि उन्होंने कहा था कि करीब नहीं बल्कि दूर पे नज़र रखें, मतलब हमेशा आपकी नज़र जो है ना दूर की तरफ होनी चाहिए। तो वाकई इससे ये होता है कि आपको पहले से पता चल जाता है आगे गाड़ियाँ रुकी हुई हैं, कोई मतलब चीज़ ऐसी है, कोई भी मतलब आपको सेंस कर जाता है कि कुछ ना कुछ आगे मसला है। तो ये एक बड़ी ज़रूरी चीज़ है, और उस हिसाब से अपनी रफ्तार जो है वो हमेशा आपके कंट्रोल में होनी चाहिए। जितनी पे आप जितनी स्पीड के ऊपर अपनी गाड़ी को कंट्रोल कर सकते हैं ईजिली, तो वो आप कंट्रोल करते हुए चलाएँगे गाड़ी तो डेफिनेटली मतलब जो है एक्सीडेंट के चांसेस बहुत कम से कम हो जाते हैं। सुबह के वक्त तकरीबन मैं रोज़ाना देख रही होती हूँ कि कहीं ना कहीं मतलब जो ख़ास तौर पे हाईवेज़ के इलाके हैं, कहीं ना कहीं साइड पे 2-3-4 गाड़ियाँ लगी हुई होती हैं क्योंकि उनके एक्सीडेंट्स हो जाते हैं। नहीं, वही वाला चक्कर होता है कि नहीं पता चला सामने वाले ने गाड़ी रोकी और सब कुछ। तो स्पीड हमेशा जो है वो थोड़ा मतलब जो है ना ऐसी रखें जो कंट्रोल में रहे। अच्छा, इसके साथ ही कहा गया है कि मुतबादल जो रास्ते हैं उनका इस्तेमाल करें। तो अभी ईद की वजह से थोड़ा सा मतलब सुबह के वक्त तो काफ़ी रश कम होता है, लेकिन ये कि शाम के वक्त में काफ़ी रश बढ़ जाता है, तो उस वक्त में भी देखभाल के गाड़ी वाड़ी चलाइए अपनी एहतियात के साथ। जहाँ पे भी आपने पहुँचना है, अगर आप 10 मिनट लेट भी पहुँचते हैं तो इतना बड़ा नुकसान नहीं होगा, लेकिन अगर आप जो हैं वो बहुत तेज़ गाड़ी चलाते हैं और अल्लाह ना करे एक्सीडेंट हो जाता है तो फिर एक वो कोफ्त अलग होती है, नुकसान अलग हो जाता है। तो उससे बेहतर है कि बंदा जो है ना थोड़ा सा लेट पहुंच जाए कहीं पर, लेकिन पहुंच जाए सुकून के साथ। तो खैर जी, मतलब जो लोग गाड़ी चला रहे हैं इस वक्त में भी, उनको मैं यही कहना चाहूँगी कि देखभाल की गाड़ी चलाएं, और ख़ास तौर पे अगर कोई मतलब कहीं पे रास्ता वस्ता बंद है, कुछ काम ऐसा कंस्ट्रक्शन का चल रहा है, तो वहाँ पर और ज़्यादा खुसूसी एहतियात कीजिए।
1: नई ख्वाहिशात के साथ दुआ है कि आपकी हर परेशानी दूर हो जाए और दिल सुकून से भर जाए, आपकी हर कुर्बानी कबूल हो, अल्लाह आपके दिल को सुकून अता फरमाए और आपकी जिंदगी को अपनी रहमतों से भर दे। ईद उल अज़हा के इस मुबारक मौके पर आपको मोहब्बत और खुशियों के पैगामात मिलें। आप और आपके अपनों को अल्लाह सुबहानहू व तआला हमेशा अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे, आमीन। सरवर मिर्जा और FM 107 की पूरी टीम की जानिब से आपको ईद उल अज़हा की पुरखलूस मुबारकबाद। कुल्लू आम वान तुम बखे।

0: FM 107 पेश करते हैं ईद का स्पेशल प्रोग्राम किड्स कार्निवल सफा के साथ, एक फन फिल्ड शो जहां बच्चों के लिए स्टोरीज, गेम्स, हंसी मजाक, म्यूजिक और एक्साइटिंग सरप्राइजेस होंगे। ईद के पहले और तीसरे दिन दोपहर 3 बजे से, तो सुनना मत भूलिएगा और अपनी ईद को और भी खुशगवार बनाएं सिर्फ FM 107 पर किड्स कार्निवल पर RJ सफा के साथ, दिल से देसी।
1: इस ईद सिर्फ कबाब और दावतें नहीं, सेहत का भी ध्यान रखना है। जानिए कैसे आप एंजॉय कर सकते हैं अपनी पसंदीदा डिशेस बिना गिल्ट के। इबादत और अपनों के प्यार के साथ स्मार्ट तरीके से सेलिब्रेट करें ईद के दूसरे और चौथे दिन शाम के 7:15 से। सुनिए हमारे स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मोहम्मद अमीन को इन द शो फिट एंड फेस्टिव, जहां ईद एंजॉय करेंगे फिटनेस के साथ।
2: आप सुन रहे हैं मॉर्निंग

0: Right, welcome back. आप सुन रहे हैं मॉर्निंग मस्ती ईद विद आरजे महावश और ईद का तीसरा दिन भी आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो. कॉल आप हमें कर सकते हैं 443-443-77 पे और साथ ही साथ आप हमें व्हाट्सएप पे कर सकते हैं मैसेज 666-22-107. और जो भी तरीका आपके लिए आसान है भाई उस पे मतलब कीजिए, हमें कॉल कीजिए, मैसेज कीजिए, शो में शामिल हो जाएं. और इस वक्त मैं आपसे शेयर करने के लिए जा रही हूँ एक न्यूज़ जो कि बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है हमारे लिए. वो ये कि एक्सपेक्ट किया जा रहा है, मतलब यहाँ पे बताया गया है कि अब एक्सट्रीमली हॉट जो सीज़न है वो शुरू होने वाला है इस वीकेंड के बाद. मतलब जो है ना गर्मी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी ये फोरकास्ट है और 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है. इसके साथ ही मतलब तेज़ हवाएं चलने का भी इम्कान है और साथ ही कुछ जो सी कंडीशन हैं ऑफ शोर्स वो भी थोड़े से रफ़ हो सकते हैं. अच्छा, इसमें मैं आपको बताते चलूँ कि वेदर पोस्ट की गई है कतर मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट की तरफ से और थर्सडे वाले दिन. और ये बताया गया है कि अब थोड़े मतलब गर्म दिन आने वाले, थोड़े नहीं बल्कि अच्छे खासे 44 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाएगा. रात के वक्त हाँ अलबत्ता ये 31 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो सकता है और टेम्परेचर अब बढ़ जाएगा. तो ये कहा गया है यहाँ पे कि मई का महीना मतलब काफ़ी मतलब मेरा ख्याल है कि सही रहा है, बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं हुई है. लेकिन अब जून का महीना चूँकि शुरू होने वाला है टेम्परेचर बढ़ जाएगा और लो जो होगा वो भी 30 डिग्री सेंटीग्रेड होगा. तो इसमें लोगों को अपना ख्याल रखना और ज़रा एहतियात करना दिन के औकात में ख़ास तौर पर मतलब जो है ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. अभी मेरा ख्याल है समर टाइमिंग्स भी शुरू हो जाएंगी लोगों की और मतलब वो जो होता है ओपन अगर आप काम करते हैं कहीं पे भी तो वहाँ प्रिकॉशंस वगैरह शुरू हो जाएंगे कि दिन के वक्त काम नहीं करना, रात के वक्त आपने जो है वो मोस्टली मतलब जो है अपने काम वगैरह निपटाने हैं. तो ये सिलसिला भी अब शुरू होने वाला है क्योंकि टेम्परेचर बढ़ रहा है. देखते हैं हमारे साथ हैं कॉलर. हेलो, अस्सलाम वालेकुम.
1: वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं महेश?
0: अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक.
1: ईद कैसी गुजरी आपकी? उम्मीद है अच्छी गुजरी होगी.
0: जी जी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी गुजर रही है. नाम बताइएगा अपना.
1: मुनीबा बात कर
0: रही हूं. जी मुनीबा, कैसी हैं? ठीक ठाक. और आप बताएं आपकी ईद कैसी गुजर रही है?
1: अल्हम्दुलिल्लाह ईद अच्छी गुजर गई. और बस थोड़ा सा ईद के फौरन बाद एनुअल एग्जाम जो बच्चों के शुरू हो रहे हैं ना, तो उसकी वजह से खुद को हम बाउंड महसूस करते हैं. ईद वाले दिन भी लगता है ये अब इनको कैसे पकड़ना है, कौन कौन सा सब्जेक्ट रहेगा बच्चों का.
0: सही है सही है. पाकिस्तानी स्कूल या फिर क्या?
1: जी जी जी.
0: अच्छा अच्छा, पाकिस्तानी स्कूल. ठीक है ठीक है. अच्छा,
1: बस ये है कि बच्चे आजकल के इतने वो जो पढ़ी लिखी माएं होती है ना, वो उनको सिलेबस पढ़ाते पढ़ाते याद हो जाता है बच्चों के अंदर. वो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती उनका, जी चाहता है भाग भाग के कहीं बाहर का प्रोग्राम रहे या फिर घर में जो है ना.
0: अभी कितने बड़े बच्चे हैं आपके?
1: मेरा बड़ा बेटा 8th में है.
0: अच्छा अच्छा.
1: 6th में है और उससे छोटा 2-2 साल का सब में है.
0: हाँ, अभी वही मतलब थोड़ा सा एक चल रहा होता है ना, थोड़ा सा ये वाला फेज बच्चों का.
1: जी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे हैं पढ़ाई में. मतलब मैं अगर किसी को बताती हूँ ना कि बच्चों को पढ़ाना बहुत मुश्किल है, उनको लगता है पता नहीं क्या करें. लेकिन एक्चुअली मेरा टारगेट होता है कि अल्हम्दुलिल्लाह 90% से ज्यादा लेते हैं. मेरा होता है टॉप 3 में आए 95% प्लस लें, इसलिए ज्यादा भागना पड़ रहा होता
0: है. चलें गुड, जबरदस्त अच्छी बात है. मतलब जो है ना बच्चों को,
1: छोटा वाला जो है ना जो ग्रेड 4th में है, वो तो उसका तो बस 100% अभी तक
0: अल्हम्दुलिल्लाह
1: 99. वो 98-99 पे है तो उसकी टेंशन होती है 100 से क्यों नीचे आ गया.
0: अच्छा, वही क्या मतलब इन एजेस में ना बच्चों को बहुत ज्यादा इन चीजों के ऊपर नहीं भी रखना चाहिए. मतलब अच्छी बात है आपको ट्राई कर रही है, लेकिन ये कि थोड़ा सा
1: मैं बच्चों को मैं इस बात की कायल हूँ कि बच्चे जो हैं वो उनके अंदर जो रियल लाइफ स्किल्स, गेम, स्पोर्ट्स, बाहर जाना, नेचुरल प्लेसेस पे स्पेशली और चीजों को ऑब्जर्व करना, ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है. और अपनी रियल वर्ल्ड में रहना, वर्चुअल वर्ल्ड का जो है ना गुड यूज, कंट्रोल्ड यूज. और मैं इनको ये कहती हूँ कि मुझे ये नहीं, मैं इनको इम्प्रूव करने का कहती हूँ. दूसरे किसी बच्चे की मिसाल नहीं देनी. और दूसरा ये कि फिर उनको बच्चों को ऐसा इन्फोर्स नहीं करना कि आई वांट 100% यू शुड बी द टॉपर. और मैं उनको कहती हूँ हमने सिर्फ अपना फोकस क्लियर करना है, मेहनत करनी है, उसके बाद रिजल्ट जो भी आ जाए इट इज एक्सेप्टेड बाय मी, इट्स ओके फॉर मी. मोर इम्पॉर्टेंट इज दैट यू आर हैप्पी एंड कॉन्टेंट. बट बिफोर एग्जाम्स और ड्यूरिंग एग्जाम्स आई नीड योर फोकस एंड हार्डवर्क.
0: हाँ बिल्कुल, ये सही बात है. बिल्कुल ये होना चाहिए क्योंकि ये भी ना एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी में आ जाते हैं और बच्चे के अंदर वो बहुत जरूरी होता है कि वो डेवलप हो.
1: बच्चों का ना, बच्चों के लिए गोल क्लियर हो और उनको अपनी प्रायोरिटीज का पता हो, स्पेशली स्क्रीन के साथ.
0: बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, तो चलें बेस्ट ऑफ लक इंशाल्लाह ताला अच्छे एग्जाम्स
1: जाए। अभी बात कर रही थी ना बकर ईद के हवाले से, उसकी सफाई और चीजों का वेस्ट और मैनेजमेंट के हवाले से, तो ये बहुत इस सिलसिले में बहुत अच्छा टॉपिक है, इस सिलसिले में बहुत हमें अवेयरनेस की जरूरत है। ये मैंने सुना है मतलब रिसर्च वगैरह से कि सबसे ज्यादा वेस्टेज ऑफ फूड जो है ना वो गल्फ कंट्रीज में होती है, क्योंकि यहाँ पे आपको पता है कि डेवलप्ड कंट्री है और उस तरह से नहीं मिलते जैसे हमारे मुल्कों में मिल जाते हैं। हमारे यहाँ तो चीज अव्वल तो बचती नहीं है, पूरी पूरी पकाई जाती है, या बचे तो सुबह कच्चे वाला आ रहा है उसको दे दी, घर में काम वाली आ रही है उसको दे दिया, ठीक है, तो किसी ना किसी को दे दिया, रिश्तेदारों को अगर ज्यादा पक गई है, हमसायों को बांट दिया, लेकिन यहाँ पे ये चीजें थोड़ी सी कम है, ये अपॉर्चुनिटीज कम मिलती हैं। लेकिन बहरहाल अगर मैनेजमेंट अच्छी रखी जाए कि जितना आपकी जरूरत है उतना ही पकाया जाए, और अगर कोई चीज नहीं खाई गई या बच गई है तो उसको भी अच्छे से मैनेज किया जा सकता है। मेरे साथ एक दफा ऐसा हुआ कि ना एक बच्चों को मैं ना एक जो है ना फास्ट फूड रेस्टोरेंट पे लेके गई, तो उन्होंने जब खाना खाया तो हमारे साथ जो है ना जब जनरेटर क्लीनिंग के लिए आई तो हमारे साथ वाले टेबल पे काफी सारा खाना पड़ा हुआ था और वो काफी ज्यादा था। तो जब वो आई और उसने ट्रेज उठा के उनको सबको डिस्पोज ऑफ करना चाहा, रमजान का महीना था, हम जो है ना तरावी के बाद बच्चों को थोड़ा सा जो है वीकेंड था, मैं खाने के लिए ले गई थी वहां पे, तो मुझे इतना अफसोस हुआ कि ये क्या हो रहा है। मैंने जल्दी से अपना जो एक शॉपिंग बैग है वो खाली किया, उसको मैंने जाके कहा कि आप प्लीज ये जो इनमें से जो एडिबल चीजें हैं, जो फ्राइज है और जो चिकन है वो आप इसमें डाल दीजिए, और इस तरह से मेरे सामने आप इसको फेंक देंगी तो मुझे कोई ना कोई बाहर मुस्तकीन में से कोई मिल जाएगा, मैं उसे दे दूंगी। आप यकीन कीजिए वो काफी सारा खाना था, और मैं बाहर निकली तो बाहर वर्कर्स काम कर रहे थे रात के शिफ्ट में ना, क्योंकि गर्मियों का कुछ साल पहले की बात बता रही हूँ, गर्मियों का रमजान था तो रात के शिफ्ट में वर्कर्स काम कर रहे थे, मैंने वो बैग उन्हें पकड़ाया, वो इतने खुश हुए, हो सकता है अगर मुसलमान हो तो उनकी सहरी बन गई हो। तो ऐसी बहुत सारी जगहों पे बहुत सारे एरिया,
0: देखिए ये बड़ी अच्छी चीज है अनीबा, मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी। हम लोग ना बहुत सारी जगहों पे मतलब बहुत, मैं लोगों को देखा है कि आप जैसे अगर आप किसी के घर जाते हैं आपको सॉफ्ट ड्रिंक या कोई इस तरह का मशरूब वगैरह जो है ना ऑफर किया जाता है, तो लोग ना मतलब एक फॉर्मेलिटी का है वो बनते हुए कि नहीं यार मतलब लोग क्या बोलेंगे हमने पूरा पी लिया, तो वो बचा देते हैं बिला वजह, मतलब है ना। तो ये जो चीजें हमें ये देखना चाहिए,
1: आपने पी लिया कोई और वो पी नहीं सकता, वो वेस्ट ही होगा ना,
0: वेस्ट ही होगा। और आप इस फॉर्मेलिटी में पढ़ने के बजाय ये देखें कि आपसे मतलब जो ना अल्लाह ताला ये तवक्को करते हैं कि कोई चीज अगर दी गई है तो उसका शुक्र अदा करने का तरीका ये है कि उसको वेस्ट ना करें।
1: मैं पता क्या करती हूं, अगर मुझे स्वीट इतना सूट नहीं करती ना, मैं पता क्या करती हूं, मैं एक ग्लास और मंगवा लेती हूं और जितना मुझे पीना है उसमें थोड़ा सा डाल,
0: वो सही तरीका है। और मतलब आप ये ना करो कि आप उसको वेस्ट करो, आप प्रॉपर्ली जैसे आपने बता रही हैं इसके लिए एक थोड़ी सी करेज भी चाहिए, और आपको एम्बैरेसमेंट का शिकार नहीं होना चाहिए कि नहीं मैं बोल दूंगी तो अगला बंदा क्या सोच, कुछ भी सोचता रहे भाई, हमने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करनी है। अगर हमें लग रहा है ना कि हमें लग रहा है कि ये चीज जाया नहीं होनी चाहिए, हमें हमारी फिक्र क्या है, हमें उसके ऊपर जो है ना कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए बजाय इसके कि लोग क्या सोचेंगे।
1: अच्छा, फूड को वेस्टेज वेस्ट होने से बचाने के लिए मेरे पास बहुत इस सिलसिले में ना वो प्रैक्टिकल यानी टिप्स है। मसलन यहाँ पे जो खुबूज वगैरह हैं वो अगर जाया होते हैं, तो अगर कभी हमारा जो ना एस्पायर जाने का प्रोग्राम बन जाए तो फिर बच्चे बड़े शौक से फिश को और डक्स को डाल देते हैं, और अगर वैसे ही तो कोशिश ये करें कि इससे पहले कि उनको घर में एक बैग में डाल के रखें किसी जगह पे, इससे पहले कि उनको फंगस वगैरह लगे, आप उसको अच्छे से मॉइस्ट करके जो पिजन के स्क्वायर्स बने हुए हैं वहां डाल सकते हैं, ठीक है, खुद उसके वेस्टेज से बचाने के लिए ये कुछ टिप्स इंपॉर्टेंट है। और कोशिश ये करें कि अपनी जरूरत के मुताबिक, सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि अपनी जरूरत के मुताबिक मंगवाएं, और कोशिश ये करें कि वेस्ट होने की नौबत ही ना आए।
0: बिल्कुल सही, बिल्कुल सही,
1: ठीक है। और अगर वेस्ट हो जाता है मतलब अकड़ जाती है,

सख्त हो जाती है रोटी है वो, तो उसको भी इस तरह से. पाकिस्तान वाला सिस्टम तो खैर ये कि हमारे बचपन में तो क्या होता था कि छानबुरे वाली वाला गली में आके सदा लगाता था, तो उसको उसको बेच के हम लोग खाने पीने की और कुछ चीजें घर की जरूरत के लिए देते थे या

0: जाते हैं
1: हाँ।
0: और गोश्त मांगने के लिए भी लोग घर घर आ रहे होते हैं
1: हाँ।
0: तो यहाँ पे ये है गोश्त का कि यहाँ पे कुर्बानी एक तो अगर कोई करता है तो बहुत सफाई से, और जो चीजें हैं ना मसलन जो अनवांटेड पार्ट्स होती हैं जैसे स्किन हो गई उसकी और हेड या लेग्स वगैरह या फिर जो इंटरनल इंटेस्टाइन स्टमक वगैरह की चीजें, इसको आप जो है ना बहुत अच्छे तरीके से डिस्पोज ऑफ करें। और उसके बाद की सफाई भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जानवर अगर रखा हुआ है कहीं तो उसकी सफाई और उसके बाद अगर ज़बीहा है उसकी सफाई बहुत अच्छे से करनी चाहिए क्योंकि ये हाइजीन के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे मुल्क में मैं जैसे कि मैं आपसे सुन रही थी और एक कॉलर भी बता रहे थे कि लाहौर में इस सिलसिले में बहुत अच्छे मेजर्स लिए गए, रियली गवर्नमेंट जो है ना वहाँ की बहुत जो है ना वो तारीफ की मुस्तहिक है कि जिस तरह से स्मोक पे उन्होंने काबू पाया और जिस तरह
1: से जबकि अभी पिछले
0: काबू पाया
1: एग्जैक्टली कुछ दिनों पहले ना हम लोग यही बात कर रहे थे कि कुछ अरसे पहले ये सबसे बड़ा मसला जो ना लाहौर का बना हुआ था कि स्मोक के ऊपर मतलब बहुत परेशानी थी, लेकिन इस वक्त आप देखें कंट्रोल कर लिया गया अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा आपका कहाँ से ताल्लुक है मुनीबा?
0: मैं भी पंजाब से पंजाबी हूँ और मेरी फैमिली जो है ना ओरिजिनली मेरे जो दादा का गांव है ना वो लाहौर के पास ही एक जो है ना इलाका शुमार होता है और मेरी दो बहनें लाहौर में हैं। लाहौर मेरा फेवरेट शहर है। वैसे इस वक्त मेरे मामा बाबा फैसलाबाद में रहते हैं, शादी जो है ना मेरी जिस फैमिली में हुई है वो गुजरांवाला से है।
1: अच्छा, ग्रेट।
0: और वो लोग अभी इस्लामाबाद लाहौर शिफ्ट हो गया सब लोग जो रिलेटिव्स में से है ना। मामा बाबा का एक घर अभी है फिलहाल लाहौर में, दो बहनें लाहौर में रहती हैं, तीसरी अभी उसको शिफ्ट हो रही है लाहौर में क्योंकि उसके हस्बैंड वहीं पे जॉब करते हैं। तो लाहौर जो है ना लाहौर के चूंकि नवाही इलाके से एक इलाके से ना हमारा ताल्लुक है तो मेरे सारे चचा बहुत जो है ना माशाल्लाह एजुकेटेड हैं। वो सब लोग पढ़ने के लिए लाहौर जाते थे, फिर जॉब्स के लिए लाहौर जाते थे। अगर किसी की शादी हो रही है लाहौर में, अगर किसी ने शॉपिंग करनी है लाहौर में तो लाहौर तो समझे कि बहुत। मैं आप यकीन कीजिए हम लोग जब वेकेशन से जाते हैं, हम नॉर्दर्न एरियाज भी जाते हैं, हम जो है ना पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में घूमते हैं, इस्लामाबाद तो हमारे बहुत से रिलेटिव जाते हैं, लेकिन जो मजा मेरे बच्चों को लाहौर जाके आता है ना उस शहर में कुछ खास है।
1: हाँ,
0: एक हिस्ट्री है, एक वाइब है, एक वाइब है, जिंदा दिलांग का शहर है जिसमें जिसमें साथ में उसके म्यूजियम भी इतने विजिट करें तो अच्छा लगता है, उसके पार्क्स इतने अच्छे लगते हैं, वहाँ जो जदीद डेवलपमेंट हुई है वो, वहाँ के जो थीम पार्क्स हैं, वहाँ के जो मॉल्स हैं, वहाँ के जो हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं। माय चिल्ड्रन इवन रियली मैंने अपनी लाइकिंग उनको इतनी नहीं बताई थी, इतना टाइम नहीं मिलता था। लाहौर मेरे दिल में बसता है, लाहौर मुझे बहुत अच्छा लगता है, दैट्स अ ड्रीम सिटी फॉर मी। पाकिस्तान में इतनी जगह विजिट की मेरे बच्चों ने लेकिन जो मजा उनको लाहौर में आया ना
1: हम जिंगल के ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ठीक है,
0: ठीक है।

0: FM 107 की पूरी फैमिली की तरफ से हमारे तमाम सुनने वालों को ईद उल अदा की दिल की गहराइयों से मुबारकबाद।
1: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें,
2: आज ही राब्ता करें
1: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
3: FM 107 Time Check.
4: Time Check.
5: राइट 8:01 और हमारे साथ हैं मुनीबा ऑन कॉल। हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
6: जी
5: मुनीबा, तो लाहौर के हवाले से आप बात कर रही थी। अच्छा, मेरा ना लाहौर तीन चार दफा जाना हुआ है, इत्तेफाक हुआ है।
6: कराची से हैं?
5: जी जी, मैं कराची से हूँ, लेकिन ये कि बहुत ज्यादा रुकना नहीं हुआ। मतलब ये हुआ कि हम लोग गए, लाहौर गए, फिर उसके बाद अगले दिन इस्लामाबाद चले गए। लेकिन अब आपकी बातें सुन के मेरा

0: दिल चाह रहा है ये प्रॉपर्ली एक्सप्लोर करना चाहिए लाहौर को.
1: बिल्कुल, वहाँ पे वाघा बॉर्डर है, वहाँ पे जो है ना हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं. आप जो है ना बादशाही किला जाए या फिर आप जो है जो वहाँ के शालीमार बाग है और म्यूजियम्स हैं, फिर जदीद जो उन्होंने चीजें बनाई हैं, मॉल्स हैं, थीम पार्क्स हैं. लाहौर एक दो दिन फिरने के लिए नहीं, मतलब वहाँ अगर आपके रिलेटिव्स में से कोई हो तो बहुत अच्छा है. रोजाना आप कहीं का प्रोग्राम बनाए, इतनी जगह है वहाँ घूमने को. सफारी जू एक बना है, एक तो ओरिजिनल जू था बहुत अच्छा, उसमें भी बहुत अच्छे से एनिमल्स की और बर्ड्स की कलेक्शन है. और जो सफारी जू बना है वो भी बहुत अच्छा है. वहाँ पे जो सी लाइफ का जो सेक्शन है वो बहुत देखने वाला है. मतलब मैंने लाइफ में पहली दफा वो कोरल सारी जो प्लांट्स है ना, इतने कलरफुल और खूबसूरत, पता नहीं दुनिया में कहाँ कहाँ से उन्होंने ला के रखे हुए हैं. यानी हर तरह की मछलियां बहुत से देखने को मिल जाती है मुझे बहुत सी जगहों पे. आपको पता है जद्दा में है, यहाँ दोहा में है, और पाकिस्तान में भी एक्वेरियम्स में देखने को मिल जाती है. यहाँ पे सुखवाकरा में बहुत एक खूबसूरत जगह है जहाँ पे बहुत प्यारी प्यारी मछलियाँ देखने को मिलती हैं. लेकिन वहाँ पे जो प्लांट्स की कलेक्शन थी ना वो देखने वाली थी.
0: अच्छा अच्छा, मैं गई हूँ. आई थिंक रेस कोर्स कहलाता है या हॉर्स करके कुछ कोई जगह है, वहाँ गई हुई हूँ. इसके अलावा ये जो आपने शालीमार बाग की बात की, वहाँ फूड स्ट्रीट जो बनी हुई है वो पूरा एरिया, और लक्ष्मी चौक, इन जगहों पे मतलब जो मतलब पता थी ना जो चीज़ें, तो वो हम लोग थोड़ा बहुत हमने एक्सप्लोर किया है और ये इन जगहों पे गए हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा इन डिटेल नहीं गए. इंशाल्लाह आप नेक्स्ट टाइम कभी मौका
1: लगता है. एक विजिट काफी नहीं होता ना. हाँ, और एक दिन भी काफी नहीं होता लाहौर में देखने को और घूमने फिरने को. इतना बहुत कुछ है.
0: लिबर्टी भी उधर ही है ना. लिबर्टी गए हैं. हाँ, लिबर्टी गए हैं. बिल्कुल, मैं कंफ्यूज होती हूँ लिबर्टी और मेलोडी में. मेलोडी इस्लामाबाद में, लिबर्टी लाहौर में. हाँ, तो उधर गए हैं.
1: तो मैं, मेरा बचपन भी कुछ वक्त कराची में गुजरा है.
0: अच्छा.
1: और कराची में तो सी साइड की जो है ना चीजें बहुत मजे की लगती थी.
0: हाँ, कराची अनफॉर्चुनेटली मतलब अभी पिछले कुछ सालों में ना मतलब वो डेवलपमेंट और वो सारा कुछ नहीं हो सका है, तो मतलब
1: और थोड़ा सा... अच्छा, हम लोग जो है ना अपने बचपन में वहाँ रहे हैं, तो हमने ओमान की वजह से वहाँ से शिफ्ट करना पड़ा था ना. इस तरह की कंडीशंस काफी
0: बस ये अल्लाह करे कि सारे हमारे शहर हैं और कोई भी मतलब शहर है ना वो जब डेवलप करता है तो लिटरली इतनी खुशी होती है. अभी जब मैं लाहौर का देख रही होती हूँ या मतलब और जगहों को, इस्लामाबाद अभी पिछले दिनों बड़ा हाईलाइट हुआ था, तो खुशी होती है क्योंकि पूरा मुल्क हमारा है ना. तो मतलब डेफिनेटली हर जगह अल्लाह करे
1: डेवलपमेंट हो रही है, तरक्की हो रही है, बेहतरी आ रही है, देख के अच्छा लगता है, जान के खुशी होती है.
0: बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है. मुनीब आप से बात करके बहुत अच्छा लगा, और इंशाल्लाह मतलब आज का दिन भी आप बहुत अच्छे से गुजारिएगा, इंजॉय कीजिएगा बच्चों के साथ, और इंशाल्लाह आपके बच्चों का रिजल्ट बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे से आप तैयारी करवाएं इंशाल्लाह ताला.
1: फिलहाल तो बच्चे जो है ना चिकन के शौकीन होते हैं. मटन की अच्छी अच्छी सी चीजें इन्वेंट करके, ऑनलाइन सर्च करके मामा पकाने की कोशिश करती हैं, ताकि बच्चे जो है ना वो उससे बोर ना हो और शौक से खा ले कम अज कम ईद के दिनों में. तो उसके बाद तो आपको पता है चिकन पे शिफ्ट होना ही पड़ेगा.
0: सही बात है, लेकिन चले अच्छी बात है कि आप जो है वो बच्चों के साथ मतलब ये बड़ी अच्छी चीज होती है भाई के बच्चे इन्वॉल्व भी हो रहे हैं चीजों में और सारी चीजों में, तो मजा आता है एक फैमिली लाइफ गुजारने.
1: मैंने तो अपने हस्बैंड को ये बोला था कि ना ईद का मजा ही, ईद की रौनक ही है कि आप एनिमल लेके आए. तो जस्ट एक दिन पहले शाम को लाने का वो होता था कि भाई सफाई और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बीमार ना हो जाए, गर्मी बहुत है. मैंने कहा नहीं, एक दो दिन बच्चे उसके साथ रहे, बच्चे उसके साथ वक्त गुजारें, उसको खिलाएं पिलाएं, उसके आसपास का इलाका साफ करते हुए देखें, तो वो जो एक वाइब घर में बनती है बकरा ईद की वो महसूस करें. सफाई हम मैनेज कर लेंगे, कोई मसला नहीं.
0: गुड,
1: तो बच्चे जो है ना फिर इन चीजों से ना एंजॉय करते हैं. यानी बाबा के साथ जाके मंडी से बकरा लेके आए, उसके साथ एक दो दिन गुजारे, उसके बाद सारा जो है ना सेक्रीफाइस का प्रोसेस देखा, और फिर हाइजीन का और डिस्ट्रीब्यूशन का खुद ख्याल रखे. और इस सिलसिले में तो मेरा ख्याल है कि हमारे मजहब ने बहुत बेहतरीन रहनुमाई की हुई है, कुर्बानी के गोश्त के तीन हिस्से रखे हैं आपने. मेरा ख्याल है कि मेरी काल काफी
0: बिल्कुल बहुत अच्छी आपसे बातें हुई, जबरदस्त, और ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज
1: थी. हिस्से बना लीजिए आप, तीन हिस्से बना लीजिए, एक जो है ना मुस्तहकीन के लिए, एक अपने लिए, और एक दोस्तों रिश्तेदारों के लिए. बहुत आसानी हो जाती है,
0: बहुत आसानी हो जाती है. सही बात है. और प्रॉपरली मतलब हम अभी, मैंने कुछ दिन पहले एक प्रोग्राम रिकॉर्ड कराया तहारत के हवाले से, तो सफाई के ऊपर हमारे मजहब ने इतना ज्यादा जोर दिया है, चाहे आपकी पर्सनल हाइजीन हो, आपके इर्द गिर्द की जगह, आपके घर का हो, और ये बिल्कुल कोई लग्जरी नहीं है. मतलब हमारी ना बहुत सारी जगहों पे इन चीजों को भी लग्जरी की तरह ट्रीट किया जा रहा होता है. ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका घर, आपकी जगह साफ सुथरी हो, और मतलब कम अज कम कुछ नई नहीं लेनी, लेकिन आप धुली धुलाई अच्छी चीजों का इस्तेमाल अपने घर पे करें, सफाई अच्छी तरीके से करें,
1: सफाई का एक मेंटेनेंस लेवल रखें.
0: हाँ, एग्जैक्टली,
1: साफ रखें, सिर्फ साफ करें नहीं, सफाई साफ रखें. एक मैं भी, मैं ये

0: चीज बोल रही होती हूँ कि ना साफ सफाई रोजाना एक दफा हो जाती है, उस सफाई को मेंटेन रखना सारा दिन, ये एक इम्पोर्टेंट चीज होती है।
1: बिल्कुल सही,
0: आप उस मेंटेनेंस की सफाई रखें घर में, क्लीनलीनेस का एक लेवल बनाएं अपने बारे में, अपने पर्सनल हाइजीन के मामले में या अपने घर के मामले में, और स्पेशली किचन और बाथरूम।
1: बिल्कुल सही, बिल्कुल सही,
0: सफाई का लेवल मेंटेन रखें।
1: बिल्कुल,
0: ये नहीं कि एक दफा साफ किया और छोड़ दिया, या कभी कभार साफ किया और छोड़ दिया। आपने उसको साफ रखना है, उसके लिए थोड़ा सा एक्टिव होना पड़ेगा, थोड़ा सा एफर्ट जो है ना आपको डालनी पड़ेगी बार बार, मतलब आपको उसको चेक करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप उसको लेवल को मेंटेन रखेंगे तो आपको अच्छा भी लगेगा और घर वालों की सेहत के लिए ओवरऑल बहुत अच्छी चीज है।
1: बिल्कुल, और साथ में ना अपने बच्चों को भी एजुकेट करना, घर के सब लोगों को भी बहुत जरूरी है, क्योंकि मन ये होता है एक बंदा कर रहा है बाकी सब लोग फैला रहे हैं,
0: बंदे के ऊपर
1: नहीं, है ना, वो नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सही,
0: वो तो कभी कबीर भाई की शो में उस दिन सुबह मैंने कॉल किया तो उन्होंने तो भाई रिकॉर्ड बना लिया कि भाई सारे भाइयों की क्लास हो गई है। मैंने कहा खवातीन वार्डरोब सेट करी होती है इस्त्री कर करके चीजें यूज के लिए निकालते हुए हर चीज, बस सारा पीछे जो है ना वो हो गया, और फिर वो जो है वो कबीर भाई और सारे भाइयों ने खैर से वो हमारी तो आज खूब जो है ना वो क्लास हुई है ये, और वो लोगों ने खूब जो है ना उसका
1: लेकिन ये मतलब वो होता है आदमियों का अक्सर मसला ये होता है कि वो जो है ना चीजें
0: इधर-उधर रख रहे हैं, कपड़े उतार के यहाँ वहाँ रख रहे हैं, और बस खवातीन जो है ना प्रोवाइड भी कर रही हैं, उसके बाद जो है ना सारा उनका भी खेरा भी उठा रहे
1: हैं।
0: मेरा ख्याल है कि बंदों को इस सिलसिले में इम्प्रूवमेंट की जरूरत है भाई, हम परफेक्शन की बात नहीं करते, दूसरों का ख्याल करें और इम्प्रूव करें अपनी आदत में।
1: बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अच्छा, मेरे तो मेरे दोनों बेटे हैं तो अब मैं मतलब हाँ तब तो दोनों को खासतौर पे बड़ा वाला तो मतलब माशाल्लाह मैंने उसको इतना ट्रेन कर दिया है कि अगर मैं घर पे ना हूँ तो वो आराम से खाना वाना भी पका लेगा, मतलब कोई ऐसा मसला
0: वो कहा
1: अभी माशाल्लाह से मतलब जो है वो 16 इयर्स का होना है उसने, लेकिन ये कि माशाल्लाह से वो कर लेता है, बेकिंग सारी कर लेगा और सारी। तो अब ये जो कॉन्सेप्ट हम लोगों के जहन में है ना कि लड़कियाँ ही कर सकती हैं, ऐसा नहीं है, लड़कों को भी आदी होना चाहिए भाई, मतलब उनको भी पता होना चाहिए
0: क्लीनलीनेस का ख्याल, ये उनके अंदर जो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी और उनको एज ए पर्सन जो बेटर बनाती है ना, ये उनकी तरबियत का एक हिस्सा होना चाहिए। हमारी देसी फैमिलीज में ये होता है कि फोकस ये होता है कि लड़कियों को खाना पकाना, घर की ऑर्गेनाइजेशन, सफाई से लेकर सुथराई, ये लड़कियों का काम है। नहीं, ये चीजें लड़कों को भी बेसिक लेवल पे जरूर आनी चाहिए,
1: आनी चाहिए, बहुत ज्यादा जरूरी होता है। और फिर वही वाली जो हमारी एक जो थिंकिंग बन गई है ना अब कि नहीं लड़कियां मतलब जो ना अगर लड़के ने बाद में शादी के बाद काम कर दिया तो माओं को बुरा लग जाता है कि देखो बीवी ने, ये नहीं होना चाहिए।
0: लड़का हो या लड़की, अगर आप घर के अफराद हैं तो घर को साफ रखना, घर को वेल मैनेज रखना आपका भी उतना ही उसमें जिम्मेदार, आप उतने ही जिम्मेदार हैं। एक बंदा सब कुछ साफ करता रहे, दूसरा फैलाता रहे, तो ये तो उसको तंग करने वाली बात हुई ना। अगर आप अच्छी माएं बनेंगी, आज अपने बच्चों को अच्छी तरबियत देंगी तो कल आपकी बहुएं आपको दुआएं देंगी और आपके बेटे जो है ना वो दुआएं लेंगे और उनका रिलेशनशिप अच्छा रहेगा।
1: बिल्कुल सही बात है, ये होना चाहिए, फोकस होना चाहिए, ट्रेन करें बच्चों को इसी हिसाब से।
0: बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा माशाल्लाह, आपने बेटे की बहुत अच्छी इस लिहाज से तरबियत कर रही है। और बाकी ये जो है ना, अब ये जो स्टीरियोटाइप्स पहले होते थे ना कि ये मर्दों का डिपार्टमेंट है और ये औरतों का, अब खवातीन चूंकि जॉब भी करी होती हैं तो फिर घर आके भी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज उन पे, बल्कि बच्चों की तरबियत में जो किरदार अदा कर सकते हैं, बच्चों को वक्त देना, घर के सिलसिले में जो जो है मर्द हजरात कर सकते हैं कॉन्ट्रीब्यूशन, जरूर उनको करनी चाहिए। ये इससे सिर्फ एहसास ही डिवेलप, इससे एहसास डिवेलप करें, इससे उनका रिलेशनशिप और घर का माहौल भी बेहतर होता है।
1: एग्जैक्टली, बिल्कुल ऐसे ही मनीपा, बिल्कुल ऐसे ही। मुझे भी बहुत अच्छा
0: लगा, नहीं, नहीं, नहीं,
1: नहीं यार बहुत अच्छा किया, मुझे मेरी आंखें खुल गई, मुझे नींद आ रही थी बहुत ज्यादा पहले। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, और इंशाल्लाह अब 6 बजे से मिलने वाले हैं हम आपको मंडे के रोज से, तो उम्मीद करती हूँ अगर आप दिल्ली जाती हैं तो कॉल कीजिएगा। जी जी बिल्कुल, इंशाल्लाह शामिल होइएगा जरूर। बहुत शुक्रिया मुनीबा, थैंक यू जी आपकी कॉल के लिए, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। रही जी, तो हमारे साथ ही मुनीबा, और अब मेरी वाकई मतलब फाइनली पूरी आंखें खुल चुकी हैं, मैं बेदार हो चुकी हूँ, और अब हम बढ़ते हैं एक म्यूजिकल ट्रैक की तरफ, सुन के वापस आते हैं। आप भी हमें कॉल कर सकते हैं और कॉलिंग नंबर व्हाट्सएप नंबर मैं आके बताती हूँ, अभी इंजॉय करते हैं ये ट्रैक।

0: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM107 Qatar. दिल से देसी.
1: अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु. स्ट्रे डॉग्स के लिए मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर्स ने कुछ खास प्रोटोकॉल्स रखे हैं जिन्हें फॉलो करना बेहद जरूरी है. जैसे अगर अग्रेसिव स्ट्रे डॉग से आपका सामना होता है तो मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर मशवरा देती है कि काम रहें, डायरेक्ट आई कॉन्टेक्ट से बचें और पुलिस K9 सेक्शन को 2346555 पर कॉल करें. इसके अलावा डेंजरस एनिमल्स के लिए है लॉ नंबर 10 ऑफ 2019, जिसके मुताबिक डेंजरस डॉग्स जैसे रॉटवीलर्स, डोबरमैन वगैरह या वाइल्ड कैट्स और दूसरे डेंजरस पेट्स की रजिस्ट्री करवाना बेहद जरूरी है. नॉन कंप्लायंस पर ₹1,00,000 तक का फाइन हो सकता है. इसके अलावा इंपोर्टिंग पेट्स के लिए भी मिनिस्ट्री ऑफ म्यूनिसिपैलिटी एनिमल रिसोर्सेज से वैलिड इंपोर्ट परमिट लेना जरूरी है. साथ ही वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट और माइक्रोचिप भी चाहिए.

रेजी राइट वेलकम बैक। आप सुन रहे मॉर्निंग मस्ती ईद विद आरजे मावज। ईद का तीसरा दिन, आप सब लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो ईद आज के दिन की भी। और उम्मीद है आज के दिन आप लोगों ने मुख्तलिफ प्लान्स बनाए होंगे। आज जुमे का दिन है, पहले तो ये कि जुमे की नमाज के लिए सब लोग अभी मतलब अब थोड़ी देर के बाद उठने ही वाले होंगे। 10 बजे तक उठ के फिर तैयारी वैयारी शुरू हो जाएगी। 10 बजे तक 9 बजे तक कुछ लोग अर्ली भी उठ जाते हैं, फिर छुट्टी वाले दिन भी। तो खैर जी, आप लोगों की तैयारी वगैरह चलना शुरू हो जाएगी। और उसके बाद फिर बहुत सारी जगहों पर ये होता है कि जुमे वाले दिन यूजुअली वैसे भी नमाज जहर के बाद मतलब लंच किया और लंच के फौरन बाद लोग निकल जाते हैं बाहर घूमने फिरने के लिए। तो चलिए अच्छी बात है, जो भी प्लान आपने किया हुआ है वो आप अच्छी तरीके से कर सकें। आप जहां पे जाएं आपको पार्किंग मिल जाए, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। तो इंशाल्लाह आज का दिन भी आपका अच्छा गुजरेगा, लेकिन जरूर कुछ ना कुछ प्लान कर लीजिएगा अगर अब तक नहीं किया है। कुछ ना कुछ हटकर होना चाहिए, कुछ नहीं तो भाई अपने घर पर ही कुछ अच्छा सा बना लीजिएगा। और जब बनाने की बात आ ही गई है, मैंने कर ही दी है, तो हम आ जाते हैं अपनी ब्रेकफास्ट टेबल के सेगमेंट की तरफ। और मैंने आपको 2 दिन मुख्तलिफ ऑप्शंस दिए थे आज। मैंने जैसे बताया था कि कल मैं आपको जो देखी गई थी हलवा पूरी वाला, उसके ऊपर अमल हम आज करने वाले हैं। मतलब आज जो है आलू में बॉईल करके आई हूँ, छोले बॉईल हो गए हैं, और अब जो है बाकी का प्रोसेस इंशाल्लाह ताला होगा घर जाके। पहले तो मैं आटा गूंद के रखूंगी, उसके बाद फिर हमारा नाश्ता थोड़ा सा

अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं दोहा वाला कबीर एफएम 107 पे और आप सभी सुनने वालों को ईद उल अज़हा की दिली मुबारकबाद। अल्लाह ताला हमारी कुर्बानी को कबूल फरमाए और हमारे दिलों में मोहब्बत हमेशा बनाए रखे।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें,
1: आज ही राबता करें
0: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
2: ईद की रात होगी और भी ज्यादा स्पेशल
3: स्पेशल,
2: जहां होगा नॉन स्टॉप फन, म्यूजिक और सेलिब्रेशन
3: सेलिब्रेशन,
2: क्योंकि आ रहा है शो जश्न ए ईद।
4: ईद मुबारक।
5: और होगी आपकी रिक्वेस्ट, फेवरेट सॉन्ग्स और बहुत कुछ, तो आप भी शेयर कीजिए अपनी ईद मेमोरीज, ईद सेलिब्रेशंस और बचपन की ईद स्टोरीज।
2: इस ईद उल अधा रात होगी म्यूजिक से ब्राइट और हर दिल होगा फुल ऑन फेस्टिव वाइब। तो मिस मत कीजिए जश्न ए ईद। ईद के चारों दिन रात 8 से 10 बजे तक विद आरजे नाजिया एंड आरजे फजी, ओनली ऑन एफएम 107, दिल से देसी। दोस्तों, साइबर क्राइम के खतरों से बचने के लिए हमेशा एहतियात बरतना जरूरी है। अननोन सोर्सेस से आने वाले मैसेजेस का जवाब देना या उनके लिंक्स पर क्लिक करना आपके लिए खतरा बन सकता है। हर मैसेज या ईमेल को वेरीफाई करें और सिर्फ ट्रस्टेड सोर्सेस पर ही यकीन कीजिए। अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन, पासवर्ड्स और बैंकिंग डिटेल्स कभी भी किसी अनजान शख्स के साथ शेयर ना करें। स्ट्रॉन्ग और यूनिक पासवर्ड्स का इस्तेमाल करें और अपने डिवाइसेस पर एंटीवायरस और सिक्योरिटी अपडेट्स हमेशा अप टू डेट रखें। याद रखें, आपकी अवेयरनेस ही आपकी सबसे बड़ी सिक्योरिटी है और छोटी सी एहतियात आपको बड़े नुकसान से बचाती है। साइबर क्राइम से महफूज रहने के लिए होशियारी और एहतियात को अपनी आदत बनाएं। FM 107 आपको याद दिलाता है कि धोखेबाजी से हमेशा होशियार रहना है।
0: FM 107 पेश करते हैं ईद स्पेशल शो ईद की धुन, और इस मौसीकी भरी महफिल की मेजबानी कर रही हैं आपकी अपनी ए फॉर अमिता। सुपरहिट नगमे हो या ईद की दिलचस्प और अनोखी बातें, ए फॉर अमिता बनाएंगी आपकी ईद को और भी यादगार। तो रास्ते के ट्रैफिक में हो या घर पर दोस्तों के साथ, ईद की धुन से हम बदल देंगे आपका मूड। तो सुनिए ईद की धुन ईद के चारों दिन ए फॉर अमिता के साथ शाम 4 बजे से सिर्फ FM 107 पर।

जिमी खान की आवाज में आपने ये ट्रैक एंजॉय किया और हम एक दफा फिर से आ गए यहाँ FM 107 पे. और अब मैंने सोचा कि मैं आपसे क्या बात करूं, तो मेरे जहन में आया कि मूवीज के बारे में बता देते हैं. कल हमें अमजद इकबाल ने बताया था कि 3 मूवीज लगी हुई है, तो मैं तीसरे के बारे में श्योर नहीं थी कि कौन सी मूवी है. एक मैंने फरहान सईद वाली देखी थी लेकिन उसका भी मुझे नाम नहीं पता था, तो मैं आपको बताती चलूं कि पाकिस्तानी मूवीज अगर आप लोगों ने देखनी है तो उसके लिए 3 मूवीज यहाँ पे अवेलेबल है. और फरहान सईद और ममिया की जो मैं बात कर रही थी कल मूवी की, जिसका नाम मुझे नहीं पता था, तो उसका नाम लव दी सॉन्ग. अच्छा, ये लव दी सॉन्ग जो है ये लगी हुई है यहाँ पे. अच्छा, मैंने जो इसका ट्रेलर देखा तो मेरे लिए इतना इंप्रेसिव नहीं था, ये भी मैं साथ साथ बता दूं, लेकिन हो सकता है कि आपको जब देखें तो ट्रेलर से हटकर कुछ कहानी हो, मतलब कुछ और हो. तो अगर देखना चाहें तो एक रोमांटिक फिल्म है, अगर आप देखना चाहते हैं तो ज़रूर जाके आप देख सकते हैं, इस वक्त अवेलेबल है. इसके साथ ही रही मीरा जी की मूवी लगी हुई है यहाँ पे, साइको, और मीरा है इसमें, इसके साथ शान शाहिद भी हैं, कास्ट अच्छी है, सोनिया हुसैन है, जावेद शेख भी हैं, तो ये भी एक ऑप्शन आपके लिए हो सकता है. मीरा काफ़ी अच्छी इसकी प्रमोशन वगैरह करती पाई गई है, तो अगर आप देखना चाहते हैं साइको तो आप ये भी देख सकते हैं. मैं जिसमें पर्सनली इंटरेस्टेड हूँ, मैं देखना चाहती हूँ, अभी मुझे मौका नहीं मिला, लेकिन अगर देख ली तो फिर मैं आपसे कल शेयर करूँगी. वो है जोम्बीट फहद मुस्तफ़ा की, ये मुझे अच्छी लग रही है और काफ़ी, मतलब मैं देख रही हूँ, मुझे नहीं पता कि प्रमोशन के हवाले से अभी तक तारीफ हो रही है या फिर वाकई अच्छी मूवी है. देख लूँगी तो फिर मैं आपको इसका सही तरह से रिव्यू दे सकूँगी. नबील कुरैशी ने डायरेक्ट की है और इसमें फहद मुस्तफ़ा है, और फहद मुस्तफ़ा का वैसे एक रिकॉर्ड है कि अगर देखा जाए ना, कि दोबारा से जब से रिवाइवल हुआ है पाकिस्तानी सिनेमा का, तो सबसे जो एक्टर ऐसे हैं जो कि रहे हैं, मतलब टॉप ऑफ द लिस्ट, या जिन वो एक्टर जिनकी सारी मूवीज़ तकरीबन, मतलब जो है वो कामयाब हुई हैं बॉक्स ऑफिस पर, वो फहद मुस्तफ़ा ही हैं और ये देखभाल के काम करते हैं. तो उम्मीद है फहद मुस्तफ़ा, महवेश एहसन मुराद इसमें हैं, और टॉपिक भी ज़रा कुछ हटकर है, मतलब कह रहे हैं कि हॉलीवुड स्टाइल कुछ मूवी बना ली है काफ़ी हद तक, तो देखते हैं. मतलब ये इसका अभी सुनने में तो रिव्यूज़ अच्छे आ रहे हैं, तो मैं आपको अगर देख ली तो मैं बताऊंगी, अगर नहीं देखी तो रिव्यूज़ देख कर ही बताऊंगी आने वाले दिनों में कि क्या सीन है इसका. तो ये भी लगी हुई है, अगर आपने देखनी है जोम्बी, जैसे नाम से जाहिर है कि इसमें जो है ना जोम्बीज वगैरह जो हैं वो आएंगे, और वो कैसे आएंगे, कोई वायरस फैलेगा, क्या होगा, उसके बाद क्या सिलसिला रहेगा, किस तरह की भगदड़ मचेगी शहर में, तो ये जो है फिल्म बेसिकली इसके ऊपर बेस करती है. और कैसी बनाई है ये, एक मतलब क्योंकि मुश्किल टास्क तो है डेफिनेटली, इस तरह के कॉन्सेप्ट हम यूजुअली हॉलीवुड वगैरह में ही देखते हैं, तो अगर तो अच्छी होती है तो गुड, ज़बरदस्त, और अगर नहीं होती है तो चले, मतलब एक कोशिश तो की ना, मतलब सही इम्प्रूवमेंट के चांसेस होते हैं. अच्छा, इसके अलावा अगर, मतलब ये है उर्दू मूवीज़, ये 3 ही उर्दू मूवीज़ यहाँ पे लगी हुई हैं, उर्दू हिंदी जिसे आप कह सकते हैं, बाकी मैंने जितनी देखी हैं वो साउथ की हैं, तमिल, मलयालम. बॉलीवुड ने मेरा ख्याल इस दफ़ा कोई भी मूवी जो है उनकी रिलीज़ नहीं हुई है ईद के मौके पर, तो ये आपके पास वाहिद, मतलब वाहिद तो नहीं, 3 ऑप्शन हैं उर्दू हिंदी सिनेमा देखने वालों के लिए. इसके अलावा जो लोग अभी तक, मतलब लोग बहुत एक्साइटेड हैं देखने के लिए, वो है माइकल. माइकल अभी तक अवेलेबल है, और ख़ासतौर पे जो टीनेजर्स, मतलब बच्चे हैं, वो एक क्रेज़ माइकल जैक्सन का ना, ये एक अलग सी बात है. माशाल्लाह कहना चाहिए नहीं कहना चाहिए, खैर मतलब निकल गया मुंह से, लेकिन ये अजीब सी बात है भाई कि माइकल जैक्सन का क्रेज़ ऐसा है कि वो बच्चे जो कि मेरा ख्याल है डेथ के बाद पैदा हुए होंगे, उनके ऊपर भी क्रेज़ है. थोड़ा बहुत भी जिसने म्यूज़िक सुना है तो उसके ऊपर माइकल जैक्सन का जो है ना एक अलग सा, मतलब पसंद करते हैं लोग, और इस वक्त टीनेजर्स काफ़ी, मतलब जो इंटरेस्टेड हैं देखने जाने के लिए, तो माइकल भी इस वक्त आपके लिए मौजूद है. फिर और बहुत सारी मूवीज़ हैं, स्टार वॉर्स है, और भी बहुत सारी. तो अगर आपने ईद पे थोड़ा सा कुछ हटकर करना हो, मतलब हम लोग भी इसलिए मूवी देख लेते हैं कि आम दिनों में तो नहीं देखते, तो चलो मतलब ईद के दिनों में कोई अगर मूवी आई हुई है तो एक याद रह जाती है, ये फला साल हमने फला मूवी देखी थी, तो ईद भी याद रह जाती है इस तरह से. तो अगर देखने में इंटरेस्टेड हैं तो आप, मैंने ये जो मूवीज़ के ऑप्शन बताए ये आप देख सकते हैं, जाके इंजॉय कर सकते हैं अपनी फैमिली के साथ. और इसके साथ ही साथ अब बस मेरे जाने का ही वक्त हो गया, मैं देखती हूँ कि अगर हमारे पास कोई आता है मैसेज वगैरह, 666-22107 पे आप हमें मैसेज कर सकते हैं, साथ ही 444-344-377 पे आप हमें कर सकते हैं कॉल. अगर कोई कॉल आ जाती है तो हम लेते हैं कॉल, वरना फिर हम बढ़ते हैं एक म्यूजिकल ट्रैक की तरफ. मेरा ख्याल है म्यूजिकल ट्रैक की तरफ बढ़ते हैं और इंजॉय कीजिए ये जबरदस्त ट्रैक. वापस आती हूँ थोड़ी देर में.

0: आपने सुना हमें ऑन एयर. नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम एट FM 107 कतर. दिल से देसी.
1: कहीं बिरयानी की खुशबू तो कहीं शीर खुरमे की मिठास, कहीं दोस्तों का हल्ला गुल्ला तो कहीं बुजुर्गों की दुआएं. ईद के रंग हजार हैं, मगर हर रंग सजता है अपनों के साथ. इसलिए इस बार हमने सोचा क्यों ना ईद आपके घर चलकर मनाई जाए. पेश है खास शो घर घर ईद. आपकी फरमाइश, आपकी बातें और ईद के वो किस्से जो आपने पहले कभी नहीं सुनाए. हम बनेंगे आपकी खुशियों के साथी, ताकि हर घर मुस्कुराए और हर दिल गुनगुनाए. तो हो जाइए तैयार, सुनिए घर घर ईद ए फॉर अमिता और आरजे सरवर मिर्जा के साथ ईद के चारों दिन सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक सिर्फ FM 107 पर.
2: इस ईद सिर्फ कबाब और दावतें नहीं, सेहत का भी ध्यान रखना है. जानिए कैसे आप एंजॉय कर सकते हैं अपनी पसंदीदा डिशेस बिना गिल्ट के. इबादत और अपनों के प्यार के साथ स्मार्ट तरीके से सेलिब्रेट करें ईद के दूसरे और चौथे दिन शाम के 7:15 से. सुनिए हमारे स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मोहम्मद अमीन को इन द शो फिट एंड फेस्टिव, जहां ईद एंजॉय करेंगे फिटनेस के साथ.
3: सुन रहे हैं मॉर्निंग

0: मुलाकात होती है कल के रोज, तो अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा और अपने से वाबस्ता लोगों का ख्याल रखिएगा। ईद एक दफा फिर से आप लोगों को मुबारक। कल आपसे मिलते हैं ईद के चौथे दिन पे सेम टाइम यानी 7 से 9 ओनली ऑन एफ एम 107 विद मॉर्निंग मस्ती ईद। तो चलें जी, मैं कहती हूँ आपको अल्लाह हाफिज़ एंड बाय बाय, ईद मुबारक।
1: आप सुन रहे हैं मॉर्निंग।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें,
1: आज ही राबता करें
0: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 448-88-8806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।

Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Main hoon Nazia FM 107 se and welcome to our segment called Eid Values. Dosto, Eid ul Adha hamein sirf qurbani ka sabak nahi deti balki ye bhi sikhati hai ki hum apni ibadat is tarah se ada kare ki dusre insaan, community ya religion ko takleef na ho. Jiya Islam hamesha balance, respect aur cleanliness ka paigham deta hai. Isliye qurbani sirf ek religious act nahi hai balki ek responsible aur ethical act bhi hai. Aaj ke maashre mein jahan mukhtalif religions aur cultures ke log ek saath rehte hain, ye bhi zaruri ho jata hai ki hum apne celebrations aisi jagah aur is tarike se karein jahan dusron ke jazbaat ka khayal rakha jaye. दोस्तों, ईद उल अदा का असली रूह, इसका जो कोर वैल्यू या कोर मैसेज जो है वो ये कि हम इंसानियत को समझें, सिर्फ अपनी खुशी पर फोकस ना करें बल्कि दूसरों की फीलिंग्स का भी एहतराम करें. कुर्बानी करते वक्त सबसे पहला ख्याल ये होना चाहिए कि ये काम प्रॉपर जगह पर हो, ऐसी जगह जहां पब्लिक डिस्टरबेंस ना हो और ना ही लोगों को किसी भी तरह की कोई स्मेल आए या फिर गवर्नमेंट, वैसे तो गवर्नमेंट जो है वो अपने तौर पे सारे इंतजाम करती है, लेकिन हमें और आपको भी ख्याल रखना है कि एनवायरमेंट भी किसी तरह से मुतासिर ना हो, किसी भी तरह से एनवायरमेंट को भी जो है वो डिस्टर्ब ना किया जाए. देखिए, वैसे तो सिटी में कुछ डिजिग्नेटेड एरियाज होते हैं जहाँ पर जाकर कुर्बानी की जाती है, इस अमल को अंजाम दिया जाता है और ये हम सब की मुश्तरका जिम्मेदारी भी है. लेकिन सफाई की अगर मैं बात करूँ पर्टिकुलरली, तो जो लोग अपने घरों में कुर्बानी करवाते हैं वो अक्सर सफाई है उसको उस तरह से उसका ख्याल नहीं रख पाते. मुझे कहना चाहिए कि सफाई का ख्याल रखना भी बहुत जरूरी है क्योंकि इस्लाम में जो है वो सफाई को बहुत ज्यादा अहमियत दी गई है. सफाई आधा ईमान है. कुर्बानी के बाद अगर हम सफाई का ख्याल नहीं रखते हैं तो हम ना सिर्फ अपने एनवायरमेंट को नुकसान पहुंचाते हैं बल्कि अपने रिलीजन की इमेज को भी अफेक्ट कर रहे होते हैं. सोचिए थोड़ी देर के लिए, अगर स्ट्रीट्स पर यू नो लेफ्ट ओवर्स रह जाएं, ब्लड या वेस्ट प्रॉपरली डिस्पोज ना किया जाए, तो ये सिर्फ अनहेल्दी नहीं है बल्कि दूसरों के लिए अनकंफर्टेबल भी होता है. इसीलिए दोस्तों, ये जरूरी है कि हम कुर्बानी के बाद प्रॉपर क्लीनिंग करें या करवाएं, वेस्ट को सही जगह डिस्पोज करें या करवाएं और अपने सराउंडिंग्स को क्लीन और हाइजीनिक रखें. ईद का एक और इम्पोर्टेंट पैगाम है रिस्पेक्ट. हर इंसान अपनी जगह अपने बिलीव्स के साथ जिंदगी जीना चाहता है. जब हम दूसरों के रिलीजियस वैल्यूज की रिस्पेक्ट करते हैं तभी हम अपने वैल्यूज से उन्हें कुछ सिखाते हैं और अपने रिलीजन को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं. ये जरूरी है कि हम अपनी खुशी को इस तरह एक्सप्रेस करें कि किसी को तकलीफ ना हो, चाहे वो आपका नेबर हो या आपका कलीग है या कोई दूसरी कम्युनिटी का कोई भी शख्स. रिस्पेक्ट और टॉलरेंस, ये दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है और ये दो चीजें वो चीजें हैं जो सोसाइटी को स्ट्रॉन्ग और पीसफुल बनाती हैं. दोस्तों, अगर हम ईद उल अधा को सिर्फ एक रिचुअल समझकर परफॉर्म करते हैं तो हम उसके असल पैगाम को मिस कर देते हैं. लेकिन अगर हम इसे एक रिस्पॉन्सिबल और रिस्पेक्टफुल एक्ट के तौर पर देखें तो ये हमारी पर्सनालिटी और सोसाइटी दोनों को बेहतर बनाती है. आखिर में यही कहूंगी कि ईद उल अधा हमें ये सिखाती है कि इबादत सिर्फ अल्लाह के लिए नहीं होती लेकिन अल्लाह के साथ साथ बंदों के लिए भी है. उनका ख्याल रखना, इंसानियत को जिंदा रखना. कुर्बानी का असल मकसद ये नहीं है कि हम सिर्फ जानवर ज़िबा करें बल्कि ये है कि हम अपनी सोच, अपने रवैये और अपनी जिम्मेदारी को समझें और आसपास सफाई का ख्याल रखें, दूसरों के जज्बात का एहतराम करें और अपनी कुर्बानी को रिस्पॉन्सिबल तरीके से अदा करें. ईद तभी मुकम्मल होती है जब उसमें रिस्पेक्ट हो, क्लीनिनेस हो और इंसानियत का रंग हो. दोस्तों, इस ईद उल अदा सिर्फ कुर्बानी ना करें बल्कि अपने वैल्यूज को भी शोकेस करें ताकि दुनिया देखे कि इस्लाम सिर्फ इबादत नहीं बल्कि इंसानियत और एहतराम का भी पैगाम देता है. इसी खूबसूरत लाइन के साथ अब मैं आपसे इजाजत लूंगी. मुझे और शकीब अहमद को इजाजत दीजिए. देखते हो सुनते रहिए FM 107 दिल से.

में आज हम बात करेंगे खास स्पोर्ट्स पर्सन के बारे में ऑन स्पोर्ट्स हाइलाइट्स. वन ऑफ द लीडिंग बास्केटबॉल प्लेयर्स ऑफ द वर्ल्ड कोबी ब्रायंट. कोबी ब्रायंट को दुनिया ब्लैक मम्बा के नाम से जानती है. कोबे सिर्फ एक बास्केटबॉल प्लेयर नहीं थे बल्कि मेहनत, जुनून और डिटर्मिनेशन की जिंदा मिसाल थे. उन्होंने अपना पूरा करियर NBA की मशहूर टीम लॉस एंजलिस लेकर्स के साथ गुजारा और वहीं अपनी लाजवाब पहचान बनाई. कोबी ब्रायंट ने 20 साल के करियर में 5 NBA चैंपियनशिप्स जीती और कई मरतबा ऑल स्टार टीम का हिस्सा बने. उनकी स्कोरिंग एबिलिटी, क्लच मोमेंट्स में परफॉर्मेंस और प्रेशर में काम रहना उन्हें बाकी प्लेयर्स से मुख्तलिफ बनाता था. 81 पॉइंट्स का हिस्टोरिक मैच आज भी NBA की हिस्ट्री के यादगार लम्हों में शुमार होता है. मम्बा मेंटालिटी कोबे का सबसे बड़ा लेसन था जो ये सिखाता है कि हर दिन को बेहतर बनाने के लिए भरपूर मेहनत और फोकस जरूरी होता है. बास्केटबॉल कोर्ट के बाहर भी कोबे ने लिखाई, फिल्म मेकिंग और यंग एथलीट्स की रहनुमाई में अपना किरदार अदा किया. दोस्तों 2020 में उनकी अचानक वफात ने स्पोर्ट्स दुनिया को गहरा सदमा दिया लेकिन उनकी लेगेसी हमेशा जिंदा रहेगी. कोबी ब्रायंट हमेशा बास्केटबॉल और स्पोर्ट्स हाइलाइट्स का रोशन चैप्टर रहेंगे. उम्मीद है आपको आज का ये स्पोर्ट्स हाइलाइट पसंद आया होगा. अगली बार एक और स्पोर्ट्स स्टार के साथ हम हाजिर होते हैं. तब तक के लिए मुझे यानी मोहम्मद अमीन और साउंड डिजाइनर शकीब अहमद को दीजिए इजाजत. अल्लाह हाफिज़.

0: FM 107 की पूरी फैमिली की तरफ से हमारे तमाम सुनने वालों को ईद उल अदा की दिल की गहराइयों से मुबारकबाद। FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें,
1: आज ही राब्ता करें
0: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
2: FM 107 टाइम चेक।
3: हेलो हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, ईद मुबारक भाई, ईद मुबारक। आज तीसरा दिन है और अभी हमारे स्टूडियो क्लॉक कह रही है सुबह के 10:01 हो चुके हैं, यानी कि शुरुआत हो चुकी है।
0: आप सुन रहे हैं घर घर ईद, ए फॉर अमिता और सरवर मिर्जा के साथ सिर्फ FM 107 पर, दिल से देसी।
4: हाँ जी, वेलकम, अहलन वसहलन, खुश आमदीद, स्वागतम एंड ईद मुबारक सभी को, बहुत बहुत। ईद का तीसरा दिन आ गया अमिता, और लग ही नहीं रहा कि भाई अभी ये तीसरा दिन है, लग रहा पहला ही दिन है। सेलिब्रेशन इतनी हाई है भाई, इतनी ऑन है कि पता ही नहीं चल रहा कि तीसरा दिन हो गया, और साथ में अफसोस भी थोड़ा बहुत कि ईद जा रही है, सेलिब्रेशन जा रहा है, छुट्टियां जा रही है। बहरहाल अल्लाह ताला सभी के सारे अमालों को कबूल फरमाए, कुर्बानियों को कबूल फरमाए। आप लोगों ने जो अच्छे अच्छे, हम सब ने, आप लोगों ने क्यों, हम सब एक दूसरे को इंक्लूड करें दुआओं में, अल्लाह ताला खूब खूब खूब सबको बरकतों से नवाजे, और इंशाल्लाह ताला इसी तरीके से आगे खूब सारी ईदें जो हैं हमें मिलती चली जाएं।
3: एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। और मुझे लगता है कि ये जो ईद वीकेंड में पड़ती है ना, अगर देसी देसी दिल की बात करें तो सबको लगता है काश वीकेंड के अलावा पड़ी होती तो लंबा वीकेंड,
4: दो दिन और मिल जाते एक्चुअली छुट्टी के। तो बहरहाल अभी तो है बाकी है, इंशाल्लाह ताला कल का भी दिन है, कल भी मैं और अमिता और FM 107 की जो टीम है इस वक्त आपके साथ जुड़ी हुई है, सेलिब्रेशन को और भी दोबाला करने के लिए, दुगना करने के लिए, डबल करने के लिए इंशाल्लाह ताला हाजिर होते ही रहेंगे। आज भी मैं और अमिता आप लोगों के लिए लेकर आए हैं गुनाइदन रेस्टोरेंट से पूरे 500 कतरी रियाल के दो दो वाउचर,
3: दो दो

0: वाउचर एंड डेफिनेटली आप इसे जीत सकते हैं बड़े सिंपल तरीके से. आज हमने सोचा कि क्यों नहीं, अब ईद एकदम थोड़ा कहते हैं ना अपने मुकाम पर पहुंच चुकी है
1: और खा पी लिया है बहुत सारा,
0: थोड़ा सा म्यूजिकल हो जाते हैं, थोड़ा म्यूजिक एंजॉय करते हैं, तो हमने मतलब कुछ ऐसा पहेलियां भी निकाली, रिडल्स भी है हमारे पास, लेकिन हमने सोचा कि क्यों नहीं कुछ गाने आपके लिए प्ले करेंगे, मतलब चाहे वो शुरुआत से हो एंड से हो, बस आपको करना है इतना कि गाना पहचानना है कि गाना कौन सा है, सिंपल एज दैट. और उसके लिए आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं 6622107 पर, 6622107 इस पर मैसेज करें, और कॉल करने के लिए हमारा नंबर है 4434377. आई रिपीट 4434377.
1: बिल्कुल भाई, अब से थोड़ी सी देर में इंशाल्लाह ताला ये लाइंस जो हैं खुलने वाली हैं, टेलीफोन लाइन जो है वो भी हम खोलने वाले हैं आप लोगों के लिए, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा शिरकत कर सकें प्रोग्राम के अंदर. आपका अपना प्रोग्राम है जहां पर आप 500 रियाल के दो वाउचर जो हैं वो जीत सकते हैं. पहले घंटे में हम पहला विनर बनाने वाले हैं और दूसरे घंटे में दूसरा विनर, इस तरीके से हमने उसको बांट दिया है, डिवाइड कर दिया है. अब करना बस यही है कि जैसे कि अमिता ने बताया कि आपने आना है, तशरीफ लानी है,
0: yes.
1: गाने सुनने हैं, बताने हैं और भैया लाभ उठाना है 500 कतरी रियाल के गिफ्ट वाउचर का.
0: Absolutely.
1: तो क्या कहती हैं अमिता, बाकायदा आगाज कर दिया जाए, पहला नगमा चला दिया जाए.
0: बिल्कुल, पहला नगमा चलाए, शानदार गाना. अब भाई तैयारी शायरी तो बनती है आज के टाइम पर.
1: भाई बनती है, बिल्कुल बनती है. तो गुरु रंधावा, अर्जुन, रजत नागपाल एंड इंटेंस

0: 107 पर हर गाना हिट,
1: हर गाना हिट,
0: हर दूसरा गाना सुपर हिट।
2: आप सुन रहे हैं घर घर ई ए फॉर अमिता और सरवर मिर्जा के साथ सिर्फ FM 107 पर दिल से देसी।
3: यस जनाब, देसी ऑडियंस, जुम्मे का दिन है भाई, कहाँ है कहाँ है। बहुत बड़ा इस्तकबाल है आप सभी का ऑन FM 107 पर हमारे स्पेशल शो घर घर ईद पर। आज ईद का तीसरा दिन और हमारे साथ आपको जुड़ना है ताकि हम यहाँ पर सवाल पूछें। बड़े म्यूजिकल सवाल आए हैं क्योंकि आप जीत सकते हैं गुनाइदिन रेस्टोर के 500 कदरियाल के गिफ्ट वाउचर। कोई हमारे साथ जुड़ा सर्वर, अस्सलाम वालेकुम।
4: हला
5: हला हला,
3: खैर मुबारक।
5: कैसे हैं और कौन है हमारे साथ?
4: अल्हम्दुलिल्लाह, मैं हूँ, वो तो नाम पता चल जाएगा बाद में।
3: मैं हूँ डॉन। कौन आया है, कौन आया हमारे साथ, नाम बताएं प्लीज।
4: हम सर्वर भाई, लास्ट में पता चल जाएगा।
5: मैं भी इधर, सर्वर इधर भी और सर्वर उधर भी।

0: दोनों जगह सरवर
1: सरवर तो एक ही
0: हाँ
1: वो खाने में मशहूर
0: है। अजी हाँ, अब मुझे लगा शायद सिस्टम चलाने में मशहूर है जो कंप्यूटर चलाता है सरवर। अरे नाम तो बताइए वाकई, क्योंकि लिखना पड़ेगा हमें वरना कैसे जीतेंगे।
1: मैं कुछ नहीं बोलूंगा।
2: नसीम भाई बोलेंगे तो कैसे गिफ्ट मिलेगा ये तो बताएं।
0: मेरे ख्याल में नसीम भाई हमारे साथ जी और क्या हाल है नसीम भाई, कैसी रही ईद, कैसा रहा तीसरा दिन, कैसा शुरू हुआ और दो दिन कैसे गुजारे, कहाँ थे आप, बात ही नहीं हुई आपसे।
1: अल्हम्दुलिल्लाह बात होती रहती थी।
2: देखिए सरवर यहाँ कुछ भूल रहे हैं लगता है, हम नसीम भाई बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहे हैं बात तो होती रहती।
0: अच्छा,
2: थी।
0: अच्छा मतलब पहले आए आप, हिस्सा लिया आपने प्रोग्राम में?
1: हिस्सा तो लिया हूँ लेकिन फोन पे नहीं,
2: व्हाट्सएप के जरिए लिया है डेफिनेटली। अच्छा, यस इनका नाम शामिल किया है हमने कई बार।
0: तो भाई नसीम भाई के लिए भी और तमाम सुनने वालों के लिए भी इस वक्त हम एक धुन प्ले करने जा रहे हैं और आपने क्या करना है उस धुन को पहचानना है।
2: यस गाना पहचानना है तो नसीम भाई
1: हाँ गाना नहीं पहचान।
0: अच्छा गाना नहीं
2: पहचान, गाने नहीं पहचान पाएंगे।
0: बहुत आसान गाना,
2: ट्राई तो कीजिए,
0: सुनाता हूँ मैं। देखिए देखिए ये ये ये ये
1: सरवर भाई आपके लिए।
0: हाँ ये आपके लिए। आहा
1: काला चश्मा।
2: अरे भाई साहब लगता है क्या काला चश्मा है।
0: हाँ पहने हुए, मेरे ख्याल में इस वक्त पहने हुए भी है मुझे लग रहा है। हाँ बताइए नसीम भाई,
1: आपके लिए एक शेर है।
0: शेर है? अरे भाई क्या बात है, बिल्कुल छोड़िए।
1: ठीक है मैं
0: इरशाद इरशाद
2: इरशाद इरशाद
0: शेर हो चीता हो आज सब वेलकम है। तेरे
1: तुमसे बात करने को मैं बेचैन था।
0: बेचैन था
1: तेरी बेरुखी ने मुझे नाउमीद कर दिया।
0: आए, ओ, हाए, हाए,
2: हाए। ये कोई इशारा है क्या?
0: मगर ये कहा यार नसीम भाई ऐसा ऐसा क्या यार, मैं तो नसीम भाई से कितनी मोहब्बत करता हूँ ये तो जग जाहिर है।
1: ये ईद के दिन की तरफ इशारा है, मैं कई बार ट्राई किया फोन जो है पिकअप नहीं हो पाया।
2: अच्छा एक्चुअली नसीम भाई फोन लाइन हमारी व्यस्त होगी इस वजह से आपका कॉल नहीं लगा, लेकिन सोचे आज कितना सही मुबारक दिन है कि आप हमारे साथ जुड़ चुके हैं और आपने कहा था कि गाना नहीं पहचानेंगे, आपने तो गाना भी पहचान लिया।
0: क्या कहने क्या कहने।
2: यस
0: चलिए भाई बहुत बहुत हाँ हाँ जी नसीम भाई।
1: बिरयानी बची है कि
0: अभी बस अब उसको अब बासी हो गई ना, अब नहीं बनेगी अब। एंजॉय कीजिए और आपका नाम जो है हमने लिस्ट में लिख लिया है। नसीम भाई अब इंशाल्लाह ताला प्रोग्राम को आखिर तक नहीं, ये तो पहले एक घंटे में ही सुनिएगा आप,
2: पता चल जाएगा कि इस घंटे
0: पहले विनर कौन है। ठीक है नसीम भाई, ओके बाय बाय बाय बाय। तो भाई ये थे नसीम भाई हमारे साथ और यहाँ पर आज अमिता जो है कह रही किचन बंद है, गाने जो हैं आज आपके लिए खासम खास लाए गए हैं।
2: और अभी हमारे साथ कोई जुड़ चुका है, अस्सलाम वालेकुम। हेलो
3: जी, वालेकुम सलाम जनाब, ईदियां बहुत बहुत मुबारक
2: आपको भी मुबारक। गावा की एंट्री हो चुकी है, क्या बात है गावा साहब, कैसे हैं आप?
3: जी बहुत बढ़िया मैडम, आज जिस तरीके से आप लोगों ने ना
2: हाँ जी
3: आँखों के ओशियन में डुबा के ना स्लो मोशन में आज आप दोनों ने एंट्री की है।
0: गावा, गावा, गावा, गावा। यकीन तो आपकी हर बात का मान रहा हूँ मैं। सुनिए आपके लिए शेर है, आपके बोलने से पहले आपके लिए शेर है। काली रातों को भी रंगीन कहा है मैंने।
3: ओके
0: काली रातों को भी रंगीन कहा है मैंने, तेरी हर बात पर गाबा आमीन कहा है।
2: ओए होए
3: आमीन, ओए होए होए,
2: क्या बात है, क्या बात
0: है। कैसे हैं गाबा भाई और कैसी हुई आज की सुबह?
3: सर क्रिकेट में तो सिक्सर होता है, मेरे को लगता है अभी आपने ये जो शेर सुनाया ना इतना धांसू,
0: हाँ
3: इसके बाद अठे की भी एंट्री हो जाएगी।
0: अठहत्तर अच्छा अठे अठहर अठहर
2: अठहर की एंट्री, चलो ठीक है हो गई फिर।
0: क्या बात है भाई, तो गाबा भाई रेडी है गाना पहचानने के लिए? सुना दूं
3: सरवर भाई, वो मैं रेडी हूँ, एक रिक्वेस्ट है आपसे पहले।
0: दो करिए
3: जी सपोज इन केस मैंने नहीं पहचान पाया अनफॉर्चुनेटली, तो मैं मैसेज से पार्टिसिपेट कर सकता हूँ ना?
2: बिल्कुल कर सकते हैं, ये मैसेजेस के थ्रू हमने ओपन रखा ही है कि अगर आप कॉल पे, क्योंकि हम यहाँ पर गाने नॉनस्टॉप प्ले करते रहेंगे, जैसे आप हैं और भी लिसनर हमारे साथ कॉल पे जुड़ेंगे, और तो वो अगर जो कॉल नहीं कर पा रहे वो मैसेज के जरिए डेफिनेटली आंसर दे सकते हैं।
3: चलिए ठीक है, मैं ट्राई करूंगा, अगर हो गया ठीक है, तो नहीं तो मैं फिर मैसेज में ट्राई।
2: बिल्कुल बिल्कुल ट्राई कर सकते हैं। हाँ जी,
0: सुना दो फिर। डबल रेडी?
3: जी
0: ओके।
4: मांडो ना वजदी हो लाके बारिशिन,
3: ये तो बहुत आसान है सर।
2: अरे अरे अरे अरे
0: अरे, इसलिए तो सुनाया है आपको यार।
4: गुलाबी शेरदार
3: रंग है फिर रंग
4: रखी तू सबके।
2: ओके बताएं गाना कौन सा है
3: ये? मैडम लाभ जंजुए का है।
2: हाँ हाँ, लाभ जंजुए का। ओह वेरी नाइस वेरी नाइस, आपका जवाब नोट कर लिया गया है। लेट्स सी कि आप लकी हुए तो फिर तो भैया हमारा गुनाइदन रेस्टोरेंट को ही मिलेगा, क्या कहते हैं?
0: लकी भाई हो जाएंगे उसके बाद आप, गावा भाई के बाद, ठीक है?
3: मेरे साथ में तीन बंदे और लकी होंगे सर्वर भाई।
2: तीन बंदे,
3: मैं अपनी कमिटमेंट पे खड़ा हूँ अभी भी।
2: ओहो,
3: शायद आप भूल गए सर्वर भाई।
0: अच्छा, मेरे ख्याल में बात हमें ले जाने की हो रही है उस रेस्टोरेंट।
3: Yes. नादिया जी को
2: क्या बात है, तीन बंदे ऑलरेडी इन्होंने सेट कर रखे हैं गावा जी ने।
0: Yes. अमिता नादिया तो वैसे Yes. कुछ नहीं खाते हैं।
3: सर मेरी वाइफ भी वैसी है।
0: अब आगे मैं क्या कहूँ,
3: हम दोनों ही हैं।
2: देखे जरा मतलब सिर्फ नाम
0: इनको घर पे बैठा देंगे गावा भाई, हम दोनों हो गए आएंगे।
3: हम दोनों
2: हो के आएंगे,
3: चलो इनको
0: शॉपिंग मॉल में छोड़ देंगे। शुक्रिया गावा भाई हमारे साथ जुड़ने के लिए, ईद मुबारक एंड थैंक यू सो मच।
2: थैंक यू सो मच,
3: थैंक यू, टेक केयर।
0: वेलकम वेलकम भाई, गावा भाई हमारे साथ, और देख रहे हैं आप कितना आसान बना दिया।

0: पर
1: कोई और भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम सलाम अमिता सर्वर, कैसे हैं आप?
1: बिल्कुल मस्त है। ये आवाज थोड़ी सी पहचानी सी लग रही है।
2: जी मैं इसरा बात कर रही हूँ।
1: यस इसरा,
0: क्या बात है भाई?
2: कैसे हैं आप?
0: कैसी?
1: बहुत खैरियत खैरियत, बिल्कुल मजे में है इसरा। बिल्कुल आपकी आवाज में एक्साइटमेंट एक अलग ही सुनाई देती है।
2: तो आज बहुत ज्यादा जी जी, सुबह आज फ्राइडे है।
1: हाँ जी,
2: तीसरा दिन है, इसका क्यों ना खुश हो हम लोग।
1: वाह क्या बात है। तो आज की क्या खासियत है ये बताएं, क्या क्या होने वाला है, क्या प्लानिंग है?
2: आज की खासियत है कि सुबह मैं उठी हूँ, अब बच्चों को तैयार करके हमने आज बच्चों का दिन है। आज बच्चे भी सुबह उठ गए कि आज मम्मा आज हमारा दिन है, तो आप हमें लेके जाना है। तो आज हम सारे मिलकर स्विमिंग पे जा रहे हैं।
1: ओ वाओ, ये कमाल चीज है। पर थोड़ा ध्यान रखिएगा स्विमिंग में, थोड़ा सा क्योंकि गर्मी बड़ी होती
2: जी,
1: है।
2: जी जी जी, हम सरोवर भाई को सुनते रहते हैं कि ध्यान रखें ये करें, तो हम सुनते रहते हैं सरोवर भाई को।
0: अच्छा, बस यही सुनना ही है सरोवर भाई जो कह रहे हैं बिरयानी, चिकन कौरमा, चिकन कढ़ाई, वो कोई नहीं सुनना।
2: मैंने आपको कल भी बुलाया था, पहले दिन बुलाया था, आप खुद ही नहीं आते हैं।
0: अरे ये तो आपकी भाई जरा नवाजी है, बड़प्पन है। चलिए फिर इंशाल्लाह अमिता लौटते में, आज
1: लौटते में इसरा की तरफ चक्कर मारते हैं। ठीक है,
2: मैं यहाँ पे खाना लेकर आती हूँ, एक साथ स्विमिंग करेंगे।
1: डन है इसरा, देखो अपनी सेटिंग हो गई अभी फिलहाल, तो चलो आपके लिए गाना प्ले करते हैं।
0: बहुत बढ़िया,
1: और आप पहचाने की कौन सा सॉन्ग है। ठीक है, एंड हियर वी गो।

0: बताइए क्या पैगाम है?
1: ये ईद मुबारक ईद मुबारक
2: गुड इसरा गुड, आपका नाम रजिस्टर हो चुका है और हमारे बाकी लिसनर्स भी जिन्होंने गेस किया है वो भी हमें 666-22-107 पर मैसेज करें डेफिनेटली।
0: भाई वाह वाह क्या गेस किया है भाई, बहुत ही शानदार बहुत ही बढ़िया। इसरा जी हमेशा की तरह इसी तरह आप हंसती रहिए, यही दुआ है हमारी और सेलिब्रेट करती रहिए खूब सारी ईदें।
1: थैंक यू मैम, आपको भी बहुत सारी दुआएं, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं।
0: थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच, आपको भी और आपके पूरे घर को ईद मुबारक। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए,
2: टेक केयर,
0: मोस्ट वेलकम। तो ये थी इसरा जी हमारे साथ और देखा आपने किस तरीके से बहुत ही आसान बना दिया है यहाँ पर अमिता जी ने आपके लिए आज का गिफ्ट वाउचर, और करना आपने बहुत आसान सा काम है कि हमें कॉल कर लेनी है 666-22-107 पे, नहीं मैसेज करना
2: है
0: और कॉल करने के लिए नंबर है 443-443-77 पे आप हमें कॉल कर सकते हैं। और यहाँ पर अब बढ़ते हैं एक छोटे से ब्रेक की तरफ, एक नगमा सुनते हैं, उसके बाद वापस आते हैं और ये जो गिफ्ट आपको हम दे रहे हैं आज इसका सिलसिला जारी रहेगा।
2: एब्सोल्युटली, तो आप बस बने रहिए हमारे साथ FM 107 पर, दिल से देसी।

0: नेक ख्वाहिशात के साथ दुआ है कि आपकी हर परेशानी दूर हो जाए और दिल सुकून से भर जाए, आपकी हर कुर्बानी कबूल हो, अल्लाह आपके दिल को सुकून अता फरमाए और आपकी जिंदगी को अपनी रहमतों से भर दे। ईद उल अज़हा के इस मुबारक मौके पर आपको मोहब्बत और खुशियों के पैगामात मिलें। आप और आपके अपनों को अल्लाह सुबहाना हुआ ताला हमेशा अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे, आमीन। सरवर मिर्जा और FM 107 की पूरी टीम की जानिब से आपको ईद उल अज़हा की पुरखलूस मुबारकबाद। कुल्लु आम वान्तुम बख़ैर।
1: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें,
2: आज ही राब्ता करें
1: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
3: क्या आपने कभी खुद से पूछा है, अगर आज मुझे किसी की जरूरत ना हो तो मैं कौन हूं? अक्सर औरतें दूसरों की खुशी में अपनी आइडेंटिटी भूल जाती हैं, मगर अब वक्त है खुद से मिलने का। आरजे ए फॉर अमिता लेकर आ रही हैं एक नया सफर, मेरी पहचान। बर्नआउट से लेकर नए बिजनेसेस तक, सेहत से लेकर सुकून तक, ये शो है हर उस औरत के लिए जो अपनी बाउंड्रीज तय करना चाहती है। आप सिलसिले की एक कड़ी नहीं, आप खुद

छुपी हुई मैं को मेरी पहचान में, हर मोड़ पर एक नई उम्मीद, मेरी पहचान। सुनिए हर वेंसडे सुबह 10 बजे से और हर फ्राइडे रात 10 बजे से सिर्फ FM 107 पर। दिल से

थाम पे सचती मोहब्बत की कहानी, जहां हर बाइट में है अपनों का प्यार और हर स्वाद में ईद की पुकार, ईद की मिठास, घर की रसोई का जादू और हर डिश में छुपी खुशियों की कहानियों। सुनिए प्रोग्राम ईद किचन्स विद आरजे सरवर मिर्जा, ईद के पहले और तीसरे दिन दोपहर 1 बजे से ओनली ऑन FM 107 दिल से।

0: आप सुन रहे हैं घर घर ईद ए फॉर अमिता और सरवर मिर्जा के साथ सिर्फ एफएम 107 पर दिल से देसी।
1: और हमारी देसी ऑडियंस को ये जो कह रहे हैं ना काला चश्मा जचता है, अभी का चश्मा लगा के बैठे हैं, जरा देखे जरा हमारे सर्वे में भाई को। सो ईद मुबारक आप सभी को, घर घर ईद हमारा स्पेशल शो, वेलकम वंस अगेन। एफएम 107 सुन रहे हैं आप, मैं हूं आपकी अमिता और हमारे आरजे सर्वर मिर्जा आप सभी का तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं। देखिए गुनाइदन रेस्टोरेंट के 500 कतरी रियाल के गिफ्ट वाउचर्स यहां पर आप जीत सकते हैं और बहुत ही सिंपल है, यहाँ पर सिर्फ म्यूजिकल होना है। हम कुछ गाने आगे पीछे कहीं से भी प्ले करेंगे और आपको सुनकर बस गाना गैस करना है। तो आप हमें कॉल कर सकते हैं 443-443-77 पर, आई रिपीट द नंबर 443-443-77, या फिर आप हमें मैसेज करें 666-2-107 पर।
2: बिल्कुल भाई, ईद का माहौल चारों तरफ इस वक्त बना हुआ है और आप सभी को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद हमारी तरफ से, मेरी और अमिता की तरफ से। तो अमिता, खास हम खास क्या है, थोड़ी बहुत बात भी कर ली जाए कि आज तीसरा दिन है, क्या इंतजाम है या क्या कहना चाहिए प्रोग्राम है?
1: तीसरा दिन बड़ा रिलैक्सिंग है, मतलब पहले दिन के कंपैरिजन में आज तो ऐसा लग रहा है कि वो कहते हैं ना कि पजामा पार्टी, यू नो इस तरह से। तो डेफिनेटली शाम को अपने दोस्तों के साथ पूरी फैमिली सब की डिफरेंट डिफरेंट आएंगी, हम घर जाएंगे, खाना पीना खाएंगे, मूवी देखकर फिर घर आएंगे। तो ये
2: मूवी देखने जा रही हैं आप, आपने मुझे पूछा भी नहीं।
1: आप देखिए सुबह से तैयार होकर आए, मुझे लग रहा है कि आज तो सुबह से ही आप दावतें लेने जाने वाले हैं।
2: ये बात तो सही है,
1: है। और अभी कोई
2: चल गया हमारे साथ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुह।
3: वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुह जी।
2: अहलेन अहलेन,
1: कौन आया हमारे साथ?
3: यूसुफ भाई
1: को हम गाने नहीं सुनाएंगे, वो पहचान लेंगे। बहुत ही फिल्मी है यूसुफ भाई, क्यों फिल्मी यूसुफ भाई?
2: यूसुफ भाई का नाम हमने लिस्ट में ऑलरेडी शामिल कर लिया है, बताना मत यूसुफ भाई किसी को।
3: जी जी जी, अच्छी बात, नहीं बताऊंगा।
2: मगर यूसुफ भाई के सिलसिले से दूसरे चैंपियंस भी हमें जोड़ने हैं, तो हम एक धुन सुनाते हैं और देखते हैं कि यूसुफ भाई उसको पहचान पाते हैं या नहीं पहचान पाते हैं। ठीक है यूसुफ भाई?
1: हेलो यूसुफ भाई, हाँ जी,
2: हाँ हमारे साथ है ना, बने हुए हैं हमारे साथ। ओके, तो ये आ गया आपके लिए।

0: क्या कहते हैं यूसुफ भाई?
1: नाम तो है ना, बताने की जरूरत नहीं सर उसे.
2: अरे अरे अरे अरे अरे अरे नहीं, बता दे बता दे.
0: गैस कीजिए.
1: सीटी बजाए.
0: सीटी बजाए कौन? कौन है जो यूसुफ भाई को छेड़ रहा है? ओए कोई सीटी नहीं बजाएगा यूसुफ भाई को देख के. यूसुफ भाई
1: नखरी दिखाएगा है वही.
0: अच्छा, नकली भी दिखाएगा.
2: ये पूरी लाइन. अच्छा गाना फिर आगे आगे बताएं मेन किस नाम से ये गाना बड़ा फेमस है
0: और क्या हो रहा है इस गाने के अंदर, हरकत क्या है?
1: शर्मा मतलब नहीं समझ रहा हरकत ना क्या?
0: गाने में कुछ हरकत
1: नहीं. गाना तो सीटी बजाए बीच सड़क पर. हाँ, हाँ, नाम तेरा बताए.
0: हाँ, वो भी ठीक है.
1: लड़की आँख में.
0: यूसुफ भाई को
1: पूरा गाना बताना है.
0: इतना सताया जा रहा है. नहीं मैं पूरी रिपोर्ट लिख रहा था ना यहाँ पे बैठा हुआ, क्या क्या हो रहा है, कितना सताया गया है.
2: सच में यूसुफ भाई थैंक यू सो मच. हमने
0: यूसुफ भाई बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए. ईद मुबारक यूसुफ भाई. ईद मुबारक.
1: ईद मुबारक.
0: यूसुफ भाई हमारे साथ बड़े ही प्यारे और बड़े ही मासूम से यूसुफ भाई. तो साहब ओके, तो बातचीत तो हो रही थी अमिता, मैं आपकी बात पूरी कर दूं. प्रोग्राम के हवाले से आप बात कर रही थी. देखिए तैयार हो गया आया तो हूं मैं. हाँ जाहिर बात है क्योंकि नमाज पढ़ने जाऊंगा पहले तो, और उसके बाद वाकई कुछ तो सेलिब्रेशन आज भी है, बनती भी है. तीसरा दिन है खासम खास और लोग जैसे जैसे ईजी होने लगते हैं उतना ज्यादा उनको ख्याल आता है कि चलो भाई अब बुला लेते हैं जब मैं घूम फिर आया हूँ या आई हूँ और अब दूसरी चीजें पूरी हो चुकी हैं, तो क्यों ना फिर अब लोगों को घर पे बुला लिया जाए और पार्टी जो है वो रख ली जाए. तो कुछ जगह के हैं बुलावे और भी इंशाल्लाह.
2: मतलब मैं आपको देख के बता रही हूँ कि पहले सिल्क का कुर्ता था, फिर उसके बाद अब कॉटन का रिलैक्स कुर्ता आ गया है.
0: हाँ, आराम से.
2: क्योंकि आराम से और आज का दिन भी बिल्कुल हमारी मतलब लोकल लैंग्वेज में पजामा पार्टी कहते हैं, और कल भी कुछ इस तरह से ही माहौल रहेगा. लेकिन कल थोड़ी साफ सफाई को लेकर ज्यादा फोकस होगा, जो कि हमेशा होता ही है कि जैसे जैसे त्योहार खत्म होने वाले होते हैं सारी जो घर के लोग बाग होते हैं सबको बोला जाता है चलो भाई हर चीज जहां से उठाई थी वही वापस रख दो. बट यस, कल इसके बारे में हम जिक्र करेंगे. लेकिन आज आपके क्या, आप कहाँ जाने वाले हैं, क्या मसरूफियत है, वो सब बताएं हमको 666-22-107 पर मैसेज करके, या फिर आप फोन मिला सकते हैं 443-443-77 पर. और इसी बात पे हम एक छोटे से ब्रेक की तरफ रुख करते हैं, वापस आते हैं. फिलहाल तो एंजॉय कीजिए ये शानदार गाना, ब्यूटीफुल गिटार की धुन भी अच्छी लगी.
0: क्या बात है, अरमान मलिक और नीति मोहन एक दूसरे का साथ निभाते हुए. बात हो रही है 100 आसमान की.
2: चलो ठीक है, तो फिर एंजॉय कर लीजिए. स्टे ट्यून्ड टू FM 107, दिल से देसी.

अल्लाह की रहमतों और नेमतों से आपका घर हमेशा भरा रहे। इस ईद पर सिर्फ दावत ही नहीं बल्कि अपनों के साथ मोहब्बत का सिलसिला चलता रहे। FM 107 की जानिब से मैं आपकी अमीता आप सभी को ईद उल अदा की दिली मुबारकबाद देती हूँ। बने रहिए हमारे साथ, सुनते रहिए FM 107 दिल से।

स्पोर्ट्स की दुनिया के हैरतअंगेज रिकॉर्ड्स और जबरदस्त कहानियां सुनिए स्पोर्ट्स वर्ल्ड रिकॉर्ड्स स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मोहम्मद अमीन के साथ हर बुध को दोपहर 1 बजे से सिर्फ FM 107 पर स्पोर्ट्स वर्ल्ड रिकॉर्ड्स जहां रिकॉर्ड्स बनते भी हैं और टूटते भी हैं।

0: अरे बहुत कुछ होता है जब आप लोगों की कॉल आती है।
1: कुछ
0: होता है, मीम बन गई थी,
2: कुची कुची होता है,
3: होता है।
4: आप सुन रहे हैं घर घर ई ए फॉर अमिता और सर्वर मिर्जा के साथ सिर्फ FM 107 पर दिल से देसी।
5: यस, बहुत बहुत इस्तकबाल है आप सभी का और यहाँ पर कुछ कुछ हो रहा है हमारे सर्वर ब्रो को, क्योंकि आपकी कॉलें जब धीरे धीरे आती हैं और हमारे पूछे गए सवालों के जवाब मिलते हैं तो हमें बड़ी खुशी होती है, क्योंकि ईद के मौके पर हमें आपको ईदी देने का मौका मिला है। लाइक गुनाइदिन रेस्टोरेंट के 500 कतरी रियाल के 2 वाउचर 2 लकी विनर्स हमारे शो से जीत कर जाएंगे और इस घंटे के लकी विनर को चूज करने का वक्त आ चुका है। सर्वर कहाँ
0: बिल्कुल भाई आ चुका है, और क्योंकि जाहिर बात है आज फ्राइडे भी है और इस वक्त नमाज का वक्त भी है, थोड़ा एहतमाम भी है, तो इस वक्त हमारे पास विनर अभी तक कल की मिकदार में कम है, तो चांसेस ज्यादा हैं भाई आप लोगों के विनर बनने के। तो क्या कहती हैं अमिता, आज का विनर अनाउंस कर दिया जाए?
5: बिल्कुल, आप मुझे नंबर बताएं और लकी नंबर चूज कर लेते हैं। सो अभी हम मान के चले 1 से लेकर 36 के बीच
0: जी,
5: कोई एक नंबर आपने चूज करना है और आप चूज कर लीजिए, चलें बताएं।
0: चलिए साहब, तो फिर कर लेते हैं नंबर 12।
5: नंबर 12 पे आके रुकी है इनकी गाड़ी,
0: क्योंकि हमने देखा नहीं है, हमने देखा नहीं है ये सिर्फ बंद में है, हमें बताया गया कि इतने नंबर हैं हमारे पास, अगर आप होते यहाँ पे तो हम
5: डेफिनेटली
0: आपसे
5: पूछते।
0: तो यहाँ पर नंबर 12 पे अब अमिता चेक कर रही हैं कि कौन है आज का विनर।
5: नंबर 12 पे वो हैं जिनके नंबर पर आखिरी में 306 आता है और इनका नाम है एम शफीक। सो शफीक भाई, मुबारका मुबारका मुबारका, आपने जीत लिया है गुनाइदिन रेस्टोरेंट का 500 कतरी रियाल का गिफ्ट वाउचर।
0: क्या बात है भाई, मबरूक मबरूक अल्फ मबरूक। आज के हमारे पहले चैंपियन जो हैं वो सामने आ चुके हैं, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। और अब जैसा कि अब हम अपने दूसरे घंटे की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और वहां पर भी एक चैंपियन इंशाल्लाह ताला हम बनाने वाले हैं, तो आपने क्या करना है, बहुत आसान तरीका है, आपने हमारे साथ जुड़ जाना है। 443-443-443-443-443-443-443-443-443-443-443-443-443-443-443-443-443-443-443-443-443-443-443-443-443-443-443-443-443-443-443-443-443-443-443-443-443-443-443-443-443-443-443-443-443-443-443-443-443-443-443-443-443-443-443-443-443-443-443-443-443-443-443-443-443-443-443-443-443-443-443-443-443-443-443-443-443-443-443-443-443-443-443-443-443-443-443-443-443-443-443-443-443-443-443-443-443-443-443-443-443-443-443-443-443-443-443-443-443-443-443-443-443-443-443-443-443-443-443-443-443-443-443-443-443-443-443-443-443-443-443-443-443-443-443-443-443-443-443-443-443-443-443-443-443-443-443-443-443-443-443-443-443-443-443-443-443-443-443-443-443-443-443-443-443-443-443-443-443-443-443-443-443-443-443-443-443-443-443-443-443-443-443-443-443-443-443-443-443-443-443-443- 7 पे और अपने जवाब बता सकते हैं। बहुत आसान है और अभी के लिए आगे के लिए हम बता देते हैं कि क्या गाना है और किस चीज का आपको जवाब देना है। तो वो गाना आपके लिए है ये।
5: डेफिनेटली ये गाना तो याद आ गया होगा सर्वर सबको। तो ये गाना अगर आपने सुन लिया, आपने धुन सुन ली और पहचानना है आपको ये गाना कौन सा है, तो गाने का नाम लिखें, फिर अपना नाम लिखें और भेजें 6622107 पर 6622107।
0: एक बार और
5: सुना दीजिए।
0: क्या बात है भाई, जबरदस्त गाना हमने टाइम का और पीछे से आवाज जो है वो

ध्यान रखना है। जानिए कैसे आप एंजॉय कर सकते हैं अपनी पसंदीदा डिशेस बिना गिल्ट के। इबादत और अपनों के प्यार के साथ स्मार्ट तरीके से सेलिब्रेट करें ईद के दूसरे और चौथे दिन शाम के 7:15 से। सुनिए हमारे स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मोहम्मद अमीन को इन द शो फिट एंड फेस्टिव, जहां ईद एंजॉय करेंगे फिटनेस के साथ।

0: FM 107 की पूरी फैमिली की तरफ से हमारे तमाम सुनने वालों को ईद उल अदा की दिल की गहराइयों से मुबारकबाद। FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें,
1: आज ही राब्ता करें
0: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
2: FM 107 टाइम चेक।
3: हाला लीजिए साहब, बज गए 11:00 सही।

0: हम कुछ म्यूजिक लेकर आए हैं आपके लिए, कुछ धुने लेकर आए हैं आपके लिए। करना ये है कि आपने उन धुनों को पहचानना है और अपना जवाब बता देना है कि ये गाना कौन सा है। दैट्स इट, इतना आसान है। और उसके बाद क्या होता है अमिता, जब आप पहचान लेते हैं धुन को तो?
1: एब्सोल्युटली, अगर आप लकी हुए तो गुनाइदन रेस्टोरेंट के 500 कतरी रियाल के गिफ्ट वाउचर आपके नाम हो जाएंगे। पहले घंटे में हमारे जो विनर बने वो बने मोहम्मद शफीक, और अब इस घंटे कौन बनेगा देखते हैं। तो उसके लिए बस ये दो नंबर ख्याल रखें, इनका इनको याद रखें। 666-22-107 इज द नंबर, इस पर आप मैसेज कर सकते हैं, और कॉल करने के लिए 443-443-77 इज द नंबर, इस पर आप हमें कॉल करें। और अभी के लिए हम एक छोटे से ब्रेक की तरफ रुक कर रहे हैं, वापस आ रहे हैं ताकि आपको इनामात जितवा सके।
0: क्या बात है?
1: सो स्टे ट्यून्ड FM 107 पर।

अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं दोहा वाला कबीर एफएम 107 पे और आप सभी सुनने वालों को ईद उल अज़हा की दिली मुबारकबाद। अल्लाह ताला हमारी कुर्बानी को कबूल फरमाए और हमारे दिलों में मोहब्बत हमेशा बनाए रखे।

0: हर आदत बदलती है एक अच्छी नीयत से, और हर अच्छी नीयत की बुनियाद है एक खूबसूरत हदीत। सुनिए हदीत टू हैबिट आरजे महविश के साथ हर थर्सडे सुबह 10 से 10:30 बजे ओनली ऑन FM 107। एक ऐसा प्रोग्राम जहां हदीत सिर्फ सुनी नहीं जाएगी बल्कि जिंदगी में अपनाई भी जाएगी। स्ट्रेस हो, बिजी रूटीन हो, फैमिली प्रेशर या डिजिटल डिस्ट्रैक्शंस, हर हफ्ते एक नई हदीत, एक नई आदत और एक बेहतर जिंदगी की तरफ एक कदम। हदीत टू हैबिट, हदीत टू हैबिट, दिल से सुनिए, जिंदगी में अपनाइए।
1: ईद का जश्न ना ऐसा होना चाहिए कि दावत और लोग दोनों की कमी ना हो, तभी तो होता है हाउस फुल। अब दस्तरखान पे महफिल और किस्से और साथ में पकवान, ओए होए, यही तो बात है, यही तो है हाउसफुल। तो किस्से वाला जो पार्ट है ना, वो आप हमसे शेयर करें, बिकॉज यू आर वेलकम इन आर हाउसफुल ईद। ईद का खास प्रोग्राम ईद के चारों दिन शाम 5 बजे से मेरे यानी दोहा वाले कबीर के साथ जरूर सुनिए हाउसफुल ईद सिर्फ FM 107 पर, दिल से देसी। आप सुन रहे हैं घर घर ईद ए फॉर अमिता और सरवर मिर्जा के साथ सिर्फ FM 107 पर, दिल से देसी। हां जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु, वेलकम बैक, अहलन व सहलन, एंड ईद सभी को बहुत बहुत मुबारक। भाई यहां पर अमिता और सरवर आपके साथ हैं, जहां पर हम आज आपके साथ ईद सेलिब्रेट कर रहे हैं और आपको गुनायदन रेस्टोरेंट से 500 कदरी रियाल का वाउचर दे रहे हैं। पहले एक घंटे में, दो घंटे का जो हमारा प्रोग्राम होता है 10 से 12 डेली, आप हमारे साथ जुड़ते हैं। पहले घंटे के हमारे विनर जो है ऑलरेडी बना दिए गए हैं, घोषित कर दिए गए हैं, और वो हैं शफीक।

0: भाई। और यहाँ पर एक और चैंपियन हमारे साथ अब जुड़ते हुए, आइए उनसे बात करते हैं।
1: यस, अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
0: अहलेन अहलेन शहजादा सलीम साहब हमारे साथ, क्या कहने क्या कहने, कैसे हैं भाई सलीम भाई?
2: अल्हम्दुलिल्लाह।
0: कैसी गुजरी ईद अभी तक की?
2: ईद बेहतरीन गुजरी है अभी तक तो।
0: अच्छा,
2: और जब बेहतरीन सोने पे सुहागा हो जाएगा इंशाल्लाह, अनकरीब है 500 का वाउचर लेके जब रेस्टोरेंट जाएंगे।
0: क्या कहने हैं, इंशाल्लाह ताला
2: फुल कॉन्फिडेंस के साथ और फुल एनर्जी के साथ।
1: क्या बात है,
2: 107 की क्या खासियत है? 107 के तरफ से मुझे काफी कुछ ना इनामात मिले हैं।
0: माशाल्लाह भाई, क्या बात है। देखिए, आप सब इस बात को सुन रहे हैं, FM 107 की तरफ से इनामात जो है वो जाते रहते हैं और लोग जीतते भी रहते हैं, जिसमें हमारे शहजादा साहब का भी नंबर है। तो आइए अब बढ़ते हैं आगे और आपको धुन सुनाते हैं और आपने पहचाननी है, ठीक है?
2: मेरे को धुन सुनानी है तो आपने ना जरा पुराने सुनाया करे, नए गाने में नहीं सुनता हूँ।
1: कोई बात नहीं, हम पुरानी आपको धुन सुनाते हैं एंड आपके साथ साथ और भी हमारे लिसनर्स सुनते हुए पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सो 666-22-107 पर आप हमें मैसेज करें। सो शहजादा सलीम भाई, आर यू रेडी?
2: यस।
1: ओके, और आपके लिए धुन है ये।

0: दिल वाले दुल्हनिया का है।
1: ओके गाना कौन सा है? अरे अरे अरे
0: रखना।
2: अच्छा जल्दी से लगा लिए, फिर मैं आता हूँ। ईद भी है, मौका भी है, दस्तूर भी है, अच्छी सी मेहंदी लगाइए शहजादा सलीम साहब, हाथ में रजनी भी चाहिए।
1: सही पहचाना ना मैंने नंबर पहचाना आपने, देखे बिल्कुल सोच समझ के लिए आपके लिए ये गाना लेकर आए हम। एंड आई रियली होप कि अगर आप लकी हुए
0: इंशाल्लाह,
1: तो यहाँ पर पूरे तरह से ना तैयार हो रहा है कोई, पता कौन सर्वर ब्रो तैयार हो रहे हैं आपके पास आने के लिए।
0: भाई को
2: मेरा भाई कैसा पैसा ही पैसा शहजादा सलीम पे, और वाउचर ही वाउचर,
0: लेकिन दिल में एक ख्वाहिश जरूर है सरोवर भाई के साथ आमने सामने बैठकर एक ही टेबल पर अगर डिनर किया जाए तो कैसा लगेगा।
2: वाह वाह वाह, बहुत अच्छा लगेगा। बस ये है कि आपके हाथ कुछ नहीं लगेगा, जो भी है मैं ही निपटाऊंगा, आप बस देखते रह जाएंगे।
0: मेरी कम खुराकी है सर, बड़ी कम खुराकी,
1: ये देखिए जरा,
0: मैं आपको देखते देखते ही मेरा पेट भर जाएगा।
2: क्या बात है, मेरा भाई शहजादा सलीम, बहुत बहुत शुक्रिया भाई हमारे साथ जुड़ने के लिए, और बहुत शुक्रिया। ईद मुबारक। ये थे हमारे साथ शहजादा सलीम साहब, और आप लोगों ने भी धुन सुनी, और अपने जो जवाब आते हैं आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। बिल्कुल यहाँ पर खूब सारे जवाब आ चुके हैं अमिता जी, सेकंड आर के लिए क्या बात है भाई। तो चलिए जब तक मैं और अमिता इन जवाब को लिखते हैं अपनी लिस्ट में, आपका नाम शामिल करते हैं, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, आप एक गाना एंजॉय कीजिए
1: एब्सोल्युटली,
2: और वापस आने के बाद इंशाल्लाह ये सिलसिला जो है वो जारी रहेगा।
1: वैसे हम जाने से पहले सर्वर एक कॉल और ले लेते हैं क्योंकि हमारे साथ कोई जुड़ना चाहता है,
2: निराश किसी को नहीं करेंगे। हेलो,
1: बिल्कुल,
2: हेलो
3: हेलो
1: हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
3: हेलो हेलो हेलो, वालेकुम सलाम।
1: हां जी, कौन है हमारे साथ?
3: अहमद।
1: ओके अहमद, सो अहमद आर यू रेडी? आपको हम सीधा धुन सुनाएं, कैन यू गेस द सॉन्ग?
3: Yes.
1: Okay. Here we go.

0: उलझा जिया।
1: एक बार फिर से बोलना।
0: तेरी बाहें ऐसा
1: उलझा। आर यू श्योर वो तेरी बाहें हैं या कुछ और है?
2: अहमद 11 साल के हैं मगर बातों को बाहें बनाए दे रहे हैं। अब ये देखिए अहमद भाई।
1: नाइस अहमद, चले चले, बहुत बहुत शुक्रिया अहमद।
0: राइट वाज राइट।
2: हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही है और आप लिस्ट में शामिल भी हो गए। ठीक है, मगर वो बातें हैं,
1: बाहें नहीं है, वो बातें हैं। ओके,
0: वो बाहों
1: कोई मसला नहीं है भाई। बहुत बहुत शुक्रिया, आपका नाम दर्ज कर लिया गया है। इंजॉय योर डे अहमद, थैंक यू।

0: चलिए भाई, ये थे अहमद हमारे साथ, तो आपके जवाब हम रिसीव कर रहे हैं बराबर। और जाने से पहले चलिए अमिता, अगर आप इजाजत दें तो थोड़ी बहुत अपडेट भी यहाँ पर शेयर कर दी जाए,
1: बिल्कुल बताएं
0: कि भाई क्या करना है क्या नहीं करना, क्योंकि आज जो तीसरा दिन होता है वो टेक्निकली ये होता है कि भाई अब हम नॉर्मल लाइफ की तरफ
1: जाए, लाइफ की तरफ जाए और कुछ फायरवर्क्स एंजॉय करें। बिल्कुल, सच में मेरी प्लानिंग वही है।
0: तो आज ये फायरवर्क जैसे अमिता ने बताया आप एंजॉय कर सकते हैं कतारा में जाकर, और बड़े ही खूबसूरत, आपने अगर नहीं अभी तक देखा है तो पहले एक वीडियो भी एंजॉय कर लीजिए उसका। आप जब ऑनलाइन चेक करेंगे तो आपको ये जो दो दिन के फायरवर्क्स हैं वो दिख जाएंगे। आज आपके पास उसको एकदम सही सही आंखों के सामने देखने का मौका है, क्योंकि कतारा कल्चरल विलेज में ये 8:30 बजे डिस्प्ले होगा,
1: और
0: तकरीबन जो इसकी ड्यूरेशन रहती है 10 मिनट की रहती है। भाई
1: क्या बात है,
0: 10 मिनट की आतिशबाजी, ओए होए होए होए होए, क्या बात है। बढ़िया वहां पर रील्स बन सकती हैं, आपका जो सोशल मीडिया है बढ़िया चमका भी सकते हैं आप, और फिर मजे तो आएंगे ही आएंगे देखने के साथ साथ। और वहीं दूसरी भी एक्टिविटीज यहाँ पर है कतारा में ही, आप जब जाएंगे तो कतारा का जो बीच प्रोमिनेड है वहां पर बच्चों के लिए गिफ्ट शिफ्ट है। भाई फायरवर्क तो हमने बता ही दिया, कतरी अर्धा आप वहां पर देख सकते हैं सेलिब्रेट होता हुआ, और वहीं प्लेनेटोरियम शोज वगैरह कुछ अंजाम दिए जा रहे हैं, मिलिट्री परेड है वहां पर आपके लिए। तो ये आज खासम खास दिन, इसका आप लाभ उठा सकते हैं। इसके अलावा कुछ अगर हम बात करें मॉल वगैरह की, तो DFC में भी आप जा सकते हैं। बच्चों के हवाले से मैं बताना चाह रहा हूं, यहां पर भी 2 जून तक जो है एक्टिविटीज जो है वो चल रही हैं, और काफी मुख्तलिफ चीजें हैं जो बच्चे एंजॉय कर सकते हैं। कुछ अरेबिक कैलीग्राफी है, स्टोरी टेलिंग है, वर्कशॉप वगैरह हैं, तो ये सारी चीजें, परेड्स वगैरह हैं, लाइव परफॉर्मेंसेज हैं, ये सब आप एंजॉय कर सकते हैं।
1: एब्सोल्युटली, तो यहाँ पर सर्वर ने पूरी लिस्ट आपके सामने रख दी है, वीकेंड फुल ऑन एंजॉय कीजिए बिल्कुल रिलैक्स मूड में। और हाँ, अगर आप दिन में कहीं इंडोर आउटिंग के लिए जा रहे हैं तो मेक श्योर कीजिए कि आप पानी वगैरह अपने साथ रखें, कुछ कैंडीज रखें, खट्टी मीठी गोलियां रखें, जिससे यू नो आप बिल्कुल परफेक्ट रहें। और धूप में अगर आप निकल के जा रहे हैं तो थोड़ा सा ईज्ड आउट रहे, ठीक है? तो इसका ख्याल रखें। अभी हम एक छोटे सा ब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे, उसके बाद फिर से आपको गाने सुनाएंगे। लेट्स सी कि कौन कितने गाने सही गेस करता है और कौन इस घंटे का लकी विनर बनेगा, जो जीतेगा गुनायदिन रेस्टोरेंट के 500 कतरी रियाल का गिफ्ट वाउचर।
0: सुनते रहिए FM 107, दिल से देसी।

0: सुबह होगी और भी खास। सुनिए मॉर्निंग मस्ती ईद विद आरजे महवश खान 7 से 9 बजे सुबह। मजेदार गुफ्तगू, ईद की खुशियाँ, आपके मैसेजेस और बहुत सारी मस्ती के साथ हर ईद की सुबह मनाए खुशियाँ FM 107 के साथ। दिल से देसी।
1: FM 107 पेश करते हैं ईद का स्पेशल प्रोग्राम किड्स कार्निवल। सफा के साथ एक फन फिल्ड शो जहां बच्चों के लिए स्टोरीज, गेम्स, हंसी मजाक, म्यूजिक और एक्साइटिंग सरप्राइजेस होंगे। ईद के पहले और तीसरे दिन दोपहर 3 बजे से, तो सुनना मत भूलिएगा। और अपनी ईद को और भी खुशगवार बनाएं सिर्फ FM 107 पर

विमेन इन स्पोर्ट्स आरजे सफा के साथ हर मंडे दोपहर 1 बजे से सिर्फ FM 107 पर दिल से देसी।

0: विमेन इन स्पोर्ट्स आरजे सफा के साथ हर मंडे दोपहर 1 बजे से सिर्फ FM 107 पर दिल से देसी FM 107 पेश करते हैं ईद का स्पेशल प्रोग्राम किड्स कार्निवल सफा के साथ एक फन फिल्ड शो जहां बच्चों के लिए स्टोरीज गेम्स हंसी मजाक म्यूजिक और एक्साइटिंग सरप्राइजेस होंगे ईद के पहले और तीसरे दिन दोपहर 3 बजे से तो सुनना मत भूलिएगा और अपनी ईद को और भी खुशगवार बनाएं सिर्फ FM 107 पर किड्स कार्निवल पर आरजे सफा के साथ दिल से देसी आप सुन रहे हैं घर घर ईद ए फॉर अमिता और सरवर मिर्जा के साथ सिर्फ FM 107 पर दिल से देसी
1: वेलकम वंस अगेन FM 107 सुन रहे हैं आप मैं हूँ आपकी ए फॉर अमिता घर घर ईद हमारा स्पेशल शो और ये स्पेशल शो बड़ा ही स्पेशल हो जाता है जब आप हमारे साथ जुड़ जाते हैं वैसे आज जुम्मे की नमाज का वक्त है और बहुत ही कमाल का ये टाइम होता है हर कोई अभी बिजी चल रहा है लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमारे पास मौका है आपको जितवाने का गुनाइदिन रेस्टोरेंट के 500 कतरी रियाल के गिफ्ट वाउचर अभी तक हमने काफ़ी सारे गाने आपको सुनाए कभी बीच से कभी शुरुआत से और कहा कि चलो गाना पहचानो और हमारे लिसनर्स ने बहुत अच्छे से अब तक कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट किया वेल अभी क्योंकि मुझे पता है कि थोड़ी मसरूफियत हर किसी की चल रही होगी तो यहाँ पर मैं कुछ धुनें प्ले करूंगी एंड देन यू हैव टू गेस इट तो आप हमें सीधा मैसेजेस के थ्रू आप हमसे जुड़ सकते हैं 6622107 पर 6622107 पर और इन गानों को गेस करके इनके नाम बता सकते हैं एंड डेफिनेटली अगर आप लकी हुए तो गुनाइदिन रेस्टोरेंट के 500 कतरी रियाल का गिफ्ट वाउचर ये दूसरा गिफ्ट वाउचर है जो आपको मिल जाएगा सब जरा ध्यान से सुनिए कि अगला गाना कौन सा है जिसे आपको पहचानना है हाँ जी ये वो गाना है जो अक्सर जब 90s में रिलीज हुआ तो चाहे शादी पार्टी हो हर जगह ये गाना प्ले किया जाता था और स्पेशली जब मेहंदी सेरेमनीज होती थी वेल ये इस गाने को गाया है लता मंगेशकर उदित नारायण ने देखो मैंने यहाँ तक हिंट दे दी है अब थिंक अबाउट इट व्हाट इज दिस सॉन्ग कौन सा ये गाना है इसका नाम क्या है आप गैस कीजिए और इस गाने का नाम लिख के भेजिए अपने नाम

एक बार आपको फिर से सुना देते हैं। Yes, तो जल्दी से इस गाने का नाम लिखें और हमसे शेयर करें। और आप हमसे जुड़ सकते हैं 6622107 पर 6622107। अभी घर घर ईद, ये जो हमारा शो है ये धीरे धीरे अपने आखिरी मुकाम पर पहुंचते जा रहा है। अभी हम एक छोटे से ब्रेक की तरफ रुक करेंगे और वापस आने के बाद आज के लकी विनर का नाम ऐलान होने वाला है। तो भाई कहीं ना जाए, जल्दी जल्दी हमें मैसेजेस करें, क्योंकि गुनाइदन रेस्टोरेंट का 500 कतरी रियाल का ये दूसरा गिफ्ट वाउचर आपके नाम मैं करने वाली हूँ। सो स्टे ट्यून्ड टू एफएम 107, दिल से देसी। और अभी आपके स्वागत के लिए दिस इज द सॉन्ग, एंजॉय इट। Message, eh?

अल्लाह की रहमतों और नेमतों से आपका घर हमेशा भरा रहे। इस ईद पर सिर्फ दावत ही नहीं बल्कि अपनों के साथ मोहब्बत का सिलसिला चलता रहे। FM 107 की जानिब से मैं आपकी अमीता आप सभी को ईद उल अदा की दिली मुबारकबाद देती हूँ। बने रहिए हमारे साथ, सुनते रहिए FM 107, दिल से।

0: स्पोर्ट्स की दुनिया के हैरतअंगेज रिकॉर्ड्स और जबरदस्त कहानियां सुनिए स्पोर्ट्स वर्ल्ड रिकॉर्ड्स स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मोहम्मद अमीन के साथ हर बुध को दोपहर एक बजे से सिर्फ FM 107 पर स्पोर्ट्स वर्ल्ड रिकॉर्ड्स जहां रिकॉर्ड्स बनते भी हैं और टूटते भी हैं।
1: FM 107 पेश करते हैं ईद का स्पेशल प्रोग्राम किड्स कार्निवल सफा के साथ, एक फन फिल शो जहां बच्चों के लिए स्टोरीज, गेम्स, हंसी मजाक, म्यूजिक और एक्साइटिंग सरप्राइजेस होंगे। ईद के पहले और तीसरे दिन दोपहर 3 बजे से, तो सुनना मत भूलिएगा और अपनी ईद को और भी खुशगवार बनाएं सिर्फ FM 107 पर किड्स कार्निवल पर RJ सफा के साथ दिल से देसी। आप सुन रहे हैं घर घर ईद ए फॉर अमिता और सरवर मिर्जा के साथ सिर्फ FM 107 पर दिल से देसी।
2: यस जनाब, वेलकम वंस अगेन। FM 107 सुन रहे हैं आप, मैं हूँ आपकी ए फॉर अमिता और हमारे सर्वर ब्रो जो बेसिकली अभी नमाज के वक्त से गए हैं, तो जाहिर सी बात है कि आज क्योंकि जुम्मे की नमाज है थोड़ा वक्त लगता ही है। और इसी बात पर मैंने आपको एक धुन सुनाई थी और कहा था कि जल्दी जल्दी बताओ कि भाई ये कौन सा गाना है, और अगर आपने सही पहचान लिया और अगर आप लकी हुए तो गुनाइदन रेस्टोरेंट के 500 कतरी रियाल का जो गिफ्ट वाउचर है, ये जो हमारा दूसरे घंटे का दूसरा लकी विनर वो बन सकता है। सो मैंने धुन सुनाई थी, कौन सी, आओ एक बार आपको फिर से सुना देते हैं। यस जनाब, एंड द सॉन्ग इज भोली सी सूरत, और हमें काफी मैसेजेस आए हैं एंड जाहिर सी बात है कि आज जुम्मे का दिन है तो मैसेजेस के जरिए इस वक्त जुड़ना बहुत सही था। तो हमारे काफी सारे लिसनर्स ने हमें सही जवाब दिया है और अब टाइम है लकी विनर का नाम अनाउंस करने का। धक धक धक धक धक धक, ऐसा कुछ हो रहा है क्या? चलिए आपको बता देते हैं कि वो लकी विनर कौन है जिन्होंने जीता है गुनाइदन रेस्टोरेंट का 500 कतरी रियाल का दूसरा गिफ्ट वाउचर। उनका नाम है साइमा रसूल। क्या बात है, मुबारका मुबारका साइमा जी। आपके नंबर के आखिर में 535 आता है, तो ये है साइमा रसूल जी। बहुत सारी मुबारकबाद ईद के मौके पर, गुनाइदन रेस्टोरेंट का 500 कतरी रियाल का गिफ्ट वाउचर आपका हो गया है एंड डेफिनेटली हमारे FM 107 की जो टीम है, जो एडमिन टीम है वो आपसे कनेक्ट करेगी, आपको बताएगी, डिटेल्स देगी कि कब कहां कैसे आपको ये गिफ्ट वाउचर कलेक्ट करना है। तो हमारे आज के पहले लकी विनर थे मोहम्मद शफीक और दूसरी है साइमा रसूल। सो मैनी मैनी मैनी कंग्रेचुलेशंस। वैसे घर घर ईद, ये जो हमारा खासम खास शो है ये कल भी रहेगा और कल आखिरी दिन रहेगा, तो जरूर जुड़िएगा हमारे साथ, फुल ऑन एंजॉय कीजिएगा, कुछ ना कुछ नया हम आपके लिए लेकर आएंगे एंड लेट्स सी कि कल भी आपके पास ये मौका है गुनाइदन रेस्टोरेंट के लकी गिफ्ट वाउचर जीतने का, तो कौन हमारे दो लकी विनर होंगे कल। सो लेट्स सी, हम ये जानेंगे और आज का दिन फुल ऑन एंजॉय कीजिए। देखिए हमारे कतर में ईद से रिलेटेड बहुत सारे इवेंट्स, बहुत सारी हैपनिंग्स हो रही हैं हर एक जगह, मतलब कोई भी कोना छूटा नहीं है। सो आराम से अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ, खुद के साथ, इफ़ यू जस्ट वांट टू गो सोली, जाकर एंजॉय कीजिए। लेकिन हाँ, अगर दोपहर के वक्त जा रहे हैं सो मेक श्योर कि आप अपने साथ पानी, जूस, कैंडीज ये सब ज़रूर लेके जाएं, क्योंकि टेम्परेचर्स बढ़ चुके हैं। ठीक है, और ऑन दिस नोट अभी आप अपनी अमिता को दीजिए इजाजत, क्योंकि वक्त है मेरे जाने का, मेरे घर वाले भी मेरा इंतजार कर रहे हैं। लेकिन कल घर घर ईद में जरूर जुड़िए मेरे साथ, यानी कि आपकी अमिता और हमारे RJ सरवर मिर्जा के साथ। ठीक है, तो जाते जाते ये हिट गाना आपकी राहों में आ रहा है, गुरु रंधावा, उफ ब्यूटीफुल सा सॉन्ग, कतल आपके लिए लेकर आ रहे हैं। एंजॉय द सॉन्ग, स्टे ट्यून्ड टू FM 107, दिल से देसी।

अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, आप सुन रहे हैं एफएम 107 कतर और मैं हूं आपके साथ आपकी आरजे मारिश खान। आप सब लोगों को ईद का तीसरा दिन बहुत बहुत मुबारक हो और एक दफा फिर मैं लेकर आ गई हूं ईद का खुसूसी शो रूहानी लम्हे। तो चलिए शुरू करते हैं आज

शिकवा करे और टूट जाए, या फिर वो सबर करे, सोच समझ कर रिएक्ट करे और अल्लाह पर तवक्कुल करे। जो इंसान सबर चूज करता है वो अपनी जिंदगी को बेहतर बना लेता है। आज के दौर में सबर और भी ज्यादा जरूरी हो गया है। सोशल मीडिया, फास्ट लाइफस्टाइल, कंपैरिजन और प्रेशर ने लोगों को इंपेशेंट बना दिया है। हर कोई जल्दी रिजल्ट चाहता है, जल्दी सक्सेस चाहता है, और जब चीजें देर से मिलती हैं तो फ्रस्ट्रेशन बढ़ जाती है। ऐसे वक्त में सब्र इंसान को मेंटली स्टेबल रखता है। सब्र का मतलब ये भी है कि इंसान अपनी लिमिट्स को समझे और एक्सेप्ट करे कि हर चीज उसके कंट्रोल में नहीं है। कुछ चीजें अल्लाह के कंट्रोल में ही होती हैं और उन पर यकीन रखना ही ईमान का हिस्सा है। अगर हम सब्र को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लें तो हमारी जिंदगी में सुकून आ जाता है, दिल हल्का हो जाता है, स्ट्रेस कम हो जाता है और इंसान ज्यादा पॉजिटिव सोचने लगता है। सब्र इंसान को अंदर से रोशन करता है। सब्र को अक्सर लोग सिर्फ एक आम सी आदत समझ लेते हैं कि बस चुप रहना है, बर्दाश्त करना है या किसी बात पर रिएक्ट नहीं करना, लेकिन असल में सब्र इससे बहुत ज्यादा गहरा और रूहानी कॉन्सेप्ट है। सब्र सिर्फ एक खामोशी का नाम नहीं बल्कि दिल की उस हालत का नाम है जहां इंसान अल्लाह के फैसलों पर पूरा यकीन और इत्मीनान रखता है। सब्र की हकीकत यह है कि इंसान अपने जज्बात को कंट्रोल करे लेकिन अपने ईमान को कमजोर ना होने दे। जब किसी इंसान के साथ कोई तकलीफ होती है तो उसका पहला रिएक्शन होता है गुस्सा, शिकवा या मायूसी, लेकिन सब्र ये सिखाता है कि इस रिएक्शन को अल्लाह की रजा में बदल दिया जाए। असल सब्र वो होता है जो दिल के अंदर होता है, सिर्फ बाहर से दिखाई नहीं देता। हो सकता है इंसान मुस्कुराता रहे लेकिन अंदर से वो बहुत मुश्किल वक्त से गुजर रहा हो और फिर भी वो अल्लाह पर भरोसा रखता हो, यही असल सब्र है। सब्र का एक बहुत इम्पोर्टेंट पहलू ये है कि ये इंसान को अल्लाह के करीब ले जाता है। जब इंसान अपनी तकलीफ अल्लाह के हवाले करता है और कहता है कि या अल्लाह मैं तेरे फैसले पर राजी हूँ, तो उस वक्त उसका दिल बहुत गहरा सुकून महसूस करता है। ये सुकून दुनिया की किसी चीज से नहीं मिल सकता। सब्र का मतलब ये भी है कि इंसान समझे कि हर चीज उसके कंट्रोल में नहीं है। हम अक्सर चाहते हैं कि सब कुछ हमारी मर्जी के मुताबिक हो, लेकिन जिंदगी ऐसी नहीं होती। कभी कभी अल्लाह हमें उस चीज से दूर कर देता है जो हमारे लिए अच्छी नहीं होती और हमें उस वक्त समझ नहीं आता, लेकिन सब्र हमें ये यकीन देता है कि अल्लाह बेहतरीन प्लान बनाता है। सब्र की हकीकत को समझने के लिए हमें अपने दिल को ट्रेन करना होता है। जैसे एक मुसाफिर को सफर के लिए तैयार किया जाता है, वैसे ही मोमिन को सब्र के लिए तैयार होना पड़ता है। ये एक दिन का काम नहीं होता बल्कि एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस होता है। कभी कभी सब्र का इम्तिहान छोटी छोटी बातों में होता है, जैसे किसी की बात बुरी लगना, किसी का इंतजार करना या किसी का रवैया बर्दाश्त करना। अगर इंसान इन छोटी छोटी चीजों पर सब्र सीख ले तो वो बहुत बड़ी मुश्किलात के लिए भी स्ट्रॉन्ग हो जाता है। सब्र की हकीकत ये भी है कि ये इंसान को नेगेटिविटी से बचाता है। जब इंसान हर वक्त शिकवा करे तो उसका दिल और दिमाग दोनों थक जाते हैं, लेकिन सब्र इंसान को पॉजिटिव रखता है, उसे होप देता है और उसकी सोच को

बेहतर बनाता है। कुरान और सुन्नत में सब्र को बहुत अहमियत दी गई है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि सब्र करने वालों के साथ अल्लाह होता है। ये सिर्फ एक जुमला नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी रूहानी रियलिटी है। जब अल्लाह किसी के साथ होता है तो फिर उस इंसान को किसी और सपोर्ट की जरूरत ही नहीं रहती। सब्र का एक और इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि ये इंसान को इमोशनली मैच्योर बनाता है। जो इंसान जल्दी रिएक्ट करता है वो अक्सर बाद में रिग्रेट करता है, लेकिन जो इंसान सब्र करता है वो हर सिचुएशन को सोच समझकर हैंडल करता है। इससे उसकी पर्सनालिटी स्ट्रॉन्ग होती है। सब्र का ताल्लुक सिर्फ मुश्किल वक्त से नहीं बल्कि हर हाल से होता है। अच्छे वक्त में सब्र का मतलब होता है शुक्रगुजारी और घमंड से बचना। बुरे वक्त में सब्र का मतलब होता है हिम्मत ना हारना और अल्लाह पर यकीन रखना। दोनों हालत में सब्र जरूरी है। आज के दौर में लोग बहुत जल्दी रिजल्ट्स चाहते हैं। हर चीज इंस्टेंट होती है, सक्सेस, पैसा, फेम और कंफर्ट। लेकिन जिंदगी का असल कॉन्सेप्ट ग्रेजुअल ग्रोथ में है और इस ग्रोथ में सब्र सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। जो लोग सब्र नहीं करते वो अक्सर जल्दी थक जाते हैं या हार जाते हैं। सब्र इंसान को मेंटल पीस देता है। जब इंसान हर चीज को अल्लाह के हवाले कर देता है तो उसका दिल हल्का हो जाता है। वो अननेसेसरी स्ट्रेस और एंजाइटी से बचता है। सब्र इंसान के अंदर एक ऐसा सुकून पैदा करता है जो किसी एक्सटर्नल चीज से नहीं मिलता। सब्र की हकीकत ये भी है कि ये इंसान को स्ट्रॉन्ग डिसीजन मेकर बनाता है। जब इंसान इमोशनली स्टेबल होता है तो वो गुस्से या फ्रस्ट्रेशन में गलत डिसीजंस नहीं लेता। वो हर चीज को बैलेंस के साथ हैंडल करता है। असल में सब्र एक ऐसी रूहानी कुव्वत है जो इंसान को तोड़ने नहीं देती। ये उसे हर मुश्किल के बाद दोबारा खड़ा होना सिखाती है। जो इंसान सब्र सीख लेता है वो जिंदगी के हर इम्तिहान से गुजरने के बाद और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। इसलिए सब्र को सिर्फ एक लफ्ज नहीं समझना चाहिए बल्कि एक लाइफ स्टाइल, एक माइंडसेट और एक इबादत समझना चाहिए। ये वो रास्ता है जो इंसान को अल्लाह के करीब ले जाता है और उसकी जिंदगी में असल सुकून लाता है। सब्र और ईमान का ताल्लुक बहुत गहरा और मजबूत है। दरअसल सब्र ईमान की जड़ों को मजबूत करता है और ईमान सब्र को सहारा देता है। जब ये दोनों चीजें एक इंसान की जिंदगी में इकट्ठी हो जाएं, तो वो शख्स हर मुश्किल का मुकाबला बहुत सुकून और यकीन के साथ करता है।

अल्लाह की रहमतों और नेमतों से आपका घर हमेशा भरा रहे। इस ईद पर सिर्फ दावत ही नहीं बल्कि अपनों के साथ मोहब्बत का सिलसिला चलता रहे। FM 107 की जानिब से मैं आपकी अमीता आप सभी को ईद उल अदा की दिली मुबारकबाद देती हूँ। बने रहिए हमारे साथ, सुनते रहिए FM 107 दिल से।

0: लबैक की सदा, लबैक की सदा एक रूहानी और दिल को छू लेने वाला खास प्रोग्राम है जो हज इबादत और अल्लाह की रजा के लिए पूरी तरह अपने आप को हवाले करने के जज्बे को उजागर करता है। इस खास पेशकश में ईमान अफरोज गुफ्तगु, दिल को जगा देने वाले रूहानी पैगाम और ऐसी याद दहानियां शामिल हैं जो कुर्बानी, मोहब्बत इलाही और इत्तेहाद के असल मायने को रोशन करती हैं। ईद उल अज़हा के इस बाबरकत मौके पर सुनिए लबैक की सदा, लबैक की सदा ईद के चौथे दिन दोपहर 1 बजे से सीम के साथ ओनली ऑन FM 107।
1: कहीं बिरयानी की खुशबू तो कहीं शीर खुरमे की मिठास, कहीं दोस्तों का हल्ला गुल्ला तो कहीं बुजुर्गों की दुआएं। ईद के रंग हजार हैं मगर हर रंग सजता है अपनों के साथ, इसलिए इस बार हमने सोचा क्यों ना ईद आपके घर चलकर मनाई जाए। पेश है खास शो घर घर ईद, आपकी फरमाइश, आपकी बातें और ईद के वो किस्से जो आपने पहले कभी नहीं सुना। हम बनेंगे आपकी खुशियों के साथी ताकि हर घर मुस्कुराए और हर दिल गुनगुनाए। तो हो जाइए तैयार, सुनिए घर घर ईद ए फॉर अमिता और आरजे सरवर मिर्जा के साथ ईद के चारों दिन सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक सिर्फ FM 107 पर।

0: FM 107 की पूरी फैमिली की तरफ से हमारे तमाम सुनने वालों को ईद उल अदा की दिल की गहराइयों से मुबारकबाद।
1: ईद की महकती हुई सुबह, घर घर से उठती हुई खुशबू और दस्तरखान पे सजती मोहब्बत की कहानी, जहां हर बाइट में है अपनों का प्यार और हर स्वाद में ईद की पुकार। ईद की मिठास, घर की रसोई का जादू और हर डिश में छुपी खुशियों की कहानियों। सुनिए प्रोग्राम ईद किचन्स विद आरजे सरवर मिर्जा, ओनली ऑन FM 107, दिल से देसी।
2: अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाही व बरकातुहू। भाई सभी को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। आज तीसरा दिन ईद का, उम्मीद करता हूँ सब बहुत अच्छी ईद मना रहे होंगे और अभी तक की ईद बहुत अच्छी सबकी गुजरी होगी इंशाल्लाह ताला। फिलहाल सरवर मिर्जा आपके साथ जुड़ गया है FM 107 पर लेकर आपका खसूसी प्रोग्राम ईद किचन्स, और जहाँ आज के खूबसूरत ईद स्पेशल प्रोग्राम में हम सबको दिल से मुबारकबाद देने के साथ साथ बात करने वाले हैं दो ऐसी डिशेज की जो सिर्फ टेस्ट ही नहीं बल्कि पूरी महफिल का मूड चेंज कर देती है भाई। और वो क्या है, मटन की कलेजी और मीठा सा लजीज शाही टुकड़ा। भाई जरा सोचिए, किचन में हल्की सी गर्माहट है, कलेजी जब पैन में गिरती है तो एक खास सी खुशबू उभरती है जो दिल को इंस्टेंटली भूख का एहसास दिलाती है, और दूसरी वहीं पे मीठी सी चाशनी में डूबी हुई वो शाही टुकड़े की ब्रेड, ओए ओए ओए भाई, जो ईद के दिन डेजर्ट का स्टार होती है। तो आज के प्रोग्राम में हम कंप्लीट जर्नी करेंगे नमकीन से मीठे तक, और हर लम्हे में हम धीमी स्पीड में एंजॉय भी करेंगे, हल्की आंच पे रख के आहिस्ता आहिस्ता वो शीरी वो लज्जम वो गट्टम गट्टा गट। तो जनाब ईद का दिन हमेशा से ही फ्लेवर्स का दिन होता है, जहां हर घर में अलग अलग डिशेस बनती हैं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो ऑलमोस्ट हर किचन का हिस्सा होती हैं, और उसमें कलेजी जो एक क्विक और फ्लेवरफुल डिश होती है, और ईद के दिन तो खासम खास भाई, अक्सर ईद की सुबह इसको सबसे पहले बनाया जाता है क्योंकि ये जल्दी तैयार हो जाती है और बहुत सेटिस्फाइंग होती है। इसी के साथ साथ शाही टुकड़ा जो दूध मलाई और मीठी चाशनी से बना होता है, तो भाई दोनों ही मील एक कंप्लीट सेलिब्रेशन बन जाती है, एक बेहतरीन कॉम्बो बना के देती है हमें ईद का। तो आज हम इसी कॉम्बिनेशन को एक्सप्लोर करेंगे एक ऐसे अंदाज में कि आप आसानी से फॉलो भी कर सकें और उसे महसूस भी कर सकें। भाई अगर हम कलेजी की बात करें पहले, तो ये एक

सही बैलेंस ही उसका परफेक्ट टेक्सचर देता है। और इसी तरह शाही टुकड़ा एक ऐसी डेजर्ट है जिसमें पेशेंस और लेयरिंग का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। भाई ब्रेड को फ्राई करना, चाशनी बनाना, फिर रबड़ी या दूध का मिक्सचर तैयार करना, ये सारे स्टेप्स मिलकर एक रॉयल डेजर्ट बनाते हैं। तो आज हम इन दोनों डिशेस के हर स्टेप को डिटेल के साथ समझने वाले हैं, ताकि एक घर के अंदर इजिली कहना चाहिए अच्छी डिश बन जाए और सब उसका लाभ भी उठाएं। तो भाई कुकिंग एक ऐसी चीज है जहां आप अपनी फीलिंग्स को भी मिक्स करते हैं। जब आप कलेजी बनाते हैं तो उसका सिजलिंग साउंड और उसकी खुशबू आपको एक एनर्जी देती है, और जब आप शाही टुकड़ा तैयार करते हैं तो उसकी मिठास और प्रेजेंटेशन आपके मूड को सॉफ्ट और रिलैक्स बना देती है। तो भाई ये दोनों डिशेस एक दूसरे को परफेक्टली बैलेंस करती हैं, एक साइड स्पाइसी और सेवरी और दूसरी साइड मीठी और क्रीमी। तो इसी बैलेंस का नाम है ईद, और जो ओरिजिनल रायका भी होता है ईद का। तो आज हम इसी बैलेंस को फील करेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो आइए भाई, सबसे पहले जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं कि अच्छा शेफ वही है जो फूड सेफ्टी का ख्याल रखे। कुछ सिंपल से फूड सेफ्टी स्टेप्स जान लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। कुकिंग स्टार्ट करने से पहले थोड़ी किचन सेफ्टी की बात हमेशा सोच लेनी चाहिए या कर लेनी चाहिए, क्योंकि स्मार्ट शेफ्स ही हमेशा सेफ शेफ्स होते हैं। सबसे पहले क्लीन योर हैंड्स। हमेशा फूड हैंडल करने से पहले हैंड वॉश करें, जर्म्स को बाय बाय करें। नंबर दो, शार्प नाइफ्स यूज कीजिए। एक शार्प नाइफ ब्लंट नाइफ से ज्यादा सेफ होती है। क्यों? क्योंकि ब्लंट नाइफ स्लिप कर सकती है और कट्स लग सकते हैं। नंबर थ्री, कटिंग बोर्ड स्टडी रखें। नीचे कोई डंप क्लॉथ वगैरह रख सकते हैं आप, या फिर ऐसा चॉपिंग बोर्ड यूज करें जिसके नीचे कोई रबर वगैरह लगी हुई हो, ताकि स्लिप होने का डर ना हो। नंबर फोर, इंग्रेडिएंट्स रेडी रखें। सब चीजें पहले कट और वॉश कर लें ताकि कुकिंग स्मूथ हो। और याद रखिए, आज हम हीट यूज नहीं कर रहे हैं, लेकिन अटेंशन अब भी की इंग्रेडिएंट्स हैं। कुकिंग हमेशा फन होनी चाहिए, रश्ड नहीं। टाइम लीजिए और प्रोसेस को एंजॉय कीजिए। तो चलिए अब हम अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं, जहां हम डिटेल में बात करेंगे कि भाई इंग्रेडिएंट्स की और प्रिपरेशंस की क्या सूरत हाल रखनी है। आप अगर घर पर हैं तो इसी वक्त अपने किचन में आप तशरीफ ले जा सकते हैं। नोट्स बनाना चाहें तो बनाइए, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप रिलैक्स रहें और इस प्रोसेस को एंजॉय करें। मैं हर चीज को सिंपल और आसान तरीके से एक्सप्लेन करने वाला हूं, बिना किसी कंफ्यूजन के आप फॉलो करते रहिए स्टेप बाय स्टेप। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि अब हम ईद के इस टेस्टी और ब्यूटीफुल सफर के असल पार्ट में एंटर कर रहे हैं। तो जनाब, सबसे पहले हम कलेजी के इंग्रेडिएंट्स की बात करते हैं। आपको फ्रेश मटन कलेजी चाहिए होगी, जो अच्छी तरह साफ की हुई हो, है ना। इसके लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि कलेजी के ऊपर एक स्किन होती है, यूजुअली हमें वो हटानी होती है, तो उसको हटाना बेहद जरूरी है, वरना कलेजी सही से पक नहीं पाती, स्मेल नहीं जा पाती। इससे भी पहले आपको कलेजी साफ करना आना चाहिए, और उसको साफ करने का बहुत बेहतरीन तरीका बताता हूँ। आप दूध में इसको, पहले तो आप को सिरके में डुबो दीजिए, नमक और सिरके के साथ थोड़ा सा, आप सिरका नहीं है तो नींबू डाल दीजिए, पानी में भिगो दीजिए, ठीक है। थोड़ी देर बाद आप देखेंगे ये पूरा इसका जो खून वगैरह है वो निकल जाएगा। अब आती है बारी, इसको आप निकालिए, स्ट्रेन कीजिए और थोड़ी देर दूध में डाल दीजिए। बिल्कुल, तो कलेजी का जितना कसैलापना है और जितनी भी हीक है, वो दूध जो है उसको निकाल देता है पूरे तरीके से। बस यहाँ पे आप इसको स्ट्रेन कर लीजिए, धोना नहीं है, क्योंकि अब ये थोड़ा सा जो दूध इसमें लगा रहेगा वो मजा देगा हमारी हंडिया के अंदर भी। सही हो गया। यहां पर मैं मिकदार नहीं बता रहा हूं, आपके ऊपर है, आप जितनी भी चीजें सेट कर रहे हैं अपने हिसाब से कीजिए, कोई मुश्किल नहीं है। हर बार मैं बताता आया हूं इंग्रेडिएंट्स के बारे में, इस बार शो को इसी तरह रखा है कि इंग्रेडिएंट्स के अलावा भी कुछ बातें हम कर सके, ठीक है। तो इसके अलावा प्याज है, हरी मिर्च है, अदरक लहसुन पेस्ट है, नमक है, हल्दी है और थोड़ी सी लाल मिर्च। भाई नॉर्मल चीजें हैं जिसका हम रोज खाने में इस्तेमाल करते हैं और जिनको हम अपने इस्तेमाल में लाते हैं, जो हर किचन में मिल जाती है। कुछ लोग इसमें हरा धनिया और थोड़ा सा नींबू भी ऐड करते हैं, मैं करता हूं फाइनल टच के लिए, तो वो जरूरी भी है। वहीं शाही टुकड़े के लिए आपको ब्रेड स्लाइस चाहिए, दूध चाहिए, चीनी चाहिए, इलायची, थोड़ी सी मलाई और कुछ ड्राई फ्रूट्स चाहिए होते हैं। बस हो गया, ये तमाम चीजें सिंपल हैं और आसानी से मार्केट में भी मिल जाती हैं, आपके घर के अंदर होंगी होगी। ईद का माहौल है भाई, ईद का टाइम है, तो ये सारी चीजें

तो आपने पहले से ही मंगा के रख ली होगी, लेकिन इसका सही कॉम्बिनेशन ही आपकी डिश को परफेक्ट बनाता है, ये बात हमेशा याद रखिए। अब हम कलेजी की प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं भाई। तो सबसे पहले कलेजी को छोटे पीसेस में कट करें और अच्छी तरह से वॉच कर लें ताकि कोई स्मेल वगैरह ना रहे, जैसे कि मैंने आपको बताई दिया है। अब एक पैन में ऑयल गरम करें और उसमें स्लाइस्ड प्याज डालकर हल्का गोल्डन होने दें। इस स्टेज पे आपको इसको भून लेना है और इसके बाद किचन में एक प्यारी सी खुशबू आप देखेंगे फैलने लगी भाई। जब प्याज तैयार हो जाए तो उसमें अदरक लहसुन पेस्ट डाल दीजिए और थोड़ी देर उसको और भून लीजिए। आपको दिख जाएगा कि ये गोल्डन ब्राउन जब होना शुरू हो जाए, तो भाई जब ये भुन जाए तो आप समझ लीजिए कि ये रेडी हो गया है। यहां तक आपका प्रोसेस सिंपल और स्मूथ होना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। अब इस पैन में कलेजी डाल दीजिए, थोड़ा थोड़ा पानी अगर आप चाहें ना भूनने के वक्त, तो वो हम करते ही हैं, तो छोटी सिंपल चीजें मैं अवॉइड ही कर रहा हूं बताना, क्योंकि प्रोग्राम में दूसरी चीजें भी ऐड करनी है जितना टाइम हमारे पास है, ठीक है। तो भाई जैसे ही कलेजी पैन में आप ऐड कर देते हैं, उसका कलर चेंज होने लगता है और एक स्ट्रॉन्ग सा अरोमा आने लगता है। यहां पर सबसे ज्यादा जरूरी बात यह है कि आप इसे ज्यादा देर तक ना पकाएं। कलेजी अगर ओवर कुक हो जाती है तो वो हार्ड हो जाती है, ये भी याद रखिए, और टेस्ट भी उसका इफेक्ट होता है, इसलिए मीडियम हीट पर इसे अच्छी तरह स्टिर करते रहें और इसमें नमक, हल्दी और मिर्च ऐड कर दें। थोड़ी देर में ही ये टेंडर और जूसी हो जाती है और ये स्टेज ही आपकी कलेजी को परफेक्ट बनाती है। जब कलेजी ऑलमोस्ट रेडी हो जाए तो आप इसमें स्लाइस्ड हरी मिर्च और थोड़ा सा हरा धनिया ऐड करें, आखिर में हल्का सा नींबू स्क्वीज करके दें जो इसके टेस्ट को और एनहेंस करेगा। ये छोटी सी चीज पूरी डिश का फ्लेवर लिफ्ट कर देती है। आप देखेंगे कि कलेजी का टेक्सचर सॉफ्ट है और उसकी खुशबू बहुत ही इनवाइटिंग है। ये एक क्विक डिश है, लेकिन अगर सही तरीके से बनाई जाए तो ये किसी भी हैवी डिश को कॉम्पिटिशन में ला सकती है भाई। ये ईद ब्रेकफास्ट या लंच के लिए परफेक्ट चॉइस होती है। अब हम शाही टुकड़े की तरफ आ जाते हैं। एक रॉयल डेजर्ट माना जाता है भाई हमारे यहाँ। तो सबसे पहले ब्रेड स्लाइसेस को ट्रायंगल शेप में काट लें और ऑयल या घी में गोल्डन ब्राउन होने तक इसको फ्राई कर लें। वैसे हमारे यहाँ तो रेक्टेंगल शेप में भी काटे जाते हैं शादी वगैरह में, अगर आपने याद हो, यूपी की बात कर रहा हूँ मैं। तो जनाब ये फ्राइड ब्रेड ही इस डिश का बेस होती है। जब ब्रेड क्रिस्पी हो जाए तो उसे अलग रख दें। अब एक अलग पैन में चीनी और पानी डालकर चाशनी बनाएं और इस चाशनी में हल्का सा इलायची पाउडर ऐड करें ताकि एक मीठी सी खुशबू आए, और ये चाशनी शाही टुकड़े का ही असली मिठास का जरिया बनती है। अब दूध को एक पैन में उबाल कर थोड़ा थिक कर लें और उसमें चीनी और इलायची ऐड करें। ये आपकी रबड़ी टाइप मिक्सर बन जाती है जो शाही टुकड़े को क्रीमी बनाती है। अब फ्राइड ब्रेड को हल्का सा चाशनी में डिप करें और फिर उसके ऊपर ये दूध वाला मिक्सचर डाल दें। ऊपर से थोड़ी सी मलाई और चॉप्ड ड्राई फ्रूट्स जैसे बादाम और पिस्ता डाल दें। ये लेयरिंग इस डेजर्ट को शाही बना देती है। हर लेयर में टेस्ट और रिचनेस बढ़ जाती है। चलिए जनाब, अब जब कलेजी और शाही टुकड़ा दोनों रेडी हो गए हैं तो आपके पास एक कंप्लीट ईद प्लेटर है। एक साइड स्पाइसी गरम और फ्लेवरफुल कलेजी और दूसरी तरफ मीठी सॉफ्ट और क्रीमी शाही टुकड़े की मिठाई। ये कॉन्ट्रास्ट ही इस मील को स्पेशल बनाता है। आप इसे प्यार से सर्व करें और अपने घर वालों के साथ एंजॉय कीजिए। खाना सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं होता बल्कि खुशी शेयर करने के जरिया भी बनता है। आज का ये कॉम्बिनेशन आपके ईद टेबल को जरूर स्पेशल बनाने वाला है। तो चलिए, अब जब हमारी कलेजी और शाही टुकड़ा रेडी हो चुका है तो बात करते हैं कि इस टेस्टी मील को हम हेल्दी तरीके से कैसे एंजॉय कर सकते हैं। अक्सर ईद पर हम ज्यादा खाना खा लेते हैं और फिर हैवीनेस फील होती है, लेकिन अगर थोड़ी प्लानिंग कर ली जाए तो हम बिना किसी प्रॉब्लम के एंजॉय भी कर सकते हैं भाई। कलेजी एक ऐसी डिश है जो न्यूट्रिएंट्स से भरी होती है, लेकिन इसका टेस्ट और टेक्सचर तभी परफेक्ट रहता है जब इसे सही तरीके से पकाया जाए। इसलिए जरूरी है कि हम इसे ओवरकुक ना करें और मीडियम हीट पर लाइटली कुक करें ताकि ये सॉफ्ट और जूसी रहे। इसी तरह शाही टुकड़े को भी बैलेंस के साथ खाना चाहिए। हेल्दी ईटिंग का मतलब ये नहीं होता कि आप अपनी पसंद की चीजें अवॉइड करें। यहाँ पे मैं बात करने का यही जरिया निकाल रहा हूँ, इसलिए मैंने शॉर्ट बनाया है खाने को भी ताकि इन चीजों पे भी हम बात कर सकें, बल्कि इसका मतलब होता है कि आप स्मार्ट तरीके से खा लीजिए चीज और उसको आप इंजॉय भी कीजिए। जब आप कलेजी बना रहे होते हैं तो सबसे जरूरी बात होती है कि कुकिंग टाइम क्या लगा है।
कलेजी बहुत डेलिकेट होती है और ज्यादा देर पकाने से टफ हो जाती है, सख्त हो जाती है, जैसे मैंने बताया। इसीलिए शॉर्ट कुकिंग ही बेस्ट होती है, मगर उसको करना कैसे है मैंने आपको बता ही दिया है। अगर आप चाहें तो उसे पहले हल्का सा क्लीन करके थोड़ी देर, जैसे मैंने बताया, विनेगर या दूध वगैरह का इस्तेमाल करके उसको आप अच्छे से नॉर्मल कर लीजिए। ये छोटी सी टिप आपकी कुकिंग को नेक्स्ट लेवल तक ले जाती है और आपकी डिश ज्यादा एंजॉयबल बन जाती है। वहीं एक और इम्पोर्टेंट बात है पोर्शन कंट्रोल की। कलेजी और शाही टुकड़ा दोनों ही रिच डिशेज हैं, इसलिए ज्यादा क्वांटिटी लेना जरूरी नहीं होती। आप अगर थोड़ी सी कलेजी प्लेट में लें और उसके साथ थोड़ा सैलेड ऐड करें तो आपका मील बैलेंस हो जाता है। इसी तरह शाही टुकड़े को भी आप डेजर्ट के तौर पर छोटी क्वांटिटी में लेना ही बेस्ट तरीका होगा। अगर आप अवॉइड कर रहे हैं तो उसको टेस्ट तो कीजिए भाई, ईद है, हर बाइट को धीरे धीरे एंजॉय कीजिए ताकि आपको टेस्ट भी पूरा महसूस हो और आप ओवर ईट भी ना करें। ये सिंपल हैबिट आपको ईद के दिन भी

ही टुकड़ा खा रहे होते हैं तो बॉडी को पानी की जरूरत होती है, इसलिए आप अपनी मील्स के साथ पानी, नींबू पानी या हल्की सी लस्सी जरूर इंक्लूड करें और ये आपके डाइजेशन को भी सपोर्ट करती है और हैवीनेस को भी कम करती है। अक्सर हम पानी को इग्नोर कर देते हैं लेकिन ये एक सिंपल हैबिट है जो आपकी ईद को बहुत कंफर्टेबल बना सकती है। भाई थोड़ा थोड़ा पानी पीते रहें, आपको फ्रेश और एनर्जेटिक भी लगता रहेगा, ये एनर्जाइज करता रहेगा आपको। अब अगर घर में हम शाही टुकड़े को थोड़ा हेल्दी बनाना चाहें तो उसमें भी चेंजेस किए जा सकते हैं, व्हाई नॉट। जैसे कि आप ब्रेड को डीप फ्राई करने के बजाय शैलो फ्राई करें या बेक भी कर सकते हैं। इसी तरह शुगर सिरप को थोड़ा हल्का रखें या सिर्फ रबड़ी के साथ सर्व करें। ये छोटी छोटी एडजस्टमेंट हैं आपके डेजर्ट को थोड़ा हल्का बना देती हैं लेकिन टेस्ट फिर भी मेंटेन रहता है। कुकिंग का असल मजा ही ये है कि आप अपनी मर्जी के मुताबिक चेंजेस करें और अपने लिए परफेक्ट कॉम्बिनेशन तैयार करें। आखिर में सबसे इम्पोर्टेंट चीज है बैलेंस। आप ईद के दिन हर चीज एंजॉय करें भाई, लेकिन मॉडरेशन के साथ। अगर आप कहीं परहेज वगैरह कर रहे हैं, कलीजी का एक परफेक्ट बाइट और शाही टुकड़े का एक मीठा टेस्ट आपको पूरा सेटिस्फाई कर देता है। ज्यादा खाने के बजाय क्वालिटी पर फोकस करें, हर बाइट को फील करें और उसे एंजॉय करें। इसी तरह आप ना सिर्फ अपने टेस्ट को सेटिस्फाई करते हैं बल्कि अपनी हेल्थ को भी ख्याल में रख सकते हैं और यही असल में एक स्मार्ट और हेल्दी ईद सेलिब्रेशन है जहां टेस्ट और हेल्थ दोनों साथ साथ चलती हैं। चलिए भाई, एक इसमें हमने सेगमेंट रखा है ग्लोबल ईद प्लेट। ईद सिर्फ एक मुल्क तक ही लिमिटेड नहीं है बल्कि पूरी दुनिया में मनाई जाती है और हर जगह इसका अपना खास फूड कल्चर होता है। अगर हम कलेजी की बात करें तो ये साउथ एशिया में बहुत पॉपुलर है लेकिन इसी तरह मिडिल ईस्ट में भी लिवर डिशेज बनाई जाती है, एंजॉय करी जाती है बहुत ज्यादा। यहाँ कलेजी को ज्यादा सिंपल तरीके से लेमन और हर्ब्स के साथ सर्व किया जाता है। हर कल्चर का अपना अंदाज होता है लेकिन एक चीज कॉमन होती है, फ्रेश इंग्रेडिएंट्स और सिंपल कुकिंग। और यही वजह है कि हर जगह कलेजी अपने यूनिक टेस्ट के साथ पसंद की जाती है। भाई अगर हम थोड़ा और गहरा सोचें तो कलेजी की कुकिंग हर जगह एक ही प्रिंसिपल फॉलो करती है, इसे ज्यादा पकाना नहीं होता, जो हमारे यहाँ बड़ा मिसकंसेप्शन है। अगर हम बर्रे सगीर में देखें, गलाए जा रहे हैं, कुकर में सीटी लगाए जा रहे हैं, नहीं भाई, उसका टेस्ट भी खराब हो जाता है। चाहे आप इंडिया में हो, पाकिस्तान में हो, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल या मिडिल ईस्ट में या यूरोप में, हर जगह शेफ इस बात का ख्याल रखते हैं कि लिवर सॉफ्ट और जूसी होना चाहिए। ये एक यूनिवर्सल कुकिंग रूल है जो हर कल्चर में फॉलो होता है। इसी से पता चलता है कि कुकिंग के कुछ रूल्स हमेशा सेम रहते हैं, चाहे आप दुनिया के किसी भी कोने में ईद एंजॉय कर रहे हो। अब अगर हम शाही टुकड़े की बात करें तो ये भी एक इंटरेस्टिंग ग्लोबल कनेक्शन रखता है। मिडिल ईस्ट में आपको अली जैसा डेजर्ट मिलता है जो ब्रेड और मिल्क से बनाया जाता है, एक डो तैयार करके। यूरोप में ब्रेड पुडिंग भी इसी कंसेप्ट पर बेस्ड होती है। ये सब डेजर्ट एक बेसिक आइडिया शेयर करते हैं, ब्रेड को स्वीट और क्रीमी फॉर्म में कन्वर्ट करना। ये सिमिलैरिटी ये बताती है कि फूड का कंसेप्ट यूनिवर्सल होता है, बस उसे हर कल्चर अपने तरीके से प्रेजेंट करता है। तो जनाब, आजकल मॉडर्न फूड कल्चर में लोग ट्रेडिशनल डिशेस को फ्यूजन टच भी देते हैं। आप रेस्टोरेंट्स में शाही टुकड़ा एक न्यू वर्जन में देख सकते हैं जहां आइसक्रीम, चॉकलेट सॉस या नट्स का एक्स्ट्रा यूज किया जा रहा है, लेकिन असली मजा हमेशा ट्रेडिशनल टेस्ट में ही होता है। मैं नहीं कह रहा कि वो बुरा है, आजकल जेन ज़ी बुरा मान जाएंगे भाई मुझे सुन के। जब ब्रेड परफेक्टली क्रिस्प हो, चाशनी बैलेंस्ड हो और रबड़ी क्रीमी हो, तभी उसका असली फ्लेवर सामने आता है। ये ऑथेंटिसिटी ही उसे स्पेशल बनाती है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ट्रेडिशनल रेसिपी का अपना एक अलग ही चार्म होता है। तो वहीं जनाब, अगर आप अपनी ईद टेबल को थोड़ा ग्लोबल टच देना चाहते हैं तो आप सिंपल चेंजेस कर सकते हैं। भाई कलेजी के साथ आप लेमन वेजेस और फ्रेश हर्ब्स सर्व कर सकते हैं जो मिडिल ईस्ट स्टाइल का फील देती है। इसी तरह शाही टुकड़े को आप एलिगेंट प्लेट में सर्व कर सकते हैं और ऊपर से ड्राई फ्रूट्स और हल्का सा सेफ्रॉन वगैरह भी डाल सकते हैं। भाई प्रेजेंटेशन एक ऐसी चीज है जो आपके सिंपल खाने को भी स्पेशल बना देती है। जब
खाना अच्छा दिखता है तो उसका टेस्ट भी और ज्यादा इंजॉयबल लगता है। तो इस तरह हम देखते हैं कि कलेजी और शाही टुकड़ा सिर्फ डिशेज ही नहीं है बल्कि एक ग्लोबल कनेक्शन का हिस्सा है। दुनिया के मुख्तलिफ कल्चर्स अपने अपने तरीके से इन्हें

बनाते हैं, लेकिन उनका कोर कंसेप्ट सेम रहता है, सिंपल इंग्रेडिएंट्स और परफेक्ट टेक्निक। ईद का दिन भी इसीलिए स्पेशल होता है क्योंकि ये हमें सिर्फ अपनों के साथ ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लोगों के साथ जोड़ता है। भाई फूड इस कनेक्शन को और मजबूत बनाता है और आज का ये सफर भी इसी कनेक्शन को सेलिब्रेट करने के लिए है। तो दोस्तों अब आते हैं आखिरी सेगमेंट की तरफ, प्रोग्राम के आखिरी भाग की तरफ, जहां पर हम क्लोजिंग भी करेंगे, प्लेटर भी सजाएंगे और आपसे अलविदा भी लेंगे। सबसे पहले हमने बात करी मटन कलेजी की, वो सिजलिंग खुशबू महसूस की जो किचन को एक जिंदा एनर्जी देती है, और साथ ही शाही टुकड़े की मीठी और क्रीमी मिठास का भी लुत्फ उठाया। ये दोनों डिशेस एक परफेक्ट बैलेंस क्रिएट करती हैं, एक तरफ गरम स्पाइसी और क्विक कलेजी और दूसरी तरफ हल्का सा ठंडा या गरम सर्व किया गया सॉफ्ट और मीठा डेजर्ट। भाई ये कॉम्बिनेशन सिर्फ टेस्ट नहीं बल्कि एक पूरा एक्सपीरियंस है जो आपकी ईद के दिन को स्पेशल बनाता है। आज का प्रोग्राम भी इसी एक्सपीरियंस को आप तक पहुंचाने के लिए लाया गया है। बात करें प्रेजेंटेशन की तो इसका भी एक अपना ही जादू होता है। जब आप कलेजी सर्व करें तो उसे हल्का सा फ्राई करें, ऊपर से हरा धनिया और हरी मिर्च के स्लाइसेस डाल दें जो उसे फ्रेश और कलरफुल बनाते हैं, और साथ में भाई नींबू के स्लाइसेस जो हैं वो रख दें जो एक एक्स्ट्रा टैंगी टच देते हैं। दूसरी तरफ शाही टुकड़े को एक अच्छी प्लेट में अरेंज करें, ऊपर से बादाम पिस्ता और हल्का सा सैफरन डाल दें। जब ये दोनों चीजें एक साथ टेबल पर आती हैं तो सिर्फ देखकर ही नहीं दिल खुश हो जाता है भाई। अच्छी प्रेजेंटेशन टेस्ट के एक्सपीरियंस को और भी इनहेंस कर देती है, हमेशा याद रखिए। तो कहते हैं ना जो दिखता है वो बिकता है, उसका यही मतलब है। तो साहब ईद का असल मजा तब ही आता है जब हम अपनों के साथ मिलकर खाना एंजॉय करते हैं। भाई जब फैमिली एक टेबल पर बैठी हो, बच्चे हंस रहे हो और हर किसी के चेहरे पर स्माइल हो, खुशी हो, हंसी हो, तो खाना सिर्फ एक जरूरत नहीं बल्कि एक याद बन जाता है। हमेशा याद रखिए ईद अपनों के साथ ही सेलिब्रेट कीजिए, इसी तरह के खुशी के दूसरे दिन भी दूसरों को माफ कीजिए, एक्सेप्ट कीजिए और अपनों के साथ मिलकर आगे बढ़िए। कलेजी की हर बाइट और शाही टुकड़े का हर स्पून आपके लिए एक मेमोरी क्रिएट करता है। आप अपने दोस्तों को इनवाइट करें, अपने प्यारों के साथ बैठें और इस मील का मजा लें और इसे एक छोटी सी सेलिब्रेशन बना दें। ये मोमेंट्स ही जिंदगी को खूबसूरत बनाते हैं, हमेशा याद रखिए। तो साहब आज के प्रोग्राम से हमने ये भी सीखा कि कुकिंग सिर्फ स्टेप्स फॉलो करना ही नहीं होती बल्कि एक फील होती है। कलेजी बनाते वक्त टाइमिंग का ख्याल रखना और शाही टुकड़ा बनाते वक्त पेशेंस और लेयरिंग का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। ये सब छोटी छोटी चीजें मिलकर एक परफेक्ट रिजल्ट देती हैं। जब आप इन चीजों को समझते जाते हैं तो आप कुकिंग को सिर्फ एक काम नहीं बल्कि एक एंजॉयबल एक्टिविटी बना लेते हैं। इसीलिए जब भी आप किचन में जाएं, स्ट्रेस के साथ नहीं बल्कि सुकून और खुशी के साथ कुकिंग करें। आप अपने टेस्ट के मुताबिक इन डिशेज में थोड़ी सी क्रिएटिविटी भी ऐड कर सकते हैं। कलेजी में आप अलग मसालों का बैलेंस ट्राई कर सकते हैं या उसे थोड़ा ड्राई या ग्रेवी स्टाइल में भी बना सकते हैं, व्हाई नॉट। इसी तरह शाही टुकड़ा में भी आप चॉकलेट ड्रिजल या आइसक्रीम के साथ एक मॉडर्न ट्विस्ट भी दे सकते हैं। ये क्रिएटिविटी ही कुकिंग को एक्साइटिंग बनाती है, लेकिन साथ ही ट्रेडिशनल टेस्ट को मेंटेन करना भी जरूरी होता है क्योंकि वही असल फ्लेवर होता है जो हमें अपनी रूट से जोड़ता है। तो जनाब आज के दिन का एक और इम्पोर्टेंट पहलू है शुक्र अदा करना। जब हम अपने टेबल पर इतने टेस्टी डिशेस देखते हैं तो हमें ये याद रखना चाहिए कि ये सब अल्लाह सुभानहू ताला की नेमत है। कलेजी का हर बाइट और शाही टुकड़े का हर मीठा टेस्ट हमें ये एहसास दिलाता है कि जिंदगी कितनी खूबसूरत हो सकती है। इसलिए हर मील के साथ शुक्र का जज्बा रखना बहुत जरूरी है। ये छोटा सा एहसास आपकी खुशी को और भी बढ़ा देता है। ईद शेयरिंग का नाम है और अगर आप अपनी बनाई हुई डिशेस, आज की डिश की बात करें, कलेजी और शाही टुकड़ा किसी जरूरतमंद के साथ शेयर करें तो उसका मजा ही कुछ और होता है। खाना जब बनता है या बनाया जाता है या बांटा जाता है तो सिर्फ पेट ही नहीं भरता बल्कि दिल भी खुश हो जाता है। आपकी छोटी सी मेहनत किसी और के लिए बड़ी खुशी बन सकती है, ये याद रखने की जरूरत है। इसीलिए आज के दिन थोड़ा सा वक्त निकालकर अपनी खुशियां दूसरों के साथ भी शेयर कीजिए। ये ही ईद की असल पहचान है और रूह है। छोटों को, बच्चों को, अपकमिंग जनरेशन को ये बात सिखाइए।

0: के हाथ से दिलवाइए, उनके हाथ से तकसीम करवाइए, आप देखिए कि कितनी इंशाल्लाह ताला आपको भी खुशी मिलेगी और ईद कितनी खूबसूरत हो जाएगी। तो जनाब आप इस रेसिपी को फ्यूचर के लिए भी ऐड कर सकते हैं, याद रख सकते हैं। कलेजी एक क्विक और टेस्टी है, जब आपको कुछ स्पेशल सर्व करना हो, और शाही टुकड़ा एक परफेक्ट डेजर्ट है। हर दफा जब आप इन डिशेस को बनाएंगे, आज का ये प्रोग्राम और इसकी यादें आपके साथ होंगी। सरवर मिर्जा को याद करके दुआएं जरूर दीजिएगा। कुकिंग एक ऐसी स्किल है जो वक्त के साथ और बेटर होती चली जाती है, और हर एक्सपीरियंस आपको कुछ ना कुछ नया खाता जाता है। तो दोस्तों आज का सफर एक कंप्लीट एक्सपीरियंस था। उम्मीद करता हूँ खुशबू से शुरू हुआ, फिर रेसिपी तक पहुंचा, हेल्थ टिप्स भी मैंने समझाने की कोशिश की, वहीं हमने ग्लोबल कनेक्शन पे भी बात करी, और अब हम इसे एक प्यार से सेलिब्रेट करके और आपसे अलविदा भी लेंगे। भाई ये सब सिर्फ एक प्रोग्राम ही नहीं बल्कि एक जर्नी थी जो हमने मिलकर साथ गुजारी। आज ईद का खास दिन था तो सोचा आपके साथ गुजर रहा है तो कुछ बनाया भी जाए, पकाया भी जाए, यादें शेयर भी करी जाए। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस रेसिपी को ट्राई करें और अपना फीडबैक जरूर शेयर करें। हमारा व्हाट्सएप नंबर आपको पता ही है, 666-22-107। भाई आपकी फीडबैक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, फोटो खींच के मेरे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। अब वक्त है इस महफिल को धीरे धीरे अख्तिताम तक पहुंचाने का। उम्मीद है कि आज का ये ईद स्पेशल प्रोग्राम आपके लिए इन्फॉर्मेटिव और एंजॉयबल रहा होगा। आपने सिर्फ एक नहीं बल्कि दो जबरदस्त डिशेस बनाना सीखी, एक सेवरी एक स्वीट, और अब आप अपने घर में इस कॉम्बिनेशन को कॉन्फिडेंटली ट्राई कर सकते हैं और अपनी ईद को और भी खास बना सकते हैं। हर लम्हा एंजॉय करिए और अपनों के साथ एंजॉय कीजिए। तो चलिए साहब इसी के साथ मैं आपसे इजाजत लेता हूं, लेकिन जाने से पहले बस इतना कहूंगा कि अपनी जिंदगी में छोटी छोटी खुशियों को अप्रिशिएट कीजिए, अपने घर को प्यार से भरिए, अपनी टेबल को टेस्ट से और अपने दिल को शुक्र से। मटन कलेजी और शाही टुकड़ा का ये कॉम्बिनेशन इस ईद को और भी ज्यादा यादगार बनाएगा, यही मेरी दुआ है। अपना ख्याल रखिए, सेहतमंद रहिए और ईद के इस खूबसूरत मौके को पूरी खुशी के साथ एंजॉय कीजिए। दोस्तों जिंदगी का असल मजा इसी में है कि हम छोटी छोटी खुशियों को महसूस करें, उन्हें सेलिब्रेट करें और अपनों के साथ बांटें। आज का ये मील सिर्फ खाने तक लिमिटेड नहीं है बल्कि एक याद है, एक एहसास है जो आपके दिल में हमेशा रहेगा। तो इसी के साथ इजाजत ले लेते हैं भाई। प्रोग्राम साउंड डिजाइनर शहबाज अंसारी के भी मुंह में पानी आ रहा है, बहुत तेज उनको भूख भी लगी आई है, उनका भी बहुत शुक्रिया कि वो हमारे साथ जुड़े रहे, बहुत बहुत शुक्रिया और ईद मुबारक शहबाज भाई। और आप सभी को सरवर मिर्जा की जानिब से ईद की पुरखलूस मुबारकबाद। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए, देखते और सुनते रहिए FM 107 दिल से देश।
1: ईद किचन विद आरजे सरवर मिर्जा, ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी।
2: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें,
3: आज ही राब्ता करें
2: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
4: अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं दोहा वाला कबीर FM 107 पे, और आप सभी सुनने वालों को ईद उल अजहा की दिली मुबारकबाद। अल्लाह ताला हमारी कुर्बानी को कबूल फरमाए और हमारे दिलों में मोहब्बत हमेशा बनाए रखे।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें,
1: आज ही राबता करें
0: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।

अल्लाह की रहमतों और नेमतों से आपका घर हमेशा भरा रहे। इस ईद पर सिर्फ दावत ही नहीं बल्कि अपनों के साथ मोहब्बत का सिलसिला चलता रहे। FM 107 की जानिब से मैं आपकी अमीता आप सभी को ईद उल अदा की दिली मुबारकबाद देती हूँ। बने रहिए हमारे साथ, सुनते रहिए FM 107 दिल से।

0: हिदायत से रोशन रखे अल्लाह सुभानहु व तआला हमें अपना सच्चा फरमा बरदार बना दे और हमारी औलाद को भी दीन की रोशनी अता फरमा अल्लाह हमारी तौबा को कबूल फरमा हमारे घरों को रहमत का मरकज बना अल्लाह हमें नेक अमल हलाल कमाई और सच्चाई की जिंदगी नसीब फरमा आमीन या रब्बल आलमीन तमीन इसी दुआ के साथ आप सभी को सरवर मिर्जा की जानिब से ईद उल अजहा की दिली मुबारकबाद
1: क्या आप जानना चाहते हैं कि कतर में बिजनेस कैसे चलता है
0: और कौन से हैं वो मुख्तलिफ टाइप्स के बिजनेस और कैसे आप भी अपनी बिजनेस जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं
1: तो मिस मत कीजिए प्रोग्राम कतर बिजनेस 360 जहां हम बात करते हैं बिजनेस की दुनिया के हर पहलू पर सिंपल और इंटरेस्टिंग अंदाज में
0: हर मंडे सुबह 10 बजे से आज नाजिया के साथ ओनली ऑन एफएम 107
1: बिजनेस की समझ कतर बिजनेस 360 के साथ
2: एफएम 107 पेश करते हैं ईद स्पेशल शो ईद की धुन और इस मौसीकी भरी महफिल की मेजबानी कर रही हैं आपकी अपनी ए फॉर अमिता सुपरहिट नगमे हो या ईद की दिलचस्प और अनोखी बातें ए फॉर अमिता बनाएंगी आपकी ईद को और भी यादगार तो रास्ते के ट्रैफिक में हो या घर पर दोस्तों के साथ ईद की धुन से हम बदल देंगे आपका मूड तो सुनिए ईद की धुन ईद के चारों दिन ए फॉर अमिता के साथ शाम 4 बजे से सिर्फ एफएम 107 पर दिल से देसी
3: अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू आप सुन रहे हैं हदीस इन अ मिनट सीम के साथ हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे घर तशरीफ लाए जब दो लड़कियां बात की जंग के गीत गा रही थीं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेट गए और अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया इतने में हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु आए और मुझे डांटते हुए कहने लगे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में शैतानी साज अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी तरफ देख कर फरमाया इन्हें रहने दो जब हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु की तवज्जो हट गई तो मैंने इशारा किया और वो लड़कियां चली गईं। वो ईद का दिन था और कुछ हबशी लोग नेजे और ढालों के साथ खेल दिखा रहे थे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे पूछा कि क्या मैं ये मंजर देखना चाहती हूँ मैंने हाँ कहा फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे अपने पीछे खड़ा कर लिया मेरे गाल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गाल मुबारक से लगा हुआ था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे थे बनी अरफीदा खेलते रहो यहाँ तक कि जब मैं थक गई तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा क्या आप तुम खुश हो मैंने अर्ज किया जी हाँ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अच्छा अब जाओ रिवायत सही बुखारी हज़रत अबू दर रज़ी अल्लाहु अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारा मुस्कुराना भी सदका है तुम्हारा किसी को भली बात कहना सदका है और किसी को रास्ता दिखा देना भी सदका है रिवायत सही मुस्लिम तिर्मिज़ी
2: स्पोर्ट्स की दुनिया के हैरतअंगेज रिकॉर्ड्स और जबरदस्त कहानियां सुनिए स्पोर्ट्स वर्ल्ड रिकॉर्ड्स स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मोहम्मद अमीन के साथ हर बुध को दोपहर 1 बजे से सिर्फ एफएम 107 पर स्पोर्ट्स वर्ल्ड रिकॉर्ड्स जहां रिकॉर्ड्स बनते भी हैं और टूटते भी हैं

0: वन की पूरी फैमिली की तरफ से हमारे तमाम सुनने वालों को ईद उल अदा की दिल की गहराइयों से मुबारकबाद।
1: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही रابطہ करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।

अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आरजे महावश FM 107 और मेरी तरफ से आप सब लोगों को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। अल्लाह ताला आपकी कुर्बानियों को कबूल फरमाए, आपकी जिंदगी को खुशियों, बरकतों और सलामती से भर दे और आपके घर को अपनी रहमतों से मुनव्वर करे।

दिन में आज हम बात करेंगे खास स्पोर्ट्स पर्सन के बारे में ऑन स्पोर्ट्स हाइलाइट्स. वन ऑफ द लीडिंग बास्केटबॉल प्लेयर्स ऑफ द वर्ल्ड कोबी ब्रायंट. कोबी ब्रायंट को दुनिया ब्लैक मांबा के नाम से जानती है. कोबे सिर्फ एक बास्केटबॉल प्लेयर नहीं थे बल्कि मेहनत, जुनून और डिटर्मिनेशन की जिंदा मिसाल थे. उन्होंने अपना पूरा करियर NBA की मशहूर टीम लॉस एंजलिस लेकर्स के साथ गुजारा और वहीं अपनी लाजवाब पहचान बनाई. कोबी ब्रायंट ने 20 साल के करियर में 5 NBA चैंपियनशिप्स जीती और कई मरतबा ऑल स्टार टीम का हिस्सा बने. उनकी स्कोरिंग एबिलिटी, क्लच मोमेंट्स में परफॉर्मेंस और प्रेशर में काम रहना उन्हें बाकी प्लेयर्स से मुख्तलिफ बनाता था. 81 पॉइंट्स का हिस्टोरिक मैच आज भी NBA की हिस्ट्री के यादगार लम्हों में शुमार होता है. मंबा मेंटालिटी कोबे का सबसे बड़ा लेसन था जो ये सिखाता है कि हर दिन को बेहतर बनाने के लिए भरपूर मेहनत और फोकस जरूरी होता है. बास्केटबॉल कोर्ट के बाहर भी कोबे ने लिखाई, फिल्म मेकिंग और यंग एथलीट्स की रहनुमाई में अपना किरदार अदा किया. दोस्तों, 2020 में उनकी अचानक वफात ने स्पोर्ट्स दुनिया को गहरा सदमा दिया, लेकिन उनकी लेगेसी हमेशा जिंदा रहेगी. कोबी ब्रायंट हमेशा बास्केटबॉल और स्पोर्ट्स हाइलाइट्स का रोशन चैप्टर रहेंगे. उम्मीद है आपको आज का ये स्पोर्ट्स हाइलाइट पसंद आया होगा. अगली बार एक और स्पोर्ट्स स्टार के साथ हम हाजिर होते हैं. तब तक के लिए मुझे यानी मोहम्मद अमीन और साउंड डिजाइनर शकीब अहमद को दीजिए इजाजत. अल्लाह हाफिज़.

ईद का जश्न ना ऐसा होना चाहिए कि दावत और लोग दोनों की कमी ना हो, तभी तो होता है हाउस फुल। अब दस्तरखान पे महफिल और किस्से और साथ में पकवान, ओए होए, यही तो बात है, यही तो है हाउस फुल। तो किस्से वाला जो पार्ट है ना, वो आप हमसे शेयर कीजिए, बिकॉज यू आर वेलकम इन आर हाउस फुल ईद। ईद का खास प्रोग्राम ईद के चारों दिन शाम 5 बजे से मेरे यानी दोहा वाले कबीर के साथ जरूर सुनिए हाउसफुल ईद सिर्फ FM 107 पर, दिल से देसी।

0: कतर नेशनल हेल्थ स्ट्रेटजी हेल्थ फॉर ऑल सुनिए डॉक्टर फौजिया शफीक के साथ FM 107 दिल से देसी।
1: अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। ईद मुबारक। ईद उल अधा में गोश्त का सही इस्तेमाल और सफाई बहुत अहम है, क्योंकि मामूली लापरवाही फूड पॉइजनिंग और मेदे की बीमारियों का सबब बन सकती है। माहरीन के मुताबिक जो गोश्त है, जो रॉ गोश्त है या कच्चा गोश्त है, ज़्यादा देर तक बाहर रखने से उसमें जरासीम तेज़ी से पैदा हो जाते हैं। इसलिए चंद अहम जो एहतियातें हैं वो बेहद ज़रूरी हैं। यानी कुर्बानी के गोश्त को जल्द से जल्द फ्रिज में या फ्रीज़र में आप रख दीजिए। और जो गोश्त आप पकाते हैं या खाना जो बनाते हैं और जो कच्चा गोश्त है, जो रॉ है, उन दोनों को अलग अलग रखिए। गोश्त को हैंडल करने के बाद, यानी गोश्त को हाथ लगाने के बाद, आप अपने हाथ जो हैं अच्छी तरह से धो लीजिए, सोप इस्तेमाल कीजिए। गोश्त को अच्छी तरह पका कर खाइए। बार बार गोश्त को फ्रीज़र में जो है वो निकालिए और दोबारा ना रखिए, यानी गोश्त को फ्रीज और डीप फ्रीज जो है बार बार ना कीजिए। लिस्टनर्स, बारबेक्यू के दौरान भी एहतियात बेहद ज़रूरी है। बच्चों को आग से दूर रखिए और बारबेक्यू को बगैर निगरानी ना छोड़िए। याद रखिए, सफाई निसफ ईमान है और अच्छी सेहत साफ आदत से शुरू होती है। अल्लाह ताला आप और हम सबको महफूज, सेहतमंद और खुशियों भरी ईद अता फरमाएं। लिसनर्स, ज़्यादा खाने से बचने के लिए अपने गोश्त की जो सर्विंग प्लेट है उसका जो पोर्शन है वो कंट्रोल कीजिए। इसी तरह से अपनी प्लेट को बैलेंस में रखिए। जैसे कि रेड मीट है उसमें फाइबर भी मौजूद होना चाहिए, जैसे कि सैलड है और पत्तों वाली सब्जियां हैं। इस तरह से जो हमारे निज़ाम है उसको आसानी होगी, वो डाइजेस्ट कर सकेगा। ईद की बेहतरीन मिठाइयों को ताज़ा फल, खजूर या चॉकलेट्स जो हैं उनसे भी आप चेंज कर सकते हैं। इसी तरह से जो गोश्त में आपको नज़र आ रही होती है चकनाई या फैट्स, तो आप उन्हें अलग कर दीजिए। और इस तरह से उबालने के लिए या फिर ग्रिल करने के लिए या डीप फ्राई जो है वो आप ना कीजिए, बल्कि उसे बॉयल कर लीजिए या ग्रिल कर लीजिए, वो बेहतरीन होगा। इसी तरह दिन भर में काफ़ी मकदार में आप लिक्विड जो है वो आप लीजिए, और ख़ास तौर पर अपने यूरिन का ज़रूर ख्याल रखिए कि उसका रंग क्या है। इस तरह से हाइड्रेशन का पता चलता है। और जो बहुत ज़्यादा मीठे और जो कैफीन वाले मशरूबात हैं उनको भी महदूद कर दीजिए। तो इस तरह से हम थोड़ी सी एहतियात करके बेहतरीन ईद जो है वो गुजार सकेंगे। ईद मुबारक।
0: कतर नेशनल हेल्थ स्ट्रेटजी हेल्थ फॉर ऑल FM 107 दिल से देसी।

FM 107 पेश करते हैं ईद का स्पेशल प्रोग्राम किड्स कार्निवल सफा के साथ, एक फन फिल्ड शो जहां बच्चों के लिए स्टोरीज, गेम्स, हंसी मजाक, म्यूजिक और एक्साइटिंग सरप्राइजेस होंगे। ईद के पहले और तीसरे दिन दोपहर 3 बजे से, तो सुनना मत भूलिएगा और अपनी ईद को और भी खुशगवार बनाएं सिर्फ FM 107 पर किड्स कार्निवल पर आरजे सफा के साथ।

अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू. मैं हूं नाज़िया एफएम 107 से एंड वेलकम टू आवर सेगमेंट कॉल्ड ईद वैल्यूज. दोस्तों, ईद उल अधा हमें सिर्फ कुर्बानी का सबक नहीं देती बल्कि ये भी सिखाती है कि हम अपनी इबादत इस तरह से अदा करें कि दूसरे इंसान, कम्युनिटी या रिलीजन को तकलीफ ना हो. जी हाँ, इस्लाम हमेशा बैलेंस, रिस्पेक्ट और क्लीनिनेस का पैगाम देता है. इसलिए कुर्बानी सिर्फ एक रिलीजियस एक्ट नहीं है बल्कि एक रिस्पॉन्सिबल

आपके दोस्तों यारों को और हमारे भाइयों को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। खुदा करे ये खास दिन आपकी जिंदगी में ढेर सारी खुशियां, सुकून और तरक्की लेकर आए। मे अल्लाह एक्सेप्ट योर प्रेयर्स, ब्लेस योर होम विद लव एंड पीस। ये दिन दोस्तों और परिवार के साथ, फैमिली मेंबर के साथ हंसने मुस्कुराने और मीठी सेवैया खाने का है। सभी पुरानी बातों को, गमों को भूलकर एक दूसरे को गले लगाएं और इस खूबसूरत मौके को दिल से सेलिब्रेट करें। स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी एंड कीप स्माइलिंग ऑलवेज। विश यू अ वेरी जॉयफुल एंड सेफ ईद उल अधा। और सुनते रहें FM 107 दिल से।

की होती है और ज़ाहिरी खूबसूरती उसकी एक अलामत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुशबू पसंद फरमाते थे। ईद के दिन इत्र लगाना मर्दों के लिए सुन्नत है। इंसान को खुशबूदार बनाता है, माहौल को खुशगवार करता है और सफाई का एहसास बढ़ाता है। माहौल खूबसूरत होता है, मुलाकातें खुशगवार हो जाती हैं और मोहब्बत बढ़ती है। अगर नीयत ये हो कि अल्लाह की नियमतों का शुक्र अदा करना है, सुन्नत पर अमल करना है और दूसरों के लिए अच्छा तासुर देना है, तो ये अमल इबादत बन जाता है। आज के दिन ईद सुन्ना में हमने सीखा कि ईद के दिन अच्छे और साफ सुथरे कपड़े पहनना सुन्नत है। इत्र लगाना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंदीदा सुन्नत है और हर अमल में नीयत बहुत अहम होती है। ये थी हमारी आज की ईद सुन्ना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टाइम। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़।

0: FM 107 की पूरी फैमिली की तरफ से हमारे तमाम सुनने वालों को ईद उल अदा की दिल की गहराइयों से मुबारकबाद। FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें, आज ही राब्ता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa। FM 107 पेश करते हैं ईद का स्पेशल प्रोग्राम किड्स कार्निवल, सफा के साथ एक फन फिल शो जहां बच्चों के लिए स्टोरीज, गेम्स, हंसी मजाक, म्यूजिक और एक्साइटिंग सरप्राइजेस होंगे और अपनी ईद को और भी खुशगवार बनाएं सिर्फ FM 107 पर किड्स कार्निवल पर RJ सफा के साथ दिल से देसी।
1: अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे लिटिल सुपरस्टार्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप बहुत खुश होंगे, हेल्दी होंगे और ईद की छुट्टियों को फुल ऑन एंजॉय कर रहे होंगे। पार्टी वेलकम टू योर फेवरेट फन शो जिसका नाम है ईद स्पेशल, हमारा जो चल रहा है किड्स कार्निवल सिर्फ FM 107 पर। मैं हूं आपकी होस्ट सफा और भाई आज फिर से हम लेकर आए हैं एक जबरदस्त सा मस्ती भरा, हंसी से भरपूर और प्यार से पैक्ड एपिसोड जो आपके दिल को खुशी से भर देगा। तो भाई सब बच्चे अपनी स्माइल्स रेडी कर लो, अपने टेडी बियर्स को पास बिठा लो और फुल वॉल्यूम में, नहीं फुल नहीं, अम्मा बस डांट पिटेगी, थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ा लो, थोड़ा सा जितना अच्छा लगे। और भाई क्योंकि किड्स कार्निवल का मैजिक शुरू होने वाला है तो सेट होके बैठ जाओ। देखिए आज का हमारा स्पेशल एपिसोड है काइंडनेस एंड हेल्पिंग पेरेंट्स पर। जी हाँ बच्चा पार्टी, देखिए आज हम बात करेंगे उन छोटी छोटी अच्छी सी बातों के बारे में जो किसी का दिन ब्यूटीफुल बना सकती है। कभी कभी क्या होता है, कभी मम्मा को पानी ला देना, कभी बाबा की स्लिपर्स सीधी कर उनको दे देना, कभी अपने रूम को क्लीन कर लेना और कभी कभी अपने छोटे भाई बहन के साथ प्यार से भी बात कर लेना। भाई इससे भी अम्मा अब्बा की बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाती है। ये सब छोटी छोटी आदतें आपको छोटी छोटी लगती हैं, सब बातें आप कहेंगे कि भाई ये बहुत छोटी सी बातें, लेकिन इनकी वैल्यू बहुत बड़ी होती है साथियों। और पता है जो बच्चे दूसरों की हेल्प करते हैं वो सबके फेवरेट बन जाते हैं भाई। तो अगर आपने अच्छा बच्चा बनना है ना तो दूसरों की हेल्प करना सीखें। बच्चा पार्टी काइंडनेस एक ऐसा मैजिक है जो बिल्कुल फ्री होता है, मुफ्त, लेकिन उसकी फीलिंग दुनिया की सबसे एक्सपेंसिव चीज से भी एक्सपेंसिव होती है। इमेजिन करें मम्मा जो है वो किचन में बिजी है और आप क्वाइटली जाकर डाइनिंग टेबल सेट कर देती हैं बगैर शोर मचाए हुए। और या तो फिर ये होता है या बाबा ऑफिस से थक कर आते हैं और आप उनके लिए एक ग्लास ठंडा पानी ले आते हैं। आए सोचो उनके चेहरे पर कितनी प्यारी सी स्माइल आएगी। भाई मुझे तो एक कॉम्प्लीमेंट मिलता था, मेरे अब्बा जो है ना मुझे प्यार से मेरे सर पे हाथ रख के मुझे गले लगा के प्यार करते थे। तो भाई साथियों वो स्माइल जो होती है ना वो असली ईद और असली हैप्पीनेस होती है। देखिए आज के शो में हम जो है वो बात करेंगे, बहुत सारी मस्ती करेंगे और हमारे पास होंगे कुछ फन रिडल्स भी, इंटरेस्टिंग स्टोरीज भी और एक स्पेशल से गेस्ट भी हैं हमारे साथ हमारे शो में लास्ट टाइम की तरह, जो हमें ये बताएंगी कि वो अपने घर में अपने पेरेंट्स की किस तरह से हेल्प करती हैं। हो सकता है आपकी वॉइस जो है वो हमारे नेक्स्ट एपिसोड में ऑन एयर सुनाई दे। तो इसके लिए आपने करना ये है कि आपने जल्दी से हमें मैसेज भेज देना है। भाई मैसेज भेजें हमें 666-22-107 पर और चाहें तो हमें सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारा सोशल मीडिया हैंडल है @FM107Qatar। भाई वहाँ भी बहुत सारी फन एक्टिविटीज और सरप्राइजेज आपका वेट कर रहे हैं, तो अगर आप हमें सोशल मीडिया पर फॉलो करेंगे तो आपको अपडेट्स मिलती रहेंगी। अच्छा बच्चों आपको एक मजे की बात बताऊं,

साइंटिस्ट ये कहते हैं कि जब हम किसी की हेल्प करते हैं ना या काइंडनेस दिखाते हैं तो हमारा ब्रेन हैप्पी केमिकल्स रिलीज करता है। इसका मतलब है काइंडनेस सिर्फ दूसरों को ही हैप्पी नहीं करती बल्कि हमें भी सुपर हैप्पी बनाती है। अच्छा भाई बच्चा पार्टी क्या आप घर में हेल्प करते हैं? क्या आप अपना स्कूल बैग खुद बनाते हैं? अगर करते हैं तो भाई एक्सीलेंट सी बात है, अच्छी बात है। और अगर अभी भी नहीं करते तो कोई बात नहीं, आज से स्टार्ट कर लो भाई, क्योंकि स्मार्ट किड्स वही होते हैं भाई जो सिर्फ गेम्स नहीं खेलते बल्कि मामा बाबा की हेल्प भी करते हैं। अच्छा सुपर हीरो बनना है ना तो एक बात याद रखो, असली सुपर हीरो केप नहीं पहनते, वो अपनी पेरेंट्स की हेल्प करते हैं। कभी अगर छोटे छोटे हाथों से बगैर तोड़े हुए बर्तन धो लिए अगर धो सकते हैं तो, या एक्स वाई जेड कुछ भी अपना काम कर लिया, आपकी कबर्ड सेट कर ली। कभी कभी पेरेंट्स बहुत टायर्ड हो जाते हैं साथ में, मामा सारा का सारा दिन काम करती हैं, कुकिंग करती हैं, क्लीनिंग करती हैं और फिर भी हमें प्यार से खाना खिलाती हैं, है कि नहीं? बाबा ऑफिस से काम करके आते हैं, मेहनत करते हैं, थके हुए होते हैं लेकिन फिर भी हमारी नीड्स पूरी करते हैं, हम जो फरमाइश करते हैं पूरी करते हैं। भाई हमारा भी तो फर्ज बनता है ना कि हम उनकी हेल्प करें, उनको प्राउड फील कराएं और उनको ये बिलीव करवाएं कि भाई हम भी इंडिपेंडेंट बच्चे हैं, हम अपना काम कर सकते हैं। बिलीव मी बच्चा पार्टी, जब पेरेंट्स आपके आपसे खुश होते हैं तो घर का एनवायरमेंट भी एक्स्ट्रा हैप्पी हो जाता है। चलिए एक काम करते हैं, छोटा सा गेम इमेजिन करते हैं, एक छोटा सा सिनेरियो, ठीक है? सोचिए एक घर है जहाँ बच्चे हर जगह ना अपने टॉयज इधर उधर फेंक रहे होते हैं, मतलब रैंडम बिल्कुल यूं कचरा मचा हुआ है, होमवर्क नहीं करते और मम्मा की बात भी नहीं सुनते, ऐसे वाले बच्चे। अब सोचो दूसरा घर है जहाँ बच्चे प्यार से एक दूसरे से बात करते हैं, अपना सामान अरेंज करके रखते हैं, पेरेंट्स की हेल्प करते हैं, अपना होमवर्क भी टाइम पर कर लेते हैं। सुनने में आपको कौन सी बात अच्छी लग रही है और कैसा लग रहा है कि कौन सा वाला सिनेरियो पीसफुल और हैप्पी लगेगा, बताएं, पहला वाला कि दूसरा वाला? बिल्कुल सही, दूसरा वाला। इसीलिए काइंडनेस और हेल्पिंग नेचर घर को हैप्पी बना देते हैं साथ में। और आपको पता है एक बात, हेल्पिंग पेरेंट्स से आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी भी सीखने को मिलती है। अगर आज आप अपने स्कूल बैग खुद सेट कर लेते हैं ना, सीख लेते हैं, तो कल आप बहुत ऑर्गेनाइज्ड पर्सन बन जाते हैं। भाई जो बच्चे घर के काम में हेल्प करते हैं ना वो फ्यूचर में कॉन्फिडेंट और केयरिंग एडल्ट्स बन जाते हैं। इसीलिए हेल्पिंग पेरेंट्स कोई बोरिंग काम नहीं होता बच्चा पार्टी। तो भाई आज के शो में हम एक प्यारी सी स्टोरी भी सुनेंगे एक ऐसे बच्चे की जो रोज सीक्रेटली अपनी मम्मा की हेल्प करता था और फिर एक दिन उसकी काइंडनेस ने सबको सरप्राइज कर दिया। इंटरेस्टिंग लग रही है स्टोरी? और हाँ लिटिल सुपरस्टार्स एक चैलेंज भी है आज का। आज का शो खत्म होने के बाद आपने घर में कोई एक हेल्पफुल काम करना है, हो सकता है आप अपनी बेडशीट सेट कर लें, डाइनिंग टेबल क्लीन करना या मम्मा को ग्रोसरी बैग्स कैरी करने में हेल्प करना। फिर आपने करना ये कि हमें अपने वॉइस नोट भेजने और बताना है कि आपने क्या हेल्पफुल काम किया है। तो प्यारे बच्चों स्माइल्स रेडी रखो क्योंकि आज का किड्स कार्निवल सिर्फ फन नहीं बल्कि प्यार काइंडनेस और फैमिली हैप्पीनेस से भरा हुआ है। मैं हूं आपकी होस्ट सफा और आप सुन रहे हैं FM 107 कतर। तो भाई हमारी टीम की तरफ से किड्स कार्निवल कंटिन्यू है और आप सभी को ढेर सारी ईद मुबारक। उम्मीद करती हूं कि आप सबकी ईद बहुत अमेजिंग जा रही होगी। अच्छा किसी ने बहुत ज्यादा मिठाई तो नहीं खाई? बताओ किसने खाई सबसे ज्यादा मिठाई? किसी ने ईदी कलेक्ट करके अपनी पॉकेट को हैवी कर लिया है? कौन कौन है जिसकी पॉकेट हैवी हो गई है और कौन कौन है जिसने नए कपड़े पहनकर पूरे घर को फैशन शो बना दिया है? ईद का मजा ही कुछ ऐसा होता है साथियों, घर में लाइट्स, यम्मी फूड, फैमिली गैदरिंग्स, हंसी मजाक और हर तरफ खुशियों का माहौल। लेकिन प्यारे बच्चों आज हम ईद की एक बहुत स्पेशल बात करने वाले हैं और वो है काइंडनेस और हेल्पिंग योर पेरेंट्स। साथियों मेरे प्यारे बच्चों ईद सिर्फ नए कपड़ों, चॉकलेट्स और बिरयानी और गिफ्ट्स और ईदी का नाम नहीं होता, ईद प्यार बांटने का नाम होता है। जरा सोचिए ना ईद का दिन मम्मा सुबह सुबह कितने बिजी होते हैं मम्मा पापा, कभी किचन में शीर खुरमा बन रहा होता है, कभी बिरयानी की खुशबू आ रही होती है, कभी गेस्ट के लिए क्या बन रहा होता है, चाय बन रही होती है और कभी कभी घर की सफाई भी चल रही होती है और बाबा भी कभी कभी शॉपिंग, कभी गेस्ट, कभी फैमिली विजिट्स, इनमें बिजी होते हैं। तो आपको क्या लगता है ऐसे में अगर हम उनको थोड़ी सी हेल्प कर दें तो उनका दिल कितना खुश हो जाएगा, है कि नहीं? तो सब प्यार बढ़ जाता है ना उससे। ये सब छोटी छोटी बातें होती हैं लेकिन इनकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा बड़ी होती है साथियों। अच्छा बच्चों एक बात बताऊँ, जब हम किसी की हेल्प करते हैं ना
तो हमारा ब्रेन ऑलरेडी हैप्पी फील करना शुरू कर देता है। और पता है क्या, गेस व्हाट, जो बच्चे घर में हेल्प करते हैं ना, वो बहुत रिस्पॉन्सिबल और केयरिंग होते हैं। जब आप अपने टॉयज खुद क्लीन करते हैं, जब आप डिसिप्लिन सीखते हैं और जब आप मम्मा को किचन में हेल्प करते हैं, तो आप टीम वर्क सीखते हैं। और जब आप थैंक यू और प्लीज बोलते हैं ना, तो आप रिस्पेक्ट सीखते हैं। मतलब हेल्पिंग योर पेरेंट्स इज नॉट जस्ट हेल्पिंग, इट्स एक्चुअली सुपर पावर ट्रेनिंग भाई। देखिए इधर अदा हमें ये सिखाती है कि हम सेल्फिश ना बने, हम केयरिंग और हेल्पिंग नेचर रखें। अगर किसी के पास कम चीजें हैं ना, तो हम उसके साथ शेयर करें, क्योंकि शेयरिंग इज केयरिंग। इसीलिए ईद पर लोग कुर्बानी करते हैं और फिर उस गोश्त को दूसरों में बांटते भी हैं, ताकि हर घर में ईद की खुशी पहुंच सके। कितनी ब्यूटीफुल सी बात है ना। और पता है प्यारे बच्चों, ईद पर शेयरिंग का कॉन्सेप्ट बहुत स्पेशल होता है। कुर्बानी के गोश्त को जो है ना, वो जो टोटल गोश्त होता है ना, उसके जनरली तीन पार्ट्स किए जाते हैं, उसे तीन पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। एक हिस्सा फैमिली के लिए होता है, एक हिस्सा रिलेटिव्स के लिए होता है और एक हिस्सा फ्रेंड्स के लिए होता है। जैसे पोर्शंस होते हैं ना अलग अलग, वैसे उसे तीन पोर्शंस में डिवाइड किया जाता है। और एक उन लोगों के लिए होता है जो जरूरत में होते हैं। मतलब ईद की खुशी सिर्फ घर तक नहीं रहती साथियों, बल्कि पूरी कम्युनिटी तक पहुंचती है। सोचिए, सिर्फ सोचिए, अगर हर इंसान शेयरिंग और काइंडनेस का ये हैबिट एवरीडे फॉलो करे, सिर्फ ईद पर नहीं, तो दुनिया कितनी हैप्पी प्लेस बन जाएगी ना, है कि नहीं। ईद अल अधा हमें एक बहुत इम्पोर्टेंट लेसन देती है, अपनी खुशी के साथ दूसरों की खुशी का भी सोचें। अगर आपका फ्रेंड कोई लोनली फील कर रहा हो, उसके साथ आप गेम खेल लीजिए। अगर कोई सिबलिंग अपसेट हो, उसको हग कर लीजिए। अगर मम्मा टायर्ड हैं, तो उनकी हेल्प कर लीजिए। बिलीव मी, काइंडनेस नेवर गोज आउट ऑफ स्टाइल, नेवर गोज आउट ऑफ ट्रेंड। और हमें चाहें तो आप फॉलो कर सकते हैं, हमारे सोशल मीडिया हैंडल हैं @FM107, जहां और भी बहुत सारी मस्ती और सरप्राइजेस आपका वेट कर रहे हैं। तो वही, स्टे ट्यून्ड, स्टे काइंड, स्टे हेल्पफुल, और अपने मम्मा बाबा को प्यार और रिस्पेक्ट देना कभी मत भूलना, क्योंकि असली ईद वही होती है भाई, जहां दिल खुश हो और घर प्यार से भरा हुआ हो। मैं हूं आपकी होस्ट सफा और आप सुन रहे हैं किड्स कार्निवल, ओनली ऑन FM 107।

0: स्टोरी कॉर्नर की तरफ चलते हैं। सबसे ज्यादा अच्छी बात जब हमें समझ में आती है ना, वो स्टोरी से ही समझ में आती है। क्या कहते हैं, मुझे तो स्टोरी अच्छी लगती है भाई। सुनते रहिए हमारे साथ, स्टे ट्यून्ड ऑन FM 107, दिल से देसी।
1: FM 107 पेश करते हैं ईद का स्पेशल प्रोग्राम किड्स कार्निवल, सफा के साथ एक फनफिल शो जहां बच्चों के लिए स्टोरीज

अपने अपनी इमेजिनेशन की कैप्स पहन लें और भाई सुनो एक प्यारी सी ईद की स्टोरी, ज़ारास ईद सरप्राइज। तो भाई साथियों, ज़ारा एक बहुत ही क्यूट और चीयरफुल लिटिल अच्छी सी प्यारी सी बच्ची थी। अच्छा, ईद उसका फेवरेट फेस्टिवल था, जैसा कि सारे बच्चों का होता है। वो चांद रात से बहुत एक्साइटेड हो जाती थी। उसकी एक्साइटमेंट की हालत ये थी कि वो सोने से पहले, ईद के दिन से पहले ही दो दो तीन तीन चार चार दफा अपने नए वाले शूज पहन पहन कर देख रही होती थी, चेक कर रही होती थी। कभी मिरर के सामने खड़ी होकर हेयर स्टाइल देख रही होती थी, कभी अपनी बैंगल्स की जो छन छन है वो सुन रही होती थी, कभी अपनी चॉकलेट्स भी काउंट कर रही होती थी। उसको लग रहा होता था कि भाई इस ईद पर बस फन ही फन होने वाला है। अच्छा, फिर क्या होता है, ईद से एक दिन पहले ही घर में बहुत हसल बसल शुरू हो जाती है। मामा किचन में बिजी हो जाती हैं, कभी समोसे फ्राई हो रहे होते हैं, कभी डेजर्ट्स बन रहे होते हैं, कभी गेस्ट की लिस्ट बन रही होती है। अच्छा, ज़ारा ने देखा कि भाई उनकी मम्मा ना थोड़ी सी टायर्ड लग रही हैं। ऑब्वियसली इतना कुछ कर रही हैं, वो मैनेज हसल कर रही हैं, लेकिन फिर भी ना वो स्माइल कर रही थी और सबका ख्याल रख रही थी। ज़ारा ने ना सॉफ्टली पूछा अपनी मम्मा से, मम्मा क्या आप थक गई हैं, ऐसे आप टायर्ड टायर्ड क्यों लग रही हैं, आपकी आंखें ऐसी बुझी बुझी सी क्यों लग रही हैं। मम्मा मुस्कुराकर बोली, थोड़ी सी बेटा, थोड़ी सी टायर्ड हो गई, लेकिन ईद की तैयारी भी तो करनी है, वो भी तो जरूरी है, वो कौन करेगा। अच्छा, ज़ारा कुछ देर तक ना, क्योंकि ज़ारा छोटी थी तो वो कुछ देर तक मम्मा को देखती रही ऐसे और फिर चुप हो गई। फिर उसने दिल में ये सोचा, मम्मा मेरे लिए इतना सब कुछ करती हैं, मेरे लिए नहीं सबके लिए करती हैं, शायद मुझे भी उनकी हेल्प करनी चाहिए। अच्छा, उस रात ज़ारा ने एक सीक्रेट प्लान बनाया। अच्छा, नेक्स्ट मॉर्निंग ज़ारा बहुत जल्दी उठ गई। यूजुअली तो वो यूँ समझ लें कि उठने में बहुत टाइम लेती थी, दोपहर के टाइम उठती थी, लेकिन आज वो एक मिशन पर थी भाई। वो क्वाइटली अपने रूम में गई और सफाई स्टार्ट कर दी। उसने अपने फ्लोर से टॉयज उठाए सारे जो कि बिखरे हुए थे, टेडी बेयर्स को अरेंज किया अपने बेड पर प्यार से, उसका जो बुक शेल्फ था जहाँ वो अपनी बुक्स रखा करती थी उसने एक एक करके सारी बुक्स को अलाइन किया प्रॉपरली, और अपने कपड़े भी भाई, वो जो कपड़े धुलकर आए थे ना लॉन्ड्री, वो उसने अपने कपड़े नीटली प्रॉपरली फोल्ड भी किए। अच्छा, फिर उसने सोचा, इतना कुछ तो कर लिया मैंने, अब मैं और क्या कर सकती हूँ। वो किचन में गई और मम्मा से बोलने लगी, क्योंकि मम्मा तो उसकी पहले ही उठ गई थी लेकिन वो थोड़ा काम में मसरूफ थी। तो उसने मम्मा से बोला, मम्मा क्या मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ। तो मम्मा थोड़ा सा सरप्राइज हुई, मम्मा ने कहा, वैसे तो ये कुछ करती नहीं है, ये आज इसको क्या हुआ है। तो मम्मा को भी थोड़ा अच्छा लगा, मैंने कहा, अच्छा हेल्प करोगी तो ऑफकोर्स इट्स ओके बेटा, हेल्प कर लो। ज़ारा ने क्या किया, ज़ारा ने डाइनिंग टेबल पर प्लेट्स और स्पून्स अरेंज करना स्टार्ट कर दिए। कभी स्पून गिर जाता था, क्योंकि वो काम पहले करती नहीं थी ना, तो कभी उसके हाथ से स्पून गिर जाता था तो कभी वो खुद ही हंसने लगती थी किसी ना किसी बात पर। कभी प्लेट्स उल्टी रख देती थी, कभी कहाँ प्लेट रखी हुई है कभी सीधी रख देती थी। लेकिन एक बात थी, ज़ारा का एफर्ट फुल ऑन नजर आ रहा था कि वो अपनी मम्मा की हेल्प करने की कोशिश कर रही है। अच्छा, ज़ारा थी भी छोटी, ज़ारा इतनी बड़ी नहीं थी, आपकी तरह ही वो 6 से 7 साल की थी। थोड़ी देर बाद डोरबेल बजती है और भाई गेस्ट आने लगते हैं सुबह सुबह, ईद पर तो होता है ना ऐसा माहौल। मम्मा ने जब क्लीन रूम देखा ज़ारा का और टेबल प्रॉपरली सेट देखा और ज़ारा को एक अच्छी सी स्माइल के साथ हेल्प करते हुए देखा, तो भाई मम्मा की तो आंखों में खुशी से चमक दौड़ उठी। मम्मा ने ज़ारा को ढेर सारा प्यार से जोर से हक किया और कहा, ज़ारा तुमने तो मेरा दिन बहुत इजी बना दिया बेटा, थैंक यू। तो ज़ारा ने दिल में एक वार्म सी फीलिंग फील की, और वो पता है क्या थी, वो थी हैप्पीनेस। उस दिन ज़ारा को ये समझ में आया कि गिफ्ट्स और चॉकलेट से भी कहीं ज्यादा ब्यूटीफुल फीलिंग किसी को हैप्पी करने में

0: होती है भाई, और वो किसी कोई और नहीं, आपके अपने पेरेंट्स। तो प्यारे बच्चों, हम इस स्टोरी से क्या सीखते हैं? हम ये सीखते हैं कि हेल्पिंग पेरेंट्स इज वन ऑफ द स्वीटेस्ट वे यू कैन शो लव। जब हम अपने पेरेंट्स को रिस्पेक्ट करते हैं ना और उनकी हेल्प करते हैं, तो घर में प्यार और हैप्पीनेस और भी ज्यादा बढ़ जाता है। याद रखिए, काइंडनेस एक मैजिक पावर की तरह होती है। जितना ज्यादा इसे यूज करेंगे ना, उतना ज्यादा स्ट्रांग होती चली जाती है। अगर आप एक स्माइल देते हैं किसी को, तो सामने वाला भी स्माइल करता है। अगर आप हेल्प करते हैं, तो दूसरे लोग भी इंस्पायर होते हैं और हेल्प के लिए तैयार हो जाते हैं। इसी तरह काइंडनेस स्प्रेड होती है साथियों। चलिए अब एक मिनी काइंडनेस चैलेंज करते हैं, ठीक है? आज के दिन आपने घर में एक हेल्पफुल काम जरूर करना है। हो सकता है आप अपनी प्लेट उठा लें, हो सकता है मामा को पानी देना, या अपने टॉयज या अपना रूम क्लीन करना, और फिर सोचना कि आपको अंदर से कितनी अच्छी वाली फीलिंग आती है। बिलीव मी, वो फीलिंग बहुत सेटिस्फाइंग होती है। और हाँ लिटिल सुपरस्टार्स, अगर आपने कोई क्यूट हेल्पफुल काम किया है ना, तो भाई मुझे वॉइस मैसेज भेजकर बताएं ना 666-22-107 पर। तो चलिए साथियों, अब मूव ऑन करते हैं हम अपने आज के मेहमान के सेगमेंट की तरफ, जहाँ पे हम अपने साथ लेकर आते हैं एक जूनियर आरजे। और भाई आज की हमारी जूनियर आरजे हैं, हमारे साथ कौन है भाई?
1: अमायरा ज़ैदा।
0: हाँ जी, अमायरा है हमारे साथ, मेरी बहुत प्यारी सी दोस्त हैं ये, और ये हमारे साथ फर्स्ट एपिसोड में भी थी। और मैंने सोचा जब इतनी सारी माशाल्लाह से बातें कर ही रही थी, तो इनकी कुछ बातें आधी अधूरी रह गई थी। इन्होंने कहा नहीं भाई, मुझे अपनी बातें पूरी करनी है। मैंने कहा चलें आपसे बातें पूरी कर लेते हैं। और आज हम आपको अपने जो है वो किड्स कार्निवल के इस एपिसोड में भी शामिल करते हैं, ताकि आप हमसे रिलेटिव बातें कर सकें, ईद से रिलेटेड और काइंडनेस से रिलेटेड, ठीक है? तो अमायरा ये तो बताएं, मैंने तो आपसे पूछ लिया था कि आपके लिए ईद का कॉन्सेप्ट क्या है। अगर मैं आपसे पूछूं अमायरा, इस ईद को लेकर अमायरा काइंडनेस के बारे में क्या सोचती है, तो फिर क्या जवाब होगा इसका अमायरा?
1: कुर्बानी मीट इज डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स, वन फॉर फैमिली, वन फॉर रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स, एंड वन फॉर नीडी पीपल।
0: वन फॉर नीडी पीपल, ठीक है। तो नीडी पीपल को देना काइंडनेस होती है
1: जी।
0: वेरी गुड। अच्छा अमायरा, कभी आपने ऐसा किया है कि घर में अम्मी की किसी काम में हेल्प कराई हो ईद के दिनों में?
1: जी, कभी मम्मा कोई और काम में रहती है ना, तो कभी मैं मम्मा के किचन से झाड़ू या कहीं भी मिल जाता है, तो मैं लेके झाड़ू पोछा सब खुद से कर लेती।
0: अरे भाई, ये मेरा भी फेवरेट काम था एक टाइम पर। मेरा दिल करता था कि मैं अपनी अम्मी के सारे काम कर दूं और अपनी अम्मी को कोई भी काम नहीं करने दूं। आपका सा दिल करता है? आप करता है ऐसा दिल? अरे भाई, तो फिर आप क्या क्या कर लेती है भाई? अम्मी की हेल्प के लिए झाड़ू भी हम खुद लगा लेते हैं, देखिए हम पोछा भी खुद लगा लेते हैं। अच्छा, आपने मुझे एक दफा बताया था, मुझे याद पड़ता है कि आपको कुकिंग का या बेकिंग का किस चीज का शौक था? समथिंग।
1: हाँ, मुझे कुकिंग में अच्छा लगता है। हाँ। और मैंने जब हम पहले अलसद में रहते थे, तो उस टाइम पापा का बर्थडे था, तो पापा के बर्थडे में हमने मम्मा और मैंने मिल के केक बनाया।
0: अरे, दिस इज सो काइंड ऑफ यू, यू बेक्ड अ केक फॉर योर फादर्स बर्थडे।
1: हाँ।
0: अच्छा, कौन सा वाला केक था?
1: कौन सा फ्लेवर था?
0: चॉकलेट था कि वनीला था?
1: वो कुछ तो फ्लेवर था यार,
0: कुछ तो था। बहुत टाइम हो गया, देखिए। हाँ। अब हमसे पुरानी बातें ना पूछा करें। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं आपका फेवरेट वाला केक कौन से फ्लेवर का है?
1: मेरे दो फ्लेवर, मुझे कुछ फ्लेवर बहुत अच्छे लगते हैं। एक तो मैंने पहले आपको कॉल पे बताया था कि
0: क्या क्या क्या
1: एक मम्मा का फेवरेट।
0: नहीं, मम्मा का नहीं भाई, मुझे अमायरा का पूछना है।
1: जो मम्मा का फेवरेट पाइनएप्पल वाला होता है, वो भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। अंदर की जो फीलिंग होती है पाइनएप्पल केक की, वो मुझे अच्छी लगती है।
0: अमायरा, आई एम नॉट लाइंग, लेकिन आई विल बी वेरी ट्रूथफुल, ओके? आई एम नॉट लाइंग, ओके? मुझे बहुत अच्छा लगता है पाइनएप्पल केक। ये क्या हो गया?

0: अगर मैं अमायरा को कहूँ कि अमायरा यू हैव टू ड्रेस अप योर योर मम्मा, ठीक है, तो मम्मा को कौन से कलर के कपड़े आप ईद पे पहनाएंगी?
1: मम्मा, मैं मम्मा को दो ऑप्शन दूंगी उनके फेवरेट कलर्स का, तो मम्मा वो एक चूज करेंगे, तो एक चूज करेंगे तो मैं दूसरा वाला वो रख के मम्मा को वो दे के कहूंगी कि मम्मा पहन क्या, जब तक मैं मेकअप का सामान निकालूं।
0: ओए भाई, मेकअप भी करना आता है?
1: हाँ।
0: तो पहले मुझे ये बताओ कलर,
1: मेरे
0: कलर
1: पास ना,
0: हाँ जी,
1: मेरे पास ना एक खुद का मेकअप किट है।
0: अरे भाई,
1: क्योंकि ना कभी मम्मा का लेना पड़ता था कि कभी वो
0: डांट पिटेगी मम्मा से, मम्मा का मेकअप पकड़ोगी तो
1: नहीं। मम्मा जब भी मम्मा मेकअप करती है तो मैं भी मम्मा के साथ कर लेते थोड़ा।
0: अरे भाई, अरे वाह, माशाल्लाह।
1: अभी वे हार्ट शेप का वो मेकअप किट है और मैं क्या करती हूँ, पहले खोलती हूँ उसको, फिर ब्लेंडर लेकर पाउडर लगा कर पाउडर को ब्लेंड करके फिर बाद में आई शैडो का वो

0: वो लेकर शेडो थोड़े लाइट लगाती हूँ, डार्क नहीं लगाती हूँ। अगर डार्क लग जाता है तो मैं अपना ब्लेंडर ले लेती हूँ वापस, फिर मैं उसी से ही ब्लेंड कर लेती हूँ।
1: अरे भाई, 8 साल की हैं और इनको ब्लेंडिंग भी आती है, और एक मैं हूँ। अच्छा एक बात तो बताएं, आपने तो मेरी बात का जवाब ही नहीं दिया, कलर कौन सा होगा मम्मा के कपड़ों का?
0: मम्मा का कपड़ा का पिंक हो सकता है या कोई भी सूट हो।
1: अच्छा, मैंने पता है कपड़ों का क्यों पूछा आपसे, क्योंकि आपकी अपनी माशाल्लाह से ड्रेसिंग बहुत प्यारी है, माशाल्लाह माशाल्लाह। चाहिए तो बताइए किसकी चॉइस है कपड़े, ये वाले जो भी पहने हुए इतने पिंक से व्हाइट से, इतने प्यारे प्यारे कलर, ये स्पेशली किसकी चॉइस है, मम्मा की, बाबा की, आपकी अपनी?
0: मेरी मोस्ट फेवरेट पर्सन मम्मा।
1: ओह माय गॉड, ये मम्मा का बच्चा है तो भाई ये मोस्ट फेवरेट पर्सन मम्मा की चॉइस है, माशाल्लाह माशाल्लाह, ये मम्मा हैज अ वेरी गुड चॉइस। तो भाई ये बताएं कि आपसे और थोड़े से सवाल पूछे जाएं?
0: जी
1: जल्दी जल्दी से पूछ लें
0: जी।
1: अच्छा ये तो बताएं, वो जो लास्ट एपिसोड में आपने रिडल पूछी थी वो क्या थी रिडल? कि यू बाय मी फॉर ईटिंग बट यू नेवर ईट मी, है ना, कुछ ऐसी रिडल थी ना?
0: पीपल बाय मी टू ईट,
1: ओके,
0: ईट मी बट Never eat me.
1: अच्छा याद आ गई हमें रिडल हमने। अच्छा ठीक है, मैंने सोचा हम भूल गई थी मेरी तरह। तो फिर क्या थी, पीपल बाय मी टू ईट मी बट दे नेवर ईट मी, और आपने मुझे उसका हिंट दिया था कि ए पहला अल्फाबेट है और सेकंड अल्फाबेट पी है। क्या था वो
0: बताऊं?
1: इस वाले एपिसोड में तो बता ही दें भाई।
0: उसका आंसर था अ प्लेट।
1: और मैं पता क्या सोच रही थी,
0: क्या
1: एप्पल? एप्पल, क्योंकि मैं अक्सर ये काम करती हूँ कि एप्पल खरीदती हूँ लेकिन खा नहीं पाती उसे। वो बेचारा इंतजार में रह जाता है कि सफा मुझे खाएगी। तो मैंने कहा वही वाला एप्पल होगा जिसको मैंने फ्रिज में छोड़ दिया था।
0: और कभी कभी मैं थोड़ा सा, कभी कभी मम्मा अभी तक कभी कभी करती है कि खाना कह रहे मत खाओ।
1: चलिए कोई बात नहीं। अच्छा वो खाने में ऐसी क्या चीज है जो आपको ईद पे जो बनती है नॉर्मली चीज, लेकिन आपको अच्छी नहीं लगती खाने में, आप कहते हो अच्छा खा लूंगी जबरदस्ती डांट पिटेगी तो, वरना अगर मुझे ऑप्शन हो तो मैं कुछ और खा लूंगी लेकिन ये नहीं खाऊंगी, क्या चीज आपको नॉट सो मच इंटरेस्टिंग लगती है, क्या चीज है?
0: मैंने कभी शेर कोरमा नहीं खाया ना, तो मैं कहती हूं मम्मा नहीं।
1: अरे शेर कोरमा बना लेती है लेकिन खाती
0: होती हूँ।
1: अरे भाई ये यूनिक बच्चा है भाई, बनाना।
0: पर जब भी मम्मा थोड़े आलमंड्स बचे होते हैं तो मैं छील कर कभी मम्मा 2-3 मुझे दे देते तो तुम खा लो, तो मुझे बहुत यम्मी लगता है।
1: भाई आलमंड्स मत, यू नो ड्राई फ्रूट्स आर वेरी हेल्दी, माशाल्लाह ड्राई फ्रूट खाया करें भाई, अच्छा होता है आलमंड्स। व्हाट अबाउट पिस्ताशियो?
0: अरे मुझे वॉलनट्स भी बहुत अच्छे लगते हैं।
1: वॉलनट्स भी अच्छे लगते हैं, वेरी हेल्दी, नाइस, गुड, खाया।
0: और हम कुछ दिन पहले ही हमने 2 पैकेट मखाने के लेकर आए हैं।
1: ओह नाइस, मखाने इज माय फेवरेट। मखाने आपको सॉल्टी वाले अच्छे लगते हैं या कैरमलाइज्ड या कैसे, ऐसे नॉर्मल? सॉल्ट एंड बटर।
0: मम्मा सॉल्ट लगाती हैं, थोड़ा सा डाल देती हैं।
1: हाँ।
0: फिर मम्मा मुझे सेक कर पहले सॉल्ट लगा कर मुझे दे देती हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है मखाना,
1: ये मुझे बहुत अच्छा लगता।
0: और बहुत टाइम से मुझे मखाना चाहिए था तो मैंने कहा मम्मा ले लो,
1: तो दुकान में देखिए आपको तो आपने ले ली। चलें भाई, वेरी गुड हो गया। अच्छा देखिए आज जो है ना हम अपने शो

0: में बात कर रहे हैं काइंडनेस की और आज हम बात कर रहे हैं अपनी पेरेंट्स की हेल्पिंग के बारे में. तो आप कैसे पेरेंट्स की हेल्प करती हैं घर में?
1: मैं मम्मा की हेल्प ऐसे करती हूँ कि
0: कब लास्ट टाइम मम्मा की हेल्प कब की थी? किचन में की थी?
1: हाँ, किचन में.
0: या अपने कपड़े फोल्ड करने में की थी?
1: हाँ, हाँ, हाँ,
0: या कहाँ की थी मम्मा की?
1: जब भी मम्मा कपड़े मेरे छोटे छोटे ब्रश करती हैं क्योंकि जो मम्मा पापा के बड़े बड़े कपड़े ना वो तो फोल्ड नहीं होते, तो मम्मा जब मेरे कपड़े फोल्ड करती है पैंट्स या फिर फोल्ड करने के लिए निकालती है, तो मैं अपनी टी शर्ट पैंट्स शॉर्ट्स सब वो खुद से फोल्ड कर लेती हूं.
0: नाइस, वेरी गुड. दिस इज अ वेरी रिस्पॉन्सिबल थिंग. आपको पता है छोटी छोटी चीजें
1: और मुझे पहले फोल्ड करना नहीं आता था, मैं जब से कुछ अलग अलग मैं फोल्ड करती थी. बाद में मम्मा से जब मेरा टी शर्ट फोल्ड करना सीखा तो बाद में अब मुझे आ गया था कि अभी कैसे टी शर्ट फोल्ड करना है.
0: दिस इज वेरी गुड, वेरी वेरी गुड. अपने काम खुद करना चाहिए एंड देयर इज ऑलवेज अ फेज ऑफ लर्निंग. हम बड़े भी हैं, मुझे भी नहीं आता. मुझे पता है मुझे अभी तक नहीं आते कपड़े फोल्ड करना. यू नो व्हाट डू आई डू? आई टेक द इजी वे आउट. यू नो हाउ आई यूज टू हेल्प माय मदर? मैं ना अपनी कबर्ड खुद बनाती थी. हाँ, मुझे कपड़े आयरन नहीं करना आते थे और मुझे ना कपड़े लपेटने नहीं आते, मतलब आई डिड नॉट न्यू हाउ टू फोल्ड देम प्रॉपरली. मुझे प्रॉपरली फोल्ड करते ना, तो माई फादर टॉट मी अ ट्रिक. माई फादर यूज टू से, अच्छा फोल्ड नहीं हो रहे ना, इट्स ओके, हैंग देम. So I used to hang them rather than folding them, क्योंकि मुझे folding सही वाली नहीं आती थी. मैं गुच्छ-पुच्छ कर देती थी उन्हें.
1: Same है वही.
0: मैं ये मेरे साथ भी यही होता था. तो फिर my father taught me a trick. He said, you don't fold, it's okay. You just hang them. Your cupboard will be aligned. And since that day till now, I do the same thing. अच्छा, हमारा जाने से पहले आप मुझे बताएं कि why do you think we should help our parents and we should be kind towards our parents?
1: They are kind to us and they help us when we are and we love them.
0: Yes.
1: And when we are stuck in a one thing, when they are here, then everything is fine.
0: Oh, that's so sweet. When we are stuck at something, when they are there, everything is fine. अच्छा, ये होता है कि जब हम किसी चीज में फंसे हुए होते हैं ना and we look at our parents, तो हमें लगता है जिंदगी इजी हो गई है एंड हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन जो है ना वो अम्मा अब्बा होते हैं. अच्छा, एक अच्छा सा मैसेज आप अपने अम्मी अब्बू के लिए कोई देना चाहेंगी?
1: मैं मम्मा पापा मेरे लिए इतना हार्ड वर्किंग होते हैं और मम्मा, क्योंकि मुझे एक बार मुझे निमोनिया हो गया था, फिर मम्मा ने मेरे चक्कर में अपनी जॉब छोड़ दी.
0: ओह, बिकॉज यू आर मोर इम्पोर्टेंट
1: देन योर जॉब.
0: यस, सो दिस इज वाई वी शुड बी काइंड टू आवर पेरेंट्स एंड दिस इज वाई वी शुड बी लविंग एंड केयरिंग टूवर्ड्स आवर पेरेंट्स. दिस इज वाई वी शुड ऑल्सो हेल्प देम, क्योंकि दे डू ऑल द सेक्रीफाइसेस फॉर अस. चले भाई, अपना ढेर सारा ख्याल रखें. अमायरा और मुझे दीजिए इजाजत और इस नोट पर आपको छोड़कर जा रहे हैं कि बड़ों की इज्जत करें, छोटों का ख्याल रखें और सबसे ज्यादा ख्याल अपना रखें, क्योंकि जो अपना ख्याल नहीं रखता
1: वो दूसरे का नहीं रखता,
0: वो दूसरे का भी नहीं रख सकता भाई. और ये याद रखें, लव योर पेरेंट्स, हेल्प देम. चले भाई, सबको अमायरा और मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज. अपना ढेर सारा ख्याल रखें और अमायरा और सफा की तरफ से सबको ईद मुबारक.
1: ईद मुबारक.
0: तो साथियों, हमें दीजिए इजाजत, अपना ख्याल रखें और सुनते रहें FM 107, दिल से देसी.

0: नेक ख्वाहिशात के साथ दुआ है कि आपकी हर परेशानी दूर हो जाए और दिल सुकून से भर जाए, आपकी हर कुर्बानी कबूल हो, अल्लाह आपके दिल को सुकून अता फरमाए और आपकी जिंदगी को अपनी रहमतों से भर दे। ईद उल अज़हा के इस मुबारक मौके पर आपको मोहब्बत और खुशियों के पैगामात मिलें। आप और आपके अपनों को अल्लाह सुबहाना हुआ ताला हमेशा अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे, आमीन। सरवर मिर्जा और FM 107 की पूरी टीम की जानिब से आपको ईद उल अज़हा की पुरखलूस मुबारकबाद। कुल्लु आम वांतुम बखे।
1: ईद सिर्फ कबाब और दावतें नहीं, सेहत का भी ध्यान रखना है। जानिए कैसे आप एंजॉय कर सकते हैं अपनी पसंदीदा डिशेस बिना गिल्ट के। इबादत और अपनों के प्यार के साथ स्मार्ट तरीके से सेलिब्रेट करें ईद के दूसरे और चौथे दिन शाम के 7:15 से। सुनिए हमारे स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मोहम्मद अमीन को इन द शो फिट एंड फेस्टिव, जहां ईद एंजॉय करेंगे फिटनेस के साथ।
2: FM 107 पेश करते हैं ईद स्पेशल शो ईद की धुन, और इस मौसीकी भरी महफिल की मेजबानी कर रही हैं आपकी अपनी ए फॉर अमिता। सुपरहिट नगमे हो या ईद की दिलचस्प और अनोखी बातें, ए फॉर अमिता बनाएंगी आपकी ईद को और भी यादगार। तो रास्ते के ट्रैफिक में हो या घर पर दोस्तों के साथ, ईद की धुन से हम बदल देंगे आपका मूड। तो सुनिए ईद की धुन ईद के चारों दिन ए फॉर अमिता के साथ शाम 4 बजे से सिर्फ FM 107 पर। दिल से देसी।
3: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se Desi.

0: FM 107 की पूरी फैमिली की तरफ से हमारे तमाम सुनने वालों को ईद उल अदा की दिल की गहराइयों से मुबारकबाद। ईद की धुन ए फॉर अमिता के साथ सिर्फ FM 107 पर, दिल से देसी।
1: अस्सलाम वालेकुम, क्या बात है क्या बात है, आप सभी का तहे दिल से इस्तकबाल है। मैं हूँ आपकी अमिता आपके साथ और खाजम खास शो ईद की धुन आपके लिए हम लेकर आए हैं। बलिए शो ईद स्पेशल है और आज इसका तीसरा दिन है, तो तीसरे दिन में मैं उम्मीद करती हूँ कि ईदी से आपकी पॉकेट्स बिल्कुल फुल होंगी और पेट में बिरयानी पूरी तरह से भरी होगी। बल आज

पार्टी हो रही है या किसके घर खाने पर जाना है, चलिए सारी बातें आप मुझे मैसेज करके बता सकते हैं, ओके। एंड इसके साथ क्या करना है, जहाँ कहीं भी आपका रेडियो चल रहा है उसका वॉल्यूम अप कर देना है, क्योंकि हम शुरुआत करने वाले हैं एक ऐसे गाने से जिसमें भाईजान का टशन और अक्षय कुमार की मस्ती एक साथ हमको महसूस होती है और दिखाई भी देती है। वेल, 30 मार्खा फिल्म का ये शानदार सा गाना, क्या आपको पता है कि इस गाने में हमारे भाईजान चिल अपीयरेंस दिया था, और वो भी किसके कहने पर, किसके कहने पर, सोचा है आपने कभी? इट्स ओनली बिकॉज ऑफ फराह खान। हाँ, इस गाने को गाया है शेखर रवजियानी, श्रिया घोषाल और राजा हसन ने, और इसे कंपोज किया है विशाल शेखर ने, जिन्होंने इसमें एक ट्रेडिशनल कव्वाली का फील दिया और मॉडर्न फिल्मी स्टाइल के गाने के साथ इसे पेश किया। तो बेशक इस गाने को आप इंजॉय करेंगे, और उसके बाद इट्स वन ऑफ माय फेवरेट्स। हाँ, मतलब जब भी कोई फेस्टिविटी हो या फिर कोई चीज को सेलिब्रेट करना हो, किसी दिन को सेलिब्रेट करना हो, ये गाना मेरी लिस्ट में टॉप करता है। एंड द सॉन्ग इज ईद सेलिब्रेशन हो और ये फर्स्ट क्लास गाना ना हो, वरुण धवन, ओ हो क्या परफॉर्मेंस दी है बॉस। कलंक फिल्म का ये गाना है और इस गाने को अरिजीत सिंह ने गाया है। एंड फैंस को अक्सर लगता था कि अरिजीत को सैड सॉन्ग्स ही आते हैं, मतलब हमेशा उनके बड़े सूदिंग और वो टची सॉन्ग्स हमने सुने, लेकिन इस गाने में जब उनकी आवाज हमने सुनी, ओहो, तो ऐसा लगने लगा कि वो सिर्फ सूदिंग और सेंसेशनल, और वो कहते हैं ना, सेंटिमेंटल गाने ही नहीं गाते, बट ही कैन ऑल्सो सिंग परफॉर्मिंग ट्रैक्स। हाँ, और तभी तो उन्हें इस फिल्मी दुनिया के गानों का किंग भी कहा जाता है। फिल्म इसमें प्रीतम का म्यूजिक है और लिरिक्स अमिताभ भट्टाचार्य के हैं, एंड इट्स अ हिट जो कि तीन आर्टिस्ट की तिगड़ी का कमाल हिट है। सो यस, पहले हम सुनेंगे वल्ला रे वल्ला, एंड देन कम्स फर्स्ट क्लास फ्रॉम द मूवी कलंक। आई एम वेरी श्योर आप जरूर जरूर इंजॉय करने वाले हैं, सो डोंट मिस इट। और क्या करना है साथ में, हमें मैसेज करना है 666-22-107 पर, लेट अस नो कि आप किस तरह से ईद सेलिब्रेट कर रहे हैं, और अगर कोई मैसेजेस वगैरह भी हैं तो आप हमसे शेयर कर सकते हैं। स्टे ट्यून्ड टू FM 107, दिल से देसी।

अस्सलाम वालेकुम, वेलकम वेलकम वेलकम एफएम 107 सुन रहे हैं आप. मैं हूँ आपकी ए फॉर अमिता. वेल, इस खासम खास फेस्टिवल में, हमारी ईद की धुन में, आपकी अमिता के साथ अभी जो मैंने पहला गाना आपको सुनाया, वल्ला रे वल्ला, एंड देन फर्स्ट क्लास, कैसा लगा? मजा आया? एंड अगर मजा आया है तो इस मजे को सिर्फ अपने तक ही रखना, यू हैव टू शेयर. अगर आपने कहीं पे स्टोरीज वगैरह बनाई है, कहीं ईद की रौनक को और बढ़ाने के लिए, अगर आप कहीं घूमने फिरने गए हैं, घर में कोई डेकोरेशन की है, और अगर सोशल मीडिया पे आपने उसे पोस्ट करना है, तो एफ एम 107 को भी टैग करना ना भूले. वैसे जनाब, ईद की धुन, ये खासम खास शो आपके लिए हम लेकर आए. ईद का तीसरा दिन है और हमारे लिसनर्स हमारे साथ जुड़ते जा रहे हैं. मैंने कहा कि 666-22-107, 666-22-107 इज आर नंबर. आप हमें मैसेज कीजिए, आप हमसे इस नंबर के जरिए रابطہ कायम कर सकते हैं. और इसी बात पर मुझे मैसेज आया है अरहान का. ओए होए, क्या कहते हैं, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम अरहान. और कहते हैं कि अमिता, कुर्बानी की सारी जिम्मेदारियां पूरी हो गई थी मेरी, और किचन में जाकर इस बार मैंने खुद बिरयानी बनाई है मेरी एंटायर फैमिली के लिए. ओए होए, दैट्स सो नाइस अरहान. मतलब अभी तक मुझे जितने भी मैसेजेस आए, कहीं पर भी ये जिक्र नहीं था कि किसी शख्स ने जाकर, मतलब घर की लेडीज के अलावा, जाकर बिरयानी बनाई है. हैट्स ऑफ टू यू बॉस. एंड आई एम वेरी सर्टेन कि ये बिरयानी उतनी ही लाजवाब होगी जितनी की आपकी मेहनत. यूं ही एंजॉय करते रहे, अपनों के लिए खासम खास चीजें ऑर्गेनाइज करते रहे, और यूं ही उनके लिए खाना भी बनाते रहे. और वो कहते हैं ना कि जब हम अपनों के लिए अपने हाथ से कुछ खास बनाते हैं, तो हमें बहुत दुआएं मिलती हैं और प्यार और बॉन्ड और भी ज्यादा गहरा हो जाता है. वाओ, आई सो लव इट. देन हमें जोया का मैसेज आया है. कहती है कि ईद मुबारक एवरीवन. जोया जी, आपको भी, आपकी एंटायर फैमिली को ईद मुबारक. एंड शी सेइंग कि भाई, हमारे घर में तो शीर खोरमा बना था, दो दिन में खत्म हो गया, आज तीसरा दिन फिर से बना, क्योंकि हमें हमारे नेबर्स को डिस्ट्रीब्यूट करना था, और घर पे जितने मेहमान आए थे उन्होंने दो दो तीन तीन कटोरियों में खाया कि खत्म हो गया. वेल जोया, आई सिंपली से कि कटोरिया ना गिने, दिस इज सो

नाइस. वो कहते हैं ना कि जब खाना अच्छा बनता है और लोग आते ही जाते हैं तो ये सब ऊपर वाले की रहमत है. एंड दिस इज रियली वी आर लकी, हम ब्लेस्ड है कि लोग हमारे घर का खाना इतने शौक से खा रहे हैं. So Zoya, it's a good one and I'm really proud कि आपके घर में तीसरी बार, I mean दूसरी बार शीर खोरमा बना. Well, Faisal का मैसेज है and he's texting from Lucelle और कहते हैं कि हाय अमिता, हैप्पी ईद टू द होल टीम. Faisal आपको भी, आपके एंटायर फैमिली को भी ईद मुबारक. और कहते हैं कि हमने तो प्लान बना लिया है पूरी फैमिली के साथ आज रात Lucelle बुलेवार्ड जाने का. ओके. क्योंकि वहाँ की लाइट्स और वाइब्स ना हमको बहुत अच्छी लगती है, तो हमने कहा कि चलो आज तीसरा दिन हम वहीं गुजारेंगे. दैट्स वेरी नाइस Faisal एंड आई थिंक इट्स अ वेरी थॉटफुल वे. क्योंकि गर्मियां बढ़ती जा रही हैं बट एट द सेम टाइम वो जो लेवल थोड़ा सा डाउन हुआ है ना अभी, मतलब शाम को थोड़ी सी ठंडक रहती ही रहती है, तो मुझे लगता है कि इस टाइम पे जितना हम आउटडोर जा सकते हैं, जितनी मस्ती कर सकते हैं ना अपने कतर के सड़कों पे, कतर की स्पेशल जगहों पर, हैंगिंग पॉइंट्स पे हमें जाना चाहिए. सो यस, अगर आप भी हमसे जुड़ना चाहते हैं देन 666-22-107 इज आर नंबर, 666-22-107. जस्ट मैसेज अस और बताएं कि आपकी ईद कैसे मनाई जा रही है. इसी बात पर अब हम हिट परेड की तरफ चलते हैं. यस, तो हिट परेड जोन में क्या है खास? लेट्स टॉक अबाउट द वाइब ऑफ ओ रोमियो. यस, ओ रोमियो मूवी का नाम है और उसका ट्रैक है आशिकों की कॉलोनी. ये गाना उन लोगों के लिए है जो कॉलोनी की छतों पर जाकर दोहा की गलियों में वो कहते हैं आकी मोहब्बत ढूंढते हैं. आशिकों की कॉलोनी में घर ले लिया. इस गाने को गाया है नकाश अजीज ने जो अपनी एनर्जेटिक वॉइस के लिए मशहूर है. इसका रिदम आपको पुराने वो गोविंदा स्टाइल के गानों की याद दिला देगा. सो यस, आशिकों की कॉलोनी, गाना फ्रॉम द मूवी ओ रोमियो आपको सुनने मिलने वाला है. एंड आफ्टर दैट कौन सा गाना है जो आपके मूड को और भी ज्यादा रिफ्रेश करने वाला है, एनर्जेटिक बनाने वाला है? एंड दैट इज भाई ये ना हमारे GCC की पार्टी एंथम है. एंड यू नो विच सॉन्ग इज दिस? वाओ, क्या गाना है जनाब. ये ट्रैक ना फोक फ्यूजन का बेस्ट एग्जांपल है. मतलब धुरंधर सीरीज हमेशा से अपने हैवी परकशंस और एथनिक इंस्ट्रूमेंट्स के लिए जानी जा रही है. एंड अगर आप कतर के किसी भी लाउंज में हो या फिर आप किसी ऐसी जगह पर हो जहां वाइब बड़ी कमाल की, वहां ये गाना अगर बज जाए उफ, तो ऐसा लगता है कि माहौल बन जाए. तो मैं कहूंगी अभी जो ये हिट परेड शुरू हुई है ना, सबसे पहले आशिकों की कॉलोनी एंड धुरंधर फिल्म का ये आरी आरी, लेट्स एंजॉय दीज सॉन्ग्स. और उसके बाद आगे बढ़ेंगे और कौन कौन से सिंगर्स हमारा दिल जीतने के लिए आने वाले हैं, अपनी दमदार आवाज से हमारी ईद की धुन को स्पेशल करने वाले, बस कुछ ही देर में जानेंगे. आप कहीं ना जाए, बने

अस्सलाम वालेकुम साथियों, देखिए मैं मानती हूँ ये बात कि ईद उल अज़हा का दिन होता है किचन में एक्स्ट्रा एक्टिविटीज का, फ्रिज में टेट्रिस चैंपियनशिप का और हर किसी के एक्सपर्ट या एक्सपेरिमेंटल शेफ बनने का। लेकिन साथियों एक बात याद रखिएगा, ये ईद सिर्फ खाने की नहीं होती बल्कि शेयर करने की और केयर करने की भी होती है। तो भाई मेरी दिल से ये दुआ है कि अल्लाह ताला आपकी कुर्बानियों को कबूल फरमाए और आपकी जिंदगी को खुशियों, अमन और बरकत से भर डाले। FM 107 की तमाम टीम की जानिब से और सफा की भी जानिब से आप सभी को ईद उल अज़हा की ढेर सारी मुबारकबाद। सुनते रहिए FM 107, दिल से देसी।

क्या आपने कभी खुद से पूछा है, अगर आज मुझे किसी की जरूरत ना हो तो मैं कौन हूं? अक्सर औरतें दूसरों की खुशी में अपनी आइडेंटिटी भूल जाती हैं, मगर अब वक्त है खुद से मिलने का। आरजे ए फॉर अमिता लेकर आ रही हैं एक नया सफर, मेरी पहचान। बर्नआउट से लेकर नए बिजनेसेस तक, सेहत से लेकर सुकून तक, ये शो है हर उस औरत के लिए जो अपनी बाउंड्रीज तय करना चाहती है। आप सिलसिले की एक कड़ी नहीं,

0: तो आइए इस खास महफिल में शामिल हो जाइए। ए फॉर अमिता के साथ ढूंढिए अपनी छुपी हुई मैं को, मेरी पहचान में। हर मोड़ पर एक नई उम्मीद, मेरी पहचान। सुनिए हर वेंसडे सुबह 10 बजे से और हर फ्राइडे रात 10 बजे से सिर्फ FM 107 पर। दिल से देसी।
1: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें, आज ही राब्ता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
2: ईद की रात होगी और भी ज्यादा स्पेशल, स्पेशल जहां होगा नॉन स्टॉप फन, म्यूजिक और सेलिब्रेशन, सेलिब्रेशन, क्योंकि आ रहा है शो जश्न ईद।
3: ईद मुबारक।
4: और होगी आपकी रिक्वेस्ट, फेवरेट सॉन्ग्स और बहुत कुछ, तो आप भी शेयर कीजिए अपनी ईद मेमोरीज, ईद सेलिब्रेशंस और बचपन की ईद स्टोरीज।
2: इस ईद उल अधा रात होगी म्यूजिक से ब्राइट और हर दिल होगा फुल ऑन फेस्टिव वाइब। तो मिस मत कीजिए जश्न ईद। ईद के चारों दिन रात 8 से 10 बजे तक विद आरजे नाजिया एंड आरजे फजी, ओनली ऑन एफएम 107, दिल से देसी।
5: वेलकम वेलकम वेलकम, एफएम 107 सुन रहे हैं आप। मैं हूं आपकी अमिता, आपके साथ ईद की धुन, खासम खास ये शो हम आपके लिए लेकर आए हैं। एंड दिस इज सो नाइस कि जब भी ब्रेक के बाद मैं आती हूं और आपके मैसेजेस मुझे स्क्रीन पर देखते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है कि आप अपनी ईद की बातें, ईद के सेलिब्रेशंस को हमारे साथ शेयर कर रहे हैं। दैट इज सो सो स्वीट। वेल, मुझे मरियम का मैसेज आया है, कहती हैं कि अमिता ईद मुबारक आप सभी को, मरियम जी आपको भी, और बोलती हैं कि मुझे ना पेरेंट्स की याद बड़ी आ रही है क्योंकि मैं दोहा में रहती हूँ अपने फ्रेंड्स के साथ और उनसे दूर

बहुत ऐसा लग रहा है कि काश वो होते. मरियम, रियली आई वॉन्ट टू नो कि आपके पेरेंट्स वहाँ इंडिया में रहते हैं या पाकिस्तान में रहते हैं, कहाँ रहते हैं, आपने जिक्र नहीं किया. एंड आपने बस बोला कि उनकी बड़ी याद आ रही है. सो इट सीम्स या तो वो कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, या तो आप उनसे दूर यहाँ नौकरी कर रहे हैं या पढ़ाई कर रहे हैं. आपने कुछ इसका जिक्र नहीं किया, बट मैं यही कहूंगी कि आपके पेरेंट्स जहाँ भी हैं वो बहुत सारा प्यार और दुआएं आपको दे रहे होंगे. एंड आई एम श्योर कि वो भी आपको मिस कर रहे होंगे. सो टेक आउट सम टाइम, जब आपको छुट्टियां मिले तब आप बेशक उनसे मिलिएगा, लेकिन अभी के लिए क्या करना है, यू नो व्हाट यू हैव टू डू. इंटरनेट का जमाना है भाई, सीधा वीडियो कॉल करो, उनसे बात करो और कहो कि मम्मी पापा जल्दी से मुझसे मिलने आओ. एंड दिस इज सो नाइस भाई. देखो टेक्नोलॉजी के जमाने में ना ये बिल्कुल दिल छोटा नहीं करना है, हमें तुरंत अपनों से कनेक्ट करना है ताकि वो जो दूरी है ना उसमें थोड़ी कमी आ जाए, है कि नहीं मरियम? चलो इमरान का मैसेज है नीस से कि मैं कटारा में अमिता अपनी फैमिली के साथ बस अभी जा रहा हूँ और अपनी कार में आपका सुन रहा हूँ और मुझे गाने बड़े अच्छे लग रहे हैं. प्लीज कुछ बड़े मजे मजे के गाने बजाइए ताकि हम सारी फैमिली वाले जोरों से गाने इंजॉय कर सके. वेल इमरान, थैंक यू सो मच. एंड डेफिनेटली ये तो होना ही है, ईद की धुन ये स्पेशल शो हम आपके लिए लेकर ही इसीलिए आए हैं कि हिट हिट गानों का सिलसिला चलता रहे. फिलहाल के लिए आपको हमारी तरफ से ईद मुबारक. यहाँ पर सफा का मैसेज है और कहती है कि आज तो किचन ही मेरा हेडक्वार्टर बन गया है, बिरयानी की खुशबू पूरे घर में फैली हुई है एंड गेस्ट आते ही जा रहे हैं. देखिए सफा, ये जब ईद का मौका होता है ना तो 3-4-5 दिन ये सिलसिला चलते ही रहता है. सो आई नो दिस, सो गुड लक टू यू. थोड़ा सा लेकिन रेस्ट वगैरह कर लीजिएगा बिकॉज आई नो कि जो भी लेडीज यू नो घर में पूरी होस्टिंग कर रही होती हैं उनकी कमर में दर्द हो ही जाता है. सो मेक श्योर कि आप अपना ख्याल रखें. और आप क्या करें, आप हमसे जुड़ सकते हैं ना 666-22-107 पर, 666-22-107 पर हमें मैसेज करें, हमसे जुड़े, हमसे बातें करें, बताएं कि कैसे ईद सेलिब्रेट कर रहे हैं. और अगर किसी को ईद की विशेस भी देनी है तो भी आप हमें मैसेज कर सकते हैं. अब आगे बढ़ते हैं चार्मर के साथ. यस, इट्स नन अदर देन दिलजीत दोसांझ. यस, अपनी इंटरनेशनल एल्बम का एक खूबसूरत सा पार्ट लेकर आ रहे हैं. इसका म्यूजिक प्रोड्यूस किया है इंटेंस ने, जिसने दिलजीत के साथ लवर एंड प्रॉपर पटोला जैसे हिट दिए हैं. वेल, दिलजीत इज करेंटली द फर्स्ट पंजाबी आर्टिस्ट जो कि बिलबोर्ड ग्लोबल चार्ट तक पहुंच गए. ओ भाई साहब, कमाल कर देते हैं ये तो, है कि नहीं? तो इनका ये क्लासिक सॉन्ग चार्मर आपकी राहों में आएगा. और इसके बाद आप क्या सुनेंगे, जब क्लासिक फोक मॉडर्न बीट से मिलता है तब हमें सुनने मिलता है. हाँ जनाब, ये राजस्थानी फोक सॉन्ग पल्लो लटके 2026 का वर्जन है. इसे ज्योतिका टांगरी ने गाया है. ओरिजिनली ये गाना है फिल्म शादी में जरूर आना से. एंड इसका 2.0 वर्जन बिल्कुल इलेक्ट्रो बेस के साथ आपको सुनने को मिलेगा. एंड आई शुड से कि ये जेन जी का फेवरेट गाना बन चुका है. सो यस, हमारी राहों में है चार्मर दिलजीत दोसांझ एंड देन पल्लो लटके 2.0 कमिंग अप ऑन योर वे. तो कहीं ना जाएं, बने रहें FM 107 पर, दिल से देसी.

0: आप सुन रहे हैं ईद की धुन ए फॉर अमिता के साथ सिर्फ एफएम 107 पर दिल से देसी।
1: हाँ जी जनाब, कैसे लग रहे हैं आपको ये हिटेड गाने हमारे ईद के धुन स्पेशल शो में? हाँ, पर मैं हूँ आपकी अमिता आपके साथ और एक बार फिर से आप सभी को तहे दिल से ईद मुबारक। तो तीसरे दिन की क्या खासियत है, क्या चल रहा है, किधर जा रहे हैं या फिर यूं ही रिलैक्स कर रहे हैं घर में कि भाई मुझे आज कहीं नहीं जाना, घर पर ही खाएंगे पिएंगे, दोस्तों के साथ खेलेंगे कूदेंगे और रेडियो पे गाने सुनेंगे और बिल्कुल लेड बैक वाला एटीट्यूड रहेगा कि एक बड़ी बड़ी सी नींदें मार लेंगे। क्या करना क्या है, प्लान क्या है, बताओ बताओ, शेयर करो हमसे 666-22-107 पर 666-22-107। And on this note, हमें उस्मान का मैसेज आया है and he just reached सुख वाकिफ। बड़ी कमाल की चीज है कि हमारे लिसनर्स ड्राइव करते हुए जो हमें मैसेजेस कर रहे हैं कि भाई हम यहाँ पहुंच गए, हम उधर जा रहे हैं। एंड अभी यही कुछ जो पॉइंट्स है ना, हैंगिंग जॉइंट्स है, ये बहुत पॉपुलर हैं। एक तो वकरा साइड, फिर सुख वाकिफ और उसके बाद कटारा का जो एरिया है, देन पर्ल है, मुशरब है, लुसेल है, ये इन जगहों पे ज्यादा से ज्यादा लोग घूमने जा रहे हैं। वेल, मुझे उस्मान का मैसेज है जिन्होंने जस्ट अभी कहा कि सुख वाकिफ पहुंचे हैं और कहते हैं कि यहाँ की रौनक देखकर ही ना अमिता दिल खुश हो जाता है। वो ट्रेडिशनल वाइब्स, गावा एंड द पीपल, मतलब पूरी दुनिया भर के लोग, ऐसा लगता है कि कतर की खूबसूरती को, मतलब वो कहते हैं ना, उसकी तारीफ करते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। ये तो बात है कि सुख वाकिफ में ना ऐसा लगता है कि सारी जो फेस्टिविटीज हैं, फेस्टिवल्स हैं, उनमें चार चांद लग जाती है। क्योंकि पहली चीज तो वहां का डेकोरेशन, दूसरी चीज वहां पर हर स्पेशल मोमेंट पे या हर स्पेशल इवेंट पर वो अलग तरह की सजावट, वो लाइट्स, तो एंड वो गावा, करक, इन सब की खुशबू, उफ, मजे ही मजे आ जाते हैं। सो उस्मान, आई शुड से कि आपने बिल्कुल परफेक्ट स्पॉट चूज किया है और आप सुख वाकिफ में है। सो एंजॉय योर ईद देयर एंड कुछ पिक्चर्स वगैरह क्लिक करें, स्टोरीज बनाएं, तो एफएम 107 के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को भी टैग करना ना भूलें। अपनी आरजे अमिता को भी आप टैग कर सकते हैं। देन हिना का मैसेज है जो कि बिन महमूद में रहती हैं, ईद की खूब सारी शुभकामनाएं, हैप्पी ईद सबको कह रही है। सो आपको भी ईद मुबारक, और कहती है कि मैंने अपनी नई अबाया पहनी है एंड आई एम फीलिंग लाइक अ क्वीन। दैट्स सो स्वीट, यू आर शेयरिंग योर ड्रेसिंग स्टाइल। हाँ, और कहती है कि वेस्ट बे में ब्रंच का प्लान है, मैं अपनी सारी दोस्तों के साथ जा रही हूँ क्योंकि दो दिन पूरे फैमिलीज के साथ था, तो आज मुझे घर पे बोला है कि आप अपनी दोस्तों के साथ जाएं और फुल ऑन एंजॉय करके आए। दैट्स सो नाइस है ना। यू नो, आज मैंने भी एक पूरा, मतलब अबाया तो नहीं पहना, बट आई एम जस्ट वेयरिंग अ न्यू कोटी जिसमें बहुत सारी एम्ब्रॉयडरी है एंड आई सो लव्ड इट। मतलब इस बार जो मेरा ईद का अटायर है ना, दैट आर लूज पैंट्स और जो बड़ी बड़ी ओवरसाइज कोट्स होते हैं ना, दैट्स डेकोरेटेड एम्ब्रॉयडरी वाले कोट्स मैंने लिए हुए हैं और वो मेरा इस बार का ईद का अटायर है। आई रियली लव इट। सो यस, हम लड़कियों की कुछ के सजने संवरने की बात अलग ही हो जाती है ना, है ना? तो चले एंजॉय करें विद योर गर्ल्स एंड डू शेयर द पिक्चर्स, डू एंजॉय योर स्टोरीज और हमें टैग करना ना भूले। और चले इसी बात पे, ईद की धुन में अब कौन सी धुन अगली बजने वाली है?
2: पता नहीं मेनू क्यों, हाय क्यों, बड़ी सोनी लगती है तू।
1: सो जनाब, टाइगर श्रॉफ इज बैक। यस, बागी 4 फिल्म का मैजिक अब दोहा में भी छा जाएगा बॉस। यस, भली सोनी एक स्टाइलिश पंजाबी पॉप ट्रैक है और इसे मीत ब्रोज ने कंपोज किया है। टाइगर श्रॉफ की डांसिंग मूव्स हैं और ये गाना रिलीज होते ही वायरल हो चुका है। यस, इट्स द परफेक्ट स्वैग सॉन्ग हमारी ईद की ड्राइव के लिए। सो भली सोनी, लेट्स एंजॉय दिस सॉन्ग। और इसके बाद कौन सा गाना आप सुनने वाले हैं? वरुण धवन एंड जानवी कपूर आर बैक टुगेदर इस सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी। यस, इस फिल्म से ये गाना बिजुरिया एक शादी स्टाइल फेस्टिव सॉन्ग है और इसकी कोरियोग्राफी गणेश आचार्य ने की है और उन्होंने वरुण के लिए कुछ ऐसे आइकॉनिक स्टेप्स बनाए हैं जो हर दोहा में वेडिंग में दिखाई देंगे। इसे गाया है विशाल डाडलानी ने। वैसे ये जो गाना है बिजुरिया, ओरिजिनली इसे सोनू निगम ने गाया था एंड जब वो 90s का जमाना था जब पॉप सॉन्ग्स बड़े हिट हुए थे, देन आई रियली लव सोनू निगम। उनके हर एक गाने, उनके हर एक गाने का वीडियो मुझे बड़ा अच्छा लगता था एंड ये गाना सच में, मतलब मुझे उस, वो कहते ना, ओजी ओजी सिंगर की याद दिला रहा है। सो यस, ओरिजिनली से सोनू निगम ने गाया था बट अभी विशाल डाडलानी ने गाया है. सो वी गोना एंजॉय भली सोनी एंड देन बिजुरिया. और आप क्या करेंगे, आप हमारे साथ जुड़ जाएंगे 666-2107 पर एंड लेट अस नो हाउ यू सेलिब्रेटिंग योर ईद. कहीं ना जाए, ईद की धुन सुनते रहे हमारे साथ, एंजॉय करते रहे और बने रहे FM 107 पर दिल से देसी.

वेलकम बैक एफएम 107 सुन रहे हैं आप. मैं हूँ आपकी अमिता आपके साथ. आई एम श्योर कि भी सारे हिटेड गाने आपने बिल्कुल दिल से एंजॉय किए. हाँ, वलीद की धुन हम आपके लिए लेकर इसीलिए आए थे कि सारे हिटेड गाने आपकी शाम को और भी ज्यादा स्पेशल बनाए, आपके मूड को रिफ्रेश करें और आपकी ड्राइव्स को आहा और भी रंगीन बनाए. लेकिन अभी मैसेजेस का सिलसिला जारी है. हमको नाडिया का मैसेज आया है और ईद की ढेर सारी विशेज हमें दे रही हैं. आपको भी बहुत सारी विशेज और कहती है कि अमिता मुझे ईद की एक चीज जो हमेशा याद रहती है और याद आती है, दैट इज हमारे कतर में जो फायरवर्क्स होते आए हैं. दोस फायरवर्क्स आर सो स्पेशल फॉर मी कि जब मैं छोटी थी तब से लेकर अब तक आई जस्ट एंजॉय फायरवर्क्स. सो यस नाडिया, फायरवर्क्स की स्टोरीज हमेशा बड़ी स्पेशल होती है. इनफैक्ट मैं भी जब इंडिया में थी तो बचपन से मैं फायरवर्क्स देख रही हूँ. एंड जब वो फायरवर्क्स होते हैं, रंग बिरंगी रोशनियाँ होती हैं, तो दिल में खुशी होती ही होती है कि नहीं? तो चले कोई नहीं, आप जरूर उम्मीद रखें कि इस तरह के फायरवर्क्स आपकी जिंदगी में भी हो, ताकि हर एक रंग खुशियों का आपकी जिंदगी में बिखरता रहे, है कि नहीं? वेल, समीर का मैसेज है, ईद मुबारक अमिता एंड द टीम. सो थैंक यू समीर, ईद मुबारक टू यू टू. और कहते हैं कि मैं फैमिली ग्रुप कॉल पे सबसे ज्यादा बात करता हूँ, स्पेशली जब ईद का मौका आता है. और ईद के पहले दिन से बातें चालू है, अभी तक चालू है. आपको मैसेज करने से पहले मैंने जस्ट फोन रखा है और मैंने कहा कि अभी ईद की धुन चल रही होगी तो मैं जरा अमिता को भी मैसेज कर दूं. क्या बात है समीर, दिस इज सो नाइस. एंड ये चीज एहसास दिलाती है कि आप अपने अपनों के साथ कितना ज्यादा कनेक्टेड है. सो यस, इट्स अ गुड थिंग एंड कीप कॉलिंग, कीप स्टेइंग इन कनेक्शन, क्योंकि जब हम अपनों से दूर होते हैं तो ये टेक्नोलॉजी ही है जो हमें उनके करीब लेके जाती है कि नहीं? अच्छा, मुझे फरा का मैसेज है मुशरफ से और कहती हैं आप सभी को ईद मुबारक, आपको भी खैर मुबारक. और कहती हैं कि मेरी पहली ईद है दोहा में एंड आई एम सो इम्प्रेस्ड विद द हॉस्पिटैलिटी. हर कोई इतना वेलकमिंग है, ट्रूली फील्स लाइक अ सेकेंड होम एंड आई जस्ट लव कतर. Oh yes, फरा, वेलकम टू कतर. एंड आई शुड से कि जो भी पहली बार कतर आया है उसे ये एहसास तो होता ही है. और कतर में ईद मनाना एक अलग ही जज्बा, एक अलग ही फील है कि नहीं? चलिए इसी बात के साथ मैं कहूंगी कि हम सब लकी हैं कि हम एक दूसरे के साथ हैं, भले ही अपने मुल्कों से दूर हैं तो क्या हुआ, अपने एक दूसरे के साथ ये कतर का प्यार और कतर की रिस्पेक्ट है. तो यस, फुल ऑन एंजॉय कीजिए इस अमेजिंग से फेस्टिवल को और खूबसूरत से कतर को. और हाँ, अभी जाने से पहले मैंने सोचा कि क्यों नहीं कुछ मजेदार बोनस ट्रैक्स आपके लिए प्ले कर दिए जाए. सो एंजॉय देम फुल ऑन वॉल्यूम लगाकर और अपना ख्याल खूब सारा रखिए, क्योंकि पता है ना फेस्टिविटीज के टाइम पर हम अपना ख्याल रखना भूल जाते हैं, यानी आराम करना भूल जाते हैं. सो प्लीज डू टेक केयर. और हाँ, क्या कहना है मुझे, बस यही कहना है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़ जाए एफएम 107 के और अपनी आरजे अमिता को भी सोशल मीडिया पे ढूंढ ले. और जाने से पहले मैं कहूंगी हम है राही प्यार के, फिर मिलेंगे चलते चलते. स्टे ट्यून्ड टू एफएम 107, दिल से देसी.

0: FM 107 की पूरी फैमिली की तरफ से हमारे तमाम सुनने वालों को ईद उल अदा की दिल की गहराइयों से मुबारकबाद। FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें, आज ही राब्ता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: पर भाई आज जितने भी लोगों की छुट्टी है फ्राइडे के दिन, ऑफकोर्स जुमे का दिन है, आपसे थोड़ी बहुत तो जलन है मुझे, क्या करें। बट ठीक है, कोई बात नहीं। कैसी जा रही है आपकी आज की छुट्टी? आज तो कोई ये भी नहीं कह सकता आज काम है, बावजूद इसके मतलब कुछ लोग तो कह सकते हैं आज काम है। ऑफकोर्स हमारे डिलीवरी वाले भाई हैं जो जगह जगह सामान डिलीवर कर रहे हैं, हमारे कैब चलाने वाले भाई लोग हैं, और उनसे थोड़ा सा नीचे 3-4 फ्लोर नीचे मैं भी हूँ, तो आज मैं भी काम पर हूँ। बहुत सारे हमारे आरजेस भी काम पर हैं।

दिन भर की मसरूफियात और थकन के बाद जब कोई शाम को अज़कार का एहतमाम करता है तो ये महज जिक्र के चंद अल्फाज नहीं होते बल्कि अल्लाह ताला से ताल्लुक को मजबूत करने और रूहानी व नफ्सियाती तवानाई को ताज़ा करने का जरिया बनते हैं। आइए समाअत कीजिए शाम के अज़कार FM 107 पर।

الناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك

0: जेली बेंगल्स?
1: पता, देखो मैं गलत हो सकता हूँ बहन, बट आई होप यू अंडरस्टैंड मेरी नॉलेज कहाँ तक की हो सकती है। इस मामले में अंगूठा छापू मैं, बट फिर भी कुछ जेली बेंगल्स भी होते हैं, ऐसे कुछ भी होता है, रिसेंटली मैंने डिस्कवर किया है। और मैं जब भी कोई कोई हमारे घर के आसपास या फिर हमारे मेहमान आते हैं तो मैं बहनों से पूछ लेता हूँ, बहन क्या आपको पता है? और मैं पूछता भी ऐसे हूँ जैसे बहुत बड़ी बात है। जैसे उन्हें पता ही नहीं होगा, पता नहीं क्या खोज निकाला मैंने। एक मैसेज है, श्रद्धा के दिल के तिक्के। अरे नहीं, देखो श्रद्धा कपूर का अकाउंट भाई साहब सोशल मीडिया का सबसे प्यारा अकाउंट है, आप माने या ना माने। एक मैसेज है, अस्सलाम वालेकुम कबीर भाई, ईद उल अज़हा मुबारक टू यू एंड एफएम 107 फैमिली। शौकत अली खान साहब का मैसेज, जज़ाकअल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। एनिक भाई ने मैसेज किया, अस्सलाम वालेकुम भाई, फाइनली आपकी स्टोरी सुनने को मिलेगी, मतलब आप शाम में आ गए हैं। हाँ मतलब 1 जून से, लेकिन 1 जून से कहानी मिलेगी, अभी कोई कहानी कूनी नहीं है, ठीक है। 31 तारीख को सुबह कहानी होगी, उसके बाद सीधा जो है शाम को 1 जून से मामला स्टार्ट हो जाएगा। एक मैसेज, अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नौशाद आलम, मेरी तरफ से पूरी एफएम 107 की टीम को, सभी सामाइन को ईद उल अज़हा मुबारक हो। बहुत बहुत शुक्रिया नौशाद भाई, क्या हाल है भाई नौशाद। एक मैसेज, अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है, मेरी तरफ से आपकी टीम को सलाम, मोहम्मद कलीम अलवखरा से, जज़ाकअल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। तो मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ आपसे, बहुत ही सिंपल है, कतर से जुड़ा हुआ है, और उसका सही जवाब देने के बाद आपके चांसेस बढ़ जाएंगे, आप पार्टिसिपेशन दिखाएंगे तो आपको मौका मिल सकता है कुमारन ट्रेवलर रेस्टोरेंट की तरफ से 500 कतरी रियाल के बावजूद जीतने का। सो वेरी सिंपल क्वेश्चन, वेरी सिंपल क्वेश्चन, कतर में जो है ना 3 किस्म की नंबर प्लेट्स होती हैं, 3 किस्म की, उन तीनों के रंग बता दीजिए आप। 3 किस्म की नंबर प्लेट होती हैं, है ना, मतलब बाकी तो हैं ही, जो नॉर्मल नंबर प्लेट्स हैं वो 3 नंबर की नजर आती हैं अक्सर सड़कों पे, वो 3 मेजर जो नजर आती हैं वो कौन से रंग की हैं? बाकी वो ब्लू और येलो हटा दो, उसकी बात नहीं करेंगे, वो अलग है, बट आपको ये बताना है कि जो नॉर्मल सिटीजन्स और रेसिडेंट्स गाड़ी चला रहे होते हैं, 3 किस्म की नंबर प्लेट है मेजरली कतर में जो ऑपरेशन में है, है ना। तो तीनों के रंग क्या क्या हैं? 666-22-107 नंबर है, 666-22-107, जवाब लिखिएगा, फिर स्पेस देखिए आपका नाम लिखिएगा एंड भेज दीजिए 666-22-107 पर। इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन। बाकी मैंने जैसे कहा कि ब्लू और येलो वाली जो नंबर प्लेट्स हैं उनको थोड़ा साइड में कर दें, रेड वाली को भी, बट जो मेजरली सड़कों पर दिखती हैं आमूमन, दोज नंबर प्लेट्स विच आर वेरी वेरी नॉर्मल, वो बता दीजिएगा। एक मैसेज, अस्सलाम वालेकुम भाई, ब्लैक वाइट एंड ग्रे। एक भाई ने मैसेज किया, आर यू श्योर, मैं लॉक कर दूं इसको, मतलब आप श्योर हैं इस बात को लेके। एक और मैसेज आया, अस्सलाम वालेकुम भाई, देखो वही मैं कह रहा हूँ ना, ये ऑरेंज और रेड और ब्लू को हटा देते हैं, ऑरेंज इंक्लूड नहीं करें, मैं वैसे वाले बता रहा हूँ, ट्रैफिक सिग्नल नहीं बताना। अरे बाबा, सिग्नल नहीं बताना है, बताना है गाड़ी के जो नंबर प्लेट होता है, नंबर प्लेट जो पीछे लगा होता है आगे लगा होता है, बारिश में गिर जाता है वो वाला नंबर प्लेट, उसकी बात कर रहा हूँ मैं। ओके, मैसेजेस आ रहे मेरे पास माशाल्लाह, मैसेज, यस भाई श्योर, आर यू श्योर, ओके। कुछ लोग बड़े कॉन्फिडेंटली मैसेज करें, मैसेज है भाई ईद मुबारक, श्रद्धा को ईदी भेजें। मैं आपको क्यों बताऊँ नसीम भाई भेज के, वाई शुड आई टेल यू। तो मैसेज करते रहिए, वेरी इजी क्वेश्चन, एंड देन इसका जवाब देखिए आप हो सकता है आगे बढ़ सकें। तो कौन से वो कलर्स हैं? वेरी इजी एंड एक्सट्रीमली इजी, 3 रंग हैं जो अमूमन नजर आते हैं अमूमन नॉर्मली ऑन द रोड्स। जैसे मैंने कहा कि ब्लू को हटा दीजिए, अरे भाई लोग ब्लू को मेंशन कर रहे हैं, ब्लू रेड ऑरेंज व्हाटएवर ये कलर्स हटा देते हैं जो नॉर्मली सड़क पे नजर आते हैं, वो मैं कह रहा हूं, ठीक है, उनके बारे में बताना। 666-22-107 एंड देखते हैं कि क्या क्या जवाब आते हैं, वैसे तो आने लगे हैं। और आप बताइए आपकी ईद कैसी जा रही है, मतलब कैसा क्या भाई, तीसरा दिन तो थोड़ा सा मामला ऐसा हो जाता है, कुछ लोग वेट करते हैं तीसरे दिन भी कुर्बानी का, जिनके घर पे 2-3 बकरे होते हैं, थोड़ा सा है ना हाथ हल्का रखते हैं, कोई गाल नहीं, एक दिन एक, दूसरे दिन एक, तीसरे दिन एक। एक कॉल भी आ रही है, एक एक करते करते, अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम अस्सलाम प्यारे।
1: अरे भाई साहब, ईद मुबारक करीम भाई को, ईद मुबारक
2: आपको भी, ईद मुबारक मेरे भाई, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि ये ईद बहुत बढ़िया और एकदम चकाचक गुजरा होगा।
1: मैं अल्हम्दुलिल्लाह एकदम ठीक हूँ।
2: बस ये तो वही ना, कोई मैं कोई ना।
1: अच्छा अभी निकाल लेते हैं आवाज, माशाल्लाह इम्प्रेसिव।
2: तो कोई
1: देखिए करीम भाई, कंपटीशन नहीं है इसमें, अलग अलग

0: करो कि भेड़ की सबकी आवाज निकाल लेता हूँ मैं, ठीक है? आपके भाई का कंपटीशन नहीं इसमें,
1: इतना मैं भी ट्राई करता हूँ सर, ट्राई करता हूँ, सीख रहा हूँ ना देखो।
0: वो लोग करते ना कि हमारे ग्रुप में ऐसे ऐसे लोग हैं, कहते हैं भाई बकरा खांसता कैसे, वो बताओ।
1: बिल्कुल, कुछ बकरे ऐसे होते हैं, मैंने कोई 3-5-6 पहले की बात है, मतलब 4-5 पहले के मैंने बकरा खरीदा था भाई, इतना जब कोई भी पास जाता था बहुत बस उसके पीछे भागता था, बांध के रखा हुआ था, जबान निकाल के, बड़ा शैतान था यार।
0: फिर
1: तो फिर बस कुर्बानी के दिन आके काट दिया उसको, वो एक बंदे के पास था, उसे बड़ा अच्छा लग रहा था, मैंने कहा अरे बकरा मुझे चाहिए। तो माशाल्लाह इस बार भी
0: तो कुर्बानी हो गई यहाँ पे, यहाँ पे या मुल्क में हुई कुर्बानी, कहाँ पे हुई करीम भाई?
1: सर कुर्बानी वहाँ पे की है, बस अपने भाई को मैंने कहा आप हमारे वकील है बस, फिर
0: अरे मेरे भाई।
1: बड़े गाय लाए थे क्योंकि हम 6 भाई है ना, एक माँ,
0: माशाल्लाह। हाँ हाँ,
1: तो सब सबके सब ईद करते हैं।
0: हाँ हाँ, माशाल्लाह माशाल्लाह।
1: तो आजकल तो सर वो बात नहीं है ना, वो दौर ही नहीं रहा कि कोई या दुम्बा खरीद सके या बकरा खरीद सके।
0: हाँ,
1: ना
0: हाँ, हाँ,
1: महंगाई इतनी हो चुकी है कि आपको पता है यहाँ पर भी है महंगाई
0: भाई साहब, एक एक करोड़ का बकरा मिल रहा था इंडिया में, 1 करोड़ का, समझ रहे हैं आप?
1: बिल्कुल, मानने की बात है।
0: कहाँ तक जा रही है बात
1: सर? भाई अभी तो ऐसे बकरे और गाय और बैल आए भाई ट्रंप के नाम से, क्या उसका लाल बाल है और भाई
0: वो लोगों ने हैंडसम बकरे देखे, इनकी दाढ़ी वाड़ी होती एकदम कर्री वाली, ये देखो हेयर स्टाइल, ये
1: गूगल में देख रहा था मेरे भाई, बीबीसी का जो अपना फेज है ना, उसपे भाई शेयर किया था ट्रंप ये अपना बांग्लादेश में भाई, बिल्कुल उसी जैसा चेहरा, लाल बाल, कंघी लगा के ऐसे बनाए थे, मैंने कहा यार ये देखो ट्रंप के नाम से।
0: नहीं, आजकल बहुत हैंडसम वगैरह भी हो रहे करीम भाई। और बताइए कैसी रही दावत यहाँ, कैसी रही दावत, ये बताएं आप।
1: सर यहाँ पर मेरे कुछ दोस्त है इंडस्ट्रियल एरिया में, उन्होंने दावत पे उससे बात हुई थी, मैंने कहा देख भाई हम तो ईद की सारी रात जागे हैं, सुबह नमाज पढ़ ली है, अभी 2-3 घंटे के लिए सोना है, तो फिर उठना है इंशाल्लाह। अगर 10:15 तक आप लोगों का मैसेज आया या आप लोग आए तो मैं तो हाजिर हूँ।
0: अच्छा, ऐसा?
1: अगर बाई चांस नहीं आए मैंने कहा तो फिर रेडी हो जाओ।
0: अरे ये कैसे धमकी है?
1: बदकिस्मती से मेरा मोबाइल का चार्ज खत्म हुआ था, मुझे उठना 10 बजे था, मैं उठा 11:30 बजे, साथ में बच्चे थे, मैंने कहा उठो भाई, 3-4 लड़के और भी थे, बस उनको भी उठा के लेकर गया जनाब वहाँ पे, माशाल्लाह उन्होंने बंदे और भी आए हुए थे अपने काफी सारे, कोई 27-28 बंदे थे।
0: 27 भाई साहब, पूरी मतलब आप एक कम्युनिटी लेके चल रहे हैं करीम भाई, बहुत बैक है आपकी, आप माशाल्लाह।
1: हमारे यहाँ ये है सर, सर कबीर ये चीजें हैं हमारे यहाँ,
0: वेरी नाइस वेरी नाइस,
1: कि जिधर किसी का कोई अपना इलाके का हो तो वो उधर हाजिरी देता है, बहुत काफी सारे लोग थे वहाँ पे, यकीनन 27 थे मेरे ख्याल, कोई 26 बंदे थे, कमरा भरा हुआ था, तो बहुत अच्छा लगा, बहुत मजा आया, वही पे चाय भी पिया, सब चाय गुड़ के साथ, शीशा
0: ये।
1: भी तो गप्पे शपे भी, मैंने कहा यार अंडे होते तो आज वीडियो बना के भेज देते, व्हाट्सएप पे मैंने भेजा है सर।
0: हाँ, हाँ, मैंने देखा,
1: वो जो अंडे के बारे में जिक्र हुई थी ना,
0: जी जी जी जी,
1: तो मुझे वो नहीं मिला कतार, जिस तरह 5-6 करेट होते हैं ना, करेट में 300-400 अंडे होते हैं उस तरह का, तो मैं ढूंढ रहा हूँ इंशाल्लाह जैसे मुझे मिले।
0: मुझे वीडियो चाहिए करीम भाई, मैं वीडियो बना के जरूर दीजिएगा, ठीक है?
1: जरूर भेजूंगा सर, जरूर भेजूंगा।
0: एक करीम भाई यार, आप सर मत क्या करें, वो जो है ना, वो आप सर बोलते ना अच्छा लगता, फॉर्मल हो जाता है, मतलब आप ना भाई का रिश्ता है, भाई बोला करें।
1: अच्छा भाई सर, भाई अच्छा, तो भाई अभी अभी आज के बाद भाई है यार,
0: भाई बोला करें, वो अपनापन आता है उसमें, फील आती है, लगता है हाँ यार आदमी अपने घर का है। हाँ करीम भाई,
1: आपका वालिदा मोहतरम कैसा है?
0: अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बस उनकी फ्लाइट है कुछ दिनों में, अभी तो यहीं पर है अल्हम्दुलिल्लाह, वो भी अच्छे एकदम।
1: अच्छा
0: जी जी जी,
1: अल्लाह आपको खुश रखे, सलामत रखे, यकीनन मुझे बहुत खुशी हुई आपसे बात होकर, और हम लोग सीखते रहते हैं इंशाल्लाह, जब तक इधर हैं आप लोगों के साथ रबिते में रहेंगे सर, अल्लाह ताला आपको खुश रखे भैया,
0: जज़ाकअल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया करीम भाई, ख्याल रखिए,
1: दुआ में याद रखो, अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। तो करीम भाई को बहुत मोहब्बत, अगली कॉल भी आ गई है, अस्सलाम वालेकुम। भाई साहब बहुत दूर से आ रही है आवाज,
2: दूर से आएगी, शीशे ओपन कर रखे थे मैंने गाड़ी के, अब आएगी।
0: गाड़ी का शीशे क्यों नीचे कर रखे हैं, कौन सी हवा चल रही है बाहर ये बताओ?
2: हवा नहीं चल रही है, एसी बंद है भाई
0: एसी बंद है अरे क्या कर लिया एसी को, क्या कर लिया भाई?
2: अरे यार कुछ गैस लीक हो गई यार, समझ नहीं आया एकदम से,
0: अरे
2: लीकेज का प्रॉब्लम।
0: इतने दिनों से कॉल वॉल नहीं करी थी ना शोएब भाई, इसलिए हुआ ये।
2: भाई मैं घर पे था और फिर टाइमिंग भी मैच नहीं हो पा रही है कभी भाई।
0: मैच करो यार, ये तो कुंडली मिलाने जैसे थोड़ी है, टाइम है, मैच करो।
2: मैंने कसम से मैं आज मतलब तकरीबन 2 महीने से मैं अभी कतर में हूँ।
0: हाँ हाँ,
2: मैंने आज देखा है आपका शो।
0: अरे अरे अरे, अफसोस अफसोस अफसोस,
2: मतलब टाइमिंग मतलब वही 11-12 बजे से स्टार्टिंग कर रहा हूँ तो हाँ।
0: अभी अभी 31 अभी इवनिंग है 1 जून से, हालांकि एक दिन मतलब बीच में 31 तारीख को सुबह का शो है, सिर्फ एक मॉर्निंग शो बाकी है, फिर इवनिंग में आ जाऊंगा।
2: वही तो कह रहा हूँ ना,
0: पहले नहीं था, पहले नहीं था, पर ईद मुबारक शो भाई, नंदलेस आपको ईद मुबारक, बहुत सारा प्यार। बस जी बढ़िया चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। आप अपनी गाड़ी का एसी ठीक कराए मेरे भाई, मुझे यहाँ तक गर्मी लग रही है तो ऐसा लग रहा है कि मैं भी गाड़ी में बैठा हूँ, ये सुन के ही गर्मी आ गई। ठीक है भाई, चला लो भाई, आपकी मर्जी भाई, आपकी गाड़ी मुझे क्या। पर बहुत प्यार शुभ भाई, और इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती रहेगी शाम में। अल्हम्दुलिल्लाह भाई, अल्हम्दुलिल्लाह, सब बढ़िया मेरे भाई, बस ख्याल रखिए आप।
2: सवाल जवाब कर रहे थे,
0: सवाल जवाब का जवाब दोगे? अच्छा भाई, ये कर रहा था कि कतर में जो जनरली जो आम जनता के लिए जो नंबर प्लेट्स हैं गाड़ी की, वो कौन से रंग की हैं? तीन बतानी है आपको, तीन जो नॉर्मल
2: तो प्राइवेट होती है अपनी वाइट वाली,
0: ठीक है, ठीक है,
2: एक ब्लैक वाली होती है जो मोस्टली पिकअप के लिए या ट्रक के लिए यूज की जाती है,
0: ठीक है,
2: और डिमोजिन के लिए व्हाइट एंड ग्रे समथिंग।
0: ठीक, तो मैं लॉक कर दूं फिर इस जवाब को? ठीक है जी, लॉक कर देंगे। शोएब भाई क्या सोचना है, वैसे भी कौन सा सोचते हैं, ठीक है, डन हो गया।
2: ज्यादा नहीं सोचना चाहिए,
0: ज्यादा नहीं सोचना चाहिए भाई, टाइम कहाँ है, मुंह पर टाइम ना है,
2: पावर तो अपने रखो अपने पास, बिल्कुल टाइम
0: की बिल्कुल
2: प्रॉब्लम हो जाती है, इंसान ज्यादा सोचता तो फिर सोचता ही रहता यार, ये क्यों है, ये ऐसा क्यों नहीं हुआ, दुनिया भर की प्रॉब्लम आ जाती है।
0: भाई ने बोला करने का तो करने का, साफ सीधी बात, ठीक है मेरा भाई, थैंक यू सो मच मेरे भाई, ख्याल रखो, ओके मेरे भाई, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। और शेब भाई के बाद जो है अगली कॉल भी आ गई है, अस्सलाम वालेकुम। एकदम गर्मी गर्मी गर्मी चारों, आप बताए क्या हाल है
3: जी? बिल्कुल, पिछले 2-3 दिनों से बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है जी।
0: अरे कुछ करोगा अब्बा जी, कुछ कराओ, ऐसे कैसे चलेगा, कूलर शूलर लगवाओ चुराओ भी।
3: और बताओ सही बात है, बर्फ वाले कूलर,
0: बर्फ वाले एकदम बढ़िया वाले। आप बताओ अब्बा जी, कौन कौन सी गाड़ियाँ, कौन कौन से नंबर प्लेट है जो आप बताना चाहते हैं?
3: कबीर भाई, आपका जो आज का सवाल है ना,
0: हाँ जी,
3: वो मेरे ख्याल से मैसेज भेजने से ज्यादा ऐसे बताने में ज्यादा
0: मजा
3: इजी लग रहा है।
0: अच्छा, इजी लग रहा है, अच्छा बता दो।
3: क्योंकि मोस्टली जो नॉर्मल आपके वो होते हैं क्वेश्चन, तो सिंगल 3 लेटर्स में या नॉर्मली एक वर्ड में खत्म हो जाते हैं, इसको बताने में मजा आएगा मेरे ख्याल से।
0: भाई छोटी बात तो करते नहीं ना, पैसे किस बात के लिए रहे हैं ना, तो थोड़ी लंबी बात करनी चाहिए।
3: अगर NCR को खोल के आप पढ़ोगे, वो भी बहुत बड़ी चीज है
0: भाई। ऐसे ही है, हमारे यहाँ तो हरियाणा भी है और नोएडा भी है, सब जगह से है। तो गाबा जी बता दो, खुल के बता दो, कौन कौन सी नंबर प्लेट है
3: जी? कबीर भाई, एक तो जो नॉर्मली हम लोग प्राइवेट यूज करते हैं वो तो होती है व्हाइट बैकग्राउंड वाली,
0: ठीक है जी,
3: जिसमें ब्लैक डिजिट्स में नंबर होते हैं,
0: ठीक है।
3: और जो दूसरी प्राइवेट होती है वो होती है सर ब्लैक कलर की,
0: ठीक है।
3: जो फोन्स होते हैं वो व्हाइट होते हैं जी,
0: ठीक है जी, होलिया। और
3: एक सर टैक्सी और लिमोजिन के लिए चलती है, जो जिसके एक साइड में टैक्सी लिखा रहता है और एक साइड में उसके डिजिट्स होते हैं जी,
0: ठीक है जी। कौन सी नंबर प्लेट आपको थोड़ी सोनी लगती है? बता दो।
3: सोनी मेरे को तो डिप्लोमेटिक अच्छी लगती है, तो भी
0: वेरी ऑन। अरे ये देखो, सही है सही है। अच्छा लगा मुझे जवाब ये काबा जी, ठीक है मेरा भाई, ऑल द बेस्ट इस कॉन्टेस्ट के लिए। और बाकी सब बढ़िया काबा जी? दावत हो रही है, चल रहा है बढ़िया
3: जी, बिल्कुल। बाकी कबीर भाई, आपका जो खुला शो होगा ना दूसरा,
0: हाँ जी,
3: फिर करेंगे।
0: डन है भाजी, डन एकदम,
3: ओके सर, थैंक यू,
0: ओके, थैंक यू। और गाबा जी के बाद एक और कॉल आ रही है, अस्सलाम वालेकुम।
4: वालेकुम सलाम, वेलकम बैक कबीर भाई।
0: अरे मेरा भाई, क्या हाल है
4: क्या खैरियत है?
0: बस भाई, वही हड्डी वही खाले भाई, बढ़िया चल रहा है। हमने आप बताए, ईद मुबारक सबसे पहले तो भाई को,
4: फिर से बोलेंगे ईद मुबारक।
0: बोलते रहेंगे भाई, चारों दिन बोलते रहेंगे, जब तक जहाँ
4: तो चलेगा इंशाल्लाह, जब तक जिंदा रहेंगे।
0: बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं। तो बताओ मेरे भाई,
4: कैसा? बढ़िया सब कुछ
0: अल्हम्दुलिल्लाह भाई, अल्लाह का करम। क्या
4: बता? मैंने तो वर्ड सभी बता दिया, बस वही है ना, जो एक ब्लैक कलर का होता है,
0: ठीक है जी,
4: और एक रेड एंड व्हाइट होता है वो जो हमारे मेरे ही कार में होता है वही है।
0: अच्छा,
4: और एक और टैक्सी वाला एक ग्रे एंड व्हाइट है बस।
0: अरे अच्छा, ठीक है ठीक है, डन डन।
4: यही स्टाइल में लिखा है, बस यही स्टाइल में लिखा है, पता नहीं पिकअप होगा कि नहीं यार।
0: मुझे लग रहा है ऐसा आज आप भाई का मन ही नहीं कर रहा बात करने का। अरे होगा कुछ यार, तुम लगा लो अपने हिसाब से, मैंने तो बता दिया।

0: भाग्य जो किस्मत में छोड़ देता है यार, सब रास्ता मर्जी
1: है। अरे और क्या, बिल्कुल सेट जा रहे हो भाई, एकदम सही है। ठीक है भाई,
0: और बता सर जी।
1: बस बढ़िया भाई, एकदम आपकी दुआ है, शानदार चल रहा है मामला सब।
0: और भी लोग कॉल करते रहेंगे, इंशाल्लाह मिलेंगे, सुनेंगे इंशाल्लाह। ठीक है सर।
1: ठीक है मेरे भाई, ख्याल रखो अपना, अल्लाह हाफिज। और भाई के बाद वैसे तो ये एक और कॉल आ रही है, रुको उठा लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, आपका नाम? जी वालेकुम सलाम,
2: मित्रा है। कैसे
1: हैं कबीर आप? अल्हम्दुलिल्लाह एकदम शानदार, आप सुनाइए कैसी हैं?
2: अल्हम्दुलिल्लाह, तीसरी ईद मुबारक,
1: तीसरे
2: दिन की मुबारक।
1: मुबारक हो, मुबारक हो। आज रज के खाया है सबने, अभी तक तो कोई शिकायत भी नहीं कर सकता कि आज भी नहीं मिला।
2: बहुत खा लिया, बहुत गोश्त खा लिया, आज तो चिकन खाया है।
1: मैं तो जी दाल चावल पे शिफ्ट होने का प्लान कर रहा हूँ कुछ दिनों तक, बहुत हो गया।
2: और आज तो आपने बकरे का दिल भी खा लिया।
1: बता नहीं सकता, अत हो गई इसके ऊपर, अभी कोई मुझे कह नहीं सकता, ना मुझे लालच दे सकता किसी और पकवान का, ऐसा हो गया मामला।
2: अब कुछ और जी, अब दाल चावल और सब्जी में आ जाएं आप।
1: मैं उसी तरफ जा रहा हूँ, मैं अब मैं पालक दाल खाऊंगा, वेजिटेरियन बनूंगा मैं कुछ दिनों के लिए। आप बताइए बहन, क्या चल रहा है खाने में, आज क्या है? मैं तीसरे दिन का मेन्यू कुछ चेंज हुआ क्या?
2: नहीं, आज तो हम बच्चों को बाहर लेकर आए हैं और उनके साथ ही खाना पीना, वो बाहर ही खाना पीना हुआ आज।
1: अच्छा, भारी खाना पीना हुआ, तो बाहर क्या चॉइसेस रही? बाहर कुछ फास्ट फूड का आइटम चला या फिर यही सब चला है अभी?
2: नहीं नहीं, आज हम लोग आए हैं बुफे के लिए, तो बच्चे भी स्विमिंग कर रहे हैं, तो उन्हीं के साथ हैं।
1: अच्छा चलो, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। तो बहन आप जवाब देना चाहती हैं, जवाब देना चाहती हैं, जवाब
2: हाँ जी। मेरे पास तीन मतलब के हैं, जो एक मैरून और व्हाइट और ब्लैक डिजिट, जो हम लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करते हैं, जो हमारी खुद ही गाड़ी होती है एक वो, और जो पुलिस कार्स होती हैं जो ब्लू एंड व्हाइट होती हैं, और जो लिमोजीन की जो ग्रे कलर की होती हैं।
1: ठीक है,
2: इसी कलर्स हैं जो हम रास्ते में देखते हैं।
1: आपको सबसे सोना कलर कौन सा लगता है, मैंने ये बताया क्या लगता
2: अपनी
1: है?
2: गाड़ी का कलर लगता है, जो अपनी गाड़ी का जो नंबर था वही अच्छा लगता है,
1: वही अच्छा लगता है
2: की गाड़ी का वही जो हमने खुद खरीदी होती
1: है। सही है,
2: दूसरों को देखकर क्या करना है।
1: ठीक है, डन हो गया, आपका जवाब लॉक कर दिया और इंशाल्लाह मैं कॉल बैक करता हूँ। ठीक है, कबीर भाई, कल मैं वाउचर जीता, कब मिलेगा? अगेन पार्टिसिपेट नहीं कर सकते पार्टिसिपेट, मैं प्लीज क्लियर कर दूं, एक बार आप जीत चुके हैं तो नहीं हो पाएगा, मैं दिल पे पत्थर के बता रहा हूँ। यूसुफ भाई ने मैसेज किया, कह रहे हैं कि भाई आज हम लोगों ने दाल चावल ही खाए। यूसुफ भाई जल्दी खा लिया आपने, थोड़ा सा रुक जाते, एक दिन और रह देते, एक दिन और मामला सेट हो जाता। अस्सलाम वालेकुम।
3: वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि बरकातहू। तिवासी ईद मुबारक।
1: अरे तिवासी ईद मुबारक, ये कौन सा वर्ड है भाई?
3: तिवासी और कल चौवासी आ जाएगी।
1: अच्छा, ये तिवासी आपका बनाया हुआ इन्वेंशन है या कोई सच में वर्ड है?
3: यस यस यस, तीन दिन, तीसरे दिन वाली भी है ना, तो इसको ईद और बाकी तो कहा जाता है, तो अब इसको क्या कहा जाए?
1: तिवासी और चौवासी। तो शेखू, क्या खाया गया है, कौन सा पकवान है, आज क्या खाया गया?
3: आज जुमा मैच के मेन्यू के हिसाब से चिकन बिरयानी थी, क्योंकि हमको कंपनी से ही मैच है ना, कंपनी से खाना मिलता है फ्री, तो आज के मेन्यू में ये था दोपहर को चिकन बिरयानी।
1: होए होए होए, तो सोच के खाली
3: हाँ, और आइसक्रीम भी।
1: अरे अरे ठहर जाओ मालिक, अरे क्या बात है,
3: जुमा का आपसे जुमे की नमाज के बाद यही मेनू होता है जुमा का, बाकी डिफरेंस रहता है
1: भाई। ये जो पकवान बताया ना आपने, इसके बाद तो बंदे को सोना पड़ता है भाई, जग नहीं सकता ये ऐसा खाने के बाद।
3: फिर उठे, असर पड़े जी, आ गए कबीर भाई के प्रोग्राम में, तो जो आपके पास आ जाते और बंदे लोग हैं, ब्लैक व्हाइट एंड ग्रे है रोडो पे दिखते हैं नॉर्मली।
1: ठीक है शेख, अच्छा जवाब दिया है, थैंक यू सो मच भाई, ओके ख्याल रखिए सलीम भाई, ओके अल्लाह हाफिज़ अल्लाह हाफिज़। तो कहें दो दिन ही बस हो गए, इसलिए आज हल्का होगा। नहीं यूसुफ भाई, आज मेरी तरफ से आप जो है कलीजी खाइए बढ़िया वाली, आप ऐसे मत करिए, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। यूसुफ भाई मैं आपको एड्रेस सेंड करता हूँ, आप मंसूरा में आइए, मंसूरा में शीशे वाली बिल्डिंग से आपने लेना है राइट, वहाँ एक बहुत बड़े आदमी का घर है, मैं खुद उनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, क्या नाम है, कबीर नाम है उनका। हाँ जी मिली, मैं आप खिलाता हूँ, एक और कॉल आई है। अस्सलाम वालेकुम।
4: वालेकुम सलाम।
1: हाँ जी, आपका नाम?
4: अहमद।
1: जी कैसी हैं आप?
4: जी कैसी आप?
1: एक सेकंड,
4: अहमद मोहम्मद।
1: अरे कंफ्यूज कर दिया मुझे, अभी आवाज क्लियर रही है। ओके, क्या हाल है?
4: ठीक,
1: क्या चल रहा है भाई? क्या चल रहा है?

0: कुछ भी नहीं, आज अभी तो हम बाहर निकले थे, जिस वक्त हमने तैयारी करना शुरू की ना बाहर निकलने, उसमें आकर प्रोग्राम का टाइम आ गया था 5 बजे, तो हमने
1: अरे
0: कहा
1: तो बाहर
0: चलो
1: निकलो, घूमो फिरो यार, क्या टेंशन ले रहे हो प्रोग्राम की? प्रोग्राम तो होते रहेंगे हैं।
0: नहीं होते रहेंगे, लेकिन वाउचर तो नहीं मिले रहेंगे
1: अरे
0: ना।
1: क्या वाउचर, वाउचर तुम्हारी उम्र है मौज करने की, फुटबॉल खेलो, थोड़ा वीडियो गेम खेलो, है मौज करो, क्या क्या रखा है वाउचर में?
0: वीडियो गेम तो मुझे शौक है, लेकिन
1: शौक रखो,
0: वीडियो
1: थोड़ा
0: भी
1: बड़ा
0: अच्छा
1: करो
0: है।
1: शौक। हम देखो प्रो गेमर हैं, कभी हमसे मिलो तुम्हें बिगाड़ के रख देंगे। और बताओ क्या चल रहा है जिंदगी में तुम्हारी?
0: बस सब कुछ ठीक ठाक, अलहमदिल्ला। आखिरी गैदरिंग के बाद में फिर अब कल से कोई गैदरिंग नहीं, क्योंकि कल तो मॉर्निंग है, तो
1: कल मॉर्निंग है मतलब?
0: चलिए आज यानी मेरे पापा की मॉर्निंग है, नॉट
1: अच्छा मम्मी पापा की
0: माय
1: मॉर्निंग।
0: मॉर्निंग, क्योंकि कल तो छुट्टी है मेरी।
1: हाँ तो आज भी तो
0: तो
1: छुट्टी है, आज क्या खाया?
0: आज तो मैंने पिज्जा खाया।
1: क्यों भाई पिज्जा विज्जा क्यों चल रहा है? अभी तो बकरा ईद हुई है, अभी से पिज्जा पे आ गए तुम? बहुत जल्दी पिज्जा पे आ गए।
0: कल परसों के बचा हुआ था।
1: अच्छा आई अच्छा ओके, ये तो बैकलॉग चल रहा है। अच्छा ठीक है, जवाब बता दो जल्दी से अहमद, जल्दी से फटाफट।
0: सॉरी या फिर और सिल्वर
1: ठीक है, डन हो गया। थैंक यू सो मच मेरे भाई जवाब देने के लिए, थैंक यू। ओके अल्लाह
0: बिल्कुल।
1: हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। और एक मेरे पास स्पेशल रिक्वेस्ट आई है, तो मैं ज़रा उन्हें कॉल करने जा रहा हूँ, क्योंकि उन्होंने बोला है कि उनके जो साहबजादे हैं वो बात करने चाह रहे हैं। तो ए, ए, ए गलत नंबर मिला दिया, गलत गलत नंबर मिला दिया मैंने। आय आय आय आय नंबर सेम ला रहा हूँ मैं, बार बार देखना पड़ता है। आज मैंने बहुत कमाल की चीज़ करी है, आज मैं भाई साहब चश्मा भूल गया अपना, कहा था ये एकदम कॉल उठल। अस्सलाम वालेकुम।
2: सैयद
1: वालेकुम अस्सलाम, क्या नाम है आपका?
2: जाकिम।
1: अच्छा क्या सैयद, क्या आगे का नाम बताया आपने?
2: जाकिम
1: जाकिम।
2: जी
1: अरे माशाल्लाह, क्या क्या मतलब क्या है? ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक। क्या चल रहा है लड़के, क्या हाल है तुम्हारे, कैसी जा रही है ईद? अच्छी जा रही है,
2: मजे की जा रही है। बाहर जा रहे हैं फैमिली के साथ।
1: बाहर जा रहे हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो आप कौन सी क्लास में हैं अभी, कौन क्या है जी आपकी?
2: मैं फोर्थ क्लास में।
1: अच्छा फोर्थ क्लास में, तो ईदी मिली?
2: जी मिली थी।
1: अच्छा क्या किया ईदी का फिर?
2: मैंने
1: हाँ
2: अपने दोस्तों के साथ शेयर किया और दोस्त खाया।
1: वेरी नाइस, ये होती है बात, शाबाश शाबाश। तो जवाब देना चाहोगे आज के सवाल का?
2: जी
1: बता दो, बता दो।
2: वो आप पूछ रहे थे जो 3 नंबर प्लेट होते हैं नॉर्मल रोड पे।
1: हाँ हाँ।
2: तो पहला तो है ब्लैक, जो नॉर्मली ट्रक्स और जो बड़ी गाड़ियां होती है उनके लिए यूज होती है,
1: बिल्कुल
2: जीएमसी ट्रक्स के लिए। और दूसरे भी आते हैं जो नॉर्मल गाड़ियों के लिए होती है, रेड और व्हाइट,
1: ठीक है,
2: मैरून और व्हाइट,
1: ठीक है।
2: थर्ड पे आती है ऑरेंज, जो लाइक
1: ऑरेंज वन हटा दो, वो तो अलग गाड़ियां, स्पेशल गाड़ियां जो नॉर्मल रेस्टोरेंट वाली गाड़ियां। अभी तक जवाब तुम्हारा सही जा रहा है, आगे एक
2: और जो दे ऑरेंज, वो एक्सपोर्ट गाड़ियों के लिए होती है,
1: ठीक है। और कुछ?
2: और कुछ नहीं, आप
1: कुछ?
2: आप कैसे हैं?
1: मैं अच्छा हूँ, एकदम अच्छा हूँ। तुम बस अपना ख्याल रखो, है ना, अच्छे से आज बाहर निकले हो माशाल्लाह, दावत दावत उड़ाओ, मजे करो। अब्बा साइड में ही, अब्बा है पास में है?
2: जी अभी जा रहे हैं, बस पहुंचने वाले।
1: अच्छा पहुंचने वाले, चलो साथ खैरियत से पहुंचो और फोटोस वोटो शेयर कर देना, ठीक है? अब्बा से बोलना फोटो शेयर करना है कबीर के साथ, ठीक है?
2: ओके
1: ओके डन, बहुत बहुत शुक्रिया, एंड यू हैव अ लवली वॉइस, और अच्छा दिन जाए तुम्हारा, ईद मुबारक, ठीक है? ओके आप अगली कॉल की तरफ बढ़ेंगे, फिर मुझे कॉल लगानी है। अस्सलाम वालेकुम, हेलो। वालेकुम अस्सलाम भाई, वालेकुम अस्सलाम, आपका नाम?
3: नौशाद आलम।
1: नौशाद आलम, नौशाद भाई बताइए।
3: अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र, आपके घर
1: है? बस भाई बढ़िया जा रहा है, ईद मुबारक मेरे भाई को एक बार फिर से। नौशाद भाई बता दें भाईजान, जवाब बता दें क्या है आज का?
3: अच्छा जवाब नंबर प्लेट के बारे में।
1: हाँ जी,
3: वाइट वाइट ब्लैक और ग्रे,
1: ठीक है, डन हो गया वीर जी। और बताओ क्या दावत और लूट ली?
3: दावत
1: का मामला थोड़ा ठंडा होगा, मतलब आज तो खाना पीना थोड़ा लाइट चल रहा है, आज भी चल रहा है मतलब?
3: नहीं नहीं मेरे, मुझे तो दूध बोचन हो गया

0: शक्का खाके
1: यार अच्छा भाई थोड़ा ख्याल रखो भाई, आप भी ख्याल रखो।
0: इसीलिए रात रात रात कर खाने नहीं खाया, भूखा ही सो गया।
1: अरे अरे अरे ना करो मेरे भाई, कुछ खा भी लो नौशाद भाई। पर बहुत बहुत शुक्रिया आपने जवाब दिया, और ऑल द बेस्ट भाई, जीते तो कॉल करूंगा, ठीक है?
0: शुक्रिया,
1: ओके मेरा भाई, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। नौशाद भाई के बाद जो है मैं एक कॉल करने जा रहा हूँ, इनफैक्ट दो कॉल करनी है मुझे, दो भाइयों ने बोला है तो मैं ज़रा बातचीत कर लूँ। एक सेकंड, कहाँ गया इनका नंबर? हाँ तो कॉल मिला ली है मैंने भाई, किसी रॉन्ग नंबर के बाद चला जाए तो पहले से सॉरी। अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम सलाम कबीर भाई, कैसे हो?
1: मैं जी बढ़िया भाई, आप सुनाए क्या हाल है?
2: अरे कभी कभी हमें भी कॉल कर लिया करो।
1: अरे कभी कभी हमें मैसेज भी कर लिया करो, देखा कैसे पलट के मारा ऐसे थोड़ी चलेगा।
2: हैं? और आपके सारे लिसनर्स को ईद मुबारक हो। मैं एक छोटा सा मैसेज देना चाहूंगा।
1: दे दो जी।
2: जस्ट फॉर एवरीवन, बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है।
1: हाँ जी।
2: हाइड्रेट वेल और कैप लगाइए, चश्मा लगाइए, एंड अगर स्पोर्ट्स करते हैं आउटडोर, मैं स्पोर्ट्स करता हूँ आपको पता ही, तो पहले भी बातें हुई आपसे, तो हाइड्रेट वेल बिफोर ड्यूरिंग एंड आफ्टर एनी स्पोर्ट्स।
1: बिल्कुल बिल्कुल। और गाड़ियों में भाई साहब परफ्यूम मत रखिए, लाइटर मत रखिए, पहले ही आपको बता दिया जाए, गर्मी बिल्कुल ईमानदारी से नहीं चल रही है अभी।
2: Because आज टेम्परेचर आई थिंक 47 to 48।
1: जी हाँ, 47-48 चला गया था टेम्परेचर। बिल्कुल बिल्कुल, नहीं ख्याल रखने की एक्स्ट्रा जरूरत है। और बहुत बहुत शुक्रिया आपने मैसेज दिया मेरे भाई। ओके मेरे भाई, ख्याल रखिए, मुबारक आपको। ओके भाई, अल्लाह हाफिज़। और भाई के बाद जो है मैं कॉल करने जा रहा हूँ, किधर गया नंबर नंबर? भाई सब मुझे छोड़ के पूरे कतर में सबके पास अच्छे अच्छे नंबर है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है? सबके नंबर मुझे लगते हैं, सबके नंबर स्पेशल है मुझे छोड़ के, क्या चक्कर है ये? अस्सलाम वालेकुम।
3: वालेकुम
1: अस्सलाम
3: कबीर भाई, ईद मुबारक।
1: ईद मुबारक भाई को, ईद मुबारक, क्या चल रहा है मेरे भाई?
3: बस खैरियत, आप सुनाए कबीर भाई, कैसे हैं?
1: एकदम चंगा भाई, सब कुछ भला चंगा, जैसा था वैसे का वैसे, जैसा आप छोड़ के गए थे मुझे भीड़ में वैसा ही।
3: अरे बस आप और इससे अच्छे हो जाएं
1: भाई, बस आप तो हो ही जाएंगे इंशाल्लाह, हमें तो क्या ही है, आपको पता ही है देसी आदमी कितनी ख्वाहिशें होंगी, छोटी छोटी ख्वाहिशें, छोटी सी।
3: आप देखने को आपको तरस गए
1: क्या? क्या क्या
3: आपको देखने के लिए तरस गए?
1: अरे भाई मुझे तो मेरे घर वाले भी कई बार देखने को तरस जाते हैं नहीं ऐसा कुछ नहीं भाई, मैं एक्चुअली मैं सोशल मीडिया भी एक्टिव नहीं हूँ, बट इंशाल्लाह उधर भी जरा एक्टिव हो जाऊंगा मैं थोड़ा सा। आलस भी कोई चीज होती है ना समझ भाई, थोड़ा आलस भी चलता रहता है, क्या करें।
3: ये बात है। और सुनाए सब खैरियत से?
1: सब बढ़िया भाई अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाए क्या चल रहा है?
3: बस यार अल्हम्दुलिल्लाह, बस आपकी आवाज सुन लेते कसम से। मैं वैसे तो माशाल्लाह पूरी टीम 107 की बहुत ही अच्छी है टीम, यानी सभी लोग बहुत अच्छे, लेकिन यार पता नहीं आपसे किस दिल से लगा हुआ
1: है। ये आपकी मोहब्बत है मेरे भाई समद भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी।
3: कसम से मैं आपको सुनता हूँ ना, बड़ा मुझे मजा आता है, मजा चाहूंगा मैं आपको शायद रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ, लेकिन कसम से बहुत ही मजा आता है आपको सुनने में।
1: जज़ाकअल्लाह भाई,
3: फ्रेशनेस वाली बात होती है।
1: थैंक यू सो मच मेरे भाई, बहुत बड़ी बात है मेरे लिए, थैंक यू सो मच समद भाई। और बताइए ईद कैसे जा रही है, ईद कैसे जा रही है आपकी?
3: ईद तो बस कबीर भाई बिजी बिजी रहे, ईद में तो बहुत बिजी रहे।
1: अरे रे रे रे रे,
3: क्योंकि वो काम ही ऐसा है ना, हाउस ड्राइविंग का।
1: तो अभी अभी बिजी शेड्यूल थोड़ा कम, अभी अभी थोड़ा हल्का हुआ है मामला, अभी भी है बिजी शेड्यूल,
3: अब हल्का हो गया,
1: अब हल्का हो गया,
3: दो दिन बहुत बिजी था।
1: अच्छा अच्छा, नहीं नहीं आप समद भाई ख्याल रखिए अपना, हमारी तरफ से ईद मुबारक, और जवाब देना चाहें तो दे सकते हैं आप।
3: हाँ तो मेरा जवाब ये था कि एक तो ग्रीन मुझे पसंद है, एक ब्लू और एक व्हाइट।
1: ठीक है जी, ओके डन हो गया मेरे भाई, थैंक यू बहुत सारा प्यार आपको।
3: थैंक यू कबीर भाई, आपको भी वो आपने कॉल किया इसके लिए बहुत।
1: अरे कोई मसला नहीं भाई, कभी मैसेज करेंगे, हुकुम करें आप, कॉल हो जाएगी, क्या टेंशन।
3: अरे सर कैसी बात है, इंशाल्लाह मुलाकात करूंगा, जब भी टाइम मिलेगा मुझे
1: जरूर मेरा भाई, बहुत प्यार आपको, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। और भाई के बाद मुझे ये ऐश भाई ने मैसेज किया है, क्या कह रहे हैं? कबीर भाई आओ कभी रनिंग पे। अरे मेरा भाई कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हैं आपको पता है आपने किसको बुलाया है रनिंग पे आने के लिए? अब सोचिए, दोबारा सोचिए, कह रहे बेस्ट रेडियो स्टेशन एंड थैंक्स फॉर व्हाट यू डूइंग, इट्स अ टफ जॉब एज वेल। अरे बहुत मजा आता है भाई, कह रहे एंटरटेनमेंट करना सबको इट्स नॉट इजी, हम तो बैठे बैठे ही कर देते हैं, कोई टेंशन नहीं है, पर रनिंग वनिंग की बातें मत किया करो भाई, ऐसी बहकी बहकी बातें नहीं, सब ठीक है बाकी। हाँ अस्सलाम वालेकुम।
4: वालेकुम अस्सलाम कबीर भाई, क्या हाल है?
1: बस बहन एकदम जिंदा, आज तो बढ़िया एकदम طبیعت سے کھا کے بیٹھے ہوئے ہیں
4: الحمدللہ آج آپ دل کلیجی کھا کے بڑھیا ہوئے ہیں
1: آج تو مطلب میں کلیجی کو تھوڑا پرے کر دیا میں نے کہا تھوڑی دلی والی فیل آ گئی

0: आज मैं दिल मतलब दिल बड़ा हो गया आज मेरा, बताइए आप आपके घर क्या चल रहा है, आपके घर क्या बनाया आज? आज
1: हमारे घर बस नहीं, आज कुछ नहीं बनाया, अभी रात में बनेगा।
0: अच्छा,
1: क्योंकि कल का कलेजी हम लोगों ने खाया,
0: निपटा दिया, ठीक है।
1: तो अभी दिन में ग्रोसरीज और शॉपिंग चल रहा है।
0: अच्छा, रात में क्या बनाने का प्लान है फिर भी? कुछ लगभग कहीं में पहुंचा है?
1: नमकीन गोश्त बनेगा।
0: किसकी चॉइस है, आपकी चॉइस है?
1: हमारे घर में नहीं, मेरे हस्बैंड की।
0: अच्छा,
1: हमारे घर में कुर्बानी होती है तो सारा बकरा सिर्फ नमकीन गोश्त पे जाता है बांटने के बाद।
0: ये कुछ स्पेशल कर रही है आप शायद उसके साथ, मुझे ऐसा लग रहा है।
1: और ये पंजाब साइड का बहुत स्पेशल है पाकिस्तान का।
0: और ये आप बताने भी नहीं वाली हैं, ये सीक्रेट रेसिपी सीक्रेट ही रहनी चाहिए। तो
1: इसमें कुछ भी नहीं है, इसमें कुछ भी नहीं होता, सिंपल सॉल्ट डालता है।
0: हाँ।
1: और डालना चाहो तो एक आधा टमाटर डाल दें, एक प्याज, दैट्स इट। और वो अपने पानी में ढांप ढांप के वो गलता है, ऑलमोस्ट वो 2 घंटे तो लेता है। और वो जो उसका टेस्ट होता है,
0: मैं तो अंडा नहीं उबाल पाता, आपने मुझे पूरी रेसिपी बता दी इसकी।
1: बिल्कुल, आप वाकई आ जाओ, वाकई खिला देंगे आपको।
0: ये मैंने नंबर नोट कर लिया है, आपने बताया कितनी बड़ी गलती करी, आप पछताएंगे सोच के। अरे यार, फिर आ गया नमकीन गोश्त खाने के लिए। आप बताइए सवाल का जवाब बहन, अगर आपने सवाल सुनाया तो।
1: जी, मैंने आपको सवाल का जवाब मैसेज भी कर दिया।
0: अच्छा, ठीक है, ओके।
1: एक हमें व्हाइट और मैरून गाड़ी की वो नंबर प्लेट दिखती है जो नॉर्मल होती है जो हमारे पास है, एक हमें व्हाइट और ग्रे दिखती है जो टैक्सी की लिमोजिन की होती है, और एक ब्लैक दिखती है जो कमर्शियल कार की होती है।
0: ठीक है, डन हो गया, रजिस्टर कर लिया जी। बहुत
1: अब मुझे ये नहीं पता ये ठीक है कि नहीं, लेकिन ये पहले अभी देखी है सारी,
0: ये
1: तो मैंने
0: मैं अभी नहीं बताऊंगा, ये तो मैं लास्ट बताऊंगा। ठीक है, मगर आपकी जॉब मैंने,
1: थैंक यू सो मच,
0: बहुत बहुत शुक्रिया, ओके जी, लाफिस। और एक तुरंत में कॉल करूँ क्योंकि भाई ने बोला है कॉल करने के लिए, भाई ने बोला करने का तो करने का क्या। एक सेकेंड, ये गई कॉल, ओके। देखा, मैं जो नंबर मिला रहा हूँ माशाल्लाह सबके पास एकदम बढ़िया नंबर है, पता नहीं मैं ही क्यों। अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम अस्सलाम कबीर भाई, ईद मुबारक।
0: ईद मुबारक, ईद मुबारक भाई जान, क्या चल रहा है, क्या माहौल है?
2: माहौल बहुत बढ़िया है,
0: बहुत बढ़िया,
2: घूमने के लिए निकला है बाहर।
0: अच्छा, मैं सवाल रिपीट कर दूं फैजल भाई, आपके साथ साथ जितने भी लोग सुन रहे हैं, सवाल ये है कि कतर में,
2: मैं भी नहीं सुना सवाल,
0: मैं बताता हूँ, कतर में 3 रेसिडेंट्स और सिटीजन्स के लिए, नॉर्मल लोगों के लिए जो 3 नंबर प्लेट्स हैं गाड़ियों की, वो कौन कौन से रंग की हैं, ये बताना है, कलर बताना है, ये है सवाल। अब बताइए आपकी ईद कैसी जा रही है? सबसे पहले तो
2: ईद तो बहुत बढ़िया, एक दिन तो छुट्टी, एक दिन कल काम था,
0: कल काम था। और आज के कैसे, आज तो फ्राइडे है,
2: आज तो फ्राइडे है वैसे,
0: आज तो बढ़िया सीन चल रहा है। तो क्या क्या दावत में क्या लूटा आपने, आप हेल्थ कॉन्शियस तो नहीं ज्यादा?
2: दावत में वो बिरयानी।
0: अच्छा, बस
2: सब पूरे फैमिली साथ में थे हम लोग ईद के।
0: माशाल्लाह माशाल्लाह, मुझे लगा कि आप बोलेंगे मैं थोड़ा हेल्थ कॉन्शियस हूँ, मैं ये सब खाता नहीं हूँ, तो मैं डर गया था।
2: ये तो खाना ही पड़ेगा।
0: हाँ, इस डाइटिंग छोड़नी पड़ेगी ईद पे, तो ये सब नहीं।
2: डाइटिंग और ये सब छोड़ने का ही चीज है, होता है डाइटिंग तो एक्सरसाइज, हम लोग जैसे आलसी लोग के लिए तो ये छोड़ने का चीज।
0: आपसे मुझे मोटिवेशन की उम्मीद थी, आपने जो है मोटा कर दिया मुझे, ये बात बता के, थैंक यू।
2: तीसरे दिन छोड़ना है।
0: हाँ, अच्छा, ओके। तो आज का क्या सीन है, आज का क्या प्लान है फिर?
2: आज अभी इंशाल्लाह रात को सब लोग मिलेंगे साथ में।
0: अब जरा सवाल पे जाते हैं फैजल भाई, क्या क्या जवाब होना चाहिए?
2: मैरून, व्हाइट और ब्लैक।
0: ओके ओके, शोर हैं आप?
2: नहीं, शोर नहीं है, मैं
0: शोर वोर नहीं है, ऐसी बात नहीं। अच्छा, ठीक
2: है, बोलना है, जवाब तो देना ही है।
0: अरे नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, ओके फैसल भाई, आपका जवाब रजिस्टर कर लिया, ऑल द बेस्ट टू यू, इन केस यू विन तो आपको मैं कॉल करूंगा, ठीक है?
2: ओके
0: ओके, बहुत सारा प्यार भाई को, थैंक यू सो मच भाई,
2: आपको भी बहुत सारा प्यार,
0: ओके मेरा भाई, अल्लाह अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। और भाई के बाद एक दो और मैसेज आए मेरे पास, क्या मैसेज, ईद खत्म हो गई लेकिन ये दावतें खत्म नहीं हो रही। ये जो है मैसेज किया है, किन्होंने किया मैसेज, ये एक जगह समीना आलम लिखा, एक जगह सुमी, अच्छा ओके, समीना आलम, समीना जी थैंक यू सो मच। जमील अहमद भाई का मैसेज है, जमील भाई बहुत बहुत शुक्रिया आ गया। जुल्कनैन साहब, वालेकुम अस्सलाम, एनी क्वेश्चन टुडे, मैं तो पूछ लिया क्वेश्चन, एक और कॉल आ रही है, अस्सलाम वालेकुम।
3: वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकात, ईद मुबारक।
0: ईद मुबारक, ईद मुबारक। मेरे भाई का नाम क्या है?
3: जी सैयद फैजल बात कर रहा हूँ।
0: सैयद फैजल भाई बात कर रहे हैं, फैजल भाई क्या चल रहा है भाई, तीसरे दिन क्या हालात है आज?
3: तीसरे दिन कबीर भाई क्या बताऊं, ड्यूटी चल रही है,
0: ड्यूटी चल रही है, हाई फाइव मेरे भाई, हाई फाइव, बड़ा अच्छा लगा जान के। क्योंकि इस वक्त कोई बोलता है ड्यूटी चल रही तो बड़ा अच्छा लगता है, करो करो ड्यूटी करो,
3: एक आप ही नहीं है भाई, हम भी है, लग गए ड्यूटी पे, क्या
0: बड़ा अच्छा लगा ये जान के, क्योंकि मैं जो कुछ दिन आज

0: इनफैक्ट बहुत सारे लोगों ने बोला हमारी तो छुट्टी है, हमारी तो छुट्टी है, मैंने खून मत जलाओ, आज मुझे ऐसे लोग चाहिए जो काम पे हैं। तो अच्छा,
1: ज्यादा नहीं, अब 2 घंटे बचे हैं, उसके बाद तो ऐसे भी खत्म होने वाली।
0: ये इतनी इंपॉर्टेंट डिटेल आप शुरू में नहीं बता सकते थे हाई फाइव करने से पहले। अच्छा फैजल भाई, कैसे जा रही है वैसे ईद, आज क्या प्लान है, आज ऑफिस के बाद क्या सीन है?
1: अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी जा रही है, बस शाम का प्लान है, दोस्त लोग मिलेंगे और बस थोड़ी सी गपशप और क्या।
0: अच्छा ठीक है, तो सवाल सुन लिया आपने, आप बता दीजिए।
1: जी मैंने व्हाट्सएप पे ऑलरेडी जवाब दे रखा
0: दे दिया। अच्छा फिर तो ठीक है, कोई मसला ही नहीं है, पर मैं सवाल एक बार दोहरा दूं, क्या लाइन पर है, क्योंकि मैं नॉर्मल जनता के लिए जो गाड़ी नंबर प्लेट होती है उसकी बात कर रहा हूं, लोग जो है पूरे के पूरे बता दे रहे हैं, डिप्लोमेट शिप्लोमेट नहीं, मैं नॉर्मल लोगों की जो नंबर प्लेट होती है, हम और आप आम आदमी, उसके लिए पूछ रहा हूं। हां तो फैजल भाई बैक टू यू, ईद मुबारक भाई फिर से एक बार आपको।
1: ईद मुबारक आपको भी,
0: जज़ाकअल्लाह मेरे भाई।
1: फजील भाई इस टाइम पे आते थे, ठीक है कबीर भाई, तो उनका ना एक ये था, वो बोलते थे, मतलब एक शो चलता था, वो हाइपोथेटिकल सिचुएशन के बारे में बताते थे, तो ऐसी एक बार मस्करा चल रहा था, मतलब तफरी चल रही थी, तो मैंने उनसे कहा था कि फजील भाई क्या हो अगर आप शाम में ना आए सुबह में आए।
0: अरे यार भाई जुबान पे क्या रख के बोलते हो भाई, क्या चक्कर है?
1: पता नहीं आज मुझे अचानक से याद आया, अरे मैंने तो फजील भाई को ऐसा कहा था, अब तो ये पूरा चेंजेस ही हो गया माहौल।
0: मेरे लिए कुछ बोल रहे हैं, चुप रहना, एकदम चुप्पी, कुछ नहीं बोलने का, ठीक है? मैं ऑलरेडी शाम सुबह कर करके भाई मैं दीवाना हो गया हूँ, और कुछ मत बोलना प्लीज, खुदा का वास्ता, ठीक है? फैजल भाई मेरे बारे में सिर्फ यही बोलना, क्या बोलोगे, अच्छा ही बोलना, मोमोज की बात करना, ये सब बात बंद करना कि क्या हो ऐसा हो। हाँ
1: ये तो बोलना ही नहीं है,
0: ये आप फजील को दोबारा बोल देना जब उसका शो है, ठीक
1: है? फजील भाई से तो मैं ये पूछूंगा, उनसे बात करूंगा, तो मैं जरूर उनको बोलूंगा कि ये हाइपोथेटिकल सिचुएशन आखिर सही कैसे हो गया।
0: हाँ नहीं नहीं भाई, मैं बहुत डरता हूँ लोगों से जो कह देते हैं, मैं सोच रहा था, मैं कहा मत सोचो रुक जाओ। यही पे रुक जाओ,
1: सही बात है भाई। मेरा एक दोस्त जा रहा था, मतलब घर जा रहा था, और दूसरे वाले ने क्या किया, 3-4 दोस्त है, तीसरे वाले ने बोला भाई तू एयरपोर्ट से वापिस आएगा देख लेना, भाई साहब कबीर भाई उसका पासपोर्ट चेक हुआ और उसके पासपोर्ट में मतलब एक्सपायरी थी कि क्या, वो वापस आया और उसके फिर 15 दिन के बाद वो घर गया।
0: भैया ये लोगों से थोड़ा सा सर्कल 300 मीटर की दूरी बना के रखी।
1: मैंने बोला भाई तू मेरे से पार्टी लेने आ, लेकिन मेरे घर जाने टाइम कुछ मत बोलना।
0: तू मुझे भाई अल्लाह हाफिज मत कहना, मैं समझ जाऊंगा। अच्छा ठीक है, नहीं भाई आप मेरे बारे में भी ऐसे कुछ बोलना कि ऐसा लग रहा था वैसा लग रहा था, मैं सोच रहा था।
1: अरे कबीर भाई मैं नहीं हूँ, मेरे दोस्तों की बात कर रहा हूँ।
0: नहीं भाई दोस्ती संगत का असर पड़ता है भाई, डर लगता है अपने को, हम तो कमजोर दिल के, कल का बोल दो मैं सोच रहा था ऐसा। तो इसीलिए
1: वही ना, जैसे कुछ लोग कभी कभी बैठे होते तो बोल देते हैं कि भाई थोड़ा रनिंग वनिंग किया करो, सेहत बनाया करो, अब मैं इतना डिप्रेशन में चला जाता हूँ, मैं उठ के चला जाता हूँ भाई वहाँ से,
0: कि भाई दिमाग दौड़ रहा है, अब कौन सी रनिंग करूँ मैं। दौड़ तो रहा है
1: भाई तो।
0: अच्छा ठीक है फैजल भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और थैंक यू सो मच, इंशाल्लाह जो है अगर आप जीतेंगे तो आपको जरूर कॉल करेंगे, ठीक है?
1: इंशाल्लाह इंशाल्लाह
0: मेरा भाई, अल्लाह हाफिज अल्लाह हाफिज। और भाई ने ऐश भाई ने लिखा है, मैंने कार क्या मैंने कार लगा दी है, आई हैव रीच्ड होम एंड नाउ आई विल चेंज एंड गो फॉर रनिंग, कीप डूइंग स्पोर्ट्स। आपको लग रहा है आप फजील को सुन रहे हैं, वो है स्पोर्ट्स में एक्टिव, आप गलत आदमी से राबता कर रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। मेरे घर वाले नहीं बोलते मुझे स्पोर्ट्स करने के लिए, क्या बात हो गई। एक मैसेज, अस्सलाम वालेकुम, एक और मैसेज आया, क्या प्लीज क्या है, प्लीज से सो आई वॉज विद देम फॉर माई इंटरव्यू लास्ट ईयर। फजील भाई नाजिया को मेरी साइड से ईद मुबारक। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वैसे तो हम आरजीज एक दूसरे से मिल ही नहीं पा रहे हैं ईद के मौके पर इंशाल्लाह जब मुलाकात होगी तो ज़रूर आपका पैगाम उन तक पहुंचा देंगे मेरे भाई। एक और मैसेज है कबीर भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, ये कह रहे हैं कि आप मुझे कन्फ्यूज़ कर रहे हैं, आप सुबह आएंगे कि शाम में आएंगे, मुझे अभी भी समझ में नहीं आ रहा। देखिए बात सारी ऐसी है, 31 को एक शो बाकी है बस मोनने का, वन ओनली वन, उसके बाद शाम से शुरू है मामला, ओके? अब जरा मैं सवाल को दोहरा देता हूँ, कुछ लोगों को अभी अभी जिन्होंने ट्यून किया नहीं पता है, सवाल बड़ा सिंपल है, लेट्स मेक इट मोर सिंपलर। तो कतर में आम जनता के लिए जो नंबर प्लेट्स मुहैया कराई जाती हैं उनके जो रंग हैं वो पूछ रहा हूँ आपसे, आम जनता, ओके? नॉट द ब्लू कलर, नॉट द ऑरेंज, नॉट रेड, नॉट वॉट एवर, क्योंकि वो सारे कलर्स डिप्लोमेट्स एंड पुलिस कर्मियों के लिए अलग होते हैं, बट जो नॉर्मल जनता के लिए है वो ऑपरेशन नंबर कौन से हैं, ये मैंने पूछा है, ओके? वेरी सिंपल जॉब

0: जवाब देना है आपने और नाम लिख देना, एक कॉल और आ रही है। अस्सलाम वालेकुम।
1: जी जी वालेकुम सलाम, गुलाम साहब बात कर रहा
0: हूँ। गुलाम साहब क्या हाल है?
1: आप सुनाएं, वो आपने आज तो फिर वो क्या कहते हैं दिल के, वो क्या कहते हैं
0: टिक्के
1: टुकड़े
0: टिक्के।
1: टुकड़े कर दिए।
0: हाँ जी, टूटे टूटे टूटे टूटे कर दिए जी।
1: मैं तो परेशान हो गया था, आपने टुकड़े टुकड़े कर दिए।
0: हाँ जी भाजी, टूटे टूटे तो करके खाया मैं, मजा आ गया।
1: तो वो कैसे थे? मुझे तो कभी नहीं खाए वैसे।
0: देखिए बहुत कमाल का टेस्ट होता है, लोग मेरी बात को मानते नहीं हैं, जिन्होंने ट्राई किया है वो शायद जानते होंगे, स्पेशली नॉर्थ वाले, उन्होंने तो बहुत दबा के खाए भाई। लेकिन पता नहीं, आपको ट्राई करना चाहिए, कभी कभी ट्राई कीजिएगा।
1: कहाँ पे मिलते हैं ये?
0: ये तो अपना खुद का बकरा था भाई, तो इसलिए मिल गए, वरना तो मुझे भी नहीं पता।
1: अच्छा चले,
0: हाँ,
1: चले कभी इंशाल्लाह चले। ये आज ईद खुशियां जो है ना, बस इसी तरह कहते मिल मिला के सबको अल्लाह ताला जो है ना खुश खुरम रखे सबके। अल्लाह ताला जो नेक अमाल किया अल्लाह ताला उनकी यानी के ना कबूल करे, और हाजियों का जो हज है वो अल्लाह ताला उनका कबूल।
0: आमीन रब्बुल आलमीन। जी गुलाम भाई, जवाब भी बता दीजिए, आप आई गए तो कॉल पे एक बार सवाल आपने सुन लिया होगा।
1: ये तो मुझे कुछ आइडिया इस तरह की, जो व्हाइट प्लेट होती है ना उसके साथ विद ब्लैक नंबर्स होते हैं, वो प्राइवेट पर्सनल कार जो हम लोग यूज करते हैं ना,
0: ठीक है।
1: इसके अलावा एक होता है कि एक ब्लैक प्लेट होती है विद व्हाइट नंबर्स होती है,
0: ठीक है।
1: उसमें कुछ कमर्शियल और प्राइवेट ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स आ जाती हैं,
0: ठीक है।
1: इसके अलावा टैक्सी और लिमोजिन के लिए मैंने अक्सर देखा वो ग्रे और सिल्वर प्लेट्स होती है उनकी।
0: ओके ठीक है, तो आपने देखी है तो सही देखा होगा आपने।
1: जी जी, बस ये मुझे इतना ही आइडिया है।
0: नहीं नहीं, आपका
1: ब्लू प्लेट
0: आइडिया इंशाल्लाह सही जाएगा।
1: तो वो पुलिस वालों की होती है।
0: नहीं नहीं, हाँ ब्लू वालों का तो जिक्र नहीं करना, एकदम सही है ऐसे। ठीक है ठीक है गुलाम भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बत।
1: गुलाम
0: मुस्तफा भाई, ठीक है भाई, बहुत बहुत शुक्रिया भाई, जज़ाकअल्लाह।
1: चलिए अल्लाह ताला आपको खुश रखे,
0: आमीन
1: भाई, कायनात का जरा जरा आपकी खुशियों में शामिल हो
0: जाए। आमीन भाई, अल्लाह हाफिज़ भाई, अल्लाह हाफिज़। और अभी ये कतर में ऑटो के लोगों ने फोटो खींच रखे हैं, ये उसमें क्या क्या लिखा था लोगों ने, बड़ा फैंसी, थ्री व्हीलर इज कैचिंग एवरीवन्स अटेंशन। आओ कभी दिल्ली, बताते हैं थ्री व्हीलर कितना अटेंशन कैच करता है। यहाँ पे जो ऑटो चलता हुआ लोगों को दिखा है, हा? वो जिन्होंने पहली मरतबा ऑटो देखा है उनको वो शायद समझ नहीं पाएंगे। अगर आपको फास्ट एंड फ्यूरियस ऑटो रिक्शा वर्जन देखना है, कभी आप दिल्ली में आइए। आप बता रहा हूँ, आपकी 2-3 लाख की गाड़ी भी उनको पीछे नहीं छोड़ सकती है। मैं लिख के दे रहा हूँ आपको, नहीं यकीन हो रहा तो कोई गाल नहीं, लेकिन मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, आपकी 2-3 लाख रियाल की गाड़ी और दिल्ली का ऑटो रिक्शा कर लेना कॉम्पिटिशन, कोई तोड़ नहीं है उनका, कोई तोड़ नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ मीटर भी नहीं है। कोई मीटर वीटर नहीं, बस चला जाता हूँ किसी की धुन में। और किसी की धुन में वो चलते हैं तो फिर आप सोच सकते हैं कहाँ कहाँ चलते होंगे। 666-22107 सवाल जारी है, कुछ देर में मिलते हैं।

0: FM 107 की पूरी फैमिली की तरफ से हमारे तमाम सुनने वालों को ईद उल अदा की दिल की गहराइयों से मुबारकबाद। FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें,
1: आज ही राब्ता करें
0: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
2: FM 107 Time check.
3: 6:02 हो रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं दोहा वाला कबीर एफएम 107 पे। एक मैसेज आया भाई का, शाहिद भाई कह रहे हैं कि मेरी गाड़ी में मेरे भांजे लोग साथ में हैं, इरफान मनिहार, आसिफ मनिहार और रजाक। प्लीज़ इनका नाम ले लिया जी, इनका नाम भांजों के साथ कहाँ घूम रहा है, बढ़िया चल रही है पार्टी, घुमाने फिरने लेके आएगा। एक मैसेज, ये वाला कंसिडर कर, देखिए ऐसा नहीं चलेगा। एक मैसेज और है, कंसिडर कर लिया है, डोंट वरी। एक और मैसेज है कॉल करने के लिए, चलो मैं आपको कॉल कर लेता हूँ, फिर मैं

आधा गाना चला दूंगा जी, एक सेकंड, ये मैंने कॉल लगा दी है, जा रही कॉल, ट्रिंग ट्रिंग नहीं हो रहा, इसका मतलब ये नहीं कि कॉल नहीं जा रही है, प्लीज़।

0: में और इवनिंग में ड्यूटी स्टार्ट होती है।
1: कोई गल नहीं जी, ड्यूटी इज ब्यूटी, ड्यूटी चलती रहनी चाहिए, बाकी सब तो ठीक है, चलते ही रहेगा साइड में, क्या कहते हो?
0: हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, ड्यूटी चलेगी तो हम चलेंगे ना।
1: बिल्कुल भाई,
0: बिल्कुल। नहीं चलेगी तो हम किधर चलेंगे,
1: सब कुछ थम सा जाएगा। तो बताओ भाई, क्या क्या क्या जवाब क्या है, आपने सुना होगा सवाल? अगर
0: जवाब मैंने सुना है, एक तो ये कतर की जो थे लोकल नंबर प्लेट होती है व्हाइट और मेहरून कलर की, ठीक है, और एक ब्लैक कलर की कमर्शियल गाड़ियों की जो होती है एक ब्लैक कलर की नंबर प्लेट होती है,
1: ठीक है,
0: और एक ये लेमोजिन की नंबर प्लेट होती है, उसमें व्हाइट और लाइट ग्रे कलर होता है उसमें,
1: ठीक है, डन हो गया। ओके ओके मेरा भाई, बहुत बहुत बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और इस तरह से बस
0: भी आपका भी बहुत शुक्रिया
1: भाई, कोई गल नहीं भाई, जब आप बोलेंगे कॉल कर लेंगे आपको, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए आप,
0: बहुत मेहरबानी, थैंक यू,
1: नो प्रॉब्लम भाई, ख्याल रखिए अपना, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। एक मैसेज आया है, AI खेल रहा है ना, मैंने मुझे पता था ये इंदा जी ऐसा ही होता है। एक मैसेज है, क्या है, नहीं सुना, मिस कर दिया भाई। ये हमारे शाहिद भाई अपने भांजों के साथ घूम रहे हैं, इनका नाम मैंने लिया पर भांजों ने नहीं सुना, तो जितने भांजे सुन रहे हैं शाहिद भाई के, एक है इनके साथ इरफान, मनिहार और आसिफ है, फिर रजाक हैं, तीनों को बहुत सारा प्यार हमारी तरफ से, और तीनों से गुजारिश है अपने मामों को लूट लेना, आज कोई रियायत नहीं बरतनी है, ठीक है, एकदम बढ़िया, होंगे बड़े आप लेकिन देने तो पड़ेगी दावत इनको। एक कॉल मैसेज आया है, कॉल मी, ओके मैं एक गाने के बाद सीधा कॉल करता हूँ, ठीक है, तुरंत तुरंत कॉल आएगी, क्योंकि भाई साहब ईद का माहौल है और ईद के माहौल में शांति रहनी चाहिए, जश्न पूरी जनता को सुनाई देना चाहिए बॉर्डर पार तक, इसलिए शोर तो मचेगा। मैं दुहा वाला कबीला शोर 7 पर 6:05, शोर मचेगा मचेगा, 7

0: मुझे तीन कॉलें, कॉल्स कहने में मजा नहीं है, थोड़ा फैंसी हो जाता है, तीन कॉलें कर रहा हूं मैं, उसके बाद सीधा विनर का नाम अनाउंस होगा, तो टेंशन नहीं है। सबसे पहली कॉल ये जा रही है शफीक भाई को। शफीक भाई, भाई शफीक, उठा लो कॉल जल्दी जल्दी जल्दी जल्दी जल्दी जल्दी जल्दी। शफीक भाई हेलो, कबड्डी हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह।
0: कैसे हैं मेरे भाई?
1: अल्हम्दुलिल्लाह भैया, आप सुनाए सब ठीक है? इसका तीसरा दिन, बहुत बहुत मुबारक हो
0: आपको भी, बहुत बहुत मुबारक हो, बहुत बहुत मुबारक हो मेरे भाई।
1: खैर मुबारक, खैर मुबारक,
0: कैसा चल रहा है माहौल?
1: सब ठीक है,
0: शानदार सब,
1: अल्हम्दुलिल्लाह बढ़िया, जबरदस्त मजे, फुल मजे,
0: फुल मजे आ रहे हैं। ठीक है भाई, जवाब भी बता दीजिए आप इसी बात पे।
1: जवाब जो है, एक तो वाइट है और ब्लैक है,
0: ठीक है,
1: और दूसरा रेड एंड मैरून।
0: ठीक है, डन हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाई जवाब देने के लिए, और आई होप आपकी हालत अच्छी जाए, बढ़िया जाए, यही दुआ
1: है।
0: ठीक है शरीफ भाई, बहुत बहुत शुक्रिया भाई, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। और इनके बाद तुरंत अगली कॉल, दो कॉल्स लेफ्ट। आई नो पेट में दर्द हो रहा, लोगों के नहीं क्या कर रहा है, बता क्यों नहीं रहा। बस दो कॉल प्लीज़, इन लोगों ने बोल दिया था ना, अच्छा नहीं लगता है, ये एटिकेट्स नहीं है। एक मैसेज आ रहा है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, हुसैन मंसूर साहब, अस्सलाम वालेकुम।
2: अस्सलाम वालेकुम सर जी, क्या हाल है? ठीक है?
0: बस जी बढ़िया, आप बताओ क्या हाल है?
2: बढ़िया बढ़िया, आप सुनाएं?
0: बस जी बढ़िया चल रहा है, एकदम शानदार है भाई, क्या चल रहा है आपका? ईद मुबारक सबसे पहले तो।
2: खैर मुबारक आपको भी, ईद मुबारक
0: जी भाई जान, बता दीजिए आप सवाल का जवाब बता दें आप।
2: जवाब ये है, वाइट एंड ब्लैक और रेड एंड मैरून।
0: ठीक है जी, लॉक कर दिया मैंने। और बताइए ईद कैसी जा रही है आपकी?
2: अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत करम है, अल्हम्दुलिल्लाह।
0: क्या प्लान है फिर आज का? लग नहीं रहा कुछ प्लान है, आपकी आवाज में आ रहा है कि आज मन नहीं है कहीं जाने का। क्या सीन है आज का?
2: आराम हो रहा है, आराम हो रहा,
0: आराम हो रहा है ना। मुझे लग रहा है कि कॉल पे ही आदमी सो ना जाए। कुछ देर मुझे खर्राटों की आवाज आने वाली है। जुमे का दिन ऐसे होना
2: चाहिए।
0: बहुत प्यार, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, ख्याल
2: रखिए।
0: और आर्यन भाई तो भाई एकदम पसर गए हैं, उनके बाद जो है कॉल एक और करनी है, एक सेकंड रुकिए भाई, किधर गया नंबर, मुझे पता भी नहीं मैं कहाँ कॉल कर रहा हूँ। उनका नंबर मुझे मिला है, क्या नाम है इनका, समीना जी नाम है। ओके जरा कॉल एक बारी लग जाए फिर बात करेंगे। कॉल जो जा रही, अस्सलाम वालेकुम।
3: वालेकुम अस्सलाम, ईद मुबारक।
0: ईद मुबारक, ईद मुबारक, कैसी हैं आप?
3: खैर मुबारक, अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी भाई?
0: बस अल्हम्दुलिल्लाह। दावतें कैसी चल रही है बहन, ये बताइए पहले तो।
3: अभी तक नहीं गई दावतें।
0: अभी तक क्या नहीं चल रही है?
3: नहीं गएंगे।
0: अच्छा,
3: आज जाएंगे इंशाल्लाह,
0: आज जाएंगे इंशाल्लाह। ये दो दिन का वेट क्यों हुआ, इतना वेट क्यों हुआ
3: जी?
0: इतना इंतजार क्यों किया आप लोगों ने दावतों के लिए? मतलब दो दिन तो बीत गए, दो दिन
3: में
0: क्या?
3: मेहमान के घर पे थे।
0: अच्छा ऐसा जी। तो जी बहन बताइए प्लीज, सवाल का जवाब बता दीजिए आप।
3: व्हाइट ब्लैक एंड मेहरून।
0: ठीक है बहन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और दावत हमारी तरफ से भी एंजॉय कीजिएगा, दोने वाले एक्स्ट्रा हमारी तरफ से। ठीक है बहन, बहुत बहुत शुक्रिया, ख्याल रखिए अपना। और अब जो सारी कॉल हो चुकी है भाई साहब, अब मैं सीधा विनर का नाम अनाउंस करने जा रहा हूँ। एक गाना प्लीज चलाना पड़ेगा, प्लीज लास्ट सस्पेंस, मुझे पता है आपको मन कर रहा है मैं सुना दूं इसको कुछ रख के। पर प्लीज लास्ट एकदम छोटा सा, इसके बाद सीधा सीधा विनर का नाम और सीधा जाएगी कॉल। तो बस जरा प्लीज प्लीज, किधर गया जी? आरो जी थोड़ा सा चर्पी गाना चलाते।
4: अरे अल्फा बीटा गामा थीटा,
0: मिलते हैं
4: सबको पीटा
5: भगा भगा के।
4: आपके लिए आया
0: बता दो, दावत पर बुलाऊंगी, विनर बना। ये देखे, ये लालच नहीं चलेगा समीर।
4: ये गाना उनके लिए जो मेरे साथ स्कूल में थे।
5: कैसे भाइयों?
0: कैसे भाइयों?
4: जो अभी भी स्कूल में है।
5: बड़ो और बड़ो
4: भाई, जब तक
0: बच्चे बड़े बूढ़ो सबके लिए गाना।

0: रफ्तार मेगा जी इस शो बॉय दोहा वाला कबीर एफएम 107 पे आप सीधा जाने वाली है कॉल और जो हमारे लकी विनर बनेंगे या बनेंगी उनका नंबर मेरे पास आ चुका है इनके नंबर में 8 भी है 7 भी है और भाई क्या नंबर है बराबर के जीरो है एक सेकंड रुको जरा कॉल लगा ली जाए और प्लीज़ मैं फिर से कह रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है अगर मैं आपके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचूं तो आपको बड़ा गुस्सा आता होगा कि मैंने पार्टिसिपेट किया अभी तक मेरे नंबर क्यों नहीं आया देखिए इट इज़ ऑल रेंडमाइज सरकारी रेडियो स्टेशन ने अगर हम अपनों को जिताने लगे तो हमारा अपना कोई नहीं रहेगा समझ रहे हैं आप सो प्लीज़ इट्स अ प्रोसेस वी ऑल्सो हैव टू फॉलो देर इज़ अ प्रोटोकॉल इन बिटवीन तो टेंशन मत दीजिए आप पार्टिसिपेट करेंगे इंशाल्लाह आपका नाम आएगा पार्टिसिपेशन इज़ मोर इम्पोर्टेंट तो अभी जिनका नाम हमारे पास आया है बिल्कुल रेफल ड्रॉ की तरह पर्ची की तरह निकला है ये नंबर मैं कॉल करने जा रहा हूँ लेट सी कि क्या होता है अगर इनके पास पहले नाम होगा तो वो छीन लिया जाएगा अस्सलाम वालेकुम
1: वालेकुम सलाम कबीर कैसे हैं आप
0: आपका नाम
1: मेरा
0: इसरा अच्छा ओके इसरा जी अरे अरे क्या बात है आपको कॉल लग गया अरे सॉरी मैं विनर को कॉल लगा रहा था आपको कॉल लग गई गलती से क्या ये क्या हो गया ये
1: जी मुझे कॉल लग गई
0: अच्छा तो आपको क्या लग रहा है विनर बन गई है क्या इसलिए आप खुश हैं क्या ऐसा कुछ लग रहा है क्या
1: नहीं अभी तो आपने कहा
0: कि आप विनर को कॉल करने
1: लगे
0: थे तो आप पहले विनर तो नहीं बनी है किसी भी कॉन्टेस्ट में भी ये पहले क्लियर कर दीजिए मुझे
1: नहीं मैं कल नाजे के शो में बनी थी शायद मेरी मेरी फैमिली ने मुझे बताया था
0: ये अभी ईद का मामला है
1: ये
0: इनका
1: मामला
0: जी
1: कल की बात है
0: अरे बहन फिर तो ओ, ओ, ओ, दो इनाम नहीं जा सकते दो इनाम नहीं जा अच्छा। सकते है ना यही तो प्रॉब्लम है
1: नहीं कोई मसला नहीं
0: पर थैंक यू सो मच फॉर बीइंग सच अ सपोर्ट
1: थैंक यू सो मच कबीर
0: कल आप जीती हैं तो कांग्रेचुलेशंस उस साइड से
1: थैंक यू सो मच कबीर
0: ओके जी अल्लाह हाफिज़ अल्लाह हाफिज़ तो भाई साहब दूसरा नंबर मिलाने जा रहा हूँ आप देखो ये होता है किस्मत का खेल इसे ही कहते हैं किस्मत का खेल तो किसके पास ये जाने वाला है ये नंबर अभी घूम रहा है आज जो भाई आज जो किसकी किस्मत में जाने वाला है ये इनाम देखें जरा देखो मुझे क्या हुआ है एक सेकेंड हाँ आ गया मेरे पास नंबर अब मैं सीधा ने कॉल लगाने जा रहा हूँ अगर कॉल उठा ली इन्होंने और इन्होंने पहले नाम नहीं जीता होगा सो इट विल बी ऑल हिज या हर्ज वरना तो पाजी मैं फिर दिमाग घूम जाएगा सब पहले से जीते हुए तो हार कौन रहा है एक सेकेंड रुको इनकी कॉल लग रही है लेकिन कोई उठा नहीं रहा है और ये क्या हो रहा है उठा लो पाजी आज क्या हो रहा है इन्होंने भी कॉल नहीं उठाई है लो जी इन्होंने भी कॉल नहीं उठाई है आज कुछ अलग ही सीन चल रहा है मैं जल्दी से

0: एक सेकेंड रुको भाई, किधर है भाई? किसी का रिस्पॉन्स, ये कोई कॉल क्यों नहीं उठा रहा अचानक से? ये क्या हो गया है? इन्होंने कॉल नहीं उठाई है, बट लेट्स सी कि इनका नंबर लगता है कि नहीं लगता है. एंड ये कॉल जा रही है अब एक शख्स को, जल्दी हमें बात करने के निपटाना पड़ेगा क्योंकि अजान का हो रहा है वक्त. अगर इन्होंने भी कॉल नहीं उठाई तो भाई मैं बता रहा हूँ, मैं पानी की बोतल सर पे मार लूंगा. फाइनली रिंग गई, फाइनली रिंग गई. अस्सलाम वालेकुम.
1: वालेकुम अस्सलाम
0: भाई आपका नाम?
1: रिफत हुसैन.
0: रिफत भाई, आप पहले FM 107 पर ईद में जीते हैं, इस वाली ईद में?
1: इस बारी ईद में तो नहीं जीता, पहले जीता था वो अंडर 17 में.
0: अभी तो नहीं जीते ना?
1: नहीं नहीं जीता भैया.
0: तो जीत जाओ फिर, कॉन्ग्रेचुलेशन मेरे भाई, आपका नंबर लग गया, दो लोगों को पार करके आप तक पहुंचा है ना मेरे भाई, कॉन्ग्रेचुलेशन.
1: माशाल्लाह.
0: तो आपको मुबारक हो, आपको पता नहीं आपको जीत मिली कैसे इतने सस्पेंस और इतने मामलों के बाद. कॉन्ग्रेचुलेशन.
1: मैं सोचा कबीर भाई ऐसे ही कॉल किया बात करने के लिए.
0: अरे नहीं भाई, मुबारक हो आपको मेरे भाई, बहुत बहुत शुक्रिया. और इंशाल्लाह हमारी टीम कॉन्टेक्ट करेगी. आप जीत चुके हैं हमारे पहले मिलने, कुमार एंड ट्रेवलर रेस्टोरेंट की तरफ से आपको फूड वाउचर मिलता है 500 कतरे रियाल का. एंड आपसे और बात करता,
1: इस साल मिलेगा और अगली साल,
0: इसी साल मिलेगा भाई, तुम्हारे घर आके देके जाऊंगा ये बताओ. चलो फिर मैं इंशाल्लाह फिर बात हो, क्योंकि अजान का वक्त हो रहा है इंशाल्लाह. बार मबरूक मेरे भाई.
1: थैंक यू
0: मेरे भाई. ओके भाई, ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़. तो अजान के बाद इंशाल्लाह मुलाकात होती है. जाना आपने है नहीं, और जितने भी लोग हैं अभी कॉन्टेस्ट, अभी भी जीतने के लिए आपके पास ऑप्शन है. जल्दी जल्दी बताता हूँ, अभी जीत चुके हैं रिफत भाई. रिफत भाई को कॉन्ग्रेचुलेशन. एंड इंशाल्लाह इसके बाद फिर से होगा मामला. एक मैसेज है, हमें लगा लें, ये देखिए, अरे हमें लगा लें कॉल, क्या दिक्कत है? मुझे पता था लोग बोलेंगे दिल तोड़ दे. देखिए मैं किसी का दिल नहीं तोड़ रहा हूँ, प्लीज़ समझिए. प्रोटोकॉल मेरे छाती पर भी है, उसको मुझे भी फॉलो करना पड़ता है. मुझे कॉन्टेस्ट खिलाने से ही डर लगता है, आधे लोग तो मुझसे नफरत करने लग जाते हैं. प्लीज़, आई एम अ वेरी क्यूट गाय. बाकी एक और सवाल आएगा अगले घंटे, इसी घंटे आएगा इंशाल्लाह. एंड यू विल गेट अनदर चांस टू विन कुमार एंड ट्रेवलर रेस्टोरेंट की तरफ से 500 कतरे रियाल का वाउचर. बट फॉर नाउ अजान का वक्त हो रहा है, इंशाल्लाह आपसे अजान के बाद मुलाकात होगी. जाना आपने नहीं, आपको पता है बेस्ट जगह पर हैं आप. सो Stay tuned.

0: गौतम देव ने किया अमिता भट्टाचार्य की लिरिक्स, वो जबान थोड़ी स्लिप हो जाती है। ओके जी, तो मैं दूसरा सवाल पूछ लूँ फिर मैं जरा एक कॉल करनी फिर गाना चला दूंगा। तो सवाल बड़ा सिंपल है, दूसरा सवाल बहुत जल्दी पूछ रहा हूँ मैं कुमार एंड ट्रेवलर रेस्टोरेंट के 500 का थ्री रियल के वाउचर के लिए। दूसरा सवाल ये रहा आपके रेडियो सेट पर। तो सवाल बड़ा सिंपल है, कतर की सबसे ऊंची इमारत में कितने फ्लोर्स हैं? वेरी सिंपल, कतर की सबसे ऊंची इमारत जो है उसमें कितने फ्लोर हैं? वेरी सिंपल क्वेश्चन। सो इस दौरान मैं जरा कॉल कर लेता हूँ, एक जगह कॉल करनी बड़ी ज़रूरी है। ये कौन सी बिल्डिंग बता रहे हैं ये भाई? मतलब ये जो आपने बताया है, मैं एक बारी चेक कर लेता हूँ इंटरनेट पे। इन कतर, वैसे तो मेरा जवाब, मेरा सवाल जो है वो सही होना चाहिए अगर मुझे इन्होंने कन्फ्यूज़ नहीं किया है तो। हाँ जी, बच गया, सवाल तो सही पूछा है मैंने, आप ही ने मुझे कन्फ्यूज कर दिया मेरे भाई। ओके, सो 666-22-107 नंबर है। कतर की टॉलेस्ट बिल्डिंग में कितने फ्लोर हैं? कतर की टॉलेस्ट बिल्डिंग में कितने फ्लोर हैं ये आपने बताना है। मैं ज़रा एक कॉल कर लेता हूँ। मीन वाइल आप आराम से जवाब देते रहिए, कोई टेंशन नहीं है भाई। ये जो जवाब आ रहे हैं क्या बाप रे, बहुत सारे जवाब आ रहे हैं मेरे पास। वालेकुम अस्सलाम, मुझसे पहले ही सलाम कर दिया आपने, मैं पीछे रह गया भाई।
1: बिल्कुल खैरियत?
0: अल्हम्दुलिल्लाह भाई, खैरियत। दोबारा भाई, दोबारा की दोबारा, आप सुना मेरे भाई, कैसे हैं आप?
1: अल्हम्दुलिल्लाह समीर भाई, आपकी आवाज़ सुना
0: जी भाई।
1: तो क्या कंपटीशन चल रहा था मेरे को पता तो नहीं है, बट इसीलिए मैं सोचा मेरे को भी कॉल कर ले तो बात हो जाए आपसे।
0: भाई बस ऐसी बहस कर रहा था मैं, तो इसी बात के तो पैसे लेता हूँ। वो मुकाबला चल रहा था भाई, ऐसी कंपटीशन चल रहा है एक ईद का खास, उसमें सवाल पूछे जा रहे हैं और लोग इनाम जीत रहे हैं।
1: अच्छा अच्छा,
0: जी जी जी जी जी, ऐसे ही चल रहा है बस। आप सुनाए आपकी ईद कैसी रही?
1: अरे जबरदस्त, अभी छुट्टियां ही चल रहे हैं, रोज हर दिन एक नई बीच आ रहा हूँ, आज दुकान भी जाया हूँ।
0: जो बंदा काम पे लगा हो उसको ऐसे उसका खून नहीं जलाते हैं, ठीक है? छुट्टी चल रही है, छुट्टी चल रही है।
1: मैं रूम में सो रहा हूँ, रूम में पता नहीं पानी कहाँ से आ गया इतना।
0: हाँ देखा, जब लोगों को बताते फिरोगे कि मेरी तो छुट्टी है तो यही होगा। यही होगा और क्या नहीं होगा। तो क्या कैसी दावतें कहाँ लूटे जा रही है भाई, क्या चल रहा है दावतों का क्या हाल है?
1: आप बताओ, आज शाम को, रात को मिले, कल मिले, दावत हम कर, हम
0: भाई हम आम नौकरी पेशा चल रहे हैं, कोई छुट्टी उट्टी नहीं है, ठीक है? देखो तो सही। हाँ तो ओबीडियंट बच्चे हैं हम। आप बताइए आपकी क्या, कहाँ दावत है, क्या सीन है, क्या चल रहा है आज?
1: दावत है तो कुछ नहीं, बस खुद पकाना है, खुद खाना है, लौंडे लपाटे करेंगे क्या हम तो, मतलब
0: तो आप कुछ नहीं हेल्प करते, मतलब आप मेरी कैटेगरी में है क्या, कुछ काम वाम नहीं आता आपको?
1: नहीं, मैं अच्छा पकाता हूँ, खिलाता हूँ लोगों को।
0: हाँ तो क्यों आलस के चक्कर में आप मदद नहीं करना चाहते लौंडों की जो आ रहे हैं? क्या चक्कर है, ऐसा क्यों कर रहे हैं आप?
1: अल्हम्दुलिल्लाह कभी भाई, सब ठीक है।
0: तो आज मेन्यू में क्या है मेरे भाई?
1: आज के मेन्यू में है चिकन बारबेक्यू।
0: ओए ओए ओए, जालिम जालिम, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ठीक है। तो वैसे मैंने सवाल जो पूछा था आपसे पूछ लेता हूँ, सवाल ये मैंने पूछा था कि कतर की टॉलेस्ट बिल्डिंग में कितने फ्लोर है, ये सवाल मैंने पूछा है।
1: कतर की टॉलेस्ट बिल्डिंग में कितने फ्लोर हैं?
0: हाँ जी,
1: शायद 52,
0: शायद मुझसे सवाल मत पूछो भाई, शायद 52, मुझे क्या पता,
1: 52 आई थिंक 52।
0: अच्छा ठीक है, तो आपका जवाब भी हमने लॉक कर लिया, थैंक यू सो मच मेरे भाई, ख्याल रखिए अपना।
1: जी भाई,
0: ओके मेरा भाई, वालेकुम सलाम भाई, अल्लाह हाफिज। तो ये जो है सवाल मैंने पूछा है, कतर की टॉलेस्ट बिल्डिंग में कितने फ्लोर्स हैं, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? नाम और स्पेस देके जवाब आपको दे देना है। नॉट अ वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन। एक मैसेज है कबीर भाई, नवाज की जगह अगर मेरा लग जाए नंबर तो ठीक है। ओके okay? हैं हाय। और 633 में दोहा वाला कबीर एफएम 107 पे नेहा बसेन, विशाल दलानी की आवाज में स्वैग से स्वागत।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें,
1: आज ही राबता करें
0: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
2: सवाल तो आपको पता लगी है, कतर की टॉलेस्ट बिल्डिंग के कितने फ्लोर्स है? वेरी इजी, बता दो। ठीक है, कुछ देर में विनर की अनाउंसमेंट, विनर का अनाउंसमेंट की का विनर अनाउंस हो जाएगा। कुमार एंड ट्रेवल रेस्टोरेंट की तरफ से 500 का थ्रियाल का वाउचर है ना, व्हाट्सएप नंबर है ना 666-22107। मैं दो हवाला के बिल्कुल 107 पे।

0: जल्दी से कतर की खबरें, उसके बाद कॉन्टेस्ट की तरफ आगे बढ़ेंगे। मैंने जो सवाल पूछा है वो ये है हाउसफुल के इस माहौल में कि आप बता दीजिए वो लेट मी रिफ्रेज माई सेल्फ टॉलेस्ट बिल्डिंग कतर की जो है उसमें कितने माले हैं, कितने फ्लोर्स हैं, ये आपने बताना है। बाकी मैं आपको ज़रा सबसे पहले खबरों की तरफ भी ले चलता हूँ। कतर में बहुत कुछ है। सबसे पहले मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और हायर एजुकेशन की तरफ से एक सर्विस लॉन्च हुई है, डिजिटल सर्विस है, जिसका नाम है वेयर इज माई सेंटर, मेरा सेंटर कित्थे आ, तो वेयर इज माई सेंटर ये ऐप का नाम है। इसका मकसद है कि पब्लिक की मदद की जाए और साथ में इन्वेस्टर्स की भी, ताकि वो ईजिली जो 182 लाइसेंस्ड एजुकेशनल और ट्रेनिंग सेंटर्स हैं जो पूरे कंट्री में ऑपरेट कर रहे हैं कतर में, उनको लोकेट किया जा सके। और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड हायर एजुकेशन ने बताया कि ये ट्रेनिंग पर्पसेस के लिए, ताकि जो सेंटर्स हैं वो वक्त के साथ साथ डेवलप हो सकें और साथ ही ये सर्विसेज अवेलेबल रहें और कनेक्टेड रहें थ्रू इलेक्ट्रॉनिक लिंक्स। सो यूजर्स जितने भी हैं उनके लिए आसानी रहेगी सारी इन्फॉर्मेशन को एक्सेस करना और ईजिली इस ऑपरेशन का हिस्सा बनना। सो दैट इज़ अ वेरी ग्रेट इनिशिएटिव। बाकी एक पढ़ाई हो रही है कतर के बाहर लंदन में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है अल्जाइमर्स और डिमेंशिया जैसी डिजीज़ को डिटेक्ट करने के लिए। एक स्टडी सामने आई कि एक सिंपल ब्लड टेस्ट के जरिए जब वो प्रोटीन के लेवल को जांचेंगे तो पता कर पाएंगे कि अल्जाइमर्स और डिमेंशिया क्या किसी में हो सकता है क्या नहीं। सो इट्स अ वेरी सीरियस थिंग बट अ ग्रेट इंप्रूवमेंट, डेवलपमेंट नॉट इम्प्रूवमेंट, अगर आने वाले वक्त में ये पहले ही डिटेक्ट किया जा सके, जैसे कि स्टडी कह रही है कि मिडिल एज में ये पता लग जाए, सो इट्स गोना बी रियली रियली रियली हेल्पफुल। सो बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है। बाकी तो आपको पता ही है मौसम का हाल, मैं क्या ही बताऊं। पर साथ में कतर मीटरोलॉजी डिपार्टमेंट ने कहा है कि अभी थोड़ी ज़्यादा तेज़ हवाएं चलने वाली हैं, काफ़ी विंडी माहौल होने वाला है और ऊपर से गर्मी आपके साथ रहेगी, तो गर्मी आपकी बेस्ट फ्रेंड रहेगी कुछ टाइम और, लेकिन हवाएं बहुत तेज़ चलने वाली हैं इस हफ्ते के आखिर में आते आते। इनफैक्ट जो नेक्स्ट वीक का भी मैं बता दूं एजेंडा, नेक्स्ट वीक के लिए भी बोल दिया गया है। तो टेम्परेचर है वो हल्का थोड़ा बहुत फ्लक्चुएट करेगा रात की तरफ जाते हुए और अर्ली मॉर्निंग, बाकी तब तो गर्मी रहेगी मगर हवाओं के साथ रहेगी। तो तैयार रहिए। और तो मैं क्या बोलूं, विनर का नाम भी अनाउंस करना है, मुझे कितनी जिम्मेदारी है नाजुक कंधों पर। तो कुछ देने मिल रहे हैं विनर के सीधे नाम के साथ, जाइएगा नहीं। ये सरवर भाई कुछ कह रहे हैं, बाकी ये मैसेज किया अभी फरहत भाई ने, वो कह रहे हैं जुमे के दिन शो हो रहा है, क्या हो रहा है, ऐसा लग रहा है मुझसे कह रहे हैं क्या कर रहे हो शो, घर जाओ भाई। जा रहो मालिक, जा रहा हूँ। तो ये सर्वर भाई कुछ कह रहे हैं आपसे।
1: नेक ख्वाहिशात के साथ दुआ है कि आपकी हर परेशानी दूर हो जाए और दिल सुकून से भर जाए, आपकी हर कुर्बानी कबूल हो, अल्लाह आपके दिल को सुकून अता फरमाए और आपकी जिंदगी को अपनी रहमतों से भर दे। ईद उल अज़हा के इस मुबारक मौके पर आपको मोहब्बत और खुशियों के पैगामात मिलें। आप और आपके अपनों को अल्लाह सुबहाना व ताला हमेशा अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे, आमीन। सरवर मिर्जा और FM 107 की पूरी टीम की जानिब से आपको ईद उल अज़हा की पुरखलूस मुबारकबाद। कुल्लू आम व अंतुम बख़ैर।
2: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM107 कतर। दिल से देसी।
1: ईद की रात होगी और भी ज्यादा स्पेशल, जहां होगा नॉन स्टॉप फन, म्यूजिक और सेलिब्रेशन, क्योंकि आ रहा है शो जश्न ईद।
3: ईद मुबारक।
2: आपकी रिक्वेस्ट, फेवरेट सॉन्ग्स और बहुत कुछ, तो आप भी शेयर कीजिए अपनी ईद मेमोरीज, ईद सेलिब्रेशंस और बचपन की ईद स्टोरीज।
1: इस ईद उल अज़हा रात होगी म्यूजिक से ब्राइट और हर दिल होगा फुल ऑन फेस्टिव वाइब, तो मिस मत कीजिए जश्न ईद। ईद के चारों दिन रात 8 से 10 बजे तक विद आरजे नाजिया एंड आरजे फजील, ओनली ऑन FM 107, दिल से देसी।
2: लब्बैक की सदा, लब्बैक की सदा, एक रूहानी और दिल को छू लेने वाला खास प्रोग्राम है जो हज, इबादत और अल्लाह की रजा के लिए पूरी तरह अपने आप को हवाले करने के जज्बे को उजागर करता है। خاص پیشکش میں ایمان افروز گفتگو, دل کو جگہ دینے والے روحانی پیغام اور ایسی یاد دہانیاں شامل ہیں جو قربانی, محبت الہی اور اتحاد کے اصل معنی کو روشن کرتی ہیں. عید الاضحیٰ کے اس بابرکت موقع پر سنیے لبیک کی صدا. لبیک کی صدا عید کے چوتھے دن دوپہر 1 بجے سے سیم کے ساتھ, اونلی آن ایف ایم 107.7.
0: آپ سن رہے ہیں ہاؤس فل عید, اونلی آن ایف ایم 107. اس گانے کے پار سیدھا ونر کو کال جاری ہے. سو سارے میسج ہمارے پاس آ چکے ہیں. دس از یور لاسٹ چانس. قطر کی سب سے اونچی بلڈنگ میں کتنے فلورز ہیں اتنا بتانا ہے سمپل, اینڈ دیکھتے ہیں کون.

0: जल्दी से जरा कॉल कर लेता हूँ मैं, क्योंकि मेरे पास आ गया है नंबर, भाई साहब या बहन जी जिनका भी ये नंबर है उठा लें अगर तो बात है, क्योंकि ये नंबर निकालने में और फिर मिलाने में टाइम बहुत ज़्यादा, और नहीं उठती कॉल तो फिर बड़ी तकलीफ होती है। एंड आई होप कि ये जो भी हैं इन्होंने पिछला कोई कॉन्टेस्ट ना जीता हो, क्योंकि दो बारी नहीं जीत सकते। प्लीज़, अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह।
0: ये एक इंसाफ से बात हो रही है मेरी?
1: मैं सादिक बोल रहा हूँ कबीर भाई, कैसे?
0: सादिक भाई मैं एकदम बढ़िया। ईद मुबारक सबसे पहले तो भाई को।
1: ईद मुबारक आपको, आप सबको ईद मुबारक।
0: सादिक भाई आप रेडियो सुन रहे थे या सुनना छोड़ दिया था मैसेज करके कि चलो ये तो आएगा नहीं?
1: नहीं नहीं नहीं, मैं रेडियो सुन रहा था और अच्छा। मैंने फिर वॉल्यूम कम कर दिया, आपने कॉल किया।
0: वॉल्यूम कम कर दिया? अच्छा, तो आपको तो पूरी नजर रख रहे हैं आप मेरे पे, तो अच्छी बात नहीं है सादिक भाई। अच्छा तो सादिक भाई आपको तो पता ही मैंने क्यों कॉल करी है।
1: जी जी,
0: तो फिर दे दीजिए मुझे इनाम, और तो क्या है, मेरा इनाम मुझे दे दीजिए। कहाँ है मेरी ईदी? आप हमारे बड़े हैं, आप हमारे बड़े हैं, ईदी दीजिए सबसे पहले, ये कोई बात थोड़ी होती सादिक भाई।
1: जी बिल्कुल, आपके घर आके दे देंगे।
0: अरे ये भाई ये तो अच्छा। कंग्रेचुलेशन सादिक भाई, कंग्रेचुलेशन, आप जीते हैं कुमार एंड ट्रेवल रेस्टोरेंट की तरफ से 500 कथरियाल का वाउचर। आई होप आप इन कॉन्टेस्ट में नहीं जीते ना एक बार भी?
1: नहीं नहीं, इसमें कभी नहीं जीता।
0: अच्छा फिर ठीक है, कंग्रेचुलेशन देन, एंड इंशाल्लाह हमारी टीम विल कॉन्टेक्ट यू। जज़ाकअल्लाह मेरे भाई, और घर पे सबको हमारी तरफ से ईद उल अज़हा की मुबारकबाद।
1: जरूर
0: ठीक है मेरे भाई, ओके मेरे भाई, ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। तो सादिक भाई तो जीत गए, और कॉन्टेस्ट के साथ आज का पूरा होता है इंशाल्लाह कल, क्योंकि कल लास्ट डे है, फाइव नॉट रॉन्ग, कल क्या 30 तारीख, हाँ कल 30 तारीख है, तो कल है लास्ट कॉन्टेस्ट। अगेन कुमार एंड ट्रेवलर रेस्टोरेंट की तरफ से 500 कथरियाल का वाउचर कल दो लोग जीतेंगे। इट इज़ ऑल लक बेस्ड, प्लीज़ मेरे पे चिढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है। आई नो आपको लगता होगा देखा फिर से नहीं आया नंबर, मेरे हाथ में नहीं है वो, जैसे वो देते हैं रेफरल ड्रॉ में घूमती पर्ची, बिल्कुल वैसा ही सिस्टम है भाई साहब, समझने की कोशिश कीजिए मेरे भी जज्बातों को। बाकी इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी शामी 5 बजे। ईद उल अज़हा की आप सबको बहुत सारी मुबारकबाद, प्लीज़ ड्राइव सेफली। आई नो फेस्टिव सीजन है, जोश होता है, लोग बाहर निकलेंगे, ऊपर से जुमे का दिन है, ऊपर से कुछ लोगों की 2 दिन की छुट्टी भी है, तो प्लीज़ जस्ट ड्राइव सेफली एंड अपना ख्याल रखिएगा। छोटों को, बड़ों को, सबको मेरी तरफ से ईद उल अज़हा की मुबारकबाद। एंड दिस इज़ दुहा वाला कबीर साइनिंग ऑफ, 7 बजे न्यूज़ बुलेटिन। अपना ख्याल रखिएगा, क्योंकि आप बेहद बेहद ज़रूरी हैं। मां सलामा।

0: की खुशबू, कुर्बानी का जज्बा और खुशियों का जहां। ये ईद हमें सेक्रिफाइस, पेशेंस और शेयरिंग का पैगाम देती है। अल्लाह करे कि ये दिन आपके लिए खुशियाँ, बरकत और सुकून लेकर आए। अपने घर वालों, दोस्तों और जरूरतमंद लोगों के साथ खुशियाँ बांटना ना भूलें। दुआ है कि अल्लाह आपकी हर कुर्बानी को कबूल फरमाए और आपकी जिंदगी को कामयाबी और रहमत से भर दे। मैं हूँ नाजिया, मेरी और FM 107 की पूरी टीम की तरफ से आप सभी को दिल से ईद उल अधा मुबारक।
1: ईद मुबारक, ईद मुबारक। एब्सोल्यूट सिनेमा,
2: ये है वो रिएक्शन जिसके लिए आप थिएटर जाना चाहते हैं, पर रिव्यूज वो आपको कई मरतबा धोखा दे देते हैं और आप इंटरवल से पहले ही घर पे होते हैं। पर डोंट वरी, मैं हूं ना। भरोसेमंद रिव्यू देने के लिए आपको बस सुनना है FM 107 पर रिव्यू ऑफ द वीक, ताकि एवरी मूवी एक्सपीरियंस बने एब्सोल्यूट सिनेमा। दरअसल क्या है ना कि जब ऐसी मूवी आ जाए जो आपके अंदर के उस बच्चे को और जगा दे जो कभी मूवीज का फैन हुआ करता था या मूवी बफ हुआ करता था, तो बड़ा मजा आता। इस बार एक ऐसी मूवी आई है जिसने सच में वो जो दिल में छुपा हुआ मूवी गोअर है, जिससे लगता है कि भाई मूवी देखनी ही देखनी है, वो इंसान मेरे अंदर का जगा दिया है। क्योंकि मूवी ऐसी आई है, मैं इसकी तारीफ भी करूंगा, हालांकि इसमें भी फ्लॉज हैं, वो तो आपको पता ही है, मास्टर जी छोड़ते थोड़ी हैं किसी को, लेकिन इस मूवी में बहुत कुछ है जिसका मैं आज रिव्यू ऑफ द वीक में बात करने वाला हूँ। अस्सलाम वालेकुम, मैं दोहा वाला कबीर FM 107 पर, और अस्सलाम।

0: ऑब्सेशन का। तो देखिए ऑब्सेशन अभी 2026 की रिलीज हुई ताज़ा तरीन हॉरर मूवी है और मैं हॉरर का बहुत बहुत बड़ा फैन हूँ और स्पेशली वो वाला हॉरर जो साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब करता है, वो वाला नहीं इसमें बस गोर है, खून खराब आया, भूत आ गया खिड़की से, नहीं पर्दे हिलने वाला वो जो भूत आता है वो वाला नहीं, नहीं ये साइकोलॉजिकल जो मूवीज होती हैं मैं इनका बहुत बड़ा फैन।
1: You ever actually like flirted with Nikki?
2: I'm gonna go get some shots.
3: I'll come with you if she means this much to you.
0: और डायरेक्टर करी बेकर ने इस बार यही जो मिक्स किया है, बड़ा कमाल किया, मिक्स किया गया है साइकोलॉजिकल हॉरर को एक लव स्टोरी में ब्लेंड कर दिया है। भाई साहब ऐसी लव स्टोरी, लोग कहते रहते हैं लव स्टोरी सुनाओ लव स्टोरी, ये रही लव स्टोरी विद अ डार्क साइकोलॉजिकल ट्विस्ट। फिल्म का बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि एक ऑकवर्ड और एक बहुत ही अकेला किस्म का लड़का है जो बचपन से मतलब अपने जो उसकी दोस्त है निक्की उसको हासिल करना चाहता है, उसके दिल में जो है ना एक वो है चाहत है कि मुझे निक्की से प्यार करना है, निक्की से शादी करूंगा, उस टाइप का बंदा है ये। लेकिन वो जब एक विश मांगता है वो भी सुपर नेचुरल विश, फिर सब कुछ कंट्रोल के बाहर ही चला जाता है, ये विश उसको बहुत भारी पड़ जाती है। और ये फिल्म सुपर नेचुरल हॉरर नहीं है, इसमें टॉक्सिसिटी, अकेलापन, लोनलीनेस, ऑफ कोर्स इमोशनल डिपेंडेंसी है, मैनिपुलेशन है और जो मेन टाइटल है वो तो है ऑब्सेशन। इन सारी की सारी थीम्स को बहुत ही डीपली एक्सप्लोर किया गया है एंड ये इसलिए भी ज़्यादा इफेक्टिव है शुरुआत में ही टाइटल से ही और इसके कॉन्सेप्ट से ही, क्योंकि इसमें सुपर नेचुरल को इस तरह पुश नहीं किया है कि आप जंप स्केयर का वेट करें, इसे इस तरह से पुश किया है कि एक नॉर्मल से चेहरे को भी आपको देख के लगे अरे भाई साहब क्या होने वाला है, ये क्या करेगी अब। तो इसी वजह से क्रिटिक्स और हॉरर फैंस दोनों के लिए इस मूवी में बहुत कुछ है। 2026 की वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट हॉरर एंट्रीज में काउंट किया गया है इस मूवी को, तो अब आप समझ लीजिए कितनी भारी भरकम पिक्चर होने वाली है। सबसे पहले करेंगे हम स्टोरी का एक ब्रेकडाउन। ठीक है, फिल्म का हीरो है उसका नाम है बियर, जिसका रोल अदा किया है माइकल जॉनस्टन ने। वो एक इंट्रोवर्ट है, कहानी के अंदर बहुत ही सोशली ऑकवर्ड बंदा है, बात नहीं कर पाता है और अपने दिल में काफ़ी सारी बातें दबा के रखता है। और ये जो बंदा है मूवी में जो मेन किरदार है वो एक म्यूजिक स्टोर में काम करता है, अपनी बचपन की एक दोस्त निक्की उससे सीक्रेटली प्यार करता
3: है।
0: मसला तो है, मसला नहीं होगा तो पिक्चर कैसे आगे बढ़ेगी। तो प्रॉब्लम ये है कि बेयर कभी कभी अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं कर पाता। बहुत सारे इंट्रोवर्ट्स इस बात से रिलेट कर जाएंगे कि यार मौके पे आके जो है वो चौका नहीं लग पाता है, जहां सहवाग की तरह खेलना है या कोहली की तरह खेलना है वहां बंदा राहुल द्रविड की तरह टुक टुक करता रह जाता है, तो हर दफा वो नर्वस हो जाता है, बात कह नहीं पाता है। और निक्की जो है उसे सिर्फ एक अच्छा दोस्त समझती है, बस नथिंग एल्स। पर एक दिन वो कहता है मेन हीरो मूवी का कि भैया बहुत हुआ, और वो वन विश विलो नाम का एक मिस्टीरियस सुपर नेचुरल ऑब्जेक्ट उसके हाथ लग जाता है और वो उसे पता लगता है ये मेरी विश पूरी कर सकता है, तो करता क्या मरता क्या ना करता टाइप सिचुएशन को वो ले लेता है और अपनी एक विश मांग लेता है। और डेस्परेशन में उसके दिल से एक चाहत निकलती है, वो चाहत होती है कि निक्की मुझे दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करे, ये वो मांग लेता है भाई विश, और यहीं से शुरू होता है हॉरर। जस्ट इमेजिन, मैं ये प्लॉट जो है किसी लव स्टोरी का भी बता सकता था कि एक बंदा था कुछ नहीं बोलता था, किसी से मोहब्बत करता था चोरी छुपे, और फिर एक दिन उसने एक दुआ मांगी, उसने कहा कि काश ये मुझसे सबसे ज्यादा प्यार करे, और फिर उनकी लव स्टोरी शुरू हुई। बट दिस टाइम अराउंड सेम चीज बोल रहा हूं मैं, पर ये एक हॉरर मूवी की लिटरल शुरुआत है एंड दैट एक्सप्लेन्स अ लॉट। दरअसल जो मूवी का जो मिडिल पोर्शन है ना, इनिशियली तो सब कुछ परफेक्ट लगता है, निक्की सडनली जो है ना वो हमारे हीरो की तरफ, पिक्चर के हीरो की तरफ काफ़ी ज़्यादा अफेक्शनेट फील करने लगती है, काफ़ी केयरिंग हो जाती है, मतलब हद से ज़्यादा केयरिंग हो जाती है, और जो मेन हीरो है पिक्चर का उसे लगता है कि भाई मेरा तो सपना पूरा हो गया, अब हो गया काम। लेकिन धीरे धीरे निक्की का बिहेवियर डिस्टर्बिंग होता चला जाता है, वो हद से ज़्यादा पॉजेसिव हो जाती है, हद से ज़्यादा, फिर हर वक्त उसे जो है अपना जो पिक्चर का हीरो है वो चाहिए, उसके साथ रहना चाहती है, वो दूसरी लड़कियों से जेलस हो जाती है और उसके अंदर एक वायलेंट टेंडेंसी पैदा हो जाती है कि उसे कुछ भी बर्दाश्त नहीं, कुछ भी भाई दुआ तो हीरो ने मांगी थी, भुगतना तो पड़ेगा। तो अब जो है क्योंकि उसके पास चॉइस नहीं है, वो ऑलरेडी विश उसकी ग्रांट हो चुकी है, तो अब उसे सब कुछ झेलना पड़ रहा है। ये लड़की वायलेंट टेंडेंसीज भी शो कर रही है, बहुत ओवरली पोजेसिव है और मेंटली अनस्टेबल लगने लगती है कई सारे सीन्स में, एंड दैट क्रिएट्स साइकोलॉजिकल हॉरर। ब्यूटिफुली डन। अब ऑडियंस, एज एन ऑडियंस, आप ग्रेजुअली रियलाइज करते हैं कि निकी एक्चुअली में नेचुरली प्यार नहीं कर रही है। प्यार उसका जो मोहब्बत है वो विश मांगने के बावजूद एक नेचुरल फ्लो में नहीं है। असल में उस मोहब्बत के पीछे एक सुपर नेचुरल फोर्स है जिसकी वजह से वो इमोशनली गुलाम हो चुकी है उस फोर्स की, मगर उसका दिल इस बात की इजाजत नहीं दे रहा। तो एक इनर कॉन्फ्लिक्ट है, फिर पिक्चर में भी कॉन्फ्लिक्ट है, काफी कुछ है। और मैं हमेशा कहता हूँ कि बॉलीवुड इस रूल को फॉलो नहीं करते, मगर मूवी जो है हमेशा रूल ऑफ थर्ड्स में बनाई जाती है ना। रूल ऑफ थर्ड्स बेसिकली तीन हिस्सों में पिक्चर बनती है। तो यू स्टार्ट ऑफ विद समथिंग जिसमें आप कॉन्सेप्ट का थोड़ा बहुत हिस्सा देते हैं, देन यू गो इन द मिडिल जहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट पता होता है, एंड देन कम्स द थर्ड पार्ट ऑफ द मूवी विच एक्सप्लेन्स एवरीथिंग। और अगर एक्सप्लेन नहीं भी करती है तो वो मूवी के बारे में बहुत कुछ बता देती है, एंड देन हमारा मुंह का खुला रह जाता है, अरे अरे ये क्या हुआ। तो साइकोलॉजिकल हॉरर मिड मूवी से शुरू हो जाएगा जब उसका ऑब्सेसिवनेस सामने आता है। अब सबसे डिस्टर्बिंग बात क्या है मूवी की, जो मूवी का हीरो है वो स्लोली ये सब इग्नोर करना स्टार्ट कर देता है, क्योंकि अब उसे फाइनली अटेंशन मिल रही होती है ना जो उसे हमेशा चाहिए थी। अब ये जो लेयर है, क्योंकि उसे ज्यादा केयरिंग मिल रही है, ज्यादा प्यार मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है, तो अभी वो बात को हल्के में ले रहा है, और क्योंकि वो इस बात को हल्के में ले रहा है तो ये एक और लेयर इस हॉरर मूवी को एलिवेट कर देती है। फाइनल एक्ट कमाल का है। फाइनल एक्ट निकी का जो ऑब्सेशन है वो एक डेंजरस मॉन्स्टर जैसा है, पर कैसे वो क्या है वो मैं नहीं बताऊंगा आपको, बट जस्ट स्पॉइलर फ्री फिल्म जो है वो इमोशनल है, सुपर नेचुरल है बहुत जगहों पे, और जो जो सुपर नेचुरल का जो लेवल है वो कई मरतबा ब्लेंडेड विद इमोशन वो एक्सप्लोड होगा बीच बीच में। और वो जो मजा आता है ना, खट्टी मीठी गोली, खाइए खट्टी मीठी गोली, ये खट्टी मीठी गोली वाला जो कॉम्बिनेशन है वो इसमें आपको मिलेगा। रियलिटी और हेलुसिनेशन दोनों मिक्स होने लगेंगे। कैरेक्टर के साथ साथ आप भी सोचेंगे कि क्या सच है और क्या नहीं है। दैट इज द ब्यूटी ऑफ इट। एंडिंग इंटेंशनली अनकंफर्टेबल रखी गई है ताकि देखने वालों जो है वो आखिर में एकदम एक शॉक वैल्यू के साथ जाए, विच आई अंडरस्टैंड, करना भी चाहिए और अच्छे से किया भी है, सो कुडोस टू देम। और एक मैसेज है जो ऑडियंस को मिलता है कि जबरदस्ती प्यार किसी से होना या करवाना रियल लव नहीं होता, और ऑब्सेशन किसी भी चीज के पीछे आपको बर्बादी की तरफ ले जाता है। आई ऑलवेज से कि एक होता है पैशन, राइट? अगर पैशन हद से ज्यादा गुजर जाए और ऑब्सेशन की रेखा को, बॉर्डर को लांग जाए, देन देयर इज अ प्रॉब्लम। और वो पैशन आपके काम में हो सकता है, आप किसी से मोहब्बत करते हैं उसमें हो सकता है, इट कैन बी इन एनी सिचुएशन। तो वो जो पैशन है वो अगर क्रॉस होके ऑब्सेशन बन गया तो मूवी वही कह रही है कि भैया दिक्कत है, बहुत दिक्कत है। दो लोगों को आपस में मोहब्बत होने के बावजूद भी वक्त चाहिए होता है एक दूसरे के लिए, वरना अगर दोनों ऑब्सेसिव हो जाएं तो फिर मामला कहीं से कहीं जा सकता है। और मूवी ने उसको इतनी सारी सिचुएशन से समझाया है दैट इट इज लाइक अ जर्नी ऑफ अ मूवी, एंड ऊपर से हॉरर है तो बहुत ही ब्यूटीफुली मेड है। अच्छा, अब एक्टिंग का रिव्यू करना चाहता हूं मैं, क्योंकि मैं बहुत देर से वेट कर रहा था कि एक्टिंग के बारे में बात करूं। निकी का जो रोल किया है वो इंडी ने किया है, एंड फिल्म की वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट, अनडाउटेडली ये उनकी बेस्ट परफॉर्मेंस हो सकती है। उन्होंने निकी के कैरेक्टर को सबसे पहले तो जो फर्स्ट हाफ में प्ले किया है काफी इनोसेंट है, रोमांटिक है, उसके बाद जो वो क्रीपी हो जाती है, टेरिफाइंग हो जाती है, दोनों ही सिचुएशंस को शी पोर्ट्रेट ब्यूटीफुली। हर एक्ट्रेस के लिए एक सपना होता है कि कोई ऐसा रोल मिले जहां पे वो अपनी रेंज दिखा सके। आई रिमेंबर एक मूवी आई थी कौन, इफ यू रिमेंबर, उर्मिला मातोंडकर थी उसमें, और वो मूवी की लीड है। ऑफकोर्स उसमें मनोज वाजपेयी भी हैं और बाकी एक्टर्स भी हैं, बट मेनली जब उर्मिला मातोंडकर स्क्रीन पर हैं तो फर्स्ट हाफ में आपको कुछ और लगता है, सेकेंड हाफ में मूवी कुछ और हो जाती है। एंड द वे शी एक्टेड, मैं किसी और को उस रोल में इमेजिन भी नहीं कर सकता. तो ये वैसी सिचुएशन है जहां पर ऐसा रोल किया निभाया है इंडी ने एज निकी कि कोई और एक्ट्रेस को उनके इस किरदार में इमेजिन करना इज समथिंग रियली रियली डिफिकल्ट एंड आई वुड से इम्पॉसिबल बिकॉज आई लव्ड हर परफॉर्मेंस. एक सीन में वो एक क्यूट लड़की लगती है, अगले ही सीन में शी बिकम्स अ साइकोपैथ. और वो एनर्जी जो उन्होंने कैमरे के सामने दी है, यू नो कुछ एक्टर्स होते हैं जो अपना काम करके डायलॉग बोल के निकल जाते हैं, पर कुछ ऐसे होते हैं जो स्क्रीन पे आते हैं एंड यू आर हुक्ड ऑन टू इट. फिर आपको पड़े नहीं होते कि स्क्रीन पे बाकी कैरेक्टर्स हैं, ऑब्जेक्ट हैं, कुछ है कि नहीं है. यू ओनली केयर अबाउट दैट कैरेक्टर जो आपको इतना ज्यादा ज्यादा पसंद आता है एंड दैट्स व्हाट शी डिड. सो निकी का किरदार बहुत बहुत पावरफुल है, उसकी आंखें, उसका फेशियल एक्सप्रेशन, सब कुछ बहुत इफेक्टिव लगता है. और क्रिटिक्स ने भी कहा कि ये परफॉर्मेंस फ्यूचर स्क्रीम क्वीन बना सकती है. यू रिमेंबर मैंने पिछले रिव्यू में आपसे कहा था कि जब भी हॉरर जहन में आता है, बॉलीवुड की बात करूं तो मेरे जहन में बिपाशा बसु आती है. बिपाशा बसु ने बहुत सारी हॉरर मूवीज करी हैं, हालांकि उनमें से एक दो चली, एक दो नहीं चली हैं, बट फाइन. बट मेनली राज जो उन्होंने करी थी उस वजह से तो ऐसा हो गया था कि भाई यही है, शी बिकेम द स्क्रीम क्वीन फॉर बॉलीवुड. हालांकि बॉलीवुड ने उस पर कैपिटलाइज नहीं किया या फिर मूवी नहीं चली, वट एवर, बट हॉलीवुड में बहुत सारी स्क्रीम क्वींस हैं, उनमें से मिया गौथ एक हैं. अगर उनकी मूवीज आपने नहीं देखी तो प्लीज गो एंड वॉच. मिया गौथ इज एब्सोल्युटली ब्रिलियंट. जब भी उन्होंने हॉरर मूवी करी है ये ऑलरेडी पता होता है कि हिट हो जाएगी, नो चांस कि फेल हो जाए. उन्होंने मिया गौथ ने मूवी भी करी थी, आई रिमेंबर फ्रैंकेंस्टाइन, जो गेरमो डेल तोरो की मूवी है. आप देख लीजिए, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, आई वुड नॉट अटर अ सिंगल वर्ड क्योंकि वरना मैं जोश जोश में एक्साइटमेंट में कुछ स्पॉइलर दे दूंगा. वॉच दैट. सो स्क्रीम क्वीन का टाइटल ये हॉलीवुड में पा लेना अपने आप में बहुत बहुत बड़ी चीज है. सो इंडी के लिए ये बहुत बड़ी बात है. एंड अब आ जाते हैं दूसरे कैरेक्टर पे, दूसरे मेन किरदार पे, जिसने

0: ने मूवी के अंदर प्ले किया है बियर का रोल, माइकल जॉनस्टन. माइकल जॉनस्टन का जो कैरेक्टर है वो काफी ऑकवर्ड है, और ऐसे ऐसे लड़के बहुत हमने भी देखे हैं अपनी जिंदगी में, जो काफी अकेले रहना पसंद करते हैं, उनको ज्यादा बात करना पसंद नहीं है, पर जब बात करना चाहते हैं तो कह नहीं पाते हैं अपनी बात को. सो इस किरदार को, इस कॉम्प्लेक्सिटी को माइकल जॉनस्टन ने बहुत ही रियलिस्टिक तरीके से प्ले किया है. उनका कैरेक्टर इंटेंशनली फ्रस्ट्रेटिंग है, मतलब आप देखेंगे और आपको चिढ़ मच जाएगी, ये क्या आदमी बोलता क्यों नहीं है, उधर गुस्सा आता है अपने दोस्त के ऊपर. यू विल फील दैट वे, आप चाहेंगे वो पुश करना चाहेंगे कि बोलो भाई बोलो, बोलते क्यों नहीं. सो कभी कभी कभी ऑडियंस उस पर सिंपैथी फील करेगी, जब आप देखेंगे एज एन ऑडियंस विल फील लाइक कि यार बुरा हो रहा है इसके साथ, पर कभी कभी आपको सच में उस पर गुस्सा आएगा कि क्या कर रहा है ये आदमी. और ये फिल्म का पर्पस भी यही है, फिल्म चाहती ही यही है कि साइकोलॉजिकली आप दोनों ही कैरेक्टर्स को महसूस करने लग जाएं एज योर फ्रेंड, एज एज समथिंग अ पार्ट ऑफ यू.
1: Absolute cinema.
0: ये है वो रिएक्शन जिसके लिए आप थिएटर जाना चाहते हैं, पर रिव्यूज वो आपको कई मर्तबा धोखा दे देते हैं और आप इंटरवल से पहले ही घर पे होते हैं. But don't worry, मैं हूं ना. भरोसेमंद रिव्यू देने के लिए आपको बस सुनना है FM 107 पर रिव्यू ऑफ द वीक. रोलिंग. बेयर एक विलन भी नहीं है लेकिन वो हीरो भी नहीं है. तो अगर मैं बोलूं कि पिक्चर का हीरो है, जो मैंने कुछ देर पहले उसे कहा, तो वो पूरी तरह से हीरो भी नहीं है और वो पूरी तरह से विलन भी नहीं है. ही प्लेड दैट इन अ वेरी रियलिस्टिक वे, जहाँ पे ये बताना ही मुश्किल हो जाता है. एंड आई लव ऐसे कैरेक्टर जिनके बारे में ये बताना मुश्किल हो जाए. वो इमोशनली वीक बंदा दिखाया गया है, जो है तो बड़ा ही मासूम सा, लेकिन उसके कुछ सेल्फिश चाहते हैं जिनकी वजह से वो सब कुछ खराब करने के लिए तैयार रहता है. मतलब किसी भी कीमत पे उसे जो चाहिए वो चाहिए, बट उसे रास्ता नहीं मिल, और जब मिल जाता है वो सच में खराब कर देता है. सो दैट्स हाउ द कैरेक्टर इज. अब वन ऑफ द की फैक्टर्स ऑफ द मूवी, डायरेक्शन. देखिए डायरेक्टर करी बेकर जो है, उनका डायरेक्शन से पहले मैंने पता नहीं देखा ही नहीं देखा, रेंडमली शायद मैंने उनका नाम कभी नहीं सुना था. पिक्चर्स उनकी बहुत सारी होंगी, आई एम प्रीटी श्योर. उनका डायरेक्शन सरप्राइजिंगली बहुत बहुत ज्यादा मैच्योर है. लाइक आई एब्सोल्युटली लव्ड इट, मतलब कमाल का डायरेक्शन है. ऐसी मूवी के लिए चाहिए होता है कि आप जो है एक ऐसे डायरेक्टर को हायर करें जो साइकोलॉजिकल हॉरर को समझता है. चिल्ला देना और मेकअप से हॉरर कराना इज अ वेरी डिफरेंट मोड ऑफ हॉरर, बट देन देयर इज अनदर हॉरर, जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया कुछ देर पहले कॉन का. उसमें कोई ऐसा कुछ गोस्ट वोस्ट नहीं है, इट्स जस्ट उर्मिला मातोंडकर डूइंग अ ट्विस्ट ऑफ साइकोलॉजी. एंड फिर आई रिमेंबर रामगोपाल वर्मा जिस जमाने में अच्छी मूवी बनाया करते थे, उस जमाने में डरना जरूरी है, डरना मना है, ऑल दिस मूवीज, ये बड़ी सरप्राइजिंग लगती थी क्योंकि इनमें एक फैक्टर होता था, वो साइकोलॉजिकल फैक्टर, वो बिल्डअप, वो बनाने के लिए डायरेक्टर का अच्छा होना जरूरी है. करी बेकर ने बहुत अच्छे से किया है. फिल्म की पेसिंग जो है ना वो स्लो बर्न स्टाइल है. आई नो बहुत सारे लोगों को चाहिए होता है कि शुरुआत से हमें डरा दो ये कर दो, नहीं, बट जो इसका जो स्लो बर्न है मूवी का वो बहुत अच्छा है. एक होता ना कि आप एक गाड़ी में जा रहे हैं जो तेज जा रही है और वो स्पीड ब्रेकर्स पे कूद कूद की जा रही है, तो आपको सफर में मजा नहीं आ रहा हालांकि स्पीड बहुत तेज है. एक होता है कि आप अच्छे मौसम में साइकिल पे जा रहे हैं, साइड में आपका दोस्त है या आपकी कोई जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश है समझ गए आप, तो आप दोनों जा रहे हैं धीरे धीरे मौसम के मजे लेके, और यू आर वॉकिंग विद समवन रियली स्पेशल. तो वो जो स्लो बर्न स्टाइल है वो अगर अच्छे से किया जाए तो बहुत इम्पैक्टफुल होता है. इसमें जंप स्केयर्स मत ढूंढिएगा, जंप स्केयर्स इतने ज़्यादा नहीं है, बहुत कम है, मगर इसमें एटमॉस्फेयर मूवी का और जो टेंशन है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. डायरेक्टर साहब ने, करी साहब ने ऑडियंस को अनकंफर्टेबल फील करवाने पर फोकस किया कि आप एज अ व्यूअर जब देखते हैं तो आपको वो फील होना चाहिए कि अरे यार क्या हो रहा है, उफ क्या होगा, मैं आंखें बंद कर लूँ. ऑल दो मूवी पे कोई जंप स्केयर नहीं है पर आपकी फिर भी हालत खराब हो रही होगी. यू नो समटाइम्स मूवीज क्रॉल अंडर योर स्किन और आपको लगता है रे रे रे रे क्या हो रहा है, क्या हो रहा है. तो साइलेंस भी स्मार्टली यूज किया गया है, चुप्पी काफी है. एंड आई रिमेंबर चुप्पी काफी है व्हेन आई मेंशन सेम थिंग हैपेंड जब मैं एक सीरीज देख रहा था फ्रॉम, उसका कभी रिव्यू करूंगा मगर अब बहुत आगे आ चुका है मामला, चौथा सीजन आ चुका है, आई एम टू लेट फॉर इट. मगर उसमें भी कई सारे सीन्स ऐसे हैं, इफ यू हैवंट वॉच्ड फ्रॉम बाय द वे तो वो भी आप देखिएगा, उसमें भी साइलेंस को बहुत अच्छे से यूज किया है. सामने कोई ऐसा मेकअप नहीं है, खून खराबा नहीं है, एकदम से नहीं है, बट एक शख्स दिखता है और

आपकी हालत खराब हो जाती है, वैसा वाला स्मार्टनेस। और ये फिल्म उसी चीज उसी दुनिया में टैप इन करती है वेयर इन ये मूवी लाउड हॉरर नहीं है, एंड आई लाइक्ड इट। आई नो कुछ मूवीज लाउड हॉरर होती हैं और अच्छी भी लगती हैं। अगर आपको लाउड हॉरर देखनी है तो आप हिल्स हैव आइज और रॉन्ग टर्न, सॉ, ये सब देख सकते हैं। दिस मूवीज आर लाउड इन अ वेरी गुड वे, है ना। तो ये अगर आपको लाउडनेस में बहुत अच्छी मूवीज देखनी है तो ये, बट देन इसके लिए जिगरा चाहिए, बिकॉज दीज मूवीज विल कॉन्स्टेंटली थ्रो एट यू और आपको लगा अरे अरे अरे। तो अगर आप स्लो बर्न वाले हैं एंड यू लाइक समथिंग वेरी साइकोलॉजिकल और इस हफ्ते प्लान कर रहे हैं तो थिएटर्स में लगी ऑब्सेशन और ये एक क्रीपी साइकोलॉजिकल हॉरर है विच यू विल डेफिनेटली लव। जो कम उम्र के बच्चे हैं या फिर 18 से नीचे वो देखना चाहेंगे बट उनको अलाउड नहीं है, प्लीज बच्चों वेट करो बेटे वेट करो, आगे जाके कहीं ना कहीं किसी OTT पे ये गिर ही जाएगी। जब आपकी उम्र हो जाएगी तो आप देख लीजिएगा आराम से। अब कुछ हॉरर एलिमेंट्स के बारे में बात कर लेते हैं। हॉरर एलिमेंट्स मेरे लिए बहुत जरूरी है, मैं अपने आप को एक्सपर्ट तो नहीं मानता मगर उससे कम भी नहीं मानता, बिकॉज मुझे लगता है कि हॉरर मूवी तो मुझे जज करने का पूरा हक है। मैंने इतनी हॉरर देख ली है जिन्हें कहते हैं टिप ऑफ द आइसबर्ग, उसके नीचे वाले भी देख लिए मैंने। तो रियल हॉरर का मतलब गोस्ट या मॉन्स्टर्स नहीं होता, नॉट एवरी हॉरर मूवी हैज दैट। रियल हॉरर फॉर मी एज वेल वो होता है एक इमोशनल मैनिपुलेशन जो आपको मूवी के अंदर नजर आ रहा है, एक अनहेल्दी अटैचमेंट होता है किसी न किसी चीज से, वो जो ऑब्सेसिव वाली मूवीज होती हैं और इसका तो टाइटल ही ऑब्सेशन है। फिर मूवी जब लोनलीनेस दिखाती है ना और उस लोनलीनेस को ब्यूटिफाई करती है इन अ हॉरर सेटिंग, दैट इज द ब्यूटिफुल पार्ट। और उसके बाद इस मूवी में जो है द फोर्स्ड अफेक्शन, दैट इज द की, दीज आर द की फैक्टर्स ऑफ दिस मूवी एज वेल। ऑब्सेशन ने बहुत बढ़िया से दिखाया, इस वजह से मूवी इमोशनली डिस्टर्बिंग फील होती है इन अ गुड वे। अब जिसका इंतजार है लोगों को, जिसके लिए लोग हॉरर देखने जाते हैं, जो शायद ज्यादा बड़े फैंस नहीं है हॉरर के, जिन्हें भूत ही चाहिए होता है, तो सुपर नेचुरल लेयर भी है। वन विश विलो बेसिकली मंकी स्पॉ टाइप कर्स्ट ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जो कह समझाओ बंदर का जो पॉ होता है ना उसके शेप का एक ऑब्जेक्ट है, कर्स्ड है वो। ये सुपर नेचुरल एलिमेंट स्टोरी को यूनिक बनाएगा। तो एक चीज है साइकोलॉजिकल जो मैंने डिस्कस कर ली, उसमें ये परत लगाई है, ये जो परत है सुपर नेचुरल की, ये उनके लिए जो चाहते हैं सुपर नेचुरल हॉरर देखना। विश फुलफिलमेंट का कॉन्सेप्ट काफी ओल्ड है, हम देख चुके हैं, हमने अलादीन भी देखा है, हमने बहुत कुछ देखा है, एवरीथिंग हैज बीन डन। बट इस बार जो है ये जो दोनों चीजों का मिक्सचर है ये कमाल का है, एंड यू विल लव इट। इसको मॉडर्न टॉक्सिक रिलेशनशिप का एंगल देना एक फ्रेश फील लाता है। एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो मेरे लिए इसी एलिमेंट में एक बात है, वो है बॉडी लैंग्वेज हॉरर। निकी जो इस एक किरदार है इस मूवी का, जो मेन किरदार है, वो अननेचुरल बिहेवियर बहुत क्रीपी लगता है। लाइक यू नो कि ऐसा असलियत में शायद ही कोई हो, पर जब उसे पर्दे पे देखते हैं तो आपको लगता है बाप रे अगर ऐसा कोई होगा तो कैसा होगा। एंड जब मूवी आपको ये सोचने मजबूर कर दे कि ऐसा होगा तो कैसा होगा, देन अल्टीमेटली आप उस मूवी में ड्वेल इन हो जाते हैं, आपको लगता है ये तो देखनी पड़ेगी। सिंपल एक्ट्स हैं, ज्यादा मेहनत नहीं करी है किरदार ने, मुस्कुराया है, घूरा है टुवर्ड्स द कैमरा एंड टुवर्ड्स द कैरेक्टर, एंड यू नो विस्परिंग साउंड्स, ऑल दीज आर डन सो वेल मेथोडिकली कि सब कुछ नॉर्मल चीजें भी हॉरर बन जाती है। And that's why I highly recommend कि ऑब्सेशन तो आप जरूर जाएं if you're a horror fan like me। अब सिनेमाटोग्राफी, हॉरर मूवी के लिए सिनेमाटोग्राफी बड़ी जरूरी है। हर किसी के मन में होता है हॉरर मूवी क्या है, डार्क और मूडी बना दो हो गया काम। भाई साहब डार्क और मूडी ऐसी नहीं बनती, डार्क और मूडी में भी लाइटिंग का बहुत बड़ा खेल होता है और इसमें लाइटिंग का बहुत अच्छा खेल है। उसमें कई मरतबा एकदम से न्योन कलर आता है, डिम हो जाती लाइट, और जो शेडोज का इस्तेमाल है beautifully done। I remember Shadows back in the day कुछ movies में बहुत अच्छी थी। अगर आपने 1975 की Exorcist देखी है, Exorcist में कमाल का use of the shadows है। And एक director जिसका मैं बहुत बड़ा fan हूँ, Mike Flanagan से बढ़िया, it is debatable लेकिन मेरा अपना opinion है, मुझे नहीं लगता कि कोई editing और lighting का इस्तेमाल करता होगा जिस तरीके से Mike Flanagan ने अपनी movies में किया है। बट एनीवे यहाँ पर भी काफी शेडो हैवी रखा गया है एलिमेंट्स को, एंड इट वर्क्स फाइन। सिनेमेटोग्राफी ठीक ठाक है, कैमरा एंगल्स भी साइकोलॉजिकल स्टेट को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, तो ये बड़ा जरूरी है। जब वो जो मेन कैरेक्टर है हीरो है,
या फिर एंटी हीरो है फॉर सम पीपल. इमोशनली जब वो ट्रैप होता है तो कैमरा क्लोज हो जाता है और काफी सफोकेटिंग लुक पैदा करता है स्क्रीन के ऊपर. और जब आप ये थिएटर में देखेंगे तो उसका इम्पैक्ट डबल ट्रिपल हो जाएगा. जब निकी अनस्टेबल होती है, कैमरा मूवमेंट्स केओटिक हो जाते हैं, शेकी हो जाते हैं. ये सटल फिल्म मेकिंग का एक बहुत जबरदस्त एक्सपीरियंस है. ये सीखने वाली चीज है डायरेक्टर साहब से. सो ही हैज डन अ ग्रेट ग्रेट जॉब विद एवरी एलिमेंट. एंड जो साउंड डिजाइन है इसका, वो भी पीछे नहीं रहता. साउंड डिजाइन, बैकग्राउंड स्कोर बड़ा ही अंडररेटेड है. आई डोंट नो, कुछ साल बाद शायद उसके बारे में बात होगी नहीं होगी, बट आई लव द फैक्ट दैट हॉरर मूवीज बैकग्राउंड में इतना भारी भरकम लगते हैं कि धुं बॉन्ग नहीं बजा रही होती, तो वो जरूरी नहीं है. सो म्यूजिक लाउड नहीं है, क्रीपी एम्बियंस जो है वो क्रिएट कर रहा है. साइलेंस का यूज, जैसे मैंने शुरुआत में बोला, काफी एक्सेलेंट है. कई सीन्स में सिर्फ करेक्टर सांस ही ले रहा है एंड सिर्फ फुटस्टेप्स हैं, नथिंग एट ऑल, नथिंग एट ऑल. एंड ये जो साउंड्स हैं बिना म्यूजिक के, ये इतनी जबरदस्त वो पैदा करती हैं फीलिंग्स जिसकी हद नहीं. मैं यही कब से क्रिटिसाइज कर रहा हूँ, लोग कहते हैं यार तुम बॉलीवुड को क्रिटिसाइज करते रहते हो, बट ये प्रॉब्लम है. बॉलीवुड को हर जगह बीजीएम लगाना है. कई मर्तबा साइलेंस एंड द फुटस्टेप्स एंड ब्रीदिंग, दीज थिंग्स मैटर. बहुत सारी मूवीज हैं बॉलीवुड में जो काफी शानदार बनी है, बट देन लाउड बीजीएम रखने का जो चलन चला है वो खत्म होना चाहिए. और ये मूवी उसका बहुत अच्छा एग्जांपल है. बेसिकली क्या होता है, जब आप ऐसा करते हैं तो टेंशन बिल्ड होती है और इंटेंसिटी बढ़ जाती है. तो थीम्स एक्सप्लोर करी है, जैसे मैंने बताया इसमें मूवी में, उसमें टॉक्सिक लव है. फिल्म का मैसेज ये है कि लव और पोजेशन दोनों अलग अलग चीज़ें. यू कांट पोजेस्ट समबडी इन लव. जो बियर है, जो कैरेक्टर है, मेल कैरेक्टर है, इनिशियली वो प्यार चाहता है, लेकिन एक्चुअली उसके दिल में जो चीज़ छुपी है उसे पता नहीं है, पर वो कंट्रोल चाहता है, मोहब्बत नहीं चाहता है. और जब उसको कंट्रोल मिल रहा है तो वो हॉरर में कन्वर्ट हो जा रहा है. तो बेसिकली उसकी जो रॉन्ग साइड है कैरेक्टर की, मूवी ने उसको हॉरर में बदल दिया है कि देखो कंट्रोल इज अ बैड वे ऑफ बीइंग विद समवन. और दूसरा जो एलिमेंट है जिसे एक्सप्लोर किया गया है, हुआ है अकेलापन, लोनलीनेस. बेयर जो कैरेक्टर है वो इमोशनली एक आइसोलेटेड बनता है. फिल्म दिखाती है उसकी लोनलीनेस को, कि इंसान अगर अकेला ज्यादा रहता है तो मोरली करप्ट होने लगता है अंदर से. कई मरतबा लोगों को अकेलापन बर्दाश्त नहीं होता. इट कैन बी रियली पावरफुल और इट कैन बी वेरी वेरी डेंजरस. तो मोरली कुछ लोग अकेले जो नहीं रह पाते हैं वो डेंजरस डिसीजंस भी ले सकते हैं. एंड मूवीज को बहुत अच्छे से एक्सप्लोर करती है. लाइक द आइडिया, क्योंकि मेंटल हेल्थ की जब इतनी बात होती है तो ये भी क्यों ना बात की जाए. अकेलापन हर किसी के बस की बात नहीं है. और अगर आपको लगता है कोई ऐसा बंदा है जो कम बोलता है कहीं पर भी, टॉक टू हिम, नो द पर्सन पर्सनली. बिकॉज यू नो, जब आदमी मोरालिटी के बात आती है तो कुछ ना सोचे तो बेहतर है. मोरालिटी पे और मॉरल डिसीजंस पे एक दूसरे की मदद करना हमारा काम है. और मूवी इस बारे को, इस चीज़ को बहुत अच्छे से एक्सप्लोर करती है. फिर आता है मेल एंटाइटलमेंट, जो मूवी ने एक्सप्लोर किया है. फिर बियर का जो माइंड सेट है उसके बारे में बताया गया है कि हाँ, अगर मैं नाइस हूँ तो मुझे प्यार मिलना चाहिए. होता है ना, कुछ लोग कहते हैं भाई मैं तो अच्छा हूँ तो मैं तो सबको डिजर्व करता हूँ. ऐसा नहीं, फिल्म इस मेंटेलिटी को क्रिटिसाइज करती है. इट डजंट वर्क लाइक दैट, है ना. दुनिया आपके मेरे हिसाब से नहीं चलेगी. हाँ, ये कह सकते हैं कि मैं अच्छा हूं तो मेरे साथ अच्छा होगा, वो खुदा पे अकीदा है, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी. बट ये कहना कि मैं अच्छा हूं और मुझे सब कुछ मिले, मुझे सब प्यार करें, नो, दैट्स नॉट हैपनिंग. और मूवी इस चीज को क्रिटिसाइज कर रही है और करना जरूरी भी है. इसके अलावा मूवी एक और सब्जेक्ट को एक्सप्लोर कर रही है, ऑब्सेशन वर्सेस लव. निक्की का ऑब्सेशन जो है वो एक एक्सट्रीम मेटाफर है मूवी के अंदर. वो रिप्रेजेंट करती है अनहेल्दी अटैचमेंट्स को, चाहे वो चीजों से हो या इंसान से हो, डिपेंडेंसी को और इमोशनल इम्प्रिजनमेंट को. होता है हम कुछ जगहों पे होते हैं जहां से हम भाग जाना चाहते हैं पर हम भाग नहीं सकते. मजबूरियां हैं, इमोशंस हैं, कनेक्टेड हैं, और वो जो तार हैं वो टूटने से हमें बहुत डर लगता है, बहुत डर लगता है. होता है कि तार टूट के गिरा तो करंट तो हमें भी लगेगा. एंड दैट फेयर मेक्स यू इन प्रिजन. तो आप

0: भी बात की गई है और बहुत अच्छे से एक्सप्लोर किया गया है। इसके कुछ सीन्स हैं, मैं थोड़ा बहुत बताता हूँ, थोड़े सीन्स बाकी आप खुद देख लीजिएगा। इसमें सबसे पहला सीन है विश वाला, जो सीन है जब बेयर जो है विश करता है। सीन बड़ा सिंपल है लेकिन एक क्रीपी एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। ऑडियंस को ऑलरेडी फील हो जाता है रे रे रे रे रे भाई क्यों विश मांग रहा है, और आपको लगेगा भाई मत मांग विश छोड़ दे, तो वो जो फीलिंग है वो आपको एज एन ऑडियंस फील होगी। दूसरा जो मेन सीन है वो है निक्की का ट्रांसफॉर्मेशन, विच इज स्लो पेस्ड, लेकिन वो जो ग्रेजुअल क्रीपीनेस जो बढ़ती चली जाएगी वो बड़ी कमाल की, एकदम से ईवल नहीं हो रही है वो, मगर धीरे धीरे जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो बहुत जबरदस्त है। और फिर एक सीन आएगा इसमें, फोन कॉल के सीन्स हैं एक दो, उनमें से एक सीन है जो बहुत ही कमाल का है, वो इमोशनल भी है और साइकोलॉजिकल भी है, तो ये सीन्स पे जरा नजर रखिएगा। एंड देन द फाइनल कॉन्फ्रंटेशन, फाइनल कॉन्फ्रंटेशन में एंडिंग काफी कैओटिक है, ट्रेजिक है, शॉकिंग है, पर बाकी की नहीं बताऊंगा, आई वॉन्ट यू टू वॉच दिस मूवी। पर ये मूवी ये बात है कि मेमोरेबल बनेगी, आप जब जब थिएटर्स निकलेंगे आप कभी भी इसको देखेंगे यू विल डेफिनेटली फील कि मूवी में बात तो है यार, बात तो है। अब कुछ वीक पॉइंट्स, बहुत तारीफ हो गई मूवी परफेक्ट नहीं है, एब्सोल्युटली नहीं है। कुछ व्यूवर्स को ये पहला हाफ स्लो भी लगेगा, कभी कभी बेयर जो है जो कैरेक्टर है वो काफ़ी फ्रस्ट्रेटिंगली पैसिव लगता है कि नहीं ये ज़्यादा हो रहा है, अभी कुछ एक्शन लो एंड यू फील दैट वे, तो वो थोड़ा सा हल्का सा ड्रैगी है। और फिर एक जो एम्बिगस लोअर जो उन्होंने मूवी में दिखाया है वन विश बिलो के बारे में ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं दी गई है, बस बोल दिया देखो ऐसा है ये पत्थर है इसको देख के विश, बस दैट्स इट, उस लोअर को एक्सप्लोर नहीं किया है। और कुछ लोगों को ये पसंद आएगा और कुछ को कन्फ्यूजिंग लगेगा, दैट इज़ अप टू यू, बट इससे ज़्यादा मैं क्रिटिसाइज नहीं कर पाऊंगा। ये अगर मूवी का सीधा कंपेरिजन करना है तो ये मूवी आपको याद दिलाएगी इट फॉलोज की, हेरिडिट्री की, स्माइल की, बाबाडूक अगर आपने देखी है, वन ऑफ माय फेवरेट मूवीज, गॉन गर्ल की, और ब्लैक मिरर टाइप साइकोलॉजिकल कहानियों की। ऑब्सेशन डेफिनेटली पसंद आएगी, ये ट्रेडिशनल स्लैशर हॉरर नहीं है, साइकोलॉजिकल रिश्ते के बारे में है, एंड दैट इज एंड दैट्स नाउ एंड दैट्स व्हाई कम्स माय फाइनल वर्डिक्ट, देखनी चाहिए, बिल्कुल देखनी चाहिए। अगर आप एक इंटेलिजेंट साइकोलॉजिकल हॉरर एंजॉय करना चाहते हैं 2026 की, दिस इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट हॉरर मूवीज, ये सिर्फ स्केरी नहीं है, इमोशनली अनकंफर्टेबल भी है, और फिल्म खत्म होने के बाद माइंड में रह जाएगी। स्टोरी को दूंगा मैं 8.5-10 में से, एक्टिंग इज एब्सोल्युटली फैंटास्टिक 9.5, हॉरर एटमोसफियर 9, डायरेक्शन 8.5, एंडिंग 8.5, और रीवॉच वैल्यू कम है 7.5, बट ओवरऑल 8.7 ऑन माय मीटर। ये है रिव्यू ऑफ द वीक मूवी ऑब्सेशन का, एंड दिस इज दोहा वाला कबीर साइनिंग ऑफ। अपना ख्याल रखिएगा क्योंकि आप बेहद बेहद जरूरी है। मास्सलामा।
1: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें, हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488-8806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
2: अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ RJ महावश, FM 107, और मेरी तरफ से आप सब लोगों को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। अल्लाह ताला आपकी कुर्बानियों को कबूल फरमाए, आपकी ज़िंदगी को खुशियों, बरकतों और सलामती से भर दे, और आपके घर को अपनी रहमतों से मुनव्वर करे। आमीन।

0: FM 107 की पूरी फैमिली की तरफ से हमारे तमाम सुनने वालों को ईद उल अदा की दिल की गहराइयों से मुबारकबाद। FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें, आज ही राब्ता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: FM 107 टाइम चेक।
2: अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। FM 107 पे इस्तकबाल है दोस्तों आप सभी का। टाइम फॉर द टाइम चेक। FM 107 की स्टूडियो की घड़ी में फिलहाल 8:01 और ये शो आपके लिए जश्न ईद।
3: आप सुन रहे हैं जश्न ईद विद आरजे नाजिया एंड आरजे फजील ओनली ऑन FM 107 दिल से।

0: आप सुन रहे हैं जश्न ईद विद आरजे नाजिया एंड आरजे फजील ओनली ऑन एफएम 107 दिल से देसी।
1: Right guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Eid Mubarak. और आज है actually देखा जाए तो third day Eid का, और यानी मैं, नाजिया और फजील हम दोनों आ चुके हैं इस शो में जिसका नाम है जश्न ईद। Ideally इतनी लंबी ईद होती नहीं है, बट चलिए अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर इस कंट्री में बहुत अच्छी बात यह है कि आपको भरपूर मौका मिलता है किसी भी फेस्टिवल को अच्छे तरीके से इंजॉय करने का और एब्जॉर्व करने का।
2: बिल्कुल, और आज फ्राइडे का दिन, आज भी काफी भीड़ है। उसके अलावा अगर इवेंट के बारे में बात करें तो हर तरफ इवेंट वगैरह चल रहा है, और सूख वाकिफ से लेकर कॉर्निश तक का माहौल बिल्कुल सजा हुआ है, और बीच से लेकर कटारा तक का माहौल भी। सो अब वक्त आ गया है कि हम आज के सवाल पर जल्दी से आ जाएं और फिर आपकी कॉल्स को लेना शुरू करें।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
2: सो दोस्तों बात यह है कि क्योंकि हम लोग पहुंच गए हैं तो अब जरूरत है नहीं वैसे हमें तो अब क्या कहते हैं, कॉल आपको करनी है। हमारा कॉलिंग जो नंबर है वो है 443-443-77
1: राइट
2: एग्जैक्टली। और अच्छा, दूसरी चीज ये कि हम जो सवाल करते हैं उसी पर हम स्टिक रहने की कोशिश करेंगे। कई बार होता है हम ना दाएं बाएं चले जाते हैं, दाएं बाएं नहीं जाना भाई साहब, अगर कॉर्निश का है तो कॉर्निश ही चलो ना, फिर यार तुम तो मलखोर ले जाते हो फिर इतनी दूर जाने के बाद अब्बा कहते हैं कहाँ हूँ, वो भी तो इंतजार कर रहे होते हैं ना। तो इसलिए जरूरी है कि अपने टाइम से हिसाब किताब रखा जाए और वही बात करीजिए जो सवाल है। आज का सवाल क्या है हमारा?
1: Alright, so आज का जो हमारा टॉपिक है इज अबाउट कंपैशन एंड ह्यूमिलिटी। इस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं और हम आपसे जानना ये चाहेंगे कि आपके हिसाब से डू टेल अस कि व्हाट डज इट लुक लाइक इन रियल ईद। मतलब ईद के हवाले से अगर हम बात करें तो कंपैशन यानी दूसरों का ख्याल रखना, केयर करना, किस तरह से कंसिडर किया जाता है एज सोल ऑफ ईद उल अधा, ये आप हमें बताइए। और इस ईद आपने क्या कुछ ऐसा वाकई किया जिसको आप रिलेट कर सकते हैं टुवर्ड्स लाइक कंपैशन एंड ह्यूमिलिटी?
2: बिल्कुल, तो ये आपको हमें बताना है और इसे थोड़ा और आसान भी कर दीजिए।
1: इसको और आसान कर देते हैं। देखिए, ईद उल अधा में जब हम कुर्बानी करते हैं गोश्त की, मतलब जानवर की, तो एक पोर्शन बिलखसूस मखसूस किया गया है उन लोगों के लिए जो ज़रूरतमंद हैं, जिनके पास है नहीं, जो डिप्राइव्ड हैं, उनका ख़ास ख्याल रखने को अल्लाह ताला ने कहा है। और ये सिलसिला ईद हो या बकरीद हो, दोनों में ही हम देखते हैं। वहाँ पर भी आपको पता है कि फितरा, ज़कात, ये सब पहले, मतलब आप खुशियाँ जब मना रहे हैं तो उसमें आपको उन लोगों का सबसे पहले और सबसे ज्यादा ख्याल रखना है जो बेचारे जरूरतमंद हैं, महरूम हैं। तो आज भी सवाल यही है कंपैशन और ह्यूमैनिटी को लेकर कि किस तरह से कंपैशन और ह्यूमैनिटी कहीं ना कहीं जुड़ी हुई है ईद उल अधा के साथ, यानी दूसरों का ख्याल करना, शेयर करना, उनके साथ खुशियां बांटना, या अपने लिए, मतलब अपनी कोई चीज, जैसे कल भी हमने सेक्रीफाइस पे बात की, आज हम जरूर कंपैशन पे ही बात करें, कहीं ना कहीं इंटरलिंक्ड है। कहीं ना कहीं चीजें काफी मिलती जुलती हैं, बट फिर भी शेयर करना, कोई भी चीज है जो आपकी बहुत पसंदीदा है, यहाँ पे कंप्लीटली आप दे नहीं रहे, छोड़ नहीं रहे, बट शेयर कर रहे हैं। सो वो चीज अगर आपके साथ कभी हुई या ईद के दौरान कुछ खास है तो वो भी आप हमें बताइए 666-22-107 पर, या फिर आप हमें कॉल कीजिए 443-443-77 पर।
2: तो नाजिया आपको ये बताइए, अगर जब इतनी सब बातें हमने करी
1: है तो, आपने तो मैं ही
2: आपसे ही शुरुआत होगी फिर तो।
1: अच्छा, मैं क्या बताऊँ, मैं मतलब मैं हाँ ये मैं बता सकती हूँ कि चीजों को जब शेयर करने की बात होती है तो दूसरों का ख्याल रखना, और ख़ास करके यहाँ पे देखो शेयरिंग को हम अक्सर जोड़ रहे होते हैं कि जो बेचारे ज़रूरतमंद है उनका ख्याल रखना, वो तो हमें रखना ही रखना है, चाहे गोश्त उन्हें देना या पका हुआ खाना देना या फिर कुछ और। एक चीज़ जो मैं हमेशा करती हूँ वो ये कि मैं सिर्फ रमज़ान के बाद ही जो नए कपड़े हैं या नई चीज़ें हैं वो सिर्फ जो मेरे घर में जितने लोग काम करते हैं उनको सिर्फ रमज़ान के बाद उस ईद में नहीं देती, ईद उल फित्र में नहीं देती, बल्कि ईद उल अधा में भी देती हूँ। तो वहाँ पर मेरे घर में जो मेरी हाउस हेल्प है उसने मुझसे बड़े उससे तबाक से पूछा भी कि अरे मैम, और जगह तो सिर्फ हमको रमज़ान के बाद ही नए कपड़े, मतलब उस ईद में, ईद उल फित्र में ही दिए जाते हैं, आप ईद उल अधा

0: भी देते हो, ऐसा क्यों करते हो? मैंने कहा इसलिए ऐसा करती हूँ क्योंकि मैं
1: पैसे वाली हूँ। अच्छा, ओ सॉरी, अच्छा
0: मैंने इसलिए करती हूँ क्योंकि मैं भी जो है, मैं भी अपने कपड़े अगर बना रही हूँ घर वालों के लिए बना रही हूँ, तो मुझे लगता है कि नहीं आपका हक सबसे पहले, क्योंकि आप मेरी ईद बनाने में मेरी बहुत हेल्प करते हैं। अगर वो लोग मेरे घर को ख्याल, मेरे घर का, मेरी चीजों का ना रखे तो मैं शायद कभी भी बाहर अच्छे से परफॉर्म नहीं कर सकती।
1: सही सही सही सही। तो अब आपको भी बताना है दोस्तों, आप हमें कॉल कर सकते हैं, हमारा व्हाट्सअप का नंबर है 666-2107 और कॉलिंग का नंबर है 443-443-77
0: एंड वी आर कनेक्टेड टू वन कॉल।
1: हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम
1: जी, कौन बात कर रहा है?
2: जी आफताब आलम बात कर
1: रहा हूँ। आफताब साहब कैसे हैं आप?
2: अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे
1: हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआ है। सो आज का सवाल आपने सुना?
2: जी जी सवाल सुना मैंने, बस ऐसे ही कॉल कर दिया।
1: अच्छा,
2: इतने मुझे मालूम नहीं,
1: इतनी मालूमात नहीं, बस कॉल कर दिया आपने।
2: कॉल कर दिया, मैं बहुत मतलब टाइम से 7-8 से सुन रहा हूँ, तो 7-8 साल से सुन रहा हूँ और कॉल नहीं किया था मैंने, मतलब ऐसे लगाते तो देखते हुए लगता है।
1: अच्छा, और फिर लक ऐसा है कि पहली बार में भी लग गया, अब तो कुछ ना कुछ बोलना ही पड़ेगा। वो घबरा भी गए, रहे हम तो ऐसे ही ट्राई कर रहे थे, ये क्या हो गया, एकदम से कॉल भी लग गई, इतना तो मैंने सोचा भी नहीं था।
2: क्या बोलूं आप सबको,
1: ईद मुबारक बोल दे बस, और कोई मसला नहीं है भाई।
2: एफएम सुनने वाले 107 एफएम सुनने वाले सारे फैमिली को ईद मुबारक।
0: खैर मुबारक जी, खैर मुबारक
1: आपको भी।
0: अच्छा, कुछ कंपैशन यानी दया, दूसरे पे रहम करना, समथिंग लाइक दैट, इसके हवाले से कुछ ऐड ऑन करना चाहेंगे? ह्यूमैनिटी के, इंसानियत के हवाले से कुछ ऐड ऑन करना चाहेंगे? किस तरह से ईद हमें कंपैशन और ह्यूमैनिटी का जो है वो एक लेसन सिखाती है?
2: लेसन जो सिखाती है, आपने सब कुछ बता ही दिया तो मुझे बताने की जरूरत तो नहीं है। आपने सब कुछ तो क्या कहते हैं, आपने सब कुछ तो बता ही दिया, एकदम सुन रहा था।
0: चलिए ठीक है फिर, वो कह रहे कि आपने सब कुछ बता दिया है, मैं बस
1: कुछ बचा ही नहीं। भाई बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने
0: के लिए। आपका नाम क्या था एक बार वापस से प्लीज मुझे बताइएगा? आफताब आलम
2: जी।
0: ओके
1: ओके आफताब भाई, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए।
2: शुक्रिया जी, शुक्रिया, मेहरबानी,
0: थैंक यू, अल्लाह हाफिज। Alright, और आज बात हो रही है इंसानियत की और दूसरों पे रहम करने की।
1: आपके अंदर दोस्तों कितनी इंसानियत
0: है? किस तरह से? Yes, ईद का ये जो मौका है या ईद उल अदा हमें इंसानियत का पार्ट कैसे पढ़ाता है, कैसे हमें लेसन सिखाता है, ये आप हमें बताइए। कुछ ऐड करना चाहते हैं तो डेफिनेटली ऐड कर सकते हैं, हमारे साथ जुड़ सकते हैं। एक और कॉलर इस वक्त हमारे साथ कनेक्टेड है। हेलो,
1: हेलो, आवाज आ रही है आपको? म्यूट तो नहीं कर लिया आपने?
0: हेलो,
1: आपने भी ऐसी चांस लगाया था फिर उसके बाद कॉल लग गई,
0: लो फिर कट गई, फिर किसी और की कॉल आ रही है। चलिए, हेलो, हेलो,
2: हेलो,
1: वालेकुम सलाम जी, कौन बात कर रहा है? हेलो, आवाज आ रही है?
3: सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम सलाम, कौन बात कर रहा है?
3: राहुल।
1: राहुल साहब कैसे हैं?
3: अल्हम्दुलिल्लाह।
1: सवाल सुना, इंसानियत, इंसानियत का सवाल सुना आज आपने?
3: सुना तो तकरीबन
1: तकरीबन सुना है।
3: ईद मुबारक
1: आपको। ईद मुबारक मेरे भाई, ईद मुबारक आपको।
0: सवाल ऐसे समझ में नहीं आ रहा, ईद मुबारक, चलिए। तो ये कुछ बताएंगे इंसानियत का पार्ट या इंसानियत का जो लेसन है या कंपैशन, केयर करना, दूसरों की मदद करना, इसको किस तरह से ईद उल अदा के साथ आप जोड़ते हैं?
3: ईद उल अदा में हम लोगों को खास तौर से एक चीज सिखाते हैं इस्लाम में, एक दूसरे का ख्याल रखते हैं, जैसे हम लोग कुर्बानी जो करते हैं तो गोश्त वगैरह भी तकसीम करते हैं, सबसे पहले तो अपने को देखते हैं, उसके बाद जो करीबी हैं, अपने रिश्तेदार हैं, उनमें बांटे, सिर्फ गोश्त ही नहीं बांटे, मोहम्मद भी बांटे, एक दूसरे से जो है मिलजुल के रहे, कोई भी परेशानी है दूर करें, हम दिली दिखाएं,
0: ये सारी चीजें जो हैं वो इम्पोर्टेंट हैं। राइट, सही सही, चलिए, वेरी नाइस, सही, कुछ तो आपने ऐड किया हमारे टॉपिक पे, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज। अच्छा, यहाँ पे मैं थोड़ा सा वाजे भी करना चाहूंगी, शायद लोग उस तरह से नहीं समझ पा रहे हैं। देखिए, आप इंसानियत का मतलब क्या है, इंसानियत का मतलब, यहाँ पर एक चीज मुझे इंसिडेंट याद आ रहा है, जब बहुत पहले हमने 2-3-4 साल पहले यू नो यहाँ पे कुर्बानी कराई थी, तो यहाँ का प्रोसेस ये होता है कि आपको स्लॉटर हाउस में जाना है, टोकन आपको मिलना है और आपको

0: पूरी लाइन ऐसी लगी है आपको खड़ा रहना है ठीक है तो वहां पर एक बहुत अच्छे शख्स उनका मुझे पता नहीं कहां से उनका ताल्लुक था बट ही वाज लाइक स्टैंडिंग उनका नंबर आ रहा था मतलब तीन चार ही लोग रह गए थे बट देन ही सॉ कि एक फैमिली है जिनके बच्चे बाहर गाड़ी में बैठे हैं बच्चे साथ में और छोटे हैं और आई थिंक चार या पांच बच्चे बैठे हैं तो होता नहीं देखो हर एक को पड़ी होती है कि हम जल्दी से कुर्बानी कराएं फ्री हो जाएं मतलब लोग लिटरली मैंने देखा लड़ झगड़ भी रहे होते हैं कि अरे हम खड़े थे अब मतलब इस तरह से कुछ ना कुछ बहस चल रही होती है लेकिन वो बंदा मुझे इसलिए याद रहा कि उसने देखा कि उनकी फैमिली पीछे खड़े उनके जो फादर हैं वो बड़े मतलब थके हुए से वो अच्छे खासे वो खड़े हैं उन्होंने जाके पूछा कि आपकी फैमिली बाहर गाड़ी में और अच्छी खासी गर्मी थी यू वोंट बिलीव इतनी गर्मी थी कि उस गाड़ी में और शीशे उतार के खड़े थे आई डोंट नो वो अफोर्ड नहीं कर सकते थे कि शायद एसी चलता रहे या क्या था तो उन्हें पता नहीं क्या उनमें रहम आया क्या उन्होंने दया किस तरह का महसूस किया उन्होंने कहा सर अब एक्सचेंज कर लेते हैं आपका और हमारा टोकन नंबर तो इट वाज लाइक एन लाइफ एग्जांपल फॉर मी कि देखो ये सिखाता है ये दुल्हा था
1: क्या बात
0: ये है कुर्बानी
1: हो सकता है या तो फिर उनके पास टाइम बहुत रहा हो
0: मैं तो कहूँगी देखो फजील कितना भी टाइम है हर आदमी को आराम पसंद है
1: हाँ, लेकिन फिर भी अगर आप आराम पसंद है और फिर जब इस तरह की चीजें होती है ना कि कुर्बानी का नंबर लगा हो तो फिर कितना भी आराम हो कितना भी टाइम हो इंसान ये नहीं करता कि दूसरे को नंबर दे दे करीब करीब मुझे लगता है आधे घंटे लग जाते होंगे या 15 मिनट लग जाते होंगे पूरा पूरा काम मुकम्मल होने में दो दो घंटे तो ये भी होता है
0: तो कितनी बड़ी बात थी कि उन्होंने कहा और उस बंदे ने कहा भी कि नहीं सर आपका तो आ रहा है एक दो के बाद आप ऐसा क्यों करेंगे कहता है नहीं नहीं आपकी फैमिली जो है ना बहुत परेशान है बच्चे बेचारे बाहर धूप में ऐसे उनका मुंह लाल हो रहा है आप आगे आ जाइए और जबकि और कितने लोग खड़े थे वो भी ऑफर कर सकते थे बट किसी ने नहीं उन्होंने सबने टर्न होके देखा सुना समझा पते भाई एडमिट नहीं हमारा है हमसे क्या मतलब तुम्हारे बच्चे को तकलीफ है हमारे बच्चे को थोड़ी है सो इट्स दैट वे ये ईद उल अधा है दिस इज कॉल्ड कंपैशन दिस इज कॉल्ड ह्यूमैनिटी ये है इंसानियत जो ईद उल अधा हमें सिखाता है ये सबसे ये सारी चीजें अगर इस तरह का कोई इंसिडेंट है आपके पास जरूर हमें बताइए
1: बिल्कुल जैसे कि कहा भी नाज़िया ने कि ये चीज कनेक्टेड भी है तो आप बताएं
0: कि
1: हां बिल्कुल हम कॉलर को लेते हैं पहले जी हेलो अस्सलाम वालेकुम
2: अस्सलाम वालेकुम
0: वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह व बरकातहू कौन है
1: कहीं बाहर निकली आमिना जी ये लग रहा है बच्चों के साथ
2: जी जी हाँ जी
0: आप तो वही हैं जिन्होंने कहा था कि मैं उंगली पे गिन के बता सकती हूँ मैं रेस्टोरेंट बस वही है ना
2: जी
0: हाँ फाइनली मबरूक मुबारक हो आज आपके हस्बैंड आपको लेके जा रहे हैं
1: रेस्टोरेंट थोड़ी लेके जा रहे हैं
2: मैं अपने देवर के साथ में
0: पे। तो मुझे बताइए आज बाहर ही आपने प्लान किया है कि खाएंगे या फिर घर जाके ही खाना है आपको
2: नहीं मैं लेके आई हूँ
1: मैं कहने वाला था ये कि कई बार ऐसा होता है कि हम बाहर खाएंगे लेकिन घर से लेकर गए मेरे एक है फैमिली है मैं उनको जानता हूँ तो वो भी यही करते हैं तो ऐसे कई लोग हैं जो ये काम करते हैं कि यू नो घर से ही बना इवन कई बार मुझे भी अच्छा लगता है वो बहुत पहले किया हुआ है अम्मा ने कि वो घर से बना कर लेकर जाती थी और फिर हम कहीं और जाके पिकनिक कर रहे होते तो कि आजकल हमारी पावर है परचेजिंग वही वाली बात है कि हम कर सकते हैं वरना जब नहीं हाँ वो दूसरा मजा है तो हमने जब शुरुआत करी है तो वहीं से शुरुआत करी जहाँ से अम्मा ने यू नो घर पे ही बना दिया सब और फिर कहीं और जाके पिकनिक कर रहे हैं तो पिकनिक यही हुआ करती थी
0: चलिए अच्छा है कि आप पिकनिक एक तरह से एंजॉय पिकनिक कर रही हैं एंजॉय कर रही हैं तो कहाँ जा रही हैं एग्जैक्टली कटारा
2: नहीं मैं कटारा में अभी तक थी अब मैं यहाँ से निकले
0: वैसे मैं आपको बताऊँ बहुत ट्रैफिक है आई वॉज कमिंग फ्रॉम दैट साइड इतना ट्रैफिक है और लिटरली वो रोड भी मुझे लग रहा है फुल हो गई पार्किंग एवरीथिंग तो अब उन्होंने बैरियर लगा दिया तो अब एंट्री नहीं है इट्स लाइक ऑलमोस्ट 15 मिनट पहले की बात बता रही हूँ तो खैर चलिए अब आप तो आ गई हैं अच्छा आमना कल आपने बहुत ही अच्छी बात की थी कुर्बानी के हवाले से आज हमारा टॉपिक है कंपैशन और ह्यूमैनिटी इंसानियत और दूसरे पे दूसरों की मदद करना उनका ख्याल कर लेना तो ईद उल अधा हमें किस तरह से कंपैशन और ह्यूमैनिटी सिखाता है
2: ईद उल अज़हा से तो मैं हमें ये पता चलता है ना हम अगर खाना में अपने से दूसरे के लिए अगर वो करेंगे ना एहसास करेंगे तो अपने यहाँ कुर्बानी का मतलब ये है कि अपने यहाँ गोश्त खा के जमा करना नहीं है वो गरीबों तक पहुँचाए ताकि उनके तक कुर्बानी का एक ही लुकमा जाए तो महसूस अलग होता है उसका
0: सही ये इम्पोर्टेंट है चलिए जी
2: जैसे हम लोग करते हैं ना यहाँ पे परदेश में तो सबसे पहले हम लोग यही सोचते हैं कि फैमिली में पहले मत जाएं आप आप पहले इस तरफ जाएं बिचलर के साइड कि आप अगर बना के दे सकते हैं
1: कुछ दे सके उनके लिए कुछ कर सके सही
2: जी जी जी
1: क्या बात है
2: वैसे तो हम लोग 11 महीने अल्हम्दुलिल्लाह खाते ही रहते

0: पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।
1: अब ले सी रे शुमावे माले।

0: दिन चारों दिन सुबह होगी और भी खास खास। सुनिए मॉर्निंग मस्ती ईद विद आरजे महवेश खान 7 से 9 बजे सुबह। मजेदार गुफ्तगू, ईद की खुशियाँ, आपके मैसेजेस और बहुत सारी मस्ती के साथ हर ईद की सुबह मनाए खुशियाँ FM 107 के साथ। दिल से देसी।
1: इस ईद सिर्फ कबाब और दावतें नहीं, सेहत का भी ध्यान रखना है। जानिए कैसे आप एंजॉय कर सकते हैं अपनी पसंदीदा डिशेस बिना गिल्ट के। इबादत और अपनों के प्यार के साथ स्मार्ट तरीके से सेलिब्रेट करें ईद के दूसरे और चौथे दिन शाम के 7:15 से। सुनिए हमारे स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मोहम्मद अमीन को इन द शो फिट एंड फेस्टिव, जहां ईद एंजॉय करेंगे फिटनेस के साथ।

0: Maximum music, maximum fun.
1: On FM 107, Dilse Desi.
2: Number one hits music station.
0: Anytime, anywhere.
1: Yes, anytime, anywhere.
0: कभी भी और कहीं भी आप सुन सकते हैं FM 107.
3: FM 107.
0: Log into our website urduradio.qa or download the app QMC now.
4: आप सुन रहे हैं जश्न ईद विद आरजे नाजिया एंड आरजे फजील ओनली ऑन एफएम 107 दिल से देसी.
5: राइट गाइज, वेलकम बैक. आप सुन रहे हैं शो जश्न ईद. फजील और नाजिया हम दोनों आपके साथ हैं. 8:33 ऑन द क्लॉक और आज इस टॉपिक पे बात हो रही है जहां आपके पास भी मौका है कि आप कनेक्ट हो और जीतें गिफ्ट वाउचर दैट टू वर्थ का 3 रियाल 1000 मार्बल मेडिकल सेंटर की जानिब से. तो हम आपसे पूछ ही रहे हैं कि आप किस तरह से वर्थ को कनेक्ट करते हैं कंपैशन और ह्यूमैनिटी को विद ईद उल अधा.
6: बिल्कुल, तो आपको बताना है. आप हमें कॉल कर सकते हैं. कॉलिंग नंबर है 443-443-77 और उसके अलावा आप हमें मैसेज भी कर सकते हैं. नंबर है 666-22-107
5: एंड वी आर कनेक्टेड टू वन कॉलर.
6: ओके, हेलो, सलाम अलैकुम.
7: वालेकुम सलाम फजील भाई,
6: कैसे हैं जनाब? कौन बात कर रहे हैं?
7: नौशाद आलम.
6: तो नौशाद साहब, ये तो नौशाद भाई क्या उम्र है? क्योंकि नौशाद बहुत जमाने हो गए, नए लोगों के नाम नौशाद नहीं रखे जा रहे हैं आजकल. मेरे एक दोस्त थे, उनका नाम, वो अच्छा दोस्त भी नहीं थे, मेरे अब्बा के दोस्त के लड़के थे, वो नौशाद थे. उनकी उम्र भी कम से कम नहीं 40-45 थी. तो अब नौजवानों का नाम नौशाद नहीं रखा जा रहा है, क्या मसला है ये?
7: नहीं, मैं काम करता हूँ वहाँ, 4-4-4-9
6: और सारे 45 के हैं, 40 के हैं या फिर छोटे वाले हैं?
5: नहीं, नौशाद नौशाद कॉल करे, वो कहते हैं जस्ट कॉल मी नौशे.
6: चले, तो नौशाद साहब क्या हिसाब है, क्या चल रहा है, कैसी रही है आपकी ईद उल अधा?
7: अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र है, तो अच्छा ही रहा. और बाकी कुर्बानी वगैरह भी मुदिर की तरफ से था, तो उसमें शामिल हुआ था. काटने उड़ने पीटने में बस अच्छा. खाना पीना सोना घूमना यही सब चला. अभी 3 दिन कल से ड्यूटी चालू हो गई है.
6: अच्छा,
5: सैटरडे से. नाइस. हाँ,
7: 3 ही दिन का छुट्टी है ना हम लोगों का.
6: सैटरडे, अच्छा सैटरडे नहीं होती होगी. ओके, खैर देखिए आज हमारा भी यही हाल है. मतलब छुट्टी है हमारी लेकिन नहीं है, मतलब छुट्टी है लेकिन हम यहाँ पर आके काम कर रहे हैं.
7: नहीं, आपका तो
6: मजदूरी. अच्छा,
7: मजदूरी नहीं है, 1-2 घंटे का ही ड्यूटी रहता है ना. हम लोगों का तो 10 घंटे ड्यूटी करना पड़ता है.
6: तो यही वाली तो छुट्टी आप मना रहे हैं और हम यहाँ पर बैठ रहे हुए हैं. और हमारी जो दावत है वो फिर वही है ना कि शाम की दावत तो चली गई ना, इधर के हुए ना उधर के. वो है ना धोबी का जो वो होता है कुट्टा, है ना, वो कुट्टी भी कहते हैं उसे, जिसे जो क्रिकेट बैट होता है ना उसे कुट्टी कहते हैं एक्चुअली. तो वो ना घर का होता है ना घाट का होता है, तो घर पे भी उसका इस्तेमाल ज्यादा नहीं पड़ता, असल में उसकी घाट में इस्तेमाल होता है. तो फिर ये होता है कि अरे चलो यार कहीं टहलने घूमने जा रहे हैं तो उसको घर पे रख दो कहीं चोरी ना हो जाए, तो रहता तो वैसे घाट में ही है.
5: अच्छा, उसे ये बोलते हैं, आज पता चला मुझे.
6: अच्छा, आपको नहीं पता था?
5: नहीं मालूम था.
6: हाँ, वो एक्चुअली लोगों ने कहते कहते बदल दिया.
5: अच्छा,
6: लेकिन वो धोबी का वो है,
5: वो नहीं, ये था.
6: हाँ, वो उसे कुट्टी कहते हैं, शायद मेरे ख्याल से मलयाली में भी कुट्टी ही कहते हैं, और उसे आमतौर पे गाँव में कुट्टा भी कहते हैं. और वो क्रिकेट बैट जैसा होता है छोटा सा, हमारे घरों में बहुत जमाने पहले, अब तो नहीं होता,
5: वॉशिंग मशीन है ना,
7: जिससे कपड़ा धुलाई किया जाता है.
6: हाँ, तो तालाबों में, एग्जैक्टली तालाबों में वो जो है सब लोग लेकर जाते थे, वहीं पर धोया करते थे क्योंकि घर में धोने का बंदोबस्त नहीं था. लोगों के छोटे घर थे और मिट्टी के घर हुआ करते थे, तो तालाबों में पत्थर बड़े बड़े लोगों ने लगा रखे थे, वहां पर होता था. तो ना घर का था ना घाट का था. तो हम 8 से लेकर 10 तक यहाँ पर बैठे रहते हैं. जो दावत है तब तक दावत, जब पहुंचे तो खत्म हो चुका था मामला, या फिर नीचे का मामला बचा होता है. बिरयानी जली जली होती है नीचे की और चिकन की फिर गर्दन मिलती है जिसमें हड्डी ज्यादा होते हैं तो मजा नहीं आता भाई. तो कोई फायदा नहीं है, 2 घंटे का भी है तो फिर नुकसान बड़ा हो जाता है.
5: सही बात. तो यहाँ पे बड़ा गम है, बहुत ज्यादा है. अच्छा, आज हम जो है नौशाद जी जान ले रहे हैं कि ईद उल अधा जो है वो हमें किस तरह से इंसानियत और कंपैशन सिखाता है.
7: पहली बात तो ये ईद उल अधा जो है ये तो मतलब कुर्बानी जो अल्लाह की, समझो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के ताल्लुक से जो है, वो अल्लाह पाक ने ये कहा था कि अपने सबसे

0: तरह चीज ला के हमें कुर्बान करो। तो ये कुर्बानी इसी सिलसिले से कि हमें भी जो अपने हलाल पैसे है, सबसे पहली बात तो हलाल कमाए और हलाल पैसे से जो भी बकरा खरीदे वो हलाल हलाल पैसे से ही कुर्बानी दे। और जो चीजें मैं देखता हूँ, क्योंकि मैं भी तो इसी जमाने का हूँ, देख रहा हूँ कि सोशल मीडिया पे लोग बहुत ज्यादा शेयर करते हैं, अपना दिखावा करते हैं कि हमने इतना रकम का लिया या इतना रकम का जन्म लिया,
1: अपना ही पेट थपथपा रहे हैं।
0: तो ये मुझे बहुत एकदम बहुत खराब लगती है कि अगर कोई जरूरी थी, अगर कहीं जरूरत है, मजबूरी है शेयर करना है तो वहाँ तो ठीक है, वहाँ शेयर कर रहे हैं, लेकिन बिना जरूरत क्यों शेयर कर रहे हैं।
1: सही
2: दिखावा।
1: अच्छा, लेकिन इन सब चीजों में ना मतलब ये एक गलत पॉइंट पे भी चली जाएगी बात, तो मैं शायद थोड़ा सा ऐड करना चाहता हूँ वो ये कि कई लोग सोशल मीडिया पे ना शो ऑफ करते, जब वो अब वो शो ऑफ मानिए या जो भी मानिए, क्योंकि अलग अलग नजरियों में अलग अलग है। अगर मिसाल के तौर पे कोई बंदा है जिसने किसी की गरीब की मदद करी और वो शेयर कर दिया और इससे उसको वाहवाही मिली और उसके नजर में क्या है क्या नहीं मुझे नहीं पता, बट अगर उसके ये वीडियो शेयर करने से कोई दूसरा बंदा इन्फ्लुएंस हो रहा है और उसको लग रहा है कि हाँ यार ये काम मैं भी करूंगा, तो मुझे लगता है ये अच्छी चीजों में है।
2: तो
1: इसका एक इम्पैक्ट जो है, पहला मुझे मेरे ऊपर ही याद है, तो बहुत पहले ना एंकरिंग वगैरह चलती थी और कानपुर में और लखनऊ में एक एंकर थी, वो बहुत ज्यादा फेमस थी, उनको बहुत ज्यादा पैसे मिलते थे, कुछ 4-5 घंटा वो करती थी, उनको 15,000-20,000 रुपए मिला करते थे और उनको महीने में तकरीबन अगर हम देखें 20-25 इवेंट मिल जाया करते थे। तो उनकी ऐसी वीडियोस भी आती थी कि फ्लाईओवर के नीचे जो बच्चे हैं, जो गरीब हैं, जो परेशान हाल हैं, उनके लिए खिलौने ले जाना, चॉकलेट ले जाना, उनके लिए करना, तो उनको देखकर ना मैं इन्फ्लुएंस हुआ था कि इंशाल्लाह अगर मेरे पास हुआ तो मैं भी कोशिश करूंगा कि मैं किसी की मदद कर पाऊँ, भले वो छोटे ही स्तर पे हो, छोटे ही लेवल पे हो। तो ये बड़ा जरूरी है कि अगर वो कर भी रहा है ना, तो हो सकता है कि उसके मन में क्या है क्या नहीं मुझे नहीं पता, हो सकता है उसके मन में ये हो कि शो ऑफ है। अगर नीयत आपकी खराब है कि मैं तो शो ऑफ करने के लिए चार लोग मेरी वाहवाही करेंगे, तब तो खराब है। लेकिन उस वाहवाही में भी अगर आप ये काम कर रहे हैं और कोई और इन्फ्लुएंस हो जा रहा है इस काम को करने के लिए, तो मुझे लगता है बेस्ट है, ये बेहतर है।
2: मुझे लगता है कि जैसे ये दिखा रही हैं कि मैंने क्या दिया बच्चों को, इंस्टेड ऑफ दैट ये एक मैसेज दें कि भाई मैं इस तरह की एक्टिविटी करती हूँ, क्योंकि वो इन्फ्लुएंसर हैं तो वो लोग इन्फ्लुएंस जरूर कर सकती हैं अपनी बात से, अपने वीडियो से, और बता के कि किस तरह कितने लोग हैं वहाँ महरूमी का शिकार है, या फला फला ऐसी बस्ती है जहाँ पे बच्चों की पढ़ाई का मसला है, खाने पीने का मसला, व्हाट्स एवर, क्योंकि इन्फ्लुएंसर है तो हो सकता है बहुत सारे लोग उनके साथ जुड़ जाए कि हम हेल्प कर देते हैं, हम करते हैं, तो ये काम तो करना ही चाहिए। और वो कहते हैं ना कि सर्विस इज कंटेज, एक आदमी काम अच्छा कर रहा होता है, 5-6 लोग
1: मुतासर
2: होते
1: हैं,
2: देख के होते हैं। जैसे मुझे अपने स्कूल का किस्सा याद है, देयर वाज वंस अ टाइम एक गार्डन मैंने देखा अपने स्कूल का, इतना डर्टी था, मतलब उसमें रैपर्स है, वाटर बॉटल कैप्स सब कुछ पड़ा था, तो देयर वाज अ थॉट कि इट्स नन ऑफ माय बिजनेस, नाजिया तुम्हारा तो कोई काम है नहीं, बट देन आई थॉट व्हाई शुड आई स्टार्ट ऑन माय ओन। मैंने वहां से कचरा उठाना शुरू किया, मुझे देख के मेरी दोस्तों ने फौरन आ गई, उन्होंने किया, पहले मैं अकेली थी, वो देखा उन्होंने कि काम कर रही हैं तो उन्होंने मुझे ज्वाइन किया और उन्हें देखे कुछ और लोगों ने ज्वाइन किया, एंड वी वर एबल टू क्लीन दैट गार्डन विद इन एन आवर।
1: ये लोग जुड़ते हैं, तो ये बड़ी थिन लाइन है कि एक शो ऑफ है, एक ये कि इन्फ्लुएंस हो जाता है कोई बंदा, तो बड़ी थिन लाइन है, हम पता नहीं कैसे इसको लिया जाए,
2: बट आई थिंक करते रहना चाहिए,
1: है ना,
2: काम करना चाहिए। वैसे तो ये कहते हैं कि अल्लाह ऐसे कीजिए कि लोगों को पता ना चले, मतलब एक हाथ से आप दे रहे हैं, हाँ, कि आपके दूसरे हाथ को भी पता ना चले, लेकिन फिर भी अगर आपकी नियत ये है कि मेरे एक करने से नहीं हो पाएगा ये काम और भी बहुत सारे लोग चाहिए यहाँ पर, सो फॉर दैट आप दिखावा नहीं, मेरा मतलब है आप बता सकते हैं
1: सोशल मीडिया पे
2: कि मैं ऐसा कर रही हूँ, एंड आई नीड सम मोर हैंड्स जो जुड़े।
1: सही, तो भाई मुझे खैर ये आपका भी नजरिया होगा, अगर ऐसा है कि लोग शो ऑफ कर रहे तो ऑब्वियसली ये गलत है, नियत पर भी काफी दारमदार है।
0: नियत देखिए, अंदर इंसान के दिल में क्या है वो तो जो कर रहा है वही जानता है, लेकिन बहुत से ऐसे वीडियोज में देखता हूँ कि उनको सामने ला के कहा जाता है मैंने इनको ये मदद किया ऐसा किया, और वो बेचारे को वो शर्म से ही उसका चेहरा मालूम पड़ रहा होता है कि वो शर्म से कितना शर्मिंदा हो रहा है।
2: ये तो बहुत ही गलत है, ये तो बहुत ही किसी को इंसल्ट करने जैसा है कि आप उसकी मदद कर रहे हैं फिर आप उसको इंसल्ट कर रहे हैं क्या। नहीं, ये आपने जो बात कही बहुत अच्छा पॉइंट है, और इस चीज़ के साथ मैं पूरी तरह से इत्तेफाक रखती हूँ कि आप जबरदस्ती उनके वीडियोस ना बना के बताइए मैंने आपको ये कैसा लग रहा है, कैसा लग रहा है,
1: ये तो
2: रबिश,
1: ये तो गलत है।
2: मतलब वो अगला आदमी अजीब सा शर्मिंदा सा हो रहा है कि मैं क्या बोलूँ, कैसा लग रहा है, क्या नहीं बोलूँ। ठीक है, आप कर रहे हैं
0: और कुर्बानी में तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे घर पे यही है, शुरू से मैं देखते आ रहा हूँ बचपन से, 3 इस पे लगते हैं, एक अपना घर के लिए और एक जो जरूरतमंद है उनके लिए और रिश्तेदारों में। तो ये तो अल्हम्दुलिल्लाह ये साल भी

0: सही हुआ और हमेशा इंशाल्लाह ऐसे ही चलता रहेगा।
1: सही।
2: और ये अमल हमें और आपको ये याद दिलाता है कि हमारी खुशियां तब तक मुकम्मल नहीं होती जब दूसरों के साथ हम उन्हें शेयर ना कर लें, और खास करके ऐसे लोगों के साथ जो बेचारे महरूम हैं चीजों से। तो ये निज़ाम जो है अल्लाह ताला ने जो बात रखी है ईद उल अदा के जरिए जो पैगाम हमें और आपको मिल रहा है वो हमें और आपको ये भी सिखा रहा है कि सोसाइटी में किस तरह से बराबरी मोहब्बत और केयर का जज्बा हमें पैदा करना है ना, इसको ख़त्म नहीं करना है। उसके लिए कैसे हमें काम करना है, क्या स्ट्रैटेजीज हो सकती हैं वो सोचिए। अब देखिए यहाँ पे मैं कहती हूँ कि हर आदमी पैसे से मदद नहीं कर सकता, चीज़ों से नहीं कर सकता, या मटेरियल थिंग्स से ही आप नहीं कर सकते, आप इमोशनली भी तो किसी की हेल्प कर सकते। फॉर एग्जांपल कितने भाई बहन हमारे ऐसे यहाँ पर हैं जो अपनी फैमिली से दूर हैं, है ना, तो अब वो अकेले हैं, ईद में वो बेचारे अकेले क्या करेंगे। आपने सोचा कि चलो मैं कुछ बना रहा हूँ और मेरा दोस्त है वो भी कुछ बना लाएगा और हम चार पांच मिलके साथ में ईद स्पेंड कर लेंगे, अपना टाइम दे रहे हैं।
1: सही।
2: ये कितना बड़ा अमल है, ये कितना आप अच्छा है, आप अपना टाइम शेयर कर रहे हैं उनके साथ। दिस इज ह्यूमैनिटी, दिस इज कंपैशन, है ना।
0: जी जी जी
2: बिल्कुल।
1: इतना तो नहीं समझाना चाहिए था आपको। ये तो ऐसा लग रहा है कि मेरे ही ऊपर मेरी गलती है क्या।
0: नहीं नहीं आप मुझे नहीं समझा रहे, एक्चुअली मेरे साथ हजारों लोग
1: सुन रहे हैं। एक्चुअली ये हम जनरल बात कर रहे थे, हम तो किसी कह नहीं रहे थे,
2: बस हमारे ज़हन में आया कि हाँ ये भी एक पॉइंट हो सकता है तो बस ऐड कर दिया। पर चलिए थैंक यू सो मच,
0: बहुत अच्छी बात है कि आपने बहुत
2: जी जी शुक्रिया।
1: लेकिन आपने बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा उठाया ये वाला कि सोशल मीडिया वाला, एक्चुअली में लोग ये काम करते हैं,
2: दैट्स ट्रू। और ये वाली बात तो बिल्कुल मुझे लगी कि जबरदस्ती उनसे कहते हैं कि आप बोलिए, हमें आपको नहीं, कैसा लग रहा है, कैसा लग रहा है, अजीब शर्मिंदा है बंगला बंदा।
1: बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच कॉल करने के लिए भाई, थैंक
2: यू। ऑल राइट फजील, एंड नाउ वी आर लाइक कनेक्टेड टू वन मोर कॉलर, एक और हमारे साथ जुड़ गए। हेलो
1: हेलो हेलो हेलो हेलो
2: ओके हेलो
1: अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रहा है?
3: जी मेरा नाम निसार अहमद खेत्री है।
1: निसार अहमद
3: जी।
1: जी निसार साहब फरमाइए, क्या आज के टॉपिक पर कहना चाहेंगे आप?
3: मेरा मकसद यही है कि ये जो ईद है इसमें जो हम सेलिब्रेशन करते हैं वो हम जो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो पैगंबर थे उनके बेटे के लिए जो उन्होंने कुर्बानी जो की थी और उसकी याद में ये देखें मतलब है कि कोई भी ऐसा शख्स मतलब सबसे जो अजीज चीज थी उसको कुर्बान करने के अल्लाह की राह में चला गया, तो उसी की याद के सिलसिले में जो है वो हम ये सेलिब्रेशन और ये ईद हम मनाते हैं। तो इसमें यह है कि दिखावा नहीं होना चाहिए। बहुत सारे लोग जो होते हैं वो हमारे मुल्कों में तो ये होता है कि जानवर खरीदते हैं फिर वो गलियों में फिराते हैं और जो है वो इतना कुछ करते हैं जो कि सही नहीं है, लेकिन चूंकि
1: ये भी बात बिल्कुल सही,
3: बहुत सारे लोग होते हैं बेचारे वो उसको खरीद नहीं सकते और बस बताना होता है कि जी हमने महंगे से महंगा जानवर खरीदा है।
1: हाँ ये भी तो बड़ा चलता है, महंगा वाला खरीदा है, इतने का खरीदा है, ये भी तो बहुत चलता है कि हमारा वाला बड़ा है, हमने दो खरीदे हैं, हमने तीन खरीदे हैं, बातों बातों में बताना।
3: इस किस्म की चीजें जो है ये नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये आप अल्लाह की राय के लिए कर रहे हो, ये नहीं कि आप दुनिया को बताने के लिए कर रहे हो।
1: सही।
3: तो फिर वो मकसद फेल हो जाता है जो कि इसका नाम के जिसके लिए ये जो सिलसिला है जो हम कहते हैं।
1: सही।
2: सही, बहुत ही सही बात कही आपने,
1: बहुत ही उम्दा, बहुत बहुत शुक्रिया भाई। मुझे लगता है इस पर तो सारी बातें कवर कर ही ली, और कुछ बताने के लिए जरूरत तो है नहीं, लेकिन ये वाला जो टॉपिक है बिल्कुल जायज़ है। मुझे याद है कि मेरे खुद ऐसे दोस्त हैं जो ये काम करते हैं नाजिया, और वो बताते रहते हैं देखो मैंने इतने का ख़रीदा, मैं यहाँ पर गया और वहाँ हमने दो ख़रीदे, हमने इतने का ख़रीदा, हमने 75,000 का ख़रीदा, हमने 1,00,000 का ख़रीदा। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा चलती हैं, और ख़ास तौर पर ये बड़े शहरों में बहुत ज़्यादा हो रहा है, छोटे में तो फिर भी इतना नहीं होता, लेकिन बड़े शहरों में बहुत ज़्यादा होता है।
2: ये तो सरासर दिखावा है आपने भाई अपने, और ये चीज़ आपके और अल्लाह के बीच होनी चाहिए।
1: सही।
2: इसमें दिखा के वावाई लूटने जैसा क्या है? हाँ। क्या है क्या? या कुछ लोग कहते हैं देखिए हम जो है ना सस्ते बकरे नहीं लेते, हाँ। हमेशा महंगे लेते हैं।
1: हाँ,
2: ये हमारा रहता है कि भी ज्यादा गोश्त। हाँ। भाई आप बता क्यों रहे हो? हो सकता है अगले की बेचारे की नहीं हैसियत हो बहुत महंगा खरीदने की,
1: तो ये शो ऑफ करके आपको क्या हासिल हो रहा है?
2: हाँ क्या आ रहा है?
1: ओके बहुत बहुत शुक्रिया भाई कॉल करने के लिए,
2: थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल,
3: शुक्रिया,
2: अल्लाह हाफिज़। एंड आई थिंक अब छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं,
1: एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और उसके बाद हम वापस आपसे मिलेंगे और करेंगे मजीद बातचीत। FM 107 दिल से देसी।
4: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें।

राब्ता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 448888806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।

0: ईद का जश्न ना ऐसा होना चाहिए कि दावत और लोग दोनों की कमी ना हो, तभी तो होता है हाउस फुल। अब दस्तरखान पे महफिल और किस्से और साथ में पकवान, ओए होए, यही तो बात है, यही तो है हाउसफुल। तो किस्से वाला जो पार्ट है ना, वो आप हमसे शेयर करें, बिकॉज यू आर वेलकम इन आर हाउसफुल ईद। ईद का खास प्रोग्राम ईद के चारों दिन शाम 5 बजे से मेरे यानी दोहा वाले कबीर के साथ जरूर सुनिए हाउसफुल ईद सिर्फ FM 107 पर दिल से देसी।
1: सलाम हो इब्राहिम अलैहि सलाम पर, जब अल्लाह ताला ने उनके इखलास, इताद और कुर्बानी के जज्बे के बदले एक अजीम कुर्बानी अता फरमाई, जो सिर्फ एक इबादत ही नहीं बल्कि हमदर्दी, खुशियां बांटने और एक दूसरे का ख्याल रखने का खूबसूरत पैगाम बन जाती है। तलहा अशरफुज़्ज़मान से समाअत कीजिए ईद उल अधा का खुसूसी प्रोग्राम कुर्बानी और रहमत, ईद के दूसरे और चौथे दिन रात के ठीक 10 बजे सिर्फ और सिर्फ उर्दू रेडियो FM 107 पर दिल से देसी।

अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आरजे महावश FM 107 और मेरी तरफ से आप सब लोगों को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। अल्लाह ताला आपकी कुर्बानियों को कबूल फरमाए, आपकी जिंदगी को खुशियों, बरकतों और सलामती से भर दे और आपके घर को अपनी रहमतों से मुनव्वर करे। आमीन।

0: FM 107 की पूरी फैमिली की तरफ से हमारे तमाम सुनने वालों को ईद उल अदा की दिल की गहराइयों से मुबारकबाद।
1: फिलहाल 9:01 और आप सुन रहे हैं शो जश्न ईद।
2: आप सुन रहे हैं जश्न ईद विद आरजे नाजिया एंड आरजे फजील ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी।
3: राइट गाइस, वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं शो जश्न ईद। फजील और नाजिया हम दोनों आपके साथ हैं और हमारे साथ एक कॉलर भी यहाँ पर जुड़ चुके हैं, तो चलिए इनसे बात करते हैं। हेलो,
1: क्या आवाज आ रही है? हेलो
4: जी, अस्सलाम
1: वालेकुम। अस्सलाम, माशाल्लाह, एकदम आवाज में भारीपन भी है, क्लियरिटी भी है बिल्कुल। कौन बात
4: कर रहा है?
1: नईम परवेज बात कर रहा हूँ। कैसे हैं नईम भाई?
4: अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। एहसान, आप लोगों को ईद का तीसरा दिन मुबारक।
3: माशाल्लाह, आपको भी मुबारक।
1: आपकी आवाज वैसे वाली लग रही है जो फुप्पा बड़े समझदार संजीदा होते हैं ना, बैठाल बैठाल के बताते हैं वो। अच्छा, उनको हम कुछ बोल भी नहीं सकते।

0: क्योंकि वो भुप्पा है और हमारे अब्बा के लो कॉल आ गई।
1: ये वाकई भुप्पा
2: है, बिजी भी है। जाओ अभी बातें कहाँ कर रहे हो तुम।
0: हमारे अब्बा के दामाद भी हैं तो कुछ बोल नहीं सकते।
2: अरे दामाद की फिक्र करनी चाहिए।
0: भुप्पा वो वाले भुप्पा है ना जिनके लिए जैसे ट्रेन से अगर आ रहे हो और उनका सामान तुम नहीं उठाकर लेकर आ रहे हो, वो खुद ही उठाकर लेकर आए,
1: बस गए
0: तो वो गुस्सा कर जाते हैं।
2: अरे मेरे घर में इज्जत कहाँ है।
0: ये वाला है।
1: तो ये बताइए आप हैं भुप्पा नहीं है उस तरह के जैसा डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दिया फजील ने?
3: तकरीबन पता नहीं इन्होंने कैसे मतलब पहचान लिया, कैसे
1: मतलब
3: लिया।
1: अरे
0: तो आप भी गुस्सा जाते हैं अगर आपका कोई बैग उठा के ना लाए कहीं, आप अगर मेहमान नवाजी में जा रहे हैं और उसने आपकी फिक्र नहीं करी, आपके नाश्ते में अच्छे सामान नहीं रखे, पराठे नहीं रखे, अरे अंडा अंडा ऐसी फ्राई अंडा तुम नहीं, तो तुम्हें नहीं पता कि मैं तला हुआ अंडा ऑमलेट खाता हूँ,
1: ऑमलेट के साथ दो बॉयल अलग खाता
0: हूँ। फिर एक दिन ऐसा आता है कि अंडे खाते सही में।
3: बिल्कुल सही कहा।
0: कैसे हैं नईम साहब, आप सुनाएं ईद कैसी चल रही है?
3: अच्छी गुजर रही है माशाल्लाह, मौसम बड़ा प्यारा है तो ईद एंजॉय कर रहे हैं मौसम।
1: चलिए ये अच्छी बात है कि मौसम जो है वो भरपूर तरीके से हमारा आपका साथ दे रहा है। अच्छा आज का हमारा सवाल जो है वो है कम्पैशन और ह्यूमैनिटी, यानी रहम दिल होना या इंसानियत, इसको किस तरह से आप ईद उल अधा के साथ जोड़ कर देखते हैं?
3: भाई ये तो देखे ना, कुर्बानी का जो असल पैगाम है वो सिर्फ जानवर जिबा करना ही नहीं बल्कि इसी में जो है इशार मोहब्बत है, हमदर्दी है, दूसरों के लिए कुर्बानी देने का जज्बा पैदा करना है। ये सारी चीजें हमें कंपैशनेट और ह्यूमैनिटी के साथ वो मिलाती हैं। कुर्बानी का असल मकसद ही ये है तो ये आप इनको अलग नहीं कर सकते ना।
0: सही
3: तो मुख्तसरन तो यही चीज है कि हाँ बिल्कुल, क्योंकि हम

0: बिल्कुल यही है। और हमें वो अपनी जो जो क्या कहते हैं कि नाराजगियां हैं इन चीजों से, मतलब आगे बढ़ के जो है ना वो मतलब है।
1: अच्छा ये बताइए, कभी ऐसा हुआ कि कोई रिश्तेदार ऐसे हैं जिनसे आप खफा हैं और आपने इस ईद जो है वो अपनी नाराजगी दूर कर ली और आप उनसे जो है वो खुद बकायदा आपने उन्हें कॉल की, मैसेज किया, बात की, समथिंग लाइक दैट या नहीं?
0: बेशक बेशक। अच्छा। सही कह रही हैं आप, मैंने किया, बिल्कुल किया। कुछ हैं जो नाराज हैं उनको मैंने अपनी तरफ से पहल की, मैंने खुद कॉल की उन्हें और मैसेज भी किया उनको, वो भी किया गया बिल्कुल।
1: चलिए
0: भले जो भी हो, जो भी रिस्पांस हो, लेकिन मेरी तरफ से जो है ना वो कोई कमी नहीं रही।
1: सही, वेरी नाइस,
0: जज़ाकअल्लाह।
1: चलिए थैंक यू सो मच नईम जी, थैंक यू फॉर योर कॉल, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और हम उम्मीद कर रहे हैं कि जैसे फूफा कहा गया आप ऐसे हैं नहीं, होना नहीं चाहिए आपको।
2: नहीं नहीं बिल्कुल, तो जिस तरह से ये हंस रहे हैं, जिस तरह से अच्छे उर्दू का महदूद जैसे लफ्जों का इस्तेमाल किया, माशाल्लाह मुझे नहीं लगता कि ये वैसे होंगे उर्दू में। हाँ ये है कि सरकास्टिक होने के बाद भी कितना प्यारा लगता है कि तुम्हें एक नंबर की बेगैरती नहीं है उसमें भी लगता कि अरे बेगैरती कोई अच्छी बात होगी मेरा ख्याल
1: तो।
2: कि नहीं पापा, हाँ नहीं पापा ऐसी बात नहीं, आप तो हमारे अजीज है। नहीं नहीं तुम लोगों को जरा भी इस बात का इल्म नहीं है कि मैं जो हूँ कि सफर से आया हूँ, माशाल्लाह ऐसे सफर अफर लफ्ज इस्तेमाल करो ना, कि आपके घर मेहमान नवाजी के लिए कोई हमारे इस्तकबालियत के लिए आए नहीं। भुपा जान, भुपा जान, माशाल्लाह आइए आइए, आप वो फिर सर पर उठाते
1: हैं। आपका ही इंतजार नहीं था,
2: आपका इंतजार ही था, कहीं में ना लग गया
1: गलती से।
0: अरे अरे आप लोगों ने तो जो ईद की खुशियां दोबारा कर दी,
2: माशाल्लाह
0: मजा आ गया आपके साथ गुफ्तगु का, मजा आ गया
2: माशाल्लाह। बस यही तो हमारी खुशी है कि आप लोगों के चेहरे में, हमारी ये नहीं है कि आप खुलकर ऐसे, बस अगर अच्छे थोड़ा सा स्माइल भी दे दिया ना आपने तो बस हमारा काम पूरा हो गया, हमारी सैलरी मुकम्मल, हमने
1: पूरी मिल गई बिना कटे,
2: नहीं हमने
1: हलाल कर ली,
2: हलाल कर ली। हाँ ये नाजिया की उर्दू अच्छी है,
0: माशाल्लाह भाई वो तो सारी बात है।
2: सही है, चले
0: अलाहाबाद से है ना तो उनकी तो
2: माशाल्लाह।
0: अलीगढ़ से
2: दोनों जगह एक ही है वैसे, बस अलीगढ़ में बिरयानी नहीं मिलती इतना समझिए, अच्छी बिरयानी नहीं मिलती ये मान सकता हूँ।
1: नहीं नहीं क्यों नहीं मिलती, बहुत अच्छी बिरयानी
2: हैदराबाद जैसी।
1: ये
2: खुश रहने वाले मामू है
3: आपके साथ मुबारक फजील भाई,
2: आपको भी ईद मुबारक मेरा भाई। ये वाले मामू है जो हंस हंस के पूरी जायदाद ले लेते हैं बहन की, और बहन फिर भी मानती बहुत है कि अरे मेरा लाडला भाई है छोटा।
1: और ये वाकई लाडले, कई बहने हैं बताया है शहजादा जी ने, माशाल्लाह इकलौते भाई हैं, है ना।
3: अच्छा, और एक आज का ईद का तीसरा दिन है तो ईद मुबारक, बातचीत मुबारक, आज की तिवासी ईद मुबारक, और कल चौवासी हो जाएगी।
1: आज की तिवासी ईद मुबारक, कल चौवासी हो जाएगी, वाह भाई वाह। आपकी ईद तो क्रिकेट ग्राउंड में ही हुई होगी मेरा ऐसा ख्याल है।
3: आपने तो मुंह की बात
1: छीन ली।
3: हाँ क्योंकि ईद के दिन ये ना टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया था कंपनी में, तो ऑर्गेनाइजिंग में तो मेरा नाम रहता ही है ना, तो हमने जब ईद की नमाज पढ़ करे ना सीधा उसके बाद ग्राउंड पर गए ना, तो हमारा जो क्रिकेट का राउंड था तो वो पहले कंप्लीट कर लिया हम लोग 9 बजे तक, क्योंकि अच्छा। गर्मी है। उसके बाद शाम से फुटबॉल और वॉलीबॉल का था, उनका कराना था, तो ये सब होके प्राइज विराइज डिस्ट्रीब्यूट करके हम लोग 9:30 बजे रात को फ्री है, तो कोई प्रोग्राम मैं अटेंड नहीं कर सकता ईद के दिन, बिल्कुल नहीं। उसके दिन बासी के दिन किया, आज के दिन किया, और आज के दिन से कर रहा हूँ, मतलब और सर्वो बाहर के। लेकिन नॉकआउट मैच में पहले दिन ईद में हम लोग ने ना 7 कैच छोड़े हैं, हमारी टीम के जो प्लेयर है ना महान तड़ेले एक नंबर के, 7 कैच है, 7 कैचेस
1: छोड़े बताओ।
3: एक भाई ने तो 3 छोड़ा, बोलता सूरज आ गया था। अबे मैं बोला इसकी उसने तेरे पास जाके बैठ उधर एक्स्ट्रा में इधर उधर किया,
1: ऐसा तो नहीं आप कूद पड़ेगा ये कैच तो ये नहीं ले पाएगा मैं ही लपक लूं।
3: अरे पता बाउंड्री लाइन पे मैं इसके डर में था, बाउंड्री अगर बचाऊं और ऊपर से मतलब विकेट भी है और ये नजदीक का, और उसकी किस्मत ऐसी कि उस 3-3 कैच उसी के पास आ रहे
2: हैं। हम मान गए आपने सेलिब्रेट।

0: किया है
1: अभी हमारे शो के मुद्दे पर नहीं आ रहे हैं अभी तक, मुझे लगा कि
0: यही से कंपैशन को जोड़ेंगे।
1: अच्छा जोड़ेंगे,
0: इंसानियत तो कंपैशन यही है, दिखाया कि तुम बैठ जाओ, बहुत हो गया तुमने, कैसे इतने।
1: ठीक है भाई, ये जारी रखे भाई, जारी रखे।
0: शहजादा जी, आज हम बात कर रहे हैं रहम दिल होना, इंसानियत दिखाना, ईद उल अदा, हमें ये दोनों चीजें कैसे सिखाता है। अब आपने टूर्नामेंट के, आपको कितना गुस्सा आया, आपने उस जिसने कैच छोड़ा, आपने कहा अरे तुम जाके बैठो, तुमसे नहीं होगा।
2: ईद उल अदा का तो ऐसा है कि ये निहायत ही खुलूस और मोहब्बत का एक, ये ऐसा मतलब अल्लाह ताला ने एक तोहफा दिया है, एक नियामत बोलो इसको। हाँ। कि एक तो कुर्बानी का मतलब ये तो नहीं का कुर्बानी की है कि मैंने अपने अपना रान रख लिया, शोल्डर रख लिया, ये रख लिया, वो रख लिया।
1: मैं ऐसे कई लोगों को जानते रख लेते हैं,
0: अच्छी चीजें सब रख ली।
2: लेकिन जो डिस्ट्रीब्यूटिंग का है ना, जो डिस्ट्रीब्यूटिंग का है, तो जो जहाँ डिस्ट्रीब्यूटिंग होना चाहिए ना, अभी हमारे मोहल्ले में तो ऐसी हुआ, मेरे घर के पास में जिसके कुर्बानी भी घर में, उनको गोश्त नहीं दिए, जिनकी यहाँ नहीं हुई है तो वहाँ पर मतलब बांटा गया, इस तरह से हुआ हमारे मोहल्ले में इस तरह में। तो बोले जिसके यहाँ वहाँ हुआ है तो बोले क्या देने का अदला बदली वाला, अरे जिसके यहाँ नहीं हुआ तो उनको तो दो ना, वो बेचारे हाथ में, और वो बोल तो नहीं सकता बेचारा शर्मिंदगी के बारे में, लेकिन ऐसे ढूंढ उनके। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं अगर अपनी बात करूँ ना पर्सनली यहाँ दोहा कतर में, तो मेरा रहा एक अपनी खुशी है, मेरी एक डेली निहायत ही मतलब एक ऐसी खुशी होती है ना कि मैं होटल में खाना खाने बैठता हूँ ना, तो मेरे अगर कोई खाना खा रहा है अनजान, कोई भी अनजान, तो मैं देखता हूँ तो वो बेचारे ने अगर उसने एकदम स्मॉल उसने ऑर्डर किया है ना, जैसे यहाँ पर तो अल्हम्दुलिल्लाह अलतिया में ऐसे भी होटल है ना कि 3 रियाल में चने की दाल, 1 रियाल में रोटी मिलती है, यानी 4 रियाल में। तो मैं क्या करता हूँ, देख लेता हूँ ना, तो मैं क्या करता हूँ, उठ के ना पहला बिल है ना उसका पे करता हूँ मेरे साथ में।
1: अच्छा, ये कंपैशन माशाल्लाह, क्या बात है। आपने इतनी देर शुरुआत आपने क्रिकेट से करी है और इतनी देर मतलब
0: रेस्टोरेंट ले गए।
1: हाँ, हमें बहुत दौड़ाया बॉल के पीछे इन्होंने, और बाउंड्री से जैसे हमने, हाँ बाउंड्री जैसे हमने बचाई, उनने तब इतनी देर में 5 रन ले लिया, और अब कह रहे हैं कि हमने फिर जो है रेस्टोरेंट में किसी का बिल दिया। अरे मेरा भाई, फिर आपने क्रिकेट से क्यों शुरू किया था?
2: वो बिल्कुल एक एक मेरा जो
1: ऐसा मुझे लग रहा है कि ऐसा दिन भर मौका नहीं मिलता है कि बात करना है, और आज मौका लग गया, कॉल लग गई है, आज जो है मामू का फर्ज निभाएंगे।
2: जी, सारी सारी बिल्कुल बातें, तो ये एक बड़ा है ना मतलब।
1: अच्छा, अभी भी
0: मेरा भाई, ये तो टैलेंट है।
1: अरे अरे रुकिए जरा, सबर कीजिए।
2: जी,
1: मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि अभी तक जैसे आपने इतनी सारी बातें बताई, इसको अगर हम छोटा करके सुनना चाहें तो कैसे सुन सकते हैं, क्या क्या कॉल करें
2: इसपे? एक कॉल ये करे कि बस इतना छोटा सा एकदम नॉर्मली है कि अगर आप खड़े हैं किसी मार्केट में या कहीं, मेरा अपना एक्सपीरियंस, मेरा अपना जजमेंट है, या आप कुछ फूड खरीद रहे हो, कुछ खाने की मतलब स्नैक्स कुछ खरीद रहे हो, और अगर बाजू में अगर कोई आया और उसने रेट पूछा, वो बोला यार इतने का, तो वो मुड़ गया, तो उसको रुका दे, वो बंदे को रुका दे, वो बंदे को रुका के बोले भाई ले ले, तू ले ले क्या चाहिए ले ले, और आपने पे कर दिया, ये मेरी दिली खुशी भी होती है, बड़ा अच्छा लगता है मेरे को ऐसा।
0: भाई तो ये ज्वेलरी शॉप पे मैं पूछती हूँ, फिर मैं बढ़ जाती हूँ, कोई पीछे खड़ा हो,
1: फिर नाजिया वो बहन बनेंगी जिनके छोटे भाई हो बड़े भाई हो, दोनों बहुत चिलते हैं इनसे फिर।
2: और बिल्कुल मेरा तो कई दफा में ना शेयरिंग भी हुआ नाजिया में, इनको भी पता है, सबको पता है कि ये फूड वगैरह जो वेस्टेड होता है ना, परिंदों को डालना, और डेजर्ट एरिया में जाके कर जाता था पहले रूट वहाँ था, तो खुबूक जमा करके ना एनिमल्स को डालना, बकरे को डालना, ऊँटों को डालना।
1: ये अब आए मुद्दे पे, अब लगा आपका गाढ़ा मामला, ये लग रहा है कि हाँ सही है मामू,
0: इंसान के साथ ही नहीं जानवरों एनवायरमेंट का भी ख्याल रखना है,
1: और दूर जाके मतलब शहर के जानवरों के बारे में सब ख्याल रखते भाई जो है वो रेगिस्तान, ये वाला मामला
0: बहुत अच्छे।
1: अब मुझे लगी आपकी बात में ऐसी भारी बन लगा है 6 किलो वाला, ये आपने डायरेक्ट मार दिया अट्ठा मेरा भाई, बहुत ही उम्दा, 9 बॉल पे छक्का, 7 रन आ गए।
2: एक जिस्मानी रूहानी मतलब एक ऐसा मतलब शौक है ना, वो पता नहीं कब पूरा होगा, उसके बारे में पता है यहाँ पर डिस्कशन हो गई थी हमारे प्लांट में, क्या सलीम भाई तुमको तो बहुत क्रिकेट का,
1: दूसरों का टाइम जा रहा है, फिर ये वाली बात अगर करेंगे तो फिर हमें कोई प्रॉब्लम नहीं वैसे,
2: बस बस खत्म पे है। तो उसने खाली पूछा कि भाई तुमको तो बहुत शौक है, मैं बोला बताओ कितना शौक है, वो बोलता बताओ कितना शौक है, मैं बोला कभी मैं दुनिया से उधर गया और मेरी अर्थी जाती रही, किसी ने मेरे कान में आके बोला सलीम उठ मैच है तो मैं उठ के खड़े हो जाऊंगा, बस घूम गया।

0: तो इतना हमारे को जी,
1: इनका प्यार है इस गेम, इस उसके लिए,
2: अच्छा
1: स्पोर्ट के लिए बड़ी बात है। चलिए थैंक यू शहजादा जी, थैंक यू सो मच।
0: स्प्राइट यस, भले स्प्राइट ना पियो
2: तो दोस्तों 9:15 है, इसी कॉल के बाद हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, है ना, थोड़ा हमें राहत चाहिए अब। हाँ, और हम भी थोड़ा डिफेंस कर लें, हमारे जो मामू थे, मतलब हमारे जो भाई थे, इनने अच्छी बातें बताई। इन सब में एक जो सबसे भारी बात, सबसे अच्छी बात, कि दूर जाकर भी खाना वगैरह खिलाते, जैसे आपको जानवरों को, ऐसे आपको पहले बता चुके, ये वाली बात हमें नहीं पता थी भाई। तो फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, और इस काम को भी हमें करते रहना चाहिए। शहर के जानवरों के बारे में तो ख्याल रख लेते हैं, लेकिन दूर के जानवरों के बारे में ख्याल नहीं रख पाते। ये मुझे लगता है कि मेरे लाइफ में एक एडिशन और हो गया है, कि अगर हम यू नो कहीं और जाकर भी चीज़ों का ख्याल रख पाएं। तो सुनते रहे FM 107, एक छोटा सा ब्रेक, दिल से देसी।

0: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM107 कतर। दिल से देसी।
1: This is something

0: आप सुन रहे हैं जश्न ईद विद आरजे नाजिया एंड आरजे फजील ओनली ऑन एफएम 107 दिल से देसी।
1: Right guys, welcome back. आप सुन रहे हैं शो जश्न ईद फजील और नाजिया, हम दोनों आपके साथ हैं 9:27 ऑन द क्लॉक। और आज जिस टॉपिक पे बात हो रही है बहुत ही इंटरेस्टिंग है। हम आपसे जानने की कोशिश कर रहे हैं कि ईद उल अदा हमें और आपको किस तरह से कंपैशन और ह्यूमैनिटी, इसका जो लेसन है वो सिखाता है, किस तरह से आप इन दोनों चीज़ों को ईद उल अदा के साथ जोड़ते हैं। देखिए, एक बहुत बड़ी चीज़ फजील मैं ये कहती हूँ कि लोग कह रहे हैं कि भाई कुर्बानी का गोश्त है, हम ज़रूरतमंदों में जो है वो तकसीम कर देते हैं। बस हमारा फ़र्ज़ इतना ही नहीं है।
2: सही।
1: हमारा फर्ज इसके आगे, क्या उनके पास मसाले हैं, तेल है, उनके पास गैस है, क्या उनके पास और रिसोर्सेज हैं उस गोश्त को बनाने के लिए।
2: हाँ।
1: मतलब हम इतने इन्वॉल्व, इस हद तक इन्वॉल्व हो पाते हैं कि नहीं हो पाते?
2: यहाँ तक तो नहीं पहुंच पाते, ऑब्वियसली
1: नहीं पहुंचते। एटलीस्ट
2: हाँ, हाँ।
1: मैं कहती हूँ दो घर पकड़ लीजिए, सब तो नहीं कर सकते।
2: हाँ।
1: बहुत मुश्किल है, इतने
2: हाँ।
1: लोगों को देखना जानना परखना। हर इंसान दो दो घर पकड़ ले, जिसकी इस्तात है, जिसकी है कैपेसिटी कि वो कर सकता है। क्या उनके घर राशन, बेसिक राशन नहीं दिया जा सकता, आसानी से पहुंचाया जा सकता है? ये उनकी
2: Exactly. अच्छा, आप जब ये बात कर रही है ना नाजिया, मुझे कल बात एक और याद आई, वो यहाँ पर भी आ चुके हैं, माज भाई उनका नाम है। और एक बार ना उनसे जब बात हो रही थी तो वो शायद किसी ग्रुप में तो कहीं कनेक्टेड थे, तो उन्होंने शायद ये बात कही थी कि बहुत अच्छी चीज थी कि उन्होंने ये कहा था कि आप जब मदद करने आ रहे हैं तो आप पैसे से मदद मत करिए, हमें आपके पैसे ही नहीं चाहिए, आप अपने पास पैसे रखिए। वो लोगों की मदद, वो ग्रुप लोगों की मदद ऐसे करना चाहता था कि ताउम्र साथ में रहे, जैसे आपके फादर साहब ने या आपकी दादी ने करी थी कि एक बच्चे को पढ़ा दिया। तो उनका यह था कि आपकी अपनी स्किल, आपका अपना एक्सपीरियंस, गल्फ में रहना, गल्फ में रहने का एक्सपीरियंस, गल्फ में काम ढूंढने का एक्सपीरियंस, इन चीजों को शेयर करो, या यू नो आप अपनी जो एक्सपीरियंस, अपनी पढ़ाई है, आप अपना हुनर है, आप अपनी स्किल अगर किसी को दे सकते हैं तो वो करो। किसी को खाना देना या किसी के लिए कुछ पुख्ता वक्त के लिए, कुछ वक्त के लिए मदद कर देना, थोड़े बहुत हेल्प कर देना, मुझे लगता है और बहुत सही बात भी है ये कि आपने अगर किसी की मदद करनी है, अगर हम या नाजिया मेरी मदद कर दे या मैं नाजिया की मदद कर दूं, तो वो उस वक्त तक के लिए है, लॉन्ग टर्म के लिए नहीं। तो आप एक ऐसी स्किल दें किसी को, एक ऐसी सहूलियत दें कि वो ताउम्र उस चीज से या तो कमा सके या फिर सीख सके, तो ये भी एक तरह का कंपैशन, या कह सकते हैं ये भी एक तरह का
1: मदद करना है, ईदी है, ये भी है बिल्कुल। और बहुत सारे लोग हैं जिनके पास इतनी इल्म है, उनका गुड एक्सपीरियंस है, जो अपने तक महदूद रखे हैं। इसमें क्या जाता है कि आपने किसी को जाके छोटी अच्छी एडवाइस दे दी, कोई अच्छा मशवरा दे दिया, या उसके डॉक्यूमेंट्स फिल कर दिए, या वो बेचारा उतना पढ़ा लिखा नहीं, उसको जगह नहीं पता कहाँ का, मुझे जाके सबमिट करना, आपने उसकी हेल्प कर दी।
2: एग्जैक्टली।
1: ये बहुत
2: तो नवाबों के दौर में एक बहुत ही खास चीजों को ख्याल में रखा जाता था कि जब जैसे निहारी वगैरह है या फिर जो ऐसे खाने हैं जो बहुत ज्यादा लोगों को नहीं पता, नवाबों के लिए खाना वो बनता था, तो होता यह था कि जब जब बावर्ची की तबीयत खराब होने लगे या बावर्ची बूढ़ा होने लगे, क्योंकि मेन जो खाना है वो उन बावर्चियों को आता है, एक या दो बावर्ची को आता है, तो अब क्योंकि ये लेगेसी ना खत्म हो जाए या ये खाना जो है इसका टेस्ट ना चला जाए, क्योंकि सिर्फ उस बावर्ची के पास वो टेस्ट है ना, तो और लोगों को शामिल किया जाता और नए जो बावर्ची बन रहे हैं उन बावर्ची को लाया जाता था, उनको बताया जाता था कि ये खाना कैसे बनता है, कितनी देर गोश्त गलाना है, कितना उसमें मसाला डालना है, खमीरा रोटी के लिए कितना या फिर कुलचे के लिए कितना उठना है। तो ये छोटी छोटी बारीक चीज है, वो बावर्ची अपनी सीखी हुई चीज आगे ट्रांसफर करते थे, ताकि ये अगर इनको खुदा ना खास्ता अगर कुछ हो जाए तो हमारे पास या नवाबों के लिए उस खाने का टेस्ट जो है वो बरकरार
1: रहे।
2: तो ये बड़ा जरूरी है कि अगर आपके पास कोई हुनर है, जैसे आप भी कई ये चीज करते हो ना, इनहेरिट करते होंगे, हमारी जमीनें हमारे बच्चों को हम देते हैं, हमारी कोई स्किल हम अपने बच्चों को देते हैं, तो वैसे ही दुनिया के लिए भी आपको करना चाहिए, ताकि ये जरूरी है ये हो कि आप दूसरों के लिए कुछ बेहतर कर रहे हैं,
1: बेहतर कर सके। बहुत ही अच्छी बात की यहाँ पे फजील ने। और एक कॉलर इस वक्त हमारे साथ कनेक्ट हो गए।
2: अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कौन है हमारे साथ?
2: आपकी आवाज बहुत धीमे आ रही है, थोड़ा सा तेज बोले।
3: मैं निम्रा।
2: निम्रा, ओके।
1: निम्रा,
3: निम्रा फातिमा।
1: निम्रा फातिमा, ओके। सो कैसी है निम्रा और कैसी रही आपकी ईद, कैसी जा रही है?
3: सबको मेरी तरफ से मुबारक।
1: खैर मुबारक जी, खैर मुबारक। तो अभी तक कैसी रही आपकी ईद?
3: शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छा है। यहीं पे हमने
2: कुर्बानी
3: दिया था
2: तो
1: अच्छा,
3: काफी
1: बिजी
3: थे दो दिन से
1: हम लोग। दो दिन बिजी रही।
2: तो क्या आपने आपने टॉपिक सुना आज का?
3: नहीं मैंने अभी
2: ट्यून इन किया है। अच्छा, मैं यही सोच रहा हूँ कि अभी तो ये बात बता रही है, अब बोलेंगी, अब कुछ कहेंगी, मतलब ये अब बात ही नहीं खत्म हो रही है। ओके, तो हम एक बार टॉपिक,
1: बिल्कुल, आज हम पूछ ये रहे हैं कि ईद उल अधा जो है वो हमें और आपको किस तरह से इंसानियत और रहमत का एक जो गहरा पैगाम है वो देता है।
3: मैं ये बताऊंगी इस बात की, मतलब सब्र और सैक्रिफाइस, ये दो चीज का हमको ये ईद उल अज़हा का पैगाम है कि,
2: अरे इसी धीमे कर दी, छींक रहा बेचारा लड़का, अल्लाह माशाल्लाह, एसी धीमी करिए, बहुत तेज है एसी।
3: हाँ हाँ
2: है ना, हाँ,
3: ईद उल अज़हा का यही पैगाम है, देखिए हमको सैक्रिफाइस
1: और सब्र, जी जी जी,
3: दोनों भी रहने चाहिए जिंदगी में। और सबसे बड़ा पैगाम तो यही बताया था कि ईद उल अज़हा से ताल्लुक ये कि शायद वो वाला सब्र किसी के अंदर नहीं है जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम किए थे इस्माइल अलैहिस्सलाम के लिए। तो इतने टाइम बाद ये सब कुछ होने के बाद फिर अल्लाह के राह में सब चीज कर देना, तो वो वाला पेशेंस तो किसी के पास भी नहीं हो सकता मेरे हिसाब से। वो वाला सैक्रिफाइस जो था शायद कोई नहीं कर सकता, लेकिन हम अगर हमारे प्यार में कुछ है, अगर हम कुछ कर सकते हैं तो हमसे जो कुछ हो सकता है हम या किसी की मदद कर देंगे।
2: अच्छा, आपने अपनी तरफ से कभी कोई कोशिश करी है ऐसी जो मुकम्मल हो गई हो वो कोशिश और आपको खुशी हुई हो कि आपने किसी के लिए कुछ किया, कुछ भी छोटा?
3: ऐसा हो जाता है कि मतलब कोई, मतलब मैं जिसको जानती हूँ लेकिन उन्हें नहीं पता है कि वो मैं हूँ, तो पीछे की तरफ से मदद किया जाए तो वो बहुत खुशी
2: होती है। ओके,
3: उसे पता भी नहीं है कि हमने मदद की है।
2: हाँ,
3: जब वो सामने हमारे आंख मिला है या फिर हमसे मीटअप करे जब कभी भी, तो उसे फील नहीं होना कि ये बंदा मेरी मदद किया था, कभी हमसे मिलने के लिए वो फील नहीं करना कि अरे वाह ये ही बंदा था, वो मेरी मदद किया, अरे मैं इसे कैसा मिलूं या फिर मैं इसकी कैसे पैसे लौटाऊं, ये वाला उसको फीलिंग नहीं आना चाहिए। आप किसी और के जरिए से किसी और की मदद कर दें तो वो जब हमसे मिले तो बहुत अच्छे से मिले।
2: वो दूसरे वाले बंदे के लिए तो ये हो गया होगा कि कौन है वो, कौन है वो, कहां से वो आए।
3: अरे वो जो कुछ करना चाहिए ना चाहिए, भले कुछ भी करे, वो मदद हो जाए ना वो काफी है,
2: काफी है,
1: बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी सोच है, बहुत कम लोग हैं जो इस तरह की सोच रखते हैं, बट आई एम ग्लैड कि आप ऐसी सोच रखती हैं और इंशाल्लाह ये अमल जो आपने जारी रखा है इसे आप जारी रखेंगी आगे भी इंशाल्लाह।
2: इंशाल्लाह बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, और डायरेक्ट एसी से थोड़ा सा दूर कर लें।

0: क्या उम्र है, क्या नाम है उनका, लड़की है लड़का है?
1: लड़की है
0: माशाल्लाह।
1: सईबा
0: मसईबा
2: नुसईबा
1: नुसईबा
0: अच्छा नुसईबा, अरे वाह माशाल्लाह बड़ा यूनिक नाम है नुसईबा, क्या मतलब है इसका? अच्छा ओके ओके, बहुत बहुत शुक्रिया,
2: थैंक यू सो मच निमरा। और हम चाहेंगे कि लास्ट तक आप हमें जरूर सुनिए, आप इंशाल्लाह लकी रहें तो जरूर जीतेंगे गिफ्ट वाउचर मार्बल मेडिकल सेंटर की जानिब से, एंड दैट टू कथरियाल 1000 का। ओके
1: इंशाल्लाह
2: इंशाल्लाह होपफुली, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। एक और कॉलर फजीर हमारे साथ यहाँ कनेक्ट हो गए। हेलो
3: वालेकुम
0: अस्सलाम, कैसे हैं? ऐसा लग रहा है कि शादी में मिले। अस्सलाम वालेकुम, खाना खाने के बाद खुश हो जाता
2: है इंसान। जी क्या आवाज लग रही है मुझे,
3: तू कहां गया भैया? तू 6 बजे 5 बजे से हमें छोड़ के कहां पे, तेरे को मैं पकड़ लिया आज
0: अब 8 बजे से आजकल नौकरी लग गई है भाई, आप बहुत देर से आ गए, आखिरी सेकंड लास्ट डे है ये तो, आखिरी भी नहीं।
2: चलिए फिर भी आ गए
3: सर, मसले मसाइल से आज दिन को परसों कॉल किया था, मैंने कहा नाजिया बहन पता कहाँ चली गई, इसको ढूंढ के निकालेंगे, किसी न किसी प्रोग्राम में तो जरूर मिलेगी।
0: कहा है आपका कौन उधारी ली है क्या इन्होंने, इनको ढूंढना ही ढूंढना है कि नाजिया कहाँ पर चली गई, उधारी मंगवाओ इनसे वापस।
3: मैं दिल के गहराइयों से आप दोनों को ईद उल अज़हा की मुबारकी देता हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत बढ़िया ईद था और बहुत अच्छा लग रहा है अभी तक
0: माशाल्लाह। नाजिया हमें अलग से लिख कर दे रही, कह दो कि मुबारकबाद ना दे ईदी दे, अरे यही तो ईदी है कि मुबारकबाद दे रहे हैं वो नाजिया, गलत बात है।
2: अभी उधारी मैं चुकता करूं फिर ईदी में मांगू, अच्छी बात है करीम शाह जी पे बहुत लोड हो जाए।
0: वही ये कह रही कि ईदी देंगे तो उसी से उधारी दे देंगे।
2: नहीं बल्कि जो आपने सोची है देने की उसी में काट लीजिए, लेना देना मेरे को।
0: क्रिएटिव नाजिया
2: करीम शाह जी कहेंगे भैया रहने दो हम उधारी जो है वो माफी करेंगे, यही कंपैशन है हमारा,
0: ये आज ही रिच डैड पुअर डैड पढ़ के आ गई।
2: तो करीम शाह जी आज हम बात कर रहे हैं कि किस तरह से ईद उल अधा जो है वो हमें एक बहुत ही गहरा पैगाम सिखाता है इंसानियत का और हमदर्दी का, तो क्या कहना चाहेंगे?
3: जी बिल्कुल, अगर एक बात देखी जाए ना थोड़ा बहुत बंदे के अंदर सोच समझ तो माशाल्लाह सारे समझदार हैं अल्लाह ताला ने सबको, और खास करके यहाँ पर आपके पास जो कॉल करते हैं जो हम सुनते रहते हैं काफी अच्छा लोग हैं हमारे लिए, सुनने वाले भी कॉल करने वाले भी। एक एक शख्स अपने बच्चे की कुर्बानी देता है ना, ये चीज अभी वो किस हालात में होगा देखो ना, सोचो अंदाजा मारो क्यों दे रहा है वो इन दुनिया को इस अमन का पैगाम, अपने ईगो को मारना है
0: सही,
3: यानी इस चीज में एक ईगो को मारना है कि आपकी मन में किसी के लिए कभी जिंदगी में ऐसा चीज रखो ही नहीं कि कभी भी ऐसा मूड ना आए, कभी भी ऐसा हालात ना आए, चाहे वो दोस्तों के साथ हो या फैमिली के साथ हो कहीं पर भी हो कि मतलब बख्शिश करो, बख्शो लोगों को, कोई भी हो बख्श दो।
0: ये वाला बिल्कुल सही बात है, बख्शो इन अ सेंस के आप अपने दिमाग में अगर किसी के लिए कोई शख्स ऐसा है जो जिसने आपके साथ बुरा किया है तो बावजूद इसके कि आप उनको अपने दिमाग में रखे रहें उनको बख्श दो, यानी कि आप अपने दिमाग से उनको निकाल दो, ये आपके लिए भी बेहतरी है, आपके लिए जिंदगी में आसानियां हो जाएंगी, आपके टेंशन कम हो जाएंगे।
3: बिल्कुल, ये वो हसद में ये चीज आती है ना, क्योंकि ये वो दिन है आपको अल्लाह ताला एक चांस दे रहा है, भाई देखो बख्श दो इसको और आप खुद भी जवान रहोगे, वो भी जवान रहेगा, खुद भी खुश रहोगे, वो भी खुश रहेगा, और साथ में ये अमन का पैगाम है, ये वो इस्लाम का एक पहचान है कि देख हम मुसलमान लोग देखो अपने औलाद की कुर्बानी देने तक तैयार होते हैं जब बात आती है, तो ये वो चीज है, तो आप एक अपनी ईगो का एक बख्शने की मतलब वो चीज सलाहियत नहीं पैदा कर सकते अपने आप में, यही वो चीज है कि कभी भी किसी को किसी भी चीज से जज ना करें, क्योंकि अल्लाह ताला वाज़े फरमाता है कि इज्जत और जिलत देने वाला मैं हूँ। तो रसूलुल्लाह सल्लम ने क्या कहा कि ताकतवर, ये एक किस्सा आप लोगों को बिल्कुल पता है कि सबसे ताकतवर शख्स वही है जो बख्शता है लोगों को।
0: मुझे अपना एक किस्सा याद है, जब मैं और मेरा दोस्त जो है एक शादी में गए थे तो वहां पर हम दोनों खा रहे थे और उसने मेरी प्लेट से ना चिकन लेग पीस उठा लिया, तो मैंने उसे बख्शा, गुस्सा बहुत था मेरे अंदर, लेकिन फिर भी मैंने बख्श दिया कि तुमने चिकन लेग पीस उठा लिया है और मेरी मोहब्बत थी चिकन लेग पीस।

0: आपने रहम दिली दिखाई.
1: मैंने छुरी उठा ली थी नाजिया, लेकिन मैंने कहा चल भाई अब ये बात करीम भाई की भी चलो मान लो.
2: अच्छा क्या है ना सर, यहाँ पे देखो आप बकरा लेते हैं उसको काटते हैं, जब देखो आप सल्लम का जब ईद की कुर्बानी की तो उम्मे आशिया से कहा कि इसको बांटो और थोड़ा सा गोश्त रखो.
1: अरे भाई मैंने देखा है इसमें लोगों ने क्या क्या मैं कहूँ लोगों को, लोगों ने राने रख ली है, बाकी जो हल्का फुल्का सामान है वो दिया है लोगों ने भाई. वो रानी रख ले रहे हैं, शोल्डर रख ले रहे हैं, जो सबसे बेस्ट गोश्त है ना वो रखे ले रहे हैं, गर्दन रखे ले रहे हैं, निहारी के लिए कितना मस्त है वो रख लेते हैं, बाकी देते. ऐसे लोगों को बख्शे नहीं बख्शे ये भी एक मसला चल रहा होता मेरे दिमाग में.
0: तुम्हें छिछड़े दे रहे लोग.
2: अब ये हम एक
1: चर्बी वाला गोश्त दे रहे हैं भाई, और कह रहे हैं कि देखो हम तो कर ही रहे भैया, हमारा हिस्सा है, हम तो तीन लोगों का हिस्सा देते हैं.
2: ये हकीकत है यार, आप ऐसे जैसे उनके साथ बैठे हुए हैं यार, बचपन में किधर किधर गए हैं आप, वो चीजें अभी बता रहे हैं.
1: अरे मेरा भाई, हमारी अम्मी भी ये करती थी कि चर्बी वाला
0: गोश्त. करीम जी इनको सीरियस मत लिया, मजाक भी बहुत करते हैं.
2: मैं बता रहा हूँ, फजीर भाई को जानता हूँ, मेरा
0: जानता हूँ,
1: और वो अभी तक बख्शा ही है इन्होंने मुझे. लेकिन करीम भाई एक, एक एक खास कह सकते हैं जो जो हमें लोग सुन रहे हैं, मुझे लगता है उनको एक खास आप मौका दे दिया है आपने कि वो इस बात को सीखें कि वो बख्शें. ऑब्वियसली ये मजाक अपनी जगह है, लेकिन अपने दिमाग से उनको निकालें जिन्होंने आपको परेशान किया हो, आपके लिए कुछ बुराइयां की हो, वो नेगेटिविटी फैलाई हो, अगर उन्होंने आपकी अपनी जिंदगी
2: में. आप सलम का कॉल है सर, ये चीज है. देखो मैंने वो ईद की जो बात की थी कुर्बानी में, जब फिर बाद में आपने आशिया से पूछा कि गोश्त, उन्होंने कहा सब गए छोटा, तो उन्होंने कहा आपने क्या कहा उसको जवाब में कि यही जो है ना कंप्लीट बकरा बचा, यही नहीं बचा, नहीं कि जो हमने कहा है वो कुछ नहीं, चीज वही है जो लोगों को दिया. ये वो दिन है कि आपसे जो कुछ हो सकता है, ये सिर्फ नहीं है कि आपने उसको गोश्त दे दिया, आप उसको नकद पैसे भी दे सकते हैं, आप उसको साथ में चीनी हो, चाय हो, मतलब जो घर में इस्तेमाल होने वाली चीजें, ये काफी सारी चीजें आप उनको मजीद दे सकते हैं. तो अल्लाह हम सब लोगों को तौफीक दे दे, बातें बहुत बड़े हो जाएंगे. बस मैं खुद उसी टाइप का शख्स हूँ, जो कुछ करते हैं मैं बोलता हूँ जाओ भाई बख्शा है आपको, जियो मजे करो. तो यही वो चीजें अल्लाह ताला कहता है कि आप मेरे बंदे के साथ अच्छाई करोगे मैं आपके साथ करूंगा.
1: क्या बात?
2: तो जिस काम के बदले मुझे अल्लाह ही मेरा हेल्प करेगा तो मैं वहाँ कंजूस कैसे बनूं.
1: करेक्ट करेक्ट करेक्ट, क्या बात है,
0: बहुत ही अच्छी बात है.
1: बहुत शुक्रिया भाई,
2: मुझे एक बार फिर खुशी हुई आप लोगों से एक साथ दोनों बातें हुए हैं, और अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखे. हम अभी भी आपसे सीख रहे हैं, पहले भी काफी चीजें सीख चुके हैं.
1: बहुत शुक्रिया भाई करीम साहब. अब जो है हमारे शो का इख्तिताम बड़ा करीब है, लेकिन जाने से पहले आपके एक बड़ा सिंपल सा सवाल है, और आपको आज मार्बल मेडिकल सेंटर की तरफ से मौका है उन दो लोगों को जिताने का जिन्होंने हमें कॉल करी है, जिन्होंने हमें व्हाट्सएप पे जवाब दिया, और आप भी उसमें हैं. तो हम एक नंबर देंगे, ये नंबर एक से लेकर शुरू होता है और आखिर क्या है दो मिनट में हम आपको बताते हैं, और उनमें से आपको दो नंबर चुनना है, ठीक है, वो कोई भी नंबर हो सकते हैं. तो आपको एक से लेकर 65 तक कोई भी दो नंबर चुनने हैं, ठीक है,
2: एक से लेकर 65 तक.
1: हाँ, पहला नंबर और दूसरा नंबर क्या है वो बताएं.
2: ठीक है, एक से लेकर 65 तक, राइट.
1: हाँ
2: ठीक है, तो मैं जनाब 7 नंबर चुनता हूँ.
1: 7 नंबर, ओके
2: ओके, और सेकंड भी अल्लाह आपका भला करे 30 नंबर चुनता हूँ मैं.
0: 30 नंबर, ओके
1: ओके,
2: 37 और 30.
0: ठीक है,
1: ओके भाई. बस एक करेक्शन है, आपने कहा अल्लाह में क्या भला करे, भला होता है
2: अल्लाह,
1: लेकिन आपकी नियत हम समझ गए कि भला का मतलब वो बली भी होता है कहीं कहीं.
2: भला अल्लाह आपके भला करे, देखो ना ये वो लफ्ज है कि इसमें सब कुछ है.
1: और क्या, करेक्ट
0: सही बात है,
2: सब कुछ है. यानी आपने उसे कंप्लीट बता ही दिया, फिर पूछना ही नहीं पड़ता है कि जेर जबर कहाँ है, बस अल्लाह आपका भला करे, तो फिर इसमें और चाहिए क्या खुदा के बंदे. मैं हमेशा दुआओं का मोहताज होता हूँ, यकीन करो. मैं एक बार फिर एक बात बता रहा हूँ, हम लोग लकी हैं जो कतर जैसे मुल्क में है. बदकिस्मती से कुछ लोग कहते हैं कि जी हम कहाँ आए, ओ भाई जो भी मुझे सुन रहा है, आप वो लकी लोग हो जिस मिलियन और मिलियन लोगों में जितने अल्लाह ने जो लोग रखे हुए हैं, जिसको जिसको अल्लाह ताला ने टाइम पे ठंडा पानी गर्म पानी यानी हर वो चीज एसी काम रिस्क रोजी, उनमें से हम भी है. तो मैं उन सब दोस्तों से बोलता हूँ कि आप जिस कंट्री में हो अल्लाह का शुक्र अदा करो, क्योंकि मैं दुबई रह चुका हूँ, मुझे पता है कि मैं इस टाइम कहाँ रह रहा हूँ.
1: सही सही सही, बहुत

0: शुक्रिया भाई, थैंक यू सो मच,
1: थैंक यू सो मच। और फजील, क्या हम लोग एक छोटे से ब्रेक के बाद आए तब अनाउंस कर देते हैं हमारे दोनों?
0: छोटा सा ब्रेक लेंगे और उसके बाद हम आज के दो विनर्स अनाउंस करेंगे जो जीते होंगे 1000 कतरी रियाल का वाउचर। ये नाजिया के पास तो ये जवाब ऑलरेडी है, लेकिन फिर भी एक छोटा सा ब्रेक। दिल से देसी
2: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें, हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
3: लब्बैक की सदा, लब्बैक की सदा, एक रूहानी और दिल को छू लेने वाला खास प्रोग्राम है जो हज, इबादत और अल्लाह की रजा के लिए पूरी तरह अपने आप को हवाले करने के जज्बे को उजागर करता है। इस खास पेशकश में ईमान अफरोज गुफ्तगु, दिल को जगा देने वाले रूहानी पैगाम और ऐसी याद दहानियां शामिल हैं जो कुर्बानी, मोहब्बत इलाही और इत्तेहाद के असल मायने को रोशन करती हैं। ईद उल अज़हा के इस बाबरकत मौके पर सुनिए लब्बैक की सदा, लब्बैक की सदा, ईद के चौथे दिन दोपहर 1 बजे से सीन के साथ, ओनली ऑन FM 107।
4: आप सुन रहे हैं जश्न ईद विद आरजे नाजिया एंड आरजे फजील, ओनली ऑन FM 107, दिल से देसी।
0: तो दोस्तों, इस्तकबाल आप सभी का FM 107 पे, ये शो जश्न ईद, जहां पर आपको मिल रहा है मार्बल मेडिकल सेंटर की तरफ से 1000 कतरी रियाल का वाउचर। और दो नंबर बताए थे अभी करीम भाई ने, और अब अनाउंस कर देते हैं वो नाम कौन कौन से हैं। तो नाजिया, ओवर टू यू, अब विनर आपको डिक्लेयर करना।
1: बिल्कुल, हमें यहाँ पे करीम शाह जी ने दो नंबर बताए थे, 7 and 30। तो 7 नंबर पे जिनका नाम है वो है आफ्ताब आलम जी।
0: ओ,
1: क्या बात है आफ्ताब जी, मबरूक मबरूक,
0: बहुत बहुत मुबारक।
1: और नंबर 30 पे है नईम परवेज।
0: हाय हाय,
1: सो यस, आज के हमारे यानी थर्ड डे ईद का जो शो चल रहा है जश्न ईद, उसके जो विनर्स हैं वो हैं आफ्ताब आलम मबरूक एंड नईम परवेज जी।
0: बिल्कुल, तो बहुत बहुत मुबारक आप दोनों को। और ऐसे ही सुनते रहें FM 107, कॉल करते रहें, हमें मैसेज करते रहें। इंशाल्लाह कल का भी वक्त है, आप लोग जो नहीं जीत पाए वो हो सकता है कल भी जीत जाएं, कल जीत सकते हैं वो।
1: बिल्कुल,
0: सुनते रहें FM 107। और फिलहाल नाजी और फजील को दें इजाजत, दिल से देसी।

0: FM 107 की पूरी फैमिली की तरफ से हमारे तमाम सुनने वालों को ईद उल अदा की दिल की गहराइयों से मुबारकबाद। FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें,
1: आज ही राब्ता करें
0: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
2: कतर की जमीन पर दुनिया के हर कोने से आए हुए लोग, उनकी कहानियाँ, उनके जज्बात और ईद की वो यादें जो घर से दूर भी दिल के करीब है। एक खास शो जहां आपकी मुलाकात होगी उन लोगों से जो अपने मुल्क से दूर रहकर भी ईद को अपने अंदाज में महसूस करते हैं। उनकी कहानी, उनकी मुस्कुराहट और कभी कभी आंखों में आंसू। आरजे नाजिया के साथ हम लेकर आए हैं आपके लिए प्रोग्राम कतर से सलाम, ओनली ऑन FM 107। कतर से सलाम, क्योंकि दूरियां फासलों की होती हैं, दिलों की नहीं।
3: अस्सलाम वालेकुम और ईद मुबारक एवरीवन। और कतर से आपको एक प्यार भरा सलाम ऑन द शो कॉल कतर से सलाम। वेल दोस्तों, आज के इस एपिसोड में मैं बात करने वाली हूँ हमारी गेस्ट से जिनका ताल्लुक है इजिप्ट से। आज हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से इजिप्ट में ईद का माहौल रहता है, किस तरह की सेलिब्रेशंस होती हैं और क्या वो यहाँ कतर में रहते हुए ईद की जो वो वाइब है जो इजिप्ट में हुआ करती थी उसे मिस कर रही हैं, या किस तरह की सिमिलैरिटीज जो है वो यहाँ पर कतर में रहकर महसूस कर रही हैं, कौन सी डिशेज हैं जो उनकी फेवरेट हैं और किस तरह से उन्होंने इजिप्शियन ईद वाइब को यहाँ पर भी कायम दायम रखा है। तो चलिए हम अपनी गेस्ट को वेलकम कहना चाहेंगे। हमारे साथ इस खास एपिसोड पे मौजूद है हमारी गेस्ट माहा महमूद।
2: आप सुन रहे हैं प्रोग्राम कतर से सलाम विद आरजे नाजिया, ओनली ऑन FM 107, दिल से देसी।
3: ऑलराइट दोस्तों, हम वेलकम कहना चाहेंगे हमारी बहुत ही कमाल की गेस्ट माहा महमूद को ऑन FM 107। ईद मुबारक एंड वेलकम ऑन FM 107 एंड ऑन दिस एपिसोड ऑफ कतर से सलाम। हाउ यू डूइंग?
4: I'm good, alhamdulillah. How are you?
3: Alhamdulillah, I'm also good.
4: I'm good, welcome.
3: Okay, let's talk about Eid and this is a special day we are talking about. Tell me, when you think of Eid al-Adha in Egypt, okay? So, what is that one memory that instantly takes you back home?
4: Okay, first Eid Mubarak.
3: To you too.
4: When I'm thinking about Eid in Egypt, actually, I think most of the time about the night before the Eid. We are waiting for the prayer. We are waiting for the sounds of takbir. It's filling the street from every mosque. You can hear the voice. So it's the night. Actually, it's the night before and going to Salah. Going to this is the most memorable thing for us. It's so emotional and comforting about the atmosphere in Egypt there.
3: Wow, you can really feel that from your voice. It's amazing how one memory
4: yes, and
3: gives
4: and actually
3: so much emotion.
4: everyone must be dressed up for Salah. You can't just go Lala, it must be in your clothes and you must be in a very good looking.
3: Wow, nice. Okay, Maha, can you paint a picture for us? What does a typical Eid morning look like in Egypt?
4: Okay, actually it starts very early.
3: Okay.
4: Everyone gets ready in their new clothes and people head to Eid prayer together. And after prayer, you see everyone greetings and they are giving us like smiles and hugs, and even people who don't know each other, they are giving candies and balloons for the kids. And when you go home, actually it's the family gathering. Most of the time it's at the grandparents' house. Usually it happened there. Breakfast is ready and waiting and the house big.

0: You are a family person. You love those gatherings, and I'm sure you're like missing those gatherings and all. So quite often that family is coming, you know, while you are speaking also, it reflects somewhere or the other. Okay, one thing you must do every Eid there and now even in Qatar.
1: I think Adiya for my kids. And as I said, celebrating a night before Eid with new clothes, new pajamas, and also we are hearing the song after wearing the clothes. We are having like traditional songs for Eid, as I said. So we must play those songs after wearing the pajamas and celebrating like a mini celebration alone at home.
0: Wow, that's special. And that's what it keeps, you know, Eid feeling like home, no matter where you are. Well, yeah, thank you so much. Thank you for being so patient. And once again, Eid Mubarak to you too. Before we come
1: thank
0: to the closing one, what is that one message, Maha, you would like to extend to all my audience of FM 107?
1: Thank you for inviting me at first. I really enjoyed it. I really enjoyed talking to you. Talking about Egypt really in a different country, it's make me proud of my country. The message I want to give to all your listeners is love your family. Whatever what happens in this family, we are not angels. You must keep together. This is the real power of life, is being close to your family. And also be proud of your country whenever you are live, you must have be connected to this home country.
0: Yes. Beautiful message. Thank you once again, Maha, for taking out this time and talking to you.
1: Thank you. My pleasure. Thank you.
0: Pleasure. I can say that honestly, listening to you feels like, you know, celebrating Eid across two countries at once. Egypt and of course in Qatar, all in one conversation. So thanks to you. Thank you once again.
1: Thank you so much. Thank you
0: Eid Mubarak to you too, once again.
1: Eid Mubarak.
2: Aap sun rahe hain program Qatar Se Salaam. With RJ Nazia, only on FM 107, Dil Se Desi.
0: दोस्तों बहुत ही कमाल की इस खूबसूरत कन्वर्सेशन में हमने जाना हमारी गेस्ट माहा से कि किस तरह से कतर में रहकर भी वो इजिप्ट की ईद को मिस भी करती हैं, लेकिन यहाँ उन्होंने अपनी दुनिया बना रखी है अपनी फैमिली के साथ. जो ट्रेडिशंस थे जो उनके पेरेंट्स फॉलो करते थे, उन्हें वो यहाँ पर जिंदा रख रही हैं, फॉलो कर रही हैं. कहीं ना कहीं मैं कह सकती हूँ कि इस कन्वर्सेशन में हमें ईद उल अदा के हवाले से एक बहुत ही खूबसूरत और एक बहुत ही इमोशनल पैगाम भी जो है वो जानने को मिला, जहां हमारी गेस्ट ने बताया कि इजिप्ट में कितनी ज्यादा सादगी से, खूबसूरती से, फैमिली के साथ, फैमिली वैल्यूज को अहमियत देते हुए ईद सेलिब्रेट की जाती है. हमारी गेस्ट माहा ने हमें ये भी बताया कि ईद सिर्फ एक दिन का फेस्टिवल नहीं है, बल्कि एक एहसास है जो बचपन से दिल में बसा होता है. और सबसे पहली बात जो उन्होंने याद दिलाई और हमें याद आती है वो ये कि ईद की सुबह का जो मंजर है वो बड़ा कमाल का है. जल्दी उठना, नए कपड़ों की तैयारियां रात से शुरू, और फिर फैमिली के साथ ईद की नमाज के लिए जाना. जिस तरह से उन्होंने बताया कि मस्जिदों और खुली जगहों पर लोगों का जमा होना, तकरीबात की आवाज़ आना और रूहानी माहौल एक अलग ही सुकून देता है. गेस्ट ने कुर्बानी के बारे में भी डिटेल से बताया कि इजिप्ट में सिर्फ ये एक रिलीजियस रिचुअल नहीं है, बल्कि कम्युनिटी बिलोंगिंग का या कम्युनिटी बॉन्डिंग का भी एक जरिया है. लोग अपनी कुर्बानी का गोश्त सिर्फ खुद के लिए नहीं रखते, बल्कि रिलेटिव्स हैं, नेबर्स हैं और ज़रूरतमंद लोगों के साथ शेयर करते हैं. इससे ईद का असल पैगाम कुर्बानी, जेनरोसिटी और केयर सामने आता है. हर तरफ एक दूसरे के लिए खुशी और मदद का जज्बा नजर आता है. वहीं फूड का सेगमेंट भी काफी खास था, जहां गेस्ट ने ईद की ट्रेडिशनल डिशेस का भी जिक्र किया. उन्होंने बताया कि ईद के मौके पर नाम तो मुझे याद अभी, मैं एग्जैक्टली वो वर्ड तो भूल रही हूँ, बट हाँ उन्होंने बताया कि किस तरह से ईद के मौके पर जो है वो एक बहुत ही अच्छी स्पेशल डिश बनती है, जिसे ब्रेड, राइस, टमेटो की लेयर लगाना एंड देन ऑफकोर्स मीट के साथ बनाया जाता है, और ये सारी जितनी भी इजिप्शियन फैमिलीज हैं उनके घर में ये डिश तो डेफिनेटली होती ही होती है, और पूरी फैमिली जो है वो साथ में मिलकर ब्रेकफास्ट करती है, घर का टेस्ट, माँ के हाथ का खाना और ये पुरानी यादें सब एक साथ जारी रहती हैं। और आपने ये भी कहा कि ये सिर्फ और सिर्फ फूड नहीं होता बल्कि फैमिली के साथ गुजारा हुआ वक्त होता है। दिन के बाकी हिस्सों में भी फैमिलीज एक दूसरे के घर जाती हैं, एल्डर्स से जो है वो सबसे पहले मिला जाता है। फिर यहाँ पर उन्होंने ईद का भी, ईदी का भी जिक्र किया और कहा कि आज भी इस ट्रेडिशन को जिंदा रखा है इन्होंने, अपने बच्चों को ईदी देती हैं, और किस तरह से ईदी जब इन्हें मिलती थी तो वो एक्साइटमेंट, वो चार्म भी हमारी गेस्ट ने शेयर किया। बच्चे नए कपड़े पहनते हैं इस दिन, गिफ्ट्स या ईदी लेते हैं, और स्ट्रीट्स में एक बहुत ही खूबसूरत सा फेस्टिव माहौल होता है, हर तरफ जो है खुशी होती है, हर एज ग्रुप का बंदा जो है वो कनेक्टेड फील करता है। हमारी गेस्ट ने ये भी हाईलाइट किया कि इजिप्ट में ईद विजुअली और इमोशनली बहुत ही वाइब्रेंट होती है, रंग, आवाज, लोगों की एनर्जी सब कुछ मिलकर एक यूनिक एक्सपीरियंस क्रिएट करते हैं। ये सिर्फ फैमिली सेलिब्रेशन नहीं है बल्कि पूरी सोसाइटी का एक कलेक्टिव सेलिब्रेशन बन जाता है। जब तक कतर में ईद मनाने के लिए उन्होंने कहा कि मैं यहाँ पर हूँ, तो यहाँ पर भी उस तरह का माहौल तो होता है, बहुत सारे फेस्टिव मोमेंट्स भी होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अपनी फैमिली को उनको मिस करती हैं। आपने हमें ये भी बताया कि यहाँ रहकर भी वो खास डिशेस जो हैं वो बनाती हैं, सर्व करती हैं, फैमिलीज उसे इंजॉय करती हैं। कन्वर्सेशन के एंड पर गेस्ट ने बहुत ही खूबसूरत सी बात को हाईलाइट किया और आपने कहा कि ईद का असल मकसद जो है वो सिर्फ रिचुअल्स नहीं है बल्कि फैमिली रिलेशनशिप और सेलिब्रेशंस है। उन्होंने एम्फसाइज किया कि जिंदगी कितनी भी बिजी क्यों ना हो जाए, ईद हमें ये याद दिलाती है कि रिश्तों को मजबूत बनाना है और खुशियां शेयर करना ही सबसे इम्पॉर्टेंट है। ये मोमेंट्स ही असल में वो यादें बन जाती हैं जो हमेशा दिल के करीब रहती हैं। मुझे लगता है कि दोस्तों इस कन्वर्सेशन से हमें और आपको बहुत कुछ सीखने को मिला, जानने को मिला कि भले ही हम किसी भी मुल्क में क्यों ना हो, किसी भी तरह से अपनी खुशी का इजहार क्यों ना कर रहे हों, लेकिन कुछ चीज़ें हमेशा कॉमन रहती हैं, जिनमें है खाना, जिनमें है नए कपड़ों का एहसास, जिनमें है फैमिली का बॉन्ड, जिनमें है कनेक्शन, जिसमें है एक अपनापन, और अपनापन और इन सारी चीज़ों के साथ चैरिटेबल वर्क, कि किस तरह से अपनी खुशी के साथ साथ दूसरों की खुशियों का भी ख्याल रखना है। यही ईद का असल मकसद है, यही ईद का असल पैगाम भी है कि सिर्फ और सिर्फ जो कुछ आपको मिल रहा है वो आपका ही नहीं है, उसमें दूसरों का भी हक है, और खास करके उन लोगों का हक है जो बेचारे मजबूर हैं, वो लोग जो शायद उन चीज़ों का अफोर्ड नहीं कर सकते। तो दोस्तों खुशी जो है वो बांटने से बढ़ती है, खुशियों को बांटिए दूसरों के साथ भी, उन लोगों के साथ जो महरूमी का शिकार है। चलिए मिलकर दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हम सब की दुआओं को पूरा करे और पूरी दुनिया में चैन, सुकून, खुशी और अमन जो है वो लेकर आए। आमीन सुमा आमीन। वेल अभी के लिए आप सब भी को एक बार फिर से मेरी तरफ से ईद की ढेरों मुबारकबाद। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए, खुश रहिए, सुनते रहिए FM 107 दिल से देसी।
2: कतर से सलाम, विद आरजे नाज़िया, ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी।
3: अरे मौसी जी, कतर के चप्पे चप्पे पे सुनाई देता है एक ही रेडियो, FM 107 दिल से देसी, दिल से देसी।
4: इस ईद दुनिया के रंग, रिवायत और खुशी

0: विद आरजे फजील ईद के दूसरे और चौथे दिन दोपहर 3 बजे, जहां होगी ईद की मस्ती, कल्चरल स्टोरीज और दिल को छू लेने वाले मोमेंट्स, मजेदार ईद डिशेस का सफर, एक उम्मत और ईद में मोहब्बत का पैगाम। ओनली ऑन FM 107, दिल से देसी।
1: अस्सलाम वालेकुम साथियों, देखिए मैं मानती हूँ ये बात कि ईद अल अदा का दिन होता है किचन में एक्स्ट्रा एक्टिविटीज का, फ्रिज में टेट्रिस चैंपियनशिप का और हर किसी के एक्सपर्ट या एक्सपेरिमेंटल शेफ बनने का। लेकिन साथियों एक बात याद रखिएगा, ये ईद सिर्फ खाने की नहीं होती बल्कि शेयर करने की और केयर करने की भी होती है। तो भाई मेरी दिल से ये दुआ है कि अल्लाह ताला आपकी कुर्बानियों को कबूल फरमाए और आपकी जिंदगी को खुशियों, अमन और

बरकत से भर डाले। FM 107 की तमाम टीम की जानिब से और सफा की भी जानिब से आप सभी को ईद अल अदा की ढेर सारी मुबारकबाद। सुनते रहिए FM 107, दिल से देसी।

अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आरजे महावश FM 107 और मेरी तरफ से आप सब लोगों को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। अल्लाह ताला आपकी कुर्बानियों को कबूल फरमाए, आपकी जिंदगी को खुशियों, बरकतों और सलामती से भर दे और आपके घर को अपनी रहमतों से मुनव्वर करे। आमीन।

0: पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।
1: ओ चन्नती कुड़ी, ओ चन्नती कुड़ी।

नगर का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107 दिल से देसी।

अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं दोहा वाला कबीर एफएम 107 पे और आप सभी सुनने वालों को ईद उल अज़हा की दिली मुबारकबाद। अल्लाह ताला हमारी कुर्बानी को कबूल फरमाए और हमारे दिलों में मोहब्बत हमेशा बनाए रखे। आमीन या रब्बिल आलमीन।

अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, आप सुन रहे हैं एफएम 107 कतर और मैं हूं आपके साथ आपकी आरजे मावश खान। आप सब लोगों को ईद का तीसरा दिन बहुत बहुत मुबारक हो और एक दफा फिर मैं लेकर आ गई हूं ईद का खुसूसी शो रूहानी लम्हे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सफर रूहानी लम्हे के साथ और आज हम बात करेंगे सब्र के हवाले से। आप जानते ही हैं कि ईद उल अज़हा, कुर्बानी और सब्र, ये तीनों चीजें एक साथ चलती हैं और सब्र एक ऐसा लफ्ज है जो सुनने में बहुत छोटा लगता है लेकिन अपने अंदर बहुत गहरी और स्ट्रॉन्ग मीनिंग रखता है। जिंदगी में हर इंसान को कभी ना कभी ऐसे हालात का सामना करना पड़ता है जहां उसका दिल टूट जाता है, उम्मीदें कमजोर हो जाती हैं या रास्ता मुश्किल लगने लगता है। ऐसे वक्त में जो चीज इंसान को संभालती है उसे हम सब्र कहते हैं। इस्लाम में सब्र को सिर्फ एक आदत या बिहेवियर नहीं समझा जाता बल्कि इसे एक बहुत बड़ी इबादत और रोशन कुव्वत कहा गया है। सब्र का मतलब सिर्फ चुप रहना नहीं होता बल्कि अपने दिल को अल्लाह के फैसलों के सामने राजी रखना होता है। जब इंसान अपनी नफसानी ख्वाहिशों को कंट्रोल करता है, गुस्से को पी लेता है या मुश्किल वक्त में अल्लाह पर यकीन रखता है तो ये सब सब्र के अंदर आता है। जिंदगी हर इंसान के लिए टेस्ट और इम्तिहान का सफर है। कभी पैसों की तंगी, कभी रिश्तों की तकलीफ, कभी सेहत के मसाइल और कभी दिल का दर्द, ये सब चीजें इंसान को तोड़ भी सकती हैं और बना भी सकती हैं। जो इंसान सब्र को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लेता है वो हर मुश्किल को आसान बना लेता है। सब्र का असल मतलब ये है कि इंसान अल्लाह की हिकमत पर यकीन रखे। हो सकता है हमें समझ ना आए कि हमारे साथ कोई मुश्किल क्यों आ रही है, लेकिन एक मोमिन का यकीन होता है कि अल्लाह कभी भी अपने बंदे के साथ नाइंसाफी नहीं करता। हर चीज के पीछे कोई ना कोई हिकमत होती है जो वक्त के साथ समझ आती है। सब्र सिर्फ बुरे वक्त के लिए नहीं होता बल्कि अच्छे वक्त में भी जरूरी होता है। जब इंसान को सक्सेस मिलती है तो उस वक्त घमंड से बचना और अल्लाह का शुक्र अदा करते रहना भी सब्र का ही हिस्सा है। यानी सब्र सिर्फ रुकना नहीं बल्कि अपने आप को हर हाल में बैलेंस में रखना है। अगर हम अपने आसपास देखें तो हमें ऐसे बहुत से लोग मिलते हैं जो हर रोज मुश्किलात का सामना करते हैं लेकिन फिर भी अपनी जिंदगी को कंटिन्यू करते हैं। वो लोग शायद बहुत ज्यादा शिकायत नहीं करते लेकिन अंदर ही अंदर सब्र के साथ जी रहे होते हैं। ऐसे लोग असल में स्ट्रॉन्ग होते हैं क्योंकि उन्होंने अपने दर्द को अल्लाह के हवाले कर दिया होता है। कुरान में भी अल्लाह ताला ने सब्र का बहुत जिक्र किया है। अल्लाह फरमाते हैं कि जो लोग सब्र करते हैं उनके साथ अल्लाह होता है। ये बात किसी भी इंसान के लिए सबसे बड़ी तसल्ली है कि जब वो अकेला महसूस करे तब भी असल में अकेला नहीं होता अगर वो सब्र और ईमान पर कायम हो। सब्र का एक और पहलू ये भी है कि ये इंसान को इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनाता है। जो इंसान जल्दी टूट जाता है या

कुर्बानी का जो सिस्टम है बहुत स्ट्रिक्ट और ऑर्गेनाइज्ड होता है। लोकल म्युनिसिपैलिटीज बिल्कुल अलाउ नहीं करती कि कोई खुले में कुर्बानी करे। लोग गवर्नमेंट अप्रूव्ड स्लॉटर हाउस में जाते हैं या फिर एप्स के थ्रू चैरिटी ऑर्गेनाइजेशंस को पैसे देते हैं जो जरूरतमंद देशों में मीट डिस्ट्रीब्यूट कर देती हैं। इससे आपकी कुर्बानी भी हो जाती है, जरूरतमंद को खाना भी मिल जाता है और ऐसे में यू नो हाइजीन का भी पूरा ख्याल आसानी से रखा जा सकता है। खाने की बात करें तो ओमान में शुआ बहुत ही ज्यादा फेमस है, जिसमें मीट को स्पाइसेस में मैरिनेट करके केले के पत्तों में बनाना लीव्स में लपेटा जाता है और एक अंडरग्राउंड मिट्टी के ओवन में 24 से 48 घंटों तक स्लो कुक किया जाता है। जब हम बात कर रहे थे पिछली बार तो मैंने आपको बताया था अलग अलग तरह से लोग यू नो मीट खाना पसंद करते हैं या कहें मीट पकाना पसंद करते हैं। जैसे कुछ लोग कहीं पर ऊंचाई में रखकर हल्की हल्की आंच में उसे पकाते हैं गोश्त को, कुछ लोग गोश्त को यू नो सीक में लगा के धीरे धीरे क्लोज कंटेनर में करते हैं और कुछ लोग सीटी लगाते हैं, है ना, हमारे जैसे लोग जो जल्दी जाते हैं खाना बन जाए। उसके अलावा कुछ लोग अंडरग्राउंड गड्ढा खोद के उसमें कोयला वगैरह डालते हैं और पूरा लैम्ब या जो गोश्त है वो डाल देते हैं और धीमी आँच में काफ़ी लंबे वक्त तक 24 से 48 घंटों तक स्लो कुक किया जाता है। कुवैत और बहरीन में यही होता है, ओमान में यही होता है। उसके अलावा मकबूस कुवैत और बहरीन में बहुत ही ज़्यादा फेमस है, मीट और राइस डिश जिसे कहते हैं, और गुज़ी भी बनाया जाता है। जैसे कि कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था घर आए मेहमानों का स्वागत अरेबिक कॉफ़ी से किया जाता है और ये तो गल्फ की अलग पहचान है। ऊद की खुशबू और हलवा से लोगों का यू नो खैर मकदम किया जाता है। शाम को पूरे शहर को लाइट से सजाया जाता है। वैसे लाइट्स तो ऑलरेडी पहले से लग जाती हैं, बस शाम को जब लाइट जलती तो पता चलता ओह यहाँ पर सजावट थी। और आसमान जो है वो खूबसूरत दिख रहा होता है, स्पेक्टेकुलर फायरवर्क्स जो है वो सारी चीज़ें हो रही होती हैं और ये भी ऐसी जगह पे होती हैं जो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। तो खूबसूरत और खूबसूरत चीज़ मिलकर यानी कि फायरवर्क्स मिलकर और भी जगह को रंगीन और ज़बरदस्त बना देती हैं। तो अभी तक हमने बात कर ली कि यू नो नेपाल में, बांग्लादेश में कैसे सेलिब्रेट करते हैं, श्रीलंका में कैसे सेलिब्रेट करते हैं ईद उल अधा को, और वेस्टर्न कंट्रीज़ के बारे में बात कर लेते हैं क्योंकि अरब वगैरह में तो हम लोग रहे हैं तो हमें पता है काफ़ी हद तक चीज़ें मिलती जुलती हैं कतर से, बट वेस्टर्न कंट्रीज़ यानी कि यूके, जर्मनी, फ्रांस में क्या कुछ होता है। दोस्तों यूके, जर्मनी और फ्रांस जैसे वेस्टर्न देशों में बकरा ईद का जो त्यौहार है वो कम्युनिटी सॉलिडैरिटी और आइडेंटिटी का एक बड़ा जरिया है क्योंकि यहाँ मुस्लिम्स माइनॉरिटी में हैं और बिजी लाइफ भी होती है, इसलिए लोग अक्सर काम या स्कूल से छुट्टी लेते हैं ताकि फैमिली के साथ वक्त को बिताया जा सके। यूके के लंदन या बर्मिंघम, फ्रांस के पेरिस और जर्मनी के बर्लिन जैसे शहरों में ईद का जो सीन है बहुत ही वाइब्रेंट होता है। नमाज के लिए बड़ी बड़ी पार्क्स को, स्पोर्ट्स हॉल को, कल्चरल सेंटर्स को रेंट पर लिया जाता है क्योंकि लोकल मस्जिद जो है वो छोटी पड़ जाती है, लोगों की भीड़ जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है और वो भीड़ लोगों के लिए तकलीफ ना बने इसलिए कल्चरल सेंटर्स को या बड़े पार्क्स को या फिर स्पोर्ट्स हॉल को किराए पे या रेंट पे लिया जाता है। यहाँ एक ही सफ में टर्किश, अरब, साउथ एशियन और अफ्रीकन मुस्लिम्स एक साथ खड़े होते हैं जो मल्टी कल्चरलिज्म की बेहतरीन मिसाल है। यूरोप में स्ट्रिक्ट हेल्थ और एनिमल वेलफेयर लॉज की वजह से घरों पर या फिर खुले में कुर्बानी देना बिल्कुल इलीगल है, मना है, इसलिए लोग लोकल हलाल बुचर्स के पास अपना ऑर्डर पहले से बुक कराते हैं या फिर ऑनलाइन इस्लामिक चैरिटीज के थ्रू अपने होम कंट्रीज में कुर्बानी करवाते हैं। ईद के दस्तरखान पर यहाँ ग्लोबल फ्यूजन देखने को मिलता है, एक ही टेबल पर साउथ एशियन बिरयानी, टर्किश कबाब और मगरबी खाने जो हैं वो साथ में आ जाते हैं। लोकल यूरोपियन स्टाइल का बारबेक्यू, लैम चॉप्स भी यहाँ पर सर्व किया जाता है। शाम के वक्त इस्लामिक सेंटर्स और मॉस्क मिनी कार्निवल्स जैसे होते हैं जहाँ पर फेस पेंटिंग और फूड स्टॉल्स ऑर्गेनाइज होता है ताकि बच्चे अपने कल्चर रूट से जुड़े रहें। ये फेस्टिवल इन कंट्रीज में रहने वाले मुस्लिम्स के लिए अपनी आइडेंटिटी को सेलिब्रेट करने का एक बेहद प्यारा दिन होता है। ईद कल्चर्स पूरे दुनिया में किस तरह से सेलिब्रेट करते हैं दोस्तों, इस पर भी बात करते हैं। अगर हम ग्लोबल लेवल पर देखें दोस्तों तो बकरा ईद पूरी दुनिया में एक ऐसी दीवार तोड़ने का काम करती है जो जियोग्राफिक बॉर्डर्स और लैंग्वेज से बहुत ऊपर है। इस त्योहार का कोर मैसेज हर जगह एक ही है, आप किसी भी मुल्क चले जाएं,
नेपाल चले जाएं, श्रीलंका, इंडिया,

0: पाकिस्तान, कतर, सऊदी, कुवैत, ओमान, कहीं पर भी जाएं आप, एक ही इसका मैसेज है, वो कोर मैसेज है, हज़रत इब्राहिम की कुर्बानी को याद करना, खुदा की इबादत करना और ज़रूरतमंदों की मदद करना। लेकिन हर कंट्री इसमें अपना एक लोकल कल्चर और फ्लेवर मिक्स कर देती है, जो इस फेस्टिवल को और भी खूबसूरत बना देता है। अलग अलग देशों में इसके नाम भी बदल जाते हैं, जैसे टर्की में कुर्बा बैरमी, साउथ एशियन में हरी रया हजी और नॉर्थ अफ्रीका में ईद अल कबीर ये कहा जाता है। यानी कि जगह जगह पे, कंट्री कंट्री में ईद उल अधा का नाम अपनी लैंग्वेज में चेंज हो जाता है, उनकी अपनी लैंग्वेज में, कंट्री के लैंग्वेज में चेंज हो जाता है। इस फेस्टिवल की सबसे खूबसूरत चीज़ ये है कि इंसान को शेयर्स करना सिखाता है। हम हमारे अंदर ना जानवरों वाले ट्रेड है कि हम शेयर नहीं करते तो अब इंसान को इंसान से पता करना पड़ेगा ना कि भाई इंसान कैसे हैं। तो इंसान का काम ये है कि वो अपने थॉट को प्रोसेस करे, अपने थॉट को क्लीन करे, अपनी सोच को बेहतर करे। इसलिए शेयर करने के इन फेस्टिवल्स को ज़रूर सेलिब्रेट करना चाहिए मुसलमानों को। सबसे बड़ी जो खूबसूरती है वो यही है कि हम शेयर करना सीखें। ये हमारे नेचर में है कि जो हमारे पास है वो हमारा है, हम शेयर नहीं करेंगे। लेकिन ये जो फेस्टिवल है ये हमें इंसान बनाती है, हमें शेयर करने वाला शख्स बनाती है। कुर्बानी के गोश्त को तीन हिस्सों में बांटना होता है, जैसे कि फैमिली में, फ्रेंड्स में और जो गरीब हैं उनके लिए। एक ऐसा यूनिवर्सल रूल है ये जो हर कोने में फॉलो किया जाता है। ये बांग्लादेश में भी फॉलो होता है, नेपाल में भी फॉलो होता है, और चाहे पाकिस्तान हो, इंडिया हो या कोई भी खलीजी मुल्क क्यों ना हो, चाहे बांग्लादेश के गांव का कोई गरीब किसान हो या कुवैत का कोई अमीर बिजनेसमैन, इस दिन सबका मकसद एक होता है, सोसाइटी में खुशियां बांटना। जब दुनिया भर के लोग अपने दस्तरखान पर बैठे हैं और अपने पड़ोसियों को याद करते हैं तो पूरे प्लेनेट पर एक पॉजिटिव वेव क्रिएट होती है। ये फेस्टिवल हमें याद दिलाता है कि हमारे कस्टम्स, कपड़े और खाने के तरीके चाहे कितने भी अलग हों, हमारे दिलों की धड़कन और इंसानियत का रिश्ता बिल्कुल एक है। ये ग्लोबल यूनिटी और एम्पैथी की, बकरीद की असली रूह है।
1: इस ईद दुनिया के रंग, रिवायत और

दोस्तों, बकरईद सिर्फ एक मजहबी रस्म या कुर्बानी तक लिमिटेड नहीं है, ये तो हमें पता ही होगा, बल्कि ये एक ऐसा ग्लोबल इवेंट है जो पूरी दुनिया के दिलों को एक साथ जोड़ देता है। अगर हम ध्यान से देखें तो इस अर्थ पर, इस धरती पर हजारों तरह की जबानें बोली जाती हैं। हर मुल्क में, हर कंट्री का जो अपना अलग कल्चर है और हर खाते पीते घराने का जो टेस्ट है वो अलग है, लेकिन जब ईद का सूरज निकलता है तो ये सारी ज्योग्राफिकल बॉर्डर्स, दीवारें पल भर में गायब हो जाती हैं। एक ही दिन, एक ही वक्त पर दुनिया भर के मुस्लिम्स, चाहे वो बांग्लादेश के किसी छोटे से गांव में हो या कुवैत के किसी शाही मैदान में हो या यूके के किसी मॉडर्न पार्क में, एक साथ कतार में खड़े होकर नमाज अदा करते हैं, चाहे वो कोई भी बड़ा आदमी हो, चाहे वो कोई छोटा रिक्शा चलाने वाला आदमी क्यों ना हो। ये सीन अपने आप में ही दिलों की एक यूनिटी, एकता और ब्रदरहुड का सबसे बड़ा सबूत है। इस ईद का सबसे खूबसूरत और इमोशनल हिस्सा है कुर्बानी का गोश्त और इन गोश्त को बांटने का सिलसिला। इसमें एक बहुत गहरी इंसानी मैसेज भी आपको दिखाई देती है। जब मीट को तीन बराबर हिस्सों में बांटा जाता है, एक परिवार के लिए, दोस्तों के लिए और जरूरतमंदों के लिए, तो ये रूल सोसाइटी से अमीर गरीब का फर्क बिल्कुल मिटा देता है। और सबसे बड़ा मुझे लगता है किसी भी रिलीजन का मकसद यही होना चाहिए कि अमीर और गरीब का फर्क मिटा दे, ऊंचे और छोटे का फर्क मिटा दे, बड़े और छोटे का फर्क मिटा दे। जब कोई इंसान अपने हाथ से किसी गरीब, किसी जरूरतमंद या किसी अकेले इंसान तक खाना

0: पहुंचाता है तो वहां सिर्फ एक मील शेयर नहीं होती है बल्कि दिलों का कनेक्शन जो है वो बनता है। इसलिए मैं कहता हूं, जब भी आप कतर में हैं या ऐसी जगहों पे हैं जहां पर आप लोगों को देख रहे हैं कि वो अकेले रहते हैं, वो तन्हा हैं, उनके साथ बहुत लोग नहीं बैठते हैं, हो सकता है रूम में 4-6 लोग हों लेकिन वो तन्हाई एक फील होती है, फैमिली के साथ नहीं रहती, तो उन लोगों के साथ भी वक्त गुजारें, उनके साथ भी आप खाना बनाएं, उनको बकरीद में या फिर आपने जो अगर हिस्सा लिया उनको भी बांटें और साथ में बैठकर खाना खाएं। सिर्फ बांटने तक महदूद ना हो, उनके साथ बैठें, खाना खाएं, दस्तरखान शेयर करें, उनके लिए पानी निकालें, उनके लिए खाना लेकर जाएं। यह त्यौहार हमें सिखाता है कि हमारी खुशियां तभी मुकम्मल होती हैं जब हम उन्हें उन लोगों के साथ शेयर करते हैं जिनके पास रिसोर्सेज नहीं है। दोस्तों, हर इंसान की जिंदगी में मुझे पूरा यकीन है कि एक ना एक ऐसा कोई किस्सा जो है वो होता है जो ईद से या बकरीद से जुड़ा होता है। मुझे याद है कि जब मैं छोटा सा था तो मेरे दो किस्से हैं। पहला तो एक ये, जब मैं छोटा सा था उस वक्त हमारे घर बकरा आया तो मुझे बहुत शौक था कि बकरों को घुमाएं, उनको दूर दूर लेकर कहीं जाएं और है ना उनको बाहर कहीं खिलाएं अपने हाथों से। हम सब ने कहीं ना कहीं अपने हाथों से बकरों को अपने घर में पत्ते खिलाए होंगे, प्यार किया होगा, उनको टहलाने या घुमाने ले गए होंगे। उसके अलावा जो मोहल्ले में बाकी हमारे मुसलमान भाई लोग होते हैं, जो नेबर्स होते हैं, वो भी अपने बकरों को बाहर घुमाने निकलते हैं और लड़ाइयाँ हो जाती हैं बकरों में, है ना। तो ये सारी चीज़ें हम देखते हैं या फिर साथ में उनके खाने खाते हैं। कई बार ऐसा भी हुआ है कि ये यादें हैं अपनी अपनी के बकरे के लिए खाना जो है वो ख़त्म हो गया, पत्ते जो हैं वो ख़त्म हो गया, तो चौक जा रहे हैं लेने के लिए, काफ़ी दूर कहीं उनके पत्ते मिलते हैं तो वहाँ से, हमारे वक्त में 5-5 रुपए के बंडल मिलते थे तो हमारे अब्बा 2 बंडल ले आया करते थे और हम बड़ा जिद करते थे कि मुझे भी चलना है। तो मुझे एक बार का किस्सा जो है वो याद है, जिस जगह हम रहते थे वहाँ पर 3-4 फैमिली मेंबर्स जो हैं वो रहते थे, हमारे नेबर्स वगैरह भी रहते थे। तो उस दिन मेरा मन नहीं था स्कूल जाने का सुबह सुबह और मैं बकरे को टहलाने के लिए बाहर निकला और मेरे स्कूल की जो बस है वो आया करती थी, वो मुझे स्कूल ले जाया करती थी, लेकिन जिस दिन मुझे नहीं जाना था उस दिन मैं सुबह सुबह बकरे को टहलाने के लिए लेकर निकला। तो हम जैसे स्कूल में थे वो स्कूल अलग था, उसमें नॉन मुस्लिम्स भी थे, मुस्लिम्स भी थे, लेकिन बड़ा शर्मिंदगी होती थी कि मैं बकरे को घुमा रहा हूँ ऐसा करके, या फिर हमारे घर भी कुर्बानी होती है, बताने में थोड़ा सा अजीब लगता है। तो मैं एक बार उनको टहलाने के लिए लेकर गया और फिर पता चला कि वहाँ बस आ गई सुबह सुबह और मैं हाथ में पकड़ा हुआ था उसकी रस्सी बकरे की, और क्योंकि जैसे ही हमारे गली के सामने बस आती थी उसके बस 2 सेकंड पहले वो हॉर्न बजाते थे और मुझे पता चल जाता था कि मेरी बस आ गई, अब स्कूल जाने का टाइम है। लेकिन जिस दिन मैं बकरे को टहलाने के लिए लेकर निकला उन्होंने बजाया नहीं यार बस का हॉर्न, और वो बस आगे आके रुक गई। मेरे सारे दोस्त उसमें बैठे थे, मैंने हाथ में रस्सी पकड़ी हुई थी, मैंने उनको देखा, उन्होंने मुझे देखा और बकरा जो है वो मेरे हाथ के रस्सी से बंधा हुआ था। मैंने वो रस्सी तुरंत छोड़ दी और पैर पे दबा ली। अब पैर पे भी देखो डर भी है कि कहीं बकरा भाग ना जाए और अगर भागा तो फिर क्या होगा, तो बकरा भाग ना जाए इसलिए मैंने पैर के नीचे दबाई और सारे लोगों ने देख भी लिया, बाकी जितने दोस्त यार थे। तो जब सबने देखा तो मुझे थोड़ा सा शर्मिंदगी और फिर मैंने हाथ हिला के कहा नहीं आज मैं नहीं जाऊंगा। तो ये जो सिचुएशन है या ये जो कहानी है ये मुझे याद है और हर बार मैं कहानी को सुनाता हूँ ये दोस्तों में, तो बड़ी इंटरेस्टिंग भी है और ये भी है कि हम कई जगह ऐसी होती है, कई लोकेशन ऐसी होती है जहाँ पर हमें शर्मिंदगी भी होती है। उसके अलावा एक किस्सा ये भी था कि और वो डर कि बकरे को अगर कहीं घुमाने ले गए और बकरा अगर छूट गया, तो एक दिन मैं स्कूल जा रहा था, ये भी स्कूल से ही जुड़ी हुई है, स्कूल जा रहे थे एक दिन और जैसे ही मैंने गेट खोला तो स्कूल जाने के लिए बैग बस्ता मेरे पास था, टांगा हुआ था कंधे पे, जैसे होता ही है हम सब कंधे पे टांग कर जाते हैं भारी भारी बैग अपने स्कूलों को। तो जैसे ही मैंने गेट खोला बकरा खुला हुआ था, बकरा बाहर भाग गया। अब मेरी हालत ख़राब और मुझे ये पता था कि ये बकरा भाग गया है, अब ये कुछ भी करे पकड़ के आ भी जाए तो घर में सूता कौन जाएगा फजील कि तुमने गेट क्यों खोला। तो ये किस्सा जो है मुझे याद है क्योंकि जैसे ही मैंने गेट खोला वो भागा, मैं बस्ता छोड़ छाड़ के बस्ता भी जमीन पे गिरा और मैं उसको पकड़ने के लिए भागा, लेकिन फजील के कदम छोटे, बकरे के 4 टांग, वो भाई साहब बिरयानी दूर भाग रही थी। तो जैसे ही वो दूर भागी तो अब्बा पीछे से आया, उन्होंने कहा अरे परेशान मत हो, मुझे लगा कि अरे मुझे मार पड़ेगी, लेकिन होता ना बड़ा अनएक्सपेक्टेड होता है सब कुछ। अब्बा ने कहा अरे परेशान मत हो कौन सी बड़ी बात है, तो वो पत्ता लेकर आए, उन्होंने बकरे को ललचाया, बकरा लालच में आ गया और बकरे ने उस पत्ते को खा लिया और उतने में बकरा हाथ में भी आ गया और फिर बकरे को घर के अंदर ले आया गया। तो ये किस्से जो हैं हमें कहीं ना कहीं याद रहते हैं हमारे यू नो जानवर के साथ। हम जानवरों को प्यार भी बड़ा करते हैं, और मुझे याद है कई बार तो हम घुमाने भी लिए जाते थे उसको, दूर दूर कहीं टहलाने ले जा रहे हैं, उसे प्यार करते थे। और ये जो कहानियाँ हैं, ये जो बातें हैं, ये हमारे दिलों से जुड़ी हैं। और इस बकरीद मुझे लगता है हर बकरीद में कहीं ना कहीं ये कहानी हर बार लोगों से सुनता हूँ, उनकी अपनी कहानी, और अपनी कहानी ये हर बार लोगों को या अपने फैमिली मेंबर्स को बताता भी हूँ। बड़े ही मजेदार होते हैं, अपनाहियत सी एक लगती है। अच्छा, ये जानवर बच्चों तक नहीं बड़ों तक भी है, बस बड़े दिखा नहीं पाते। जैसे मेरी अम्मी जो है हमेशा कहती थी कि अरे सिर्फ पत्तों पर नहीं जिंदा रखना। और हम लोग 15 से 20 दिन पहले बकरे जो है वो खरीद लेते थे, क्योंकि हमारे अम्मी का कहना था कि हमेशा उन बकरों को मोहब्बत से रखो, प्यार से रखो, उनको अपना बना कर रखो। तो इसलिए बड़ा ज़रूरी है कि सिर्फ बकरों को यू नो ये चीज़ें मत खिलाओ, पत्ते मत खिलाओ, 5-5 रुपए का खरीद के खिला दिया, उसको अपनी प्लेट से भी दो। तो हम लोग रोटियां उसके लिए एक्स्ट्रा बनाते थे, या फिर आटा छानते थे तो कुछ पता नहीं चोकर कहते हैं क्या कहते हैं उनको, खानों में कुछ अलग चीजों में मिलाकर वो दिया करते थे। अरे वो ज्यादा प्रोटीन लेता था यार बकरा, हम लोगों से ज्यादा प्रोटीन लेता था वो, उसे चना बकायदा दिया जाता था, और वो चना जो हमारे लिए नहीं था, खैर हम लोग खाते नहीं थे, लेकिन बकरों को बकायदा वो चना दिया जाता था। तो चना है, चोकर है, और रोटियां हैं, घर के जो बाकी जो चीजें हैं जो यू नो बहुत टेस्टी भी होती हैं और साथ ही साथ उसमें प्रोटीन भी है, तो प्रोटीन खा रहा है। एक दो बार तो पनीर भी मैंने दे दिया, तो पनीर वाले में अम्मी ने कहा था नहीं बेटा इतना भी प्यार नहीं महंगा होता था ना, या हमारे घर में ही दूध से बनाया जाता था। तो ये जो चीजें हैं बहुत अच्छी लगती हैं, आपको याद रहती है अपने फैमिली मेंबर्स की करी हुई बातें, हमारी अम्मी का यू नो खास तौर पे काम। उसके अलावा हमारे अब्बा भी बड़ा प्यार करा करते थे। मुझे याद है कि रात रात भर कभी ऐसा हो जाए कि अरे रात के 10 बज रहे हैं और इसके लिए खाना ही नहीं है, पत्ते ही नहीं है, तो वो साइकिल से जाते थे चौक जो 2.5 से 3 किलोमीटर दूर था, मैं भी पीछे लटक लेता था, तो वो साथ में जाना और फिर साथ में लेकर आना, फिर पत्ते खिलाना, सुबह सुबह उठ के उसको ध्यान में रखना। और फिर बड़ी टेंशन होती थी सर्दियों के वक्त कैसे रखें, तो बोरे में उसको किनारे एक जगह दे दी जाती थी जहां 3 दीवारी हो और उसको जो है सर्दी ना लगे, है ना, उसकी तबीयत खराब हो तो दवाएं आती थी। तो जानवरों की ऐसी केयर करना जैसे कि वो अपने फैमिली मेंबर्स हैं, और फैमिली मेंबर्स की केयर करते हुए ये सोचना कि ये एक दिन चले जाएंगे। और इसी कुर्बानी का मकसद ही यही है कि अपनों की कुर्बानी देना ये बड़ा जरूरी है। इस बात को समझना कि अपने की कुर्बानी होना, अपनी जो बहुत प्यारी जो अपनी चीज है वो चली जाना, इससे हमारे दिल में और भी ज़्यादा मोहब्बत बढ़ती है, इससे हमारा दिल और ज़्यादा मजबूत होता है। और साथ ही कुर्बानी करना, सामने खड़े होना, ये भी बहुत ज़रूरी है ताकि हमारे दिलों में मजबूती है। तो दोस्तों ये था आज का शो ईदनामा, और उम्मीद है कि आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा ये खास शो FM 107 पे। और ये यादें, ये दिन, ये भी कभी भुलाई नहीं जा सकती हैं, और ये ताउम्र हमारे साथ रहेंगी। और मज़े की बात यह है कि हर साल एक नई यादें हमारी बनती हैं जब हम बकरा लेते हैं या हम कोई जानवर लेते हैं, जब उनको 20 से 25 दिन हम अपने साथ रखते हैं तो हमारे दिल जो हैं वो उनसे जुड़ जाते हैं। मुझे एक और किस्सा याद आता है, जब मेरे एक रिश्तेदार थे, उन्होंने करीब 2 साल पहले 2 छोटे बकरे जो है जुड़वा वो खरीदे थे, और उनको साथ रखा, पाला, उनके लिए खाना आता था, घरों में उसको रखते थे। और 2 साल बाद जब वो कुर्बान हुए 2 बकरे, तो उनके घरों में हर एक शख्स के यू नो आँखों में आंसू थे, क्योंकि वो कुर्बानी जो है वो फील कर सकते थे। और मेन मकसद तो हमारा यही है कि ईद में जो है वो कुर्बानी दी जाए, अपनों की कुर्बानी। इसके अलावा दोस्तों ईद पर लोग अपनी पुरानी नाराज़गियाँ, गिले शिकवे और दुश्मनी भी भूलकर एक दूसरे को गले लगाते हैं। और इसका खास रीज़न यही है कि जब आप 3 हिस्सा निकालेंगे तो आपके जो जिनसे आपकी बातचीत नहीं है, जिनसे आप नाराज़ हैं, उनके साथ भी आप बैठेंगे, उनके साथ भी आप बात करेंगे, और फिर माफ़ी तलाफ़ी भी हो जाएगी। ऐसे में आप वापस से उन रिश्तों में जुड़ जाएंगे। इसलिए इंसानों के लिए ये जो त्यौहार है, ये जो फेस्टिवल है, बेहद ज़रूरी है। माफ़ी, मोहब्बत और कंपैशन का जो मौसम है, ये मौसम यही है, ये फेस्टिवल है, बकरीद है, जब पूरी दुनिया में एक साथ लोग एक दूसरे के लिए दुआ करते हैं, दावत ऑर्गेनाइज करते हैं और हंसी मजाक करते हैं, तो पूरे प्लेनेट पर एक पॉजिटिव एनर्जी जो है वो फिल हो जाती है। और उम्मीद है कि आज भी किसी के घर आपकी दावत तो ज़रूर होगी, या फिर आपने दावत ली होगी या कल तो कहीं खा के आए ही होंगे। ये फेस्टिवल दोस्तों हमें याद दिलाता है कि हमारे कस्टम्स, कपड़े और खाने के जो तरीके हैं, वो चाहे कितने भी अलग हों, हमारे दिलों की धड़कन और इंसानियत का रिश्ता बिल्कुल एक है। ये ग्लोबल यूनिटी और एम्पैथी ही बकरीद की असली रूह है, जो दिलों को हमेशा के लिए करीब ले आती है। उसके अलावा दोस्तों एक मैसेज जो इस ईद उल अदा में छुपा होता है, ईद उल अदा का पाक महीना हमारे दिलों में एक नई उम्मीद, गहरा सुकून और बे इंतहा खुशी लेकर आता है। ये त्योहार, ये फेस्टिवल हमें हर साल ये याद दिलाता है कि असली जिंदगी का मजा सिर्फ लेने में नहीं बल्कि देने में है, दिल खोल कर दूसरों की मदद करने में है, अपना हिस्सा दूसरों को देने में है। जब हम इस ईद पर कुर्बानी करते हैं तो सिर्फ एक रस्म पूरी नहीं होती बल्कि हम अपने अंदर के लालच को, सेल्फिशनेस को, ईगो को कुर्बान करते हैं। ये दिन हमें सिखाता है कि खुशियां बांटने से हमेशा दुगना हो जाता है, डबल हो जाती हैं ये खुशियां। जब आप किसी जरूरतमंद या परेशान इंसान के चेहरे पर मुस्कान देखते हैं तो उससे जो अपने दिल में सुकून मिलता है, ये ऐसा ही होता है जब एक छोटा सा बच्चा, हमारा बच्चा जब वो हंसता है, रोने के बाद जब वो हंसता है तो हमारे दिलों को बहुत सुकून मिलता है। तो ऐसा ही सुकून हमें तब मिलता है जब हम कुर्बानी का गोश्त बांटते हैं, किसी के चेहरे की मुस्कान बनते हैं, किसी को खाना खिलाते हैं। तो ये बड़ा जरूरी है जब हम जरूरतमंद की मदद करें और उसके चेहरे पर जो खुशी आती है वो दुनिया की किसी भी दौलत से बढ़कर है। ये त्योहार, ये फेस्टिवल हमारे अंदर हमदर्दी और इंसानियत की शमा को रोशन करता है। दोस्तों इस ईद पर आइए हम सब मिलकर एक साथ होने के इस खूबसूरत एहसास को सेलिब्रेट करें, अपने घरों के दरवाजे और अपने दिलों के रास्ते सबके लिए खोल दें। सिर्फ उनसे ही गले ना मिले जिन्हें आप पहले से जानते हैं बल्कि उन्हें भी मुस्कुराकर ईद मुबारक कहें जो अकेले हैं या अपने फैमिली से दूर किसी दूसरे देश में रह रहे हैं, काम कर रहे हैं। आज के इस तेज रफ्तार जिंदगी में, मॉडर्न जिंदगी में ईद एक ठहराव लेकर आती है जहां हम अपने बिजी स्केड्यूल से ब्रेक लेकर अपने फैमिली, दोस्तों और पड़ोसियों के साथ बैठकर कुछ जरूरी हसीन और यादगार पल बिता सकते हैं। ये वक्त है साथ में बैठकर दावत उड़ाने का, पुरानी यादों को ताजा करने का और एक बेहतर कल के लिए दुआ मांगने का। आप सभी को और आपके पूरे फैमिली मेंबर्स को बकरीद की ढेरों मुबारकबाद। ये पाक दिन आपकी जिंदगी को ढेर सारे खुशियां, अच्छी सेहत और बरकत से भर दे। आइए इस ईद पर हम सब एक छोटा सा वादा करें, हम जहां भी रहें मोहब्बत और भाईचारा फैलाते रहें और हर रोते हुए को हंसाते रहें और इस दुनिया को रहने के लिए एक बेहतर और खूबसूरत जगह बनाएं। आप सभी का आपस का रिश्ता हमेशा यूं ही मजबूत रहे, आपका दस्तरखान हमेशा भरा रहे और आपका घर हंसी खुशी से गूंजता रहे। एक बार फिर से आप सभी को बेहद प्यारी और पुरसुकून ईद उल अदा मुबारक हो।
1: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM107 कतर। दिल से देसी।
2: ईद का जश्न ना ऐसा होना चाहिए कि दावत और लोग दोनों की कमी ना हो, तभी तो होता है हाउस फुल। अब दस्तरखान पे महफिल और किस्से और साथ में पकवान, ओए होए, यही तो बात है, यही तो है हाउस फुल। तो किस्से वाला जो पार्ट है ना वो आप हमसे शेयर करें, बिकॉज यू आर वेलकम इन आर हाउस फुल। ईद का खास प्रोग्राम ईद के चारों दिन शाम 5 बजे से मेरे यानी दोहा वाले कबीर के साथ जरूर सुनिए हाउसफुल ईद सिर्फ FM 107 पर। दिल से देसी।
3: दोस्तों घर में एक फंक्शनल फायर एक्सटिंग्विशर का होना एक अहम सेफ्टी रिक्वायरमेंट है और इसको कैसे इस्तेमाल करना है ये जानना भी बेहद जरूरी है। याद रखिए, आपकी आगाही आपकी सेफ्टी को बढ़ाती है। फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल करने से पहले कुछ बेसिक चीजें जरूरी होती हैं। सबसे पहले आपको फायर एक्सटिंग्विशर का टाइप समझना जरूरी है। हर फायर एक्सटिंग्विशर अलग अलग टाइप्स की आग के लिए डिजाइन होते हैं, जैसे कि ड्राई केमिकल, फोम, वाटर बेस्ड या CO2 एक्सटिंग्विशर। आपको ये इंश्योर करना चाहिए कि जो एक्सटिंग्विशर आपके पास है वो आपके घर की सेफ्टी नीड्स को पूरा करता हो। फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल करते वक्त एक सिंपल एक्रोनिम पास का ध्यान रखें, PASS, जिसका मतलब होता है P फॉर पुल, यानी सेफ्टी पिन को खींच कर निकालें। दूसरा है A, यानी एम, नोजल को आग के बेस की तरफ फोकस करें, ना कि आग के ऊपर। नंबर 3 है S, जो के है स्क्वीज, हैंडल को धीरे से स्क्वीज करें ताकि एक्सटिंग्विशिंग एजेंट रिलीज हो और चौथा है दोबारा से एस यानी स्वीप नोजल को साइड टू साइड घुमाते हुए आग पर स्प्रे करें जब तक आग पूरी तरह से बुझ ना जाए फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल करने से पहले ये भी जरूरी है कि आप इमरजेंसी नंबर या लोकल फायर डिपार्टमेंट का कॉन्टेक्ट नंबर हाथ में रखें और किसी भी बड़े हादसे से बचने के लिए आप सभी को फायर सेफ्टी ट्रेनिंग दें FM 107 आपकी खुशहाल जिंदगी की ख्वाहिश करता है

0: विमेन इन स्पोर्ट्स आरजे सफा के साथ हर मंडे दोपहर 1 बजे से सिर्फ FM 107 पर दिल से देसी।
1: कतर का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107 दिल से देसी।

खुशबू, कुर्बानी का जज्बा और खुशियों का जहां। ये ईद हमें सेक्रिफाइस, पेशेंस और शेयरिंग का पैगाम देती है। अल्लाह करे कि ये दिन आपके लिए खुशियाँ, बरकत और सुकून लेकर आए। अपने घर वालों, दोस्तों और जरूरतमंद लोगों के साथ खुशियाँ बांटना ना भूलें। दुआ है कि अल्लाह आपकी हर कुर्बानी को कबूल फरमाए और आपकी जिंदगी को कामयाबी और रहमत से भर दे। मैं हूँ नाजिया, मेरी और FM 107 की पूरी टीम की तरफ से आप सभी को दिल से ईद उल अधा मुबारक।

आपके दोस्तों यारों को और हमारे भाइयों को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। खुदा करे ये खास दिन आपकी जिंदगी में ढेर सारी खुशियां, सुकून और तरक्की लेकर आए। मे अल्लाह एक्सेप्ट योर प्रेयर्स, ब्लेस योर होम विद लव एंड पीस। ये दिन दोस्तों और परिवार के साथ, फैमिली मेंबर के साथ हंसने मुस्कुराने और मीठी सेवैया खाने का है। सभी पुरानी बातों को, गमों को भूलकर एक दूसरे को गले लगाएं और इस खूबसूरत मौके को दिल से सेलिब्रेट करें। स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी एंड कीप स्माइलिंग ऑलवेज। विश यू अ वेरी जॉयफुल एंड सेफ ईद उल अधा। और सुनते रहें FM 107 दिल से।

अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आरजे महावश FM 107 और मेरी तरफ से आप सब लोगों को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। अल्लाह ताला आपकी कुर्बानियों को कबूल फरमाए, आपकी जिंदगी को खुशियों, बरकतों और सलामती से भर दे और आपके घर को अपनी रहमतों से मुनव्वर करे। आमीन।

0: FM 107 की पूरी फैमिली की तरफ से हमारे तमाम सुनने वालों को ईद उल अदा की दिल की गहराइयों से मुबारकबाद।
1: Midnight Melodies only on FM 107, दिल से देसी।

0: क्या तू फिर भी जान है मेरी
1: Midnight Melodies only on FM 107 दिल

0: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम एट FM 107 कतर। दिल से देसी।
1: ईद के चारों दिन सुबह होगी और भी खास। सुनिए मॉर्निंग मस्ती ईद विद आरजे महवेश खान, 7 से 9 बजे सुबह मजेदार गुफ्तगू, ईद की खुशियाँ, आपके मैसेजेस और बहुत सारी मस्ती के साथ हर ईद की सुबह मनाए खुशियाँ FM।

काफिरों को कितना ही नागवार हो। वो बुलंद दर्जों वाला मालिक अर्श है, अपने बंदों में से जिस पर चाहता है अपने हुक्म से रूह नाजिल कर देता है ताकि वो मुलाकात के दिन से खबरदार कर दे। वो दिन जबकि सब लोग बेपर्दा होंगे, अल्लाह से उनकी कोई बात छुपी हुई न होगी। उस रोज पुकार कर पूछा जाएगा, आज बादशाही किसकी है? सारा आलम पुकार उठेगा, अल्लाह वाहिद कहार की। कहा जाएगा, आज हर मुतनफिस को उस कमाई का बदला दिया जाएगा जो उसने की थी। आज किसी पर कोई जुल्म ना होगा और अल्लाह हिसाब लेने में बहुत तेज है। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, डरा दो इन लोगों को उस दिन से जो करीब आ लगा है, जब कलेजे मुंह को आ रहे होंगे और लोग चुपचाप गम के घूंट पिए खड़े होंगे। जालिमों का न कोई मुशफिक दोस्त होगा और न कोई शफीय जिसकी बात मानी जाए। अल्लाह निगाहों की चोरी तक से वाकिफ है और वो राज तक जानता है जो सीनों ने छुपा रखे हैं, और अल्लाह ठीक ठीक बेलाग फैसले करेगा। रहे वो जिनको ये मुशरिकीन अल्लाह को छोड़कर पुकारते हैं, वो किसी चीज का भी फैसला करने वाले नहीं हैं। बिलाशुबा अल्लाह ही सब कुछ सुनने और देखने वाला है।

ये लोग कभी जमीन में चले फिरे नहीं हैं कि इन्हें उन लोगों का अंजाम नजर आता हो जो इनसे पहले गुजर चुके हैं। वो इनसे ज्यादा ताकतवर थे और इनसे ज्यादा जबरदस्त आसार जमीन में छोड़ गए हैं, मगर अल्लाह ने उनके गुनाहों पर उन्हें पकड़ लिया और उनको अल्लाह से बचाने वाला कोई न था। ये उनका अंजाम इसलिए हुआ कि उनके पास उनके रसूल बय्यनात लेकर आए और उन्होंने मानने से इनकार कर दिया। आखिरकार अल्लाह ने उनको पकड़ लिया। यकीनन वो बड़ी कुव्वत वाला और सजा देने में बहुत सख्त है। हमने मूसा को फिरौन और हामान और कारून की तरफ अपनी निशानियां और नुमाया सनद मामूरियत के साथ भेजा, मगर उन्होंने कहा साहिर है, कज़्ज़ाब है। फिर जब वो हमारी तरफ से हक उनके सामने ले आया तो उन्होंने कहा जो लोग ईमान लाकर इसके साथ शामिल हुए हैं उन सब के लड़कों को कत्ल कर दो और लड़कियों को जीता छोड़ दो, मगर काफिरों की चाल अकारत ही गई। एक रोज फिरौन

ने अपने दरबारियों से कहा, छोड़ो मुझे, मैं इस मूसा को कत्ल किए देता हूँ, और पुकार देखे ये अपने रब को, मुझे अंदेशा है कि ये तुम्हारा दीन बदल डालेगा या मुल्क में फसाद बरपा करेगा। मूसा ने कहा, मैंने तो हर उस मुतकब्बिर के मुकाबले में जो यौमुल हिसाब पर ईमान नहीं रखता अपने रब और तुम्हारे रब की पनाह ले ली है। इस मौके पर आले फिरौन में से एक मोमिन शख्स जो अपना ईमान छुपाए हुए था बोल उठा, क्या तुम एक शख्स को सिर्फ इस बिना पर कत्ल कर दोगे कि वो कहता है मेरा रब अल्लाह है, हालांकि वो तुम्हारे रब की तरफ से तुम्हारे पास बय्यनात ले आया। अगर वो झूठा है तो उसका झूठ खुद उसी पर पलट पड़ेगा, लेकिन अगर वो सच्चा है तो जिन हौलनाक नताइज का वो तुमको खौफ दिलाता है उनमें से कुछ तो तुम पर जरूर ही आ जाएंगे। अल्लाह किसी ऐसे शख्स को हिदायत नहीं देता जो हद से गुजर जाने वाला और कज़्ज़ाब हो। ऐ मेरी कौम के लोगों, आज तुम्हें बादशाही हासिल है और जमीन में तुम गालिब हो, लेकिन अगर खुदा का आज़ाब हम पर आ गया तो फिर कौन है जो हमारी मदद कर सकेगा। फिरौन ने कहा, मैं तो तुम लोगों को वही राय दे रहा हूँ जो मुझे मुनासिब नजर आती है, और मैं उसी रास्ते की तरफ तुम्हारी रहनुमाई करता हूँ जो ठीक है।

ओ अल्लाह ही तो है जिसने तुम्हारे लिए जमीन को जाय करार बनाया और ऊपर आसमान का गुंबद बना दिया, जिसने तुम्हारी सूरत बनाई और बड़ी ही उम्दा बनाई, जिसने तुम्हें पाकीजा चीजों का रिस्क दिया। वही अल्लाह जिसके ये काम हैं तुम्हारा रब है, बेहिसाब बरकतों वाला है। वो कायनात का रब, वही जिंदा है, उसके सिवा कोई माबूद नहीं। उसी को तुम पुकारो, अपने दीन को उसी के लिए खालिस करके। सारी तारीफ अल्लाह रब्बुल आलमीन ही के लिए है। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन लोगों से कह दो कि मुझे तो उन हस्तियों की इबादत से मना कर दिया गया है जिन्हें तुम अल्लाह को छोड़कर पुकार